सुप्रभात। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। आज रविवार है। शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 21वीं तिथि तदनुसार 12 जुलाई 2026 प्रातः के 5:59 होने को हैं। अब हमारी प्रातःकालीन प्रसारण सभा आरंभ होती है।

0: ये आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। प्रातः के 6 बजने को हैं। अब आप समाचार सुनेंगी।
1: साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा पूरी कर स्वदेश रवाना हो गए हैं। न्यूजीलैंड से स्वदेश लौटते हुए श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के समक्ष अवसरों की अपार संभावनाएं हैं और वे अपनी साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज दिल्ली स्थित पूसा परिसर में पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस अवसर पर वे देश भर से आए लगभग 17,000 वृक्ष मित्रों से संवाद करेंगे। श्री सिंह वृक्ष मित्रों के साथ पूसा परिसर में वृक्षारोपण अभियान में भी हिस्सा लेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार एक विशाल अभियान में आज 35 करोड़ पौधे लगाएंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सुबह गोरखपुर से राज्यव्यापी पौधारोपण महायज्ञ 2026 का शुभारंभ करेंगे। वे एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे और आरकेबीके के पास ताल रिंग रोड के किनारे पौधे लगाएंगे। मध्य प्रदेश में आज मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की 38वीं मासिक किस्त जारी की जाएगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से 1,25,00,000 से अधिक महिलाओं के बैंक खातों में 1,835 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित करेंगे। इसके अतिरिक्त 83 करोड़ रुपए से अधिक की 16 नई लोक कल्याणकारी परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए 9 सदस्यीय समिति का गठन किया है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई इसकी अध्यक्ष होंगी। खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI ने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2026 के अंतर्गत नियमों का उल्लंघन करने के आरोपों से संबंधित कई उपभोक्ता शिकायतों के बाद स्विगी इंस्टामार्ट को 9 नोटिस जारी किए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में FSSAI ने कहा है कि स्विगी को विस्तृत स्पष्टीकरण और अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है और ऐसा न करने पर उचित कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी। उपभोक्ता शिकायतों में स्विगी इंस्टामार्ट पर उत्पादों के निर्धारित अवधि समाप्त होने, खराब, सड़े, दूषित और अन्य प्रकार के असुरक्षित खाद्य उत्पादों की आपूर्ति का आरोप लगाया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों को अपने पक्ष में करने के जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के आरोप की आलोचना की है। दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में पार्टी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि श्री अब्दुल्ला का यह बयान अत्यंत गैर जिम्मेदाराना है और इसकी निंदा की जानी चाहिए। भारतीय पर्यटकों को ले जा रही एक स्पीड बोट कल वियतनाम के फुकवोक द्वीप के पास पलट जाने से 15 भारतीय पर्यटकों की मौत हो गई। वियतनाम स्थित भारतीय दूतावास ने पुष्टि की है कि मृतकों में 13 पुरुष और 2 महिलाएं शामिल हैं। दूतावास ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में मृतकों की सूची साझा करते हुए कहा कि ये नाम वियतनामी अधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं। दूतावास के अनुसार मृतकों से 10 तमिलनाडु से और 3 आंध्र प्रदेश से जबकि 2 केरल से थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय नागरिकों के साथ हुई दुखद नाव दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के होर्मुज जलडमरू मध्य में साइप्रस के झंडे वाले जहाज पर हमले के बाद अमरीका ने ईरान पर नए हमले शुरू कर दिए हैं। अमरीकी सेना ने कहा है कि ये हमले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर किए गए। इस बीच ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य को अगली सूचना तक बंद कर दिया है। और खेलों में इंग्लैंड ने कल रात साउथैम्पटन में 5वें और अंतिम T20 क्रिकेट मैच में भारत को 56 रन से हराकर श्रृंखला 4-0 से जीत ली है। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में इंग्लैंड ने आज तड़के फ्लोरिडा के मियामी स्टेडियम में नॉर्वे को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। स्पेन और फ्रांस पहले ही सेमीफाइनल में जगह बना चुके हैं। उधर लंदन में कल रात विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में 21 वर्षीय लिंडा नोस्कोवा ने चेक गणराज्य की करोलिना मुकोवा को हराकर महिला सिंगल्स का खिताब जीत लिया। महिला डबल्स के फाइनल में आज गुओ हान्यू और लुइसा स्टेफेनी की जोड़ी का मुकाबला क्रिस्टीना माल्डिनोविच और ग्रेबेलिया डाब्रोवस्की की जोड़ी से होगा। यह मैच शाम 5:30 शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। प्रातः काल की वंदन बेला भोर किरण के साथ हरी बोल वन में नाच रहे हैं मोर। हर पक्षी के कलरव में वंदन वंदन लहरे कर रही हैं। हरी हरी कहे भंवरे भी डोल रहे हैं। हरी हरी कहे कमल पुष्प भी अब पंखुरियां खोल रहे हैं। ऐसी मधुर बेला में हम भी सच्चिदानंद स्वरूप का वंदन करते हैं।

0: श्रोताओं अभी अपने शर्मा बंधुओं के स्वर में ये भजन सुना, और आइए सुनते हैं एक और भजन मोहम्मद रफी, आशा भोसले और साथियों की आवाज में। हे गोविंद, हे रघुनंदन, पवित्र पावन परमेश्वर, भक्ति मैत्री प्रेम और मर्यादा की साक्षात मूरत, हे कौशल्यानंदन, क्षमा सरलता स्थिरता निर्भयता अहंकार शून्यता आदि गुणों के सागर, हम सब पर अपने आशीर्वाद का वरद हस्त रखना, जिससे हम सब का जीवन सदैव आपके ही चरणार विंदों में समर्पित रहे।
1: श्री राम चंद्र आश्रित पारिजात है,

श्रोताओं, भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से। हे मूर्ख प्राणी, अपने इस अमूल्य जीवन को यूं इस तरह व्यर्थ न गवा। माया मोह के इस बंधन को छोड़कर हर पल हर बेला में उस परम पिता की आराधना कर, गुरु का ध्यान कर, उसे जानने का प्रयत्न कर जो सर्वशक्तिमान है, जो कण कण में विराजमान है।

श्रोताओं, अभी आपने भाई हरि सिंह रागी के स्वर में ये शब्द सुना, और आइए अब सुनते हैं जमील अहमद की आवाज में एक नात। जिंदगी की राह में जब इंसान खुद को अकेला महसूस करता है, जब उम्मीदों के चिराग मंद पड़ने लगते हैं, तब ईश्वर की रहमत और उसके प्यारे नबियों की याद दिल को सुकून देती है। मोहब्बत, करुणा, इंसानियत और सच्चाई का पैगाम ही वह रोशनी है जो हर अंधेरे को दूर कर देती है।

श्रोताओं अपनी अनुराधा पोडवाल और साथियों की आवाज में ये सरस्वती आरती सुनी और इसके साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव 314.47 मीटर पर। आइए सुनते हैं श्री रामचरित मानस गान। स्वर है सुरेश वाडेकर का।

भारद्वाज मुनि को भरत के प्रति श्री राम के स्नेह का पूरा ज्ञान है। इसी आधार पर वे भरत को विचलित देख सांत्वना देते हुए आश्वस्त करते हैं कि श्री राम के लिए उनके समान प्रिय कोई दूसरा नहीं है। उनका तो ये कहना है कि भक्ति रूपी रस की सिद्धि के लिए ही श्री राम के प्रेम ने भरत रूपी शरीर धारण किया है। भरत का यश निर्मल नवीन चंद्रमा है। चंद्रमा तो अस्त होता है, प्रतिदिन घटता बढ़ता रहता है, किंतु भरत का यश रूपी चंद्रमा कभी अस्त नहीं होगा। जगत के आकाश में वो दिन दूना बढ़ता रहेगा। भरद्वाज जी कहते हैं, हे भरत, तुम्हें व्यर्थ ही ग्लानि हो रही है। मैं जगत से उदासीन तपस्यारत हूं। मुझे श्रीराम सीता और लक्ष्मण के दर्शनों का सुयोग प्राप्त हुआ, किंतु अपने सत्कर्मों का सबसे बड़ा परम फल मुझे आज तुम्हारे दर्शन से प्राप्त हो रहा।

है। भरद्वाज मुनि के वचन सुन पूरी सभा हर्षित हो गई। देवताओं ने साधु साधु कहकर पुष्प वृष्टि की।

0: श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं चिंतन।
1: सुख की लालसा से ही मन भटकता है कि कहां सुख मिलेगा। तुम स्थिर बैठ जाओगे तो मन ठीक है ही, तुम्हें ठीक करने की जरूरत नहीं है। मन और विचार एक हैं, अलग नहीं हैं, क्योंकि मन से ही विचार आते हैं। जब मन अशांत हो तो गाने बजाने और भजन करने से मन ठीक हो जाएगा। ध्यान करने से मन साफ होता है। जैसे पानी गंदा है, पानी में हलचल है तो हम अपना प्रतिबिंब नहीं देख पाते हैं। ठीक उसी तरह मन में हलचल है तो हम अपना स्वरूप नहीं देख पाते, इसलिए ध्यान करना जरूरी है। जब कोई आपके साथ कुछ समय के लिए रहता है तब उसके जाने पर मन दुखी हो जाता है, क्योंकि आप इस दौरान उस व्यक्ति से बंध गए। आप जब ज्ञान में उतर जाओगे तो पता चलेगा कि आप न बंधते हैं न ही दुखी होते हैं। मन हमेशा नीचे की ओर जाता है, गलत कामों और विषय वासनाओं में। मन को मारो नहीं, सुधारो, साफ करो। जब मन साफ होता है तो भक्ति, निष्ठा और प्रेम का उदय होता है। प्रभु ने आपको अपार प्रेम दिया है, घुट घुट कर क्यों जीते हो? प्रेम से जियो। प्रेम अनुभव की चीज नहीं है, वो स्वयं अपने आप में है। जब आप किसी से मिलते हो, मिलते ही खूब हंसते हो, खुश होते हो, इसके लिए आपने कोई प्रयत्न तो नहीं किया, ये अनुभव हुआ या अपने आप हुआ? प्रेम मांगने से कम होता है, देने से बढ़ता है, क्योंकि हर व्यक्ति प्रेम चाहता है। प्रेम चाहने से नहीं, देने से होता है। देखने से, मिलने से प्रेम होता है। प्रेम से प्यार हो जाता है, प्यार से त्याग हो जाता है, और फिर त्याग ज्ञान में बदल जाता है। हम जिससे प्रेम करते हैं उसकी हर बात बहुत ध्यान से सुनते हैं, उसका हर काम हर बात बहुत ही अच्छी लगती है, सुंदर लगती है। सबसे प्रेम करो, सब सुंदर लगेंगे। प्रेम व्यक्ति से मत करो, उसके आत्मा से, चेतना से करो। व्यक्ति से प्रेम करोगे तो आसक्त हो जाओगे, उलझन पैदा होगी और फिर उलझ जाओगे। तुम्हें हमें कुछ नहीं करना पड़ता, परमात्मा ने बहुत प्रेम दिया है। जितना बांटते हैं उससे 10 गुना बढ़ता है। ज्ञान और प्रेम के रास्ते में चलने से ऐसा देखने में आया है कि जो इस रास्ते को अपनाता है वो आनंद, प्रेम और खुशी पाता है। प्रेम में डूब जाना ही जीवन है, प्रेममय हो जाओ। मनुष्य का प्रकृति की ओर से स्वभाव प्रेम का ही है, ये न घटता है न ही बढ़ता है। ये उसी प्रकार है जैसे पानी का स्वभाव है शीतल रहना।
0: अभी आपने चिंतन सुना। व्यक्ति अगर सीखना चाहे तो उसकी हर एक भूल उसे कुछ ना कुछ सिखा सकती है। विवेकी व्यक्ति स्वयं को दुनिया के अनुसार ढाल लेता है, जबकि अविवेकी व्यक्ति दुनिया को अपने अनुसार ढालने में लग जाता है। जीवन में सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिसे लोग कहते हैं कि तुम नहीं कर सकते हो। रविन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार हम महानता के सबसे करीब तब होते हैं जब हम विनम्रता में महान होते हैं। धरती पर उपलब्ध प्राकृतिक संसाधन हमारी जरूरत पूरी करने के लिए हैं, लालच की पूर्ति के लिए नहीं। महात्मा गांधी के अनुसार। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर। प्रातः के 6:45 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम काव्यधारा, और आज इस कार्यक्रम में लीजिए सुनिए राजेश मिश्रा का काव्य पाठ।
2: सबसे पहले मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ, मानवीय संवेदनाओं से भरी ये जिंदगी है, मानवीय संवेदनाओं से भरी ये जिंदगी है, नित नई चेतनाओं से भरी ये जिंदगी है। कौन अच्छा है बुरा हमने कभी सोचा नहीं, कौन अच्छा है बुरा हमने कभी सोचा नहीं, अपनी तो शुभकामनाओं से भरी ये जिंदगी है, अपनी तो शुभकामनाओं से भरी ये जिंदगी है। और चार पंक्तियां ले रहा हूं के बेटी हमेशा वफाओं के साथ रहती है, खुशबू हमेशा हवाओं के साथ रहती है, और दुआओं के सागर में गर नहाना है तुमको तो माँ ही वह नदी है जो दुआओं के साथ बहती है, माँ ही वह नदी है जो दुआओं के साथ बहती है। एक मुखक और के प्यार की भाषा समझी जिसने वो ही भव के पार गए, प्यार की भाषा समझी जिसने वो ही भव के पार गए, अडिग रहे जो प्यार के पथ पर अपने कुल को तार गए। देवी देवों की पुस्तक में प्यार का रिश्ता पहला है, प्यार के आगे क्या है इंसान, प्यार के आगे क्या है इंसान, ऋषि मुनि भी हार गए, ऋषि मुनि भी हार गए। चार पंक्तियां और के काश मेरी भी बस ऐसी तकदीर हो जाए, काश मेरी भी बस ऐसी तकदीर हो जाए, किसी की पीर तो बस मेरी अपनी पीर हो जाए, मेरी हर सांस का मकसद है केवल तेरे जीने तक, मेरी हर सांस का मकसद है केवल तेरे जीने तक, मैं तेरा राजा बन जाऊं तू मेरी हीर हो जाए, मैं तेरा राजा बन जाऊं तू मेरी हीर हो जाए। किसी के उजड़े हुए घर को जो तुम बसाओगे, किसी के उजड़े हुए घर को जो तुम बसाओगे, दिलों में लोगों के इज्जत से ठहर जाओगे, दिलों में लोगों के इज्जत से ठहर जाओगे, और नेकियां आसमां की बुलंदी चूमेंगी, नेकियां आसमां की बुलंदी चूमेंगी, किसी रोते हुए बच्चे को जब हंसाओगे, किसी रोते हुए बच्चे को जब हंसाओगे। और ये चार पंक्तियां ले रहा हूं कि सावन की सुहानी सी बरसात में आ जाना, सावन की सुहानी सी बरसात में आ

तुम साथ में आ जाना, सावन की सुहानी सी बरसात में आ जाना। और एक मुक्तक और दे रहा हूँ कि नदियों का साथ किनारों ने कब छोड़ा है, नदियों का साथ किनारों ने कब छोड़ा है, चांद का साथ सितारों ने कब छोड़ा है। और यूं तो भंवर में फंस जाती है नाव भी, यूं तो भंवर में फंस जाती है नाव भी, मगर नाव का साथ पतवारों ने कब छोड़ा है, मगर नाव का साथ पतवारों ने कब छोड़ा है, नाव का साथ पतवारों ने कब छोड़ा है। और एक गीत का ले रहा हूँ।

आता हूँ और एक बेटियों के लिए गीत का लिखी है वो पढ़ रहा हूँ। बेटों से अधिक बेटियां माँ बाप को चाहती हैं, बेटों से अधिक बेटियां माँ बाप को चाहती हैं, घर के सभी कामों में अपना हाथ भी बटाती हैं। और बेटे तो एक बार को कहना टाल देते हैं, बेटे तो एक बार को कहना टाल देते हैं, बेटियां हर हाल में हर बात को निभाती हैं, बेटियां हर हाल में हर बात को निभाती हैं। और कहा है कि खुशबू की तरह महकती माँ बाप के आंगन में मगर, खुशबू की तरह महकती माँ बाप के आंगन में मगर, जब विदा होती हैं हर एक आँख को रुलाती हैं, जब विदा होती हैं तो हर एक आँख को रुलाती हैं। लिखा है कि होती हैं बड़ी लाडली ये बेटियाँ माँ बाप की, होती हैं बड़ी लाडली ये बेटियां माँ बाप की, अपने सभी कामों से परिवार को रिझाती हैं, अपने सभी कामों से परिवार को रिझाती हैं। और कहा है

0: के पढ़ने लिखने में भी आगे, खेलों में आगे सदा, पढ़ने लिखने में भी आगे, खेलों में आगे सदा, नाम रोशन देश का विदेशों में करके आती हैं, नाम रोशन देश का विदेशों में करके आती हैं। और देखिए पंक्तियां भी, कि सादा जीवन जीती हैं, विचार ऊंचे रखती हैं, सादा जीवन जीती हैं, विचार ऊंचे रखती हैं, अपनी संस्कृति को कोर कोर में बसाती हैं, और भ्रूण हत्या में शामिल है कोई परिवार तो, ये इनका जज्बा है कि भ्रूण हत्या में शामिल है कोई परिवार तो, जज वकील बनकर कारावास भी कराती हैं, और हो कोई नाराज घर में भाई या माता पिता, हो कोई नाराज घर में भाई या माता पिता, राजू हर मनुहार करके उनको भी मनाती हैं, राजू हर मनुहार करके उनको भी मनाती हैं, बेटों से अधिक बेटियां माँ बाप को चाहती हैं, घर के सभी कार्यों में अपना हाथ भी बटाती। एक मुक्तक और पढ़ रहा हूँ कि अंतर मन पढ़ लूंगा तुम्हारा, चाहे कितना राज छुपा लो, खोज निकालूंगा मैं तुमको चाहे अपना ताज छुपा लो, और दुनिया की इस भीड़ से बचकर प्रणय सूत्र में तुम बन जाओ, दुनिया की इस भीड़ से बचकर प्रणय सूत्र में तुम बन जाओ, कल पर निर्भर क्यों रहते हो मुझसे आज छिपा लो तुम।
1: श्रोतों अभी अपने राजेश मिश्रा का काव्य पाठ सुना, और इसके साथ ही काव्यधारा कार्यक्रम अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर। प्रातः के 6:55 होने को हैं, कुछ ही पलों में आप संस्कृत में समाचार सुनेंगे और उसके बाद हिंदी में सुनेंगे।
2: संस्कृत में समाचार सुनेंगे।
3: संप्रति वार्ता श्रूयंताम, प्रवाचिका ऋचा झा।

0: अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी न्यूजीलैंड देशस्य स्वीयाम् ऐतिहासिकीं द्विदिवसीय यात्रां सम्पन्नं कृत्वा भारतं प्रति प्रस्थितवान्। विगत चत्वारिंशत् वर्षेभ्यः अनन्तरम् एषा कस्यापि भारतीय प्रधानमन्त्रिणः प्रथमा न्यूजीलैंड यात्रा आसीत्, या उभय देशयोः द्विपक्षीय सम्बन्धान् नूतनां गतिम् अददात्। यात्रा समये प्रधानमन्त्री मोदी न्यूजीलैंड देशस्य प्रधानमन्त्रिणा क्रिस्टोफर लक्सन इत्यनेन सह द्विपक्षीय वार्ताम् अकरोत्। उभौ नेतारौ रक्षा, पर्यटन, क्रीडा, पद प्रबन्धन, दुग्ध व्यवसाय, पशुपालनादिषु क्षेत्रेषु पञ्च ज्ञापन पत्राणाम् आदान प्रदानं कृतवन्तौ। अस्याः यात्रायाः प्रमुखाकर्षणेषु अन्यतमः कार्यक्रमः ऑकलैंड नगरस्य पाक अरीना इत्यत्र आयोजितः प्रवासी भारतीय समुदायस्य समागमः आसीत्, यस्मिन् 10,000+ प्रवासी भारतीयाः समुपस्थिताः आसन्। समागमं सम्बोधयन् प्रधानमन्त्री मोदी अवदत् यत् भारत न्यूजीलैंड देशयोः भविष्यं परस्परं सम्बद्धमस्ति।
1: भारत और न्यूजीलैंड के रिश्ते में यादें भी हैं, दोस्ती भी है, वैल्यूज भी है और एक कमिटमेंट भी है। भारत न्यूजीलैंड की यही वाका एक नई यात्रा पर निकलने के लिए तैयार है। हमारे सामने अवसरों से भरा खुला समुद्र है, हवाएं हमारे साथ है, समंदर की विशाल लहरें हमारे साथ है, इच्छा शक्ति का नीला आसमान हमारे साथ है। पाने को काफी कुछ है और मैं जानता हूँ हम सफल होंगे।
0: प्रधानमंत्री मोदी सस्नेह स्वागताय न्यूजीलैंड देशस्य प्रधानमन्त्रिणं क्रिस्टोफर लक्सन इत्येतं प्रति कृतज्ञतां प्रकटितवान्। रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः उक्तवान् यत् भारतं पारम्परिक रक्षा सामर्थ्यस्य उन्नत प्रौद्योगिकीनां च सुदृढीकरणेन दृढं, आत्मनिर्भरं, भविष्यस्य आह्वानेभ्यश्च अनुकूलं रक्षाबलं निर्माति। असौ एतत् विशाखापत्तनम् नगरे भारतीय नौसेनायाः पूर्वी नौसेनादले प्रोजेक्ट 17A इत्येतस्य अन्तर्गते स्वदेशे निर्मितस्य षष्ठयुद्धपोतस्य INS महेन्द्रगिरिः इत्येतस्य समावेशन समारोहं सम्बोधयन् अवदत्। रक्षामन्त्री अवदत् यत् INS महेन्द्रगिरिः इत्येतस्य नौसेनायां सम्मेलनम् भारतस्य सामुद्रिक सामर्थ्यस्य स्वदेशी रक्षा क्षमतायाश्च सुदृढीकरण दिशि अन्यत् महत्वपूर्णं सोपानमस्ति। पश्चिम बंगाल प्रशासनेन राज्याय UCC इति समान नागरिक संहितायाः प्रारूप विधेयकस्य परीक्षार्थं नव सदस्यात्मिका समितिः निर्मिता। अस्मिन् विषये अधिसूचना पूर्वमेव प्रकाशिता अस्ति। सेवा निवृत्त न्यायमूर्तिः रंजना प्रकाश देसाई समितेः अध्यक्षत्वेन नियुक्ता। मेघालयस्य पूर्व राज्यपालः तथागत रॉयः अपि समितेः सदस्येषु अन्यतमः अस्ति। भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरणेन खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियमस्य 2006 इत्यस्य उल्लंघन सम्बद्धानां बहूनां उपभोक्तृ परिवादानां अनन्तरं स्विगी इंस्टामार्ट इत्यस्मै नव अधिसूचनाः प्रेषिताः। फीफा विश्व चषक प्रतिस्पर्धायाम् अद्य प्रातः फ्लोरिडा इत्यत्र मियामी क्रीडा प्रांगणे इंग्लैंड देशेन नॉर्वे देशं 2-1 इत्यंकान्तरालेन पराजित्य उपान्त्य चक्रे प्रविष्टम्। वियतनाम देशस्य प्रधानमंत्री ले मिन हुन इत्येषः फूक्वक द्वीपस्य समीपे जाता स्पीड बोट इत्येतस्याः दुर्घटनायाः अन्वेषणाय आदेशं प्रदत्तवान्। अस्याम् दुर्घटनायाम् 15 भारतीय पर्यटकाः निधनमुपगताः इति वार्ताः।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा पूरी कर स्वदेश रवाना हो गए हैं। न्यूजीलैंड से स्वदेश लौटते हुए श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के समक्ष अवसरों की अपार संभावनाएं हैं और वे अपनी साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज दिल्ली स्थित पूसा परिसर में पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस अवसर पर वे देश भर से आए लगभग 17,000 वृक्ष मित्रों से संवाद करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार एक व्यापक अभियान के अंतर्गत आज 35 करोड़ पौधे लगाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर से राज्यव्यापी पौधरोपण महायज्ञ का शुभारंभ करेंगे। वे एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे और आरकेबीके के पास ताल रिंग रोड के किनारे पौधे लगाएंगे। उधर गृहमंत्री अमित शाह आज अहमदाबाद में नगर निगम की 405 करोड़ रुपए की जन केंद्रित विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। गृहमंत्री कार्यक्रम के दौरान अपने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र गांधीनगर में महत्वाकांक्षी सामूहिक पौधरोपण अभियान की शुरुआत भी करेंगे। मध्य प्रदेश में आज मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की 38वीं मासिक किश्त जारी की जाएगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से 1,25,00,000 से अधिक महिलाओं के बैंक खातों में 1,835 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री लगभग 239 करोड़ रुपए की 40 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे। इसके अलावा 83 करोड़ रुपए से अधिक की 16 नई लोक कल्याणकारी परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया जाएगा। एक राष्ट्र एक चुनाव पर संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष सांसद पीपी चौधरी ने कहा है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने से शासन व्यवस्था मजबूत होगी, खर्च कम होगा और देश की अर्थव्यवस्था को लाभ होगा। खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSAI ने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत नियमों का उल्लंघन करने के आरोपों से संबंधित कई उपभोक्ता शिकायतों के बाद स्विगी इंस्टामार्ट को 9 नोटिस जारी किए हैं। उपभोक्ता शिकायतों में स्विगी इंस्टामार्ट पर उत्पादों की निर्धारित अवधि समाप्त होने, खराब, सड़े, दूषित और अन्य प्रकार के असुरक्षित खाद्य उत्पादों की आपूर्ति का आरोप लगाया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों को अपने पक्ष में करने के जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के आरोप की आलोचना की है। दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में पार्टी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि श्री अब्दुल्ला का ये बयान अत्यंत गैर जिम्मेदाराना है। वियतनाम के प्रधानमंत्री ले मिन हुन ने फुकोक द्वीप के पास स्पीड बोट हादसे की जांच के आदेश दिए हैं। इस हादसे में 15 भारतीय पर्यटकों की मौत हो गई। ये हादसा उस समय हुआ जब 36 लोगों को लेकर जा रही स्पीड बोट फुकोक द्वीप के पास रट नगोआई टापू के निकट अचानक ऊंची लहरों की चपेट में आकर पलट गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के होर्मुज जलडमरू मध्य में साइप्रस के झंडे वाले जहाज पर हमले के बाद अमेरिका ने ईरान पर नए हमले शुरू कर दिए हैं। इस बीच ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य को अगली सूचना तक बंद कर दिया है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में अमेरिका के कंसास में क्वार्टर फाइनल मुकाबले में अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड के बीच मैच जारी है। ताजा समाचार मिलने तक अर्जेंटीना मुकाबले में 1-0 से आगे है। एक अन्य क्वार्टर फाइनल में इंग्लैंड ने आज तड़के फ्लोरिडा में नॉर्वे को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। उधर लंदन में कल रात विम्बल्डन टेनिस टूर्नामेंट में 21 वर्षीय लिंडा नोस्कोवा ने चेक गणराज्य की करोलिना मुकोवा को हराकर महिला सिंगल्स का खिताब अपने नाम किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। प्रातः के 7:05 हुए हैं। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में लीजिए सुनिए पीठ का दर्द और दूर करने के उपाय, इस विषय पर जानकारी।
1: रीढ़ की हड्डी का काम मानव शरीर को न केवल सीधा आकार प्रदान करना है, बल्कि इसका एक और महत्वपूर्ण कार्य ये है कि ये मस्तिष्क के हिस्से, जिसे स्पाइनल कॉर्ड या मेरुरज्जु कहा जाता है, को चारों ओर से सुरक्षा प्रदान करती है। रीढ़ की हड्डी से संबंधित कुछ सामान्य समस्याओं में सबसे प्रमुख है पीठ के निचले हिस्से का दर्द। ये कोई जानलेवा रोग नहीं है, लेकिन यह मनुष्य को कभी कभी अपंग जरूर बना देता है। तीव्र वेदना के कारण व्यक्ति व्यावसायिक और गृह कार्य करने में असमर्थ हो जाते हैं, चाहे वो जवान हो या बूढ़ा, स्त्री हो या पुरुष, किसी को नहीं छोड़ता। ये अनुमान लगाया जा चुका है कि 10 व्यक्तियों में से 8 व्यक्ति इस वेदना के शिकार होते हैं। उनके जीवन का महत्वपूर्ण समय इस वेदना के कारण नष्ट हो जाता है। ये दर्द साधारणतः मनुष्य के गलत ढंग से बैठने, लेटने या गलत तरीके से झुककर काम करने की वजह से होता है। कभी कभी पीठ का दर्द गठिया, वात, स्लिप डिस्क रोगों से भी उत्पन्न होता है। दिन का अधिकतर समय हम अपनी कुर्सी में बैठकर बिताते हैं। यदि हम बहुत लंबे समय तक बैठते हैं और इस बीच व्यायाम बिल्कुल नहीं करते हैं, तो हमारी मांसपेशियां और हड्डियां कमजोर पड़ने लगती हैं। इसके साथ साथ हृदय और फेफड़े की कार्यक्षमता भी घटने लगती है। यदि हम कुर्सी पर ठीक से नहीं बैठते या हमारी कुर्सी ही ठीक नहीं बनी हुई है, तो इसका असर रीढ़ की हड्डी पर पड़ता है और पीठ दर्द की समस्या उत्पन्न हो सकती है। कुछ लोग कुर्सी के अगले भाग में बैठकर या तो आगे की ओर झुककर पढ़ते हैं या लिखते हैं, या फिर पीछे की ओर झुककर टेढ़े ढंग से अपनी पीठ के ऊपर वाले भाग को कुर्सी की पीठ से लगाते हैं। कुछ लोग रीढ़ की हड्डी को सीधा करके नहीं बैठते, पीठ में कुछ बल या कुब बनाए रखते हैं। कुछ अन्य दाएं या बाएं झुककर या टांगों को कैंची की तरह टेढ़ा करके बैठते हैं। जिनका पेट बड़ा हुआ है, उनकी पीठ पर, विशेषकर रीढ़ की हड्डी पर लगातार खिंचाव बना रहता है। ऐसी व्यक्ति अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं कर पाते। इन सभी व्यक्तियों में पीठ दर्द की शिकायत प्रायः बनी रहती है। केवल कुछ लोग ही अपने नितंबों और पीठ को कुर्सी की पीठ से लगाकर सीधे बैठते हैं और उनके पैर भी सीधे फर्श पर सहारा लिए होते हैं। यदि हम सभी इस प्रकार बैठने लगें, तो बैठना कम हानिकारक होगा। यदि लंबे समय लगातार बैठना पड़े, तो हर घंटे बाद खड़े हों, चलें या कुछ व्यायाम करें। इससे आपकी रीढ़ की हड्डी व मांसपेशियों की अकड़न घटेगी, थकावट कम होगी और आप ताजा महसूस करेंगे। इससे आपकी कार्यक्षमता भी बढ़ेगी। यदि आपके पास मिलने वाले लोग आते हैं, तो हर आगंतुक के आने पर आप खड़े हो जाएं और उसको विदाई देते समय भी खड़े हों। इससे न केवल आगंतुक अधिक प्रसन्न होगा, बल्कि आपकी थकावट भी कम होगी। आपको पीठ दर्द की समस्या भी उत्पन्न नहीं होगी। यदि आपका कार्य अधिक देर तक बैठकर करने का है, तो सवेरे और शाम दौड़ने, तैरने, खेलने आदि की आदत डालें। इस प्रकार अपनी रीढ़ की हड्डी की रक्षा करें। इससे आप अधिक युवा रहेंगे। आपकी कुर्सी इतनी ऊंची न हो कि उस पर बैठकर आपके पांव फर्श तक न पहुंचे। ये अधिक लंबी या चौड़ी भी न हो। कुर्सी की पीठ निचले भाग को आगे की ओर झुकी हो या उस स्थान पर पतली गद्दी रखी हो, जिससे रीढ़ की हड्डी पर खिंचाव न पड़े। पेट को अधिक न बढ़ने दें। यदि बैठे बैठे पीठ में दर्द हो, तो खड़े हो जाएं और पेट अंदर की ओर खींच लें। कुछ व्यायाम बैठे बैठे भी किए जा सकते हैं, जैसे अपने धड़ को दाएं या बाएं घुमाकर हिलाएं, कुर्सी की बाहों पर अपने हाथों से शरीर के भार को उठाएं और पैरों से साइकिल चलाने जैसी गति करें। पैरों को झुककर हाथ की उंगलियों से छुएं, अपने दोनों हाथों से एक घुटने को पकड़कर ऊपर लाएं और उसे अपने नाक से छुआएं, फिर दूसरे घुटने से भी ऐसा ही करें। कुर्सी की पीठ का दोनों हाथों से सहारा लेकर टांगों को बिना घुटने मोड़े सीधा करें, फिर बारी बारी टांगों को एक दूसरे से दूर करें और निकट लाएं, फिर बारी बारी से ऊपर नीचे भी उठाएं। साथ ही ध्यान रखें कि जमीन पर रखी हुई किसी भी वस्तु को उठाने के लिए हमें अपनी पीठ को मोड़ने की बजाय अपने घुटनों को मोड़ना चाहिए। बिस्तर पर सोते समय सीधा लेटें और सख्त गद्दे का उपयोग करें।
0: पीठ का दर्द दूर करने के उपाय। अभी आपने इस विषय पर जानकारी सुनी और इसके साथ ही स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर प्रस्तुत है कार्यक्रम खेती की बातें। और आज इस कार्यक्रम में चर्चा का विषय है मशरूम उत्पादन एक लाभकारी व्यवसाय।
2: किसान भाइयों राम राम। खेती की बातें कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, खेती की बातें कार्यक्रम में आज हम आपसे चर्चा कर रहे हैं मशरूम उत्पादन एक लाभकारी व्यवसाय। किसान भाइयों, मशरूम उत्पादन एक ऐसा व्यवसाय है जिसे हमारे किसान भाई कम जमीन में भी कर सकते हैं। मशरूम की खेती बेहतर आमदनी का एक जरिया बन सकती है अगर हम अच्छे तरीके से मशरूम की खेती करते हैं। मशरूम की खेती से हम अच्छा लाभ ले सकते हैं। कम जगह और कम टाइम में इसकी खेती हम कर सकते हैं, साथ ही लागत भी इसमें बहुत कम आती है। मशरूम की खेती के लिए अगर किसान भाई थोड़ा बहुत प्रशिक्षण ले लेते हैं तो बहुत ही अच्छा रहता है। हमारे देश में मशरूम का उपयोग भोजन व औषधि के रूप में किया जाता है। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण और विटामिन जैसे उच्च स्तरीय खाद्य मूल्यों के कारण मशरूम संपूर्ण विश्व में अपना एक विशेष महत्व रखता है। भारत में मशरूम को खुम्भ, खुम्भी, भमौड़ी और गुच्छी आदि नामों से जाना जाता है। मशरूम की खेती को बढ़ावा देने के लिए मशरूम की खेती करने की विधि, मशरूम बीज उत्पादन तकनीक, मशरूम उत्पादन और प्रसंस्करण आदि विषयों पर काफी जोर दिया जा रहा है। मशरूम की खेती करने के लिए जो मशरूम की मुख्य किस्में हैं उन पर आइए बात करते हैं। ये हैं सफेद बटन मशरूम, ढींगरी यानी कि ऑयस्टर मशरूम, दूधिया मशरूम। भारत में सफेद बटन मशरूम की खेती पहले निम्न तापमान वाले स्थानों पर की जाती थी, लेकिन आजकल नई तकनीकों को अपनाकर इसकी खेती अन्य जगह पर भी की जा सकती है। भारत में अधिकतर सफेद बटन मशरूम की S11, TM79 और Host U3 किस्मों की खेती की जाती है। बटन मशरूम के कवक जाल के फैलाव के लिए 22 से 26 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। इस तापमान पर जाल बहुत तेजी से फैलता है। बाद में इसके लिए 14 डिग्री सेल्सियस तापमान ही उपयुक्त रहता है। हवादार स्थान, सैड हट या झोपड़ी में आसानी से इसको उगाया जा सकता है। ढींगरी यानी कि ऑयस्टर मशरूम की खेती हम वर्ष भर कर सकते हैं। इसके लिए अनुकूल तापमान 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड और सापेक्षिक आर्द्रता 70 से 90% होनी चाहिए। ऑयस्टर मशरूम को उगाने में गेहूं व धान के भूसे और दानों का इस्तेमाल किया जाता है। ये मशरूम 2.5 से 3 महीने में तैयार हो जाता है। इसका उत्पादन अब पूरे भारतवर्ष में हो रहा है। ढींगरी मशरूम की अलग अलग प्रजाति के लिए अलग अलग तापमान की आवश्यकता होती है, इसलिए ये मशरूम पूरे वर्ष उगाया जा सकता है। 10 कुंटल मशरूम उगाने के लिए कुल खर्च 50,000 रुपये आता है। इसके लिए 100 वर्ग फीट के एक रूम में रैक लगानी होती है। वर्तमान में ढींगरी मशरूम 120 रुपये प्रति किलोग्राम से लेकर 1,000 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बाजार में बिक जाता है। इसका मूल्य निर्भर करता है कि मशरूम की गुणवत्ता क्या है, यानी कि मशरूम की क्वालिटी कैसी है। तो अगर हम अच्छी क्वालिटी का मशरूम उगाते हैं तो हमें बहुत ही अच्छा लाभ मिल सकता है, बहुत ही अच्छा मुनाफा मशरूम उत्पादन करके मिल सकता है। अब बात करते हैं दूधिया मशरूम की। भारत में दूधिया मशरूम को ग्रीष्मकालीन मशरूम के रूप में जाना जाता है। इसका आकार बड़ा और आकर्षक होता है। दूधिया मशरूम की शुरुआत 1976 में पश्चिम बंगाल में हुई। अब दूधिया मशरूम कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में लोकप्रियता हासिल कर रहा है। किसान भाइयों, अगर हम मशरूम उत्पादन करते हैं तो कम स्थान और कम लागत में हम मशरूम उत्पादन करके बढ़िया आमदनी इससे ले सकते हैं। तो किसान भाइयों, आइए हम भी खेती के साथ साथ इस व्यवसाय को अपनाते हैं और अतिरिक्त आमदनी का एक जरिया ढूंढते हैं। तो फिर देर किस बात की है किसान भाइयों, आइए शुरुआत करते हैं मशरूम उत्पादन और थोड़ी सी ट्रेनिंग और जो हमारे भाई मशरूम उत्पादन कर रहे हैं अगर उनके पास में रहकर हम इस काम को सीखते हैं, काम को अंजाम देते हैं, तो हम बेहतर तरीके से मशरूम उत्पादन की जो विधि है, जो तकनीक है, उसको जान सकते हैं, उसको सीख सकते हैं और आसानी से फिर हम मशरूम उत्पादन करके आमदनी अपनी बढ़ा सकते हैं। तो किसान भाइयों, इस तरीके से हमें मशरूम उत्पादन करना है और चाहे बटन मशरूम हो, ढींगरी मशरूम हो या दूधिया मशरूम हो, हम इस तरीके से मशरूम उत्पादन करके इसे लाभकारी व्यवसाय बना सकते हैं और इससे अच्छी आमदनी हम ले सकते हैं। तो किसान भाइयों, इसी के साथ हमारा आज का खेती की बातें कार्यक्रम संपन्न होता है। कल हम कुछ और खेती की बातों के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
0: मशरूम उत्पादन एक लाभकारी व्यवसाय, अभी आपने इस विषय पर जानकारी सुनी और इसके साथ ही खेती की बातें कार्यक्रम संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर। श्रोताओं, प्रस्तुत है हमारे केंद्र से प्रसारित आज के कार्यक्रमों की जानकारी। अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा का कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे आज रात 10 बजे, और दिल्ली केंद्र से ही रात 9:30 बजे रिले किया जाएगा कार्यक्रम नेशनल प्रोग्राम ऑफ फीचर। अदबी दुनिया के तहत कला में शायर संतोष कुमार से रूबरू कराएंगे 7:50 पर। विविध कार्यक्रम में 6:45 पर सत्येंद्र कुमार शर्मा की कहानी का शीर्षक होगा आज का श्रवण कुमार। मत्स्य पालन तकनीक से लाभ, इस विषय पर अनूप कुमार सिंह से की गई बातचीत किसान भाई सुनेंगे 6:05 पर कार्यक्रम कृषि जगत में। और साथ ही कार्यक्रम में चर्चा का विषय रहेगा बरसात में साफ सफाई का महत्व, और जानकारी दी जाएगी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के विषय में। हमारी इसी सभा में 9:20 पर धरती गाती है कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे शिवानी कर्माकर के स्वर में रुहेलखंडी लोकगीत। बाल श्रोताओं का साप्ताहिक कार्यक्रम बाल वाटिका प्रसारित किया जाएगा 1:15 पर, जिसमें आज बच्चों को जानकारी दी जाएगी हमारी संस्कृति हमारे पर्व के अंतर्गत हरेला मेला के विषय में। और साथ ही नन्हे हस्ताक्षर क्रम में बच्चे सुनेंगे वरण्या से की गई बातचीत। लोकधारा कार्यक्रम में 1:45 पर सुनिएगा कुमाऊनी लोकगीत, कलाकार हैं सुरेंद्र राजेश्वरी। मेरा सपना उन्नत भारत क्रम में 5:00 जानकारी दी जाएगी रिजर्व बैंक खुदरा प्रत्यक्ष योजना और प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के विषय में।

0: युवाणी कार्यक्रम का समय रहेगा शाम 5:15 पर। सुगम संगीत में शाम 7:32 पर श्रोता सुनेंगे फरीदा खानुम की आवाज में चंद गजलें। श्रोताओं के पत्रों और एसएमएस पर आधारित कार्यक्रम आपका पत्र मिला सुन सकेंगे 12:05 पर। फिल्मी संडे क्रम में 12:30 आज की कहानी है फिल्म जो जीता वही सिकंदर की। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर। प्रातः के 7:18 हो चुके हैं। कुछ ही पलों में आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे।
1: तुम हो जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम।
2: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा 3 आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन 3 आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
1: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
2: बढ़ते हुए यह धुएं से है सब परेशान, शुद्ध वायु दुर्लभ, खतरे में है मनुष्य की जान। कूड़ा और प्लास्टिक जो लोग जलाएं, प्रदूषण के कारण बन जाएं, श्वास लेने में तकलीफ आए, आरोग्य को हानि पहुंचाए।
3: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं प्रमोद कुमार सिंह। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में आज चलाया जाएगा पौधरोपण महाअभियान। एक दिन में लगाए जाएंगे 35 करोड़ पौधे। गोरखपुर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे प्रदेशव्यापी अभियान का शुभारंभ। मुख्यमंत्री ने कल कुशीनगर में किया 525 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। गोरखपुर में 757 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली 24 विकास परियोजनाओं की दी सौगात। अयोध्या में हुई श्रीराम मंदिर निर्माण समिति की बैठक, 30 जुलाई तक सभी प्रमुख निर्माण कार्य पूरा करने का तय हुआ लक्ष्य। समिति अध्यक्ष नृपेन मिश्र ने चढ़ावा गबन मामले में कहा, भविष्य में नहीं होगी इसकी पुनरावृत्ति। और प्रदेश के कई जिलों में बारिश से जनजीवन प्रभावित, मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए जारी की भारी वर्षा की चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में आज से प्रदेशव्यापी पौधरोपण महायज्ञ 2026 का शुभारंभ किया जाएगा। इस पौधरोपण महाअभियान के जरिए प्रदेश सरकार की ओर से 35 करोड़ पौधरोपण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर से अभियान का शुभारंभ करेंगे। श्री योगी गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे के समीप और रामगढ़ ताल रिंग रोड के किनारे एक पेड़ माँ के अभियान के अंतर्गत पौधा लगाएंगे। इस अवसर पर जनसभा को संबोधित कर वे प्रदेशवासियों से पौधरोपण महायज्ञ में हिस्सेदारी करने का आह्वान करेंगे। अभियान में प्रदेश के सभी विभाग, स्कूल, कॉलेज और संस्थान हिस्सा लेंगे। कार्यक्रम को लेकर गोरखपुर में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। एक रिपोर्ट।
4: पौधरोपण के इस लक्ष्य में गोरखपुर को 55,28,600 पौधरोपण की जिम्मेदारी मिली है। सभी पौधशालाओं में गुणवत्ता युक्त पौधों की उपलब्धता सुनिश्चित कर ली गई है। पौधों के बेहतर विकास एवं उत्तर जीवित के लिए चिन्हित रोपण स्थलों पर एडवांस सॉइल वर्क के अंतर्गत गड्ढा खुदाई, टॉप सॉइल की व्यवस्था, पौधरोपण के स्थलों का विकास, पौध संरक्षण के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं तथा अन्य तैयारियां पूरी है। कुल 27 विभागों के सामंजस्य से यह पौधरोपण किया जाएगा। आकाशवाणी समाचार के लिए GN चौबे गोरखपुर।
3: हमारे संवाददाता ने बताया कि ये अभियान 27 विभागों के सहयोग से चलाया जाएगा।
5: 27 विभागों के समन्वय

0: से चलाए जाने वाले इस विशाल वृक्षारोपण अभियान में वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग सर्वाधिक 15 करोड़ 50 लाख पौधारोपण करेगा। ग्राम्य विकास विभाग 10 करोड़, कृषि विभाग 3 करोड़ 25 लाख, उद्यान विभाग 1 करोड़ 50 लाख और पंचायती राज विभाग 1 करोड़ 22 लाख पौधे लगाएगा। गंगा एक्सप्रेसवे के किनारे भी 5.5 लाख पौधे लगेंगे। महाअभियान 2026 में इस वर्ष समरस वन, समृद्धि वन, कृषि वन, ऊर्जा वन, कपि वन समेत अनेक नवीन वन तैयार किए जाएंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाश समाचार, लखनऊ।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल कुशीनगर जिले के रामकोला विकासखंड के टकू अटार में आयोजित एक कार्यक्रम में कुशीनगर, रामकोला और हाटा विधानसभा क्षेत्रों की 525 करोड़ रुपए की लागत वाली 464 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए श्री योगी ने कहा कि डबल इंजन की सरकार आने के बाद कुशीनगर जिले की तस्वीर बदल गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने कुशीनगर को इंसेफेलाइटिस से मुक्त कर बच्चों का भविष्य सुरक्षित किया है, साथ ही मुसहर जाति के लोगों को आवास के साथ सरकारी योजनाओं का लाभ देकर जीवन को बेहतर बनाया है। श्री योगी ने बताया कि कुशीनगर भी बाकी जनपदों के साथ विकास की यात्रा में सहभागी बन रहा है। जल्द ही कुशीनगर को एयर कनेक्टिविटी के जरिए जेवर एयरपोर्ट समेत अन्य राज्यों से जोड़ा जाएगा।
2: के साथ भी कुशीनगर को जोड़ने की तैयारी कर रहे हैं, गया के साथ जोड़ने जा रहे हैं। अच्छे और नए एयरक्राफ्ट कुशीनगर की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएंगे। अब हमारे कुशीनगर के नौजवानों को अपनी खेती को आधुनिकता के साथ जोड़ने के लिए इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं, कुशीनगर में ही हम लोग एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी दे चुके हैं। कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुशीनगर में ही बन रहा है।
1: मुख्यमंत्री ने कल ही गोरखपुर के पिपराइच विधानसभा क्षेत्र में 757 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली 24 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न सरकारी योजनाओं को लाभार्थियों के प्रमाण पत्र वितरित किए। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं से क्षेत्र में विकास होगा और युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी। उन्होंने कहा कि बेहतर कनेक्टिविटी से प्रगति होगी और इससे देश में समृद्धि आएगी।
3: स्पीड जितनी अच्छी होती है कनेक्टिविटी के लिए, प्रगति उतनी ही तेज होगी, और प्रगति होगी तो स्वाभाविक रूप से व्यक्ति की भी, समाज की भी और देश की भी समृद्धि होगी। समृद्धि होगी तो खुशहाली होगी।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और xhandle AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। अयोध्या में कल श्रीराम मंदिर निर्माण समिति की बैठक में मंदिर निर्माण से जुड़े विभिन्न कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक में बाउंड्री वॉल, ट्रस्ट भवन, गेट नंबर 3, अतिथि गृह, ऑडिटोरियम सहित अन्य निर्माण कार्यों की स्थिति पर चर्चा हुई। इन सभी परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए उनकी टाइमलाइन भी तय की गई। आज होने वाली बैठक में 20 दीर्घाओं वाले राम कथा संग्रहालय के तकनीकी पहलुओं और वीडियो प्रस्तुतियों पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। बैठक से पूर्व श्री राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेन मिश्र ने बताया कि 30 जुलाई तक राम मंदिर के सभी प्रमुख निर्माण कार्य पूरे होने का लक्ष्य है। उन्होंने मंदिर चढ़ावा गबन मामले पर कहा कि भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति नहीं होगी, आने वाले दिनों में व्यवस्थाओं में सुधार होगा।
4: यह अपने में एक तरीके का कलंक है। एक तरीके से राम मंदिर में यह घटना घट गई, इसका हम सभी को एक खेद ही नहीं, एक तरीके से हम सभी उससे छोटापन महसूस कर रहे हैं। तो यह व्यवस्था का एक प्रश्न है, व्यवस्था में सुधार होगा, मुझे पूरा विश्वास है, और इस प्रकार की घटनाएं दोहराई नहीं जाएंगी।
1: विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर कल प्रदेश के कई जिलों में जागरूकता के कार्यक्रम आयोजित किए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस अवसर पर कहा कि जनसंख्या में संतुलन ही समृद्ध समाज का आधार है। एक सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से उन्होंने लोगों से जनसंख्या संतुलन और परिवार कल्याण के प्रति जागरूकता बढ़ाने का संकल्प लेने की अपील की। आगामी श्रावण मास के दौरान होने वाली कांवड़ यात्रा को सकुशल, सुरक्षित और सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से विभिन्न जिलों में प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। वाराणसी में पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल और जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने कल संबंधित विभागीय अधिकारियों के साथ कांवड़ यात्रा मार्ग का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मार्ग पर की जा रही तैयारियों को बारीकी से

0: सबका साथ सबका विकास और सबका प्रयास के दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ रहा है। सिद्धार्थनगर जिले में कल मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 146 नवजोड़ों का विवाह संपन्न कराया गया। इस अवसर पर डुमरियागंज से सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा कि सरकार जनता के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करने के लिए संकल्पित है। प्रदेश के कई जिलों में कल से वर्षा का क्रम जारी है। कुछ जिलों में अधिक वर्षा के कारण जल जमाव होने से जनजीवन प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन तक प्रदेश के अधिकांश जिलों में गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम वर्षा होने का पूर्वानुमान जताया है। विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भारी वर्षा की चेतावनी जारी की है। उधर लगातार हो रही वर्षा और बैराजों से पानी छोड़े जाने के कारण प्रदेश में कई नदियां खतरे के निशान के करीब पहुंच गई हैं। लखीमपुर खीरी के पलियाकला में शारदा नदी का जलस्तर खतरे के निशान को छूने लगा है। और अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में आज चलाया जाएगा पौधरोपण महाअभियान। एक दिन में लगाए जाएंगे 35 करोड़ पौधे। गोरखपुर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेशव्यापी अभियान का करेंगे शुभारंभ। मुख्यमंत्री ने कल कुशीनगर में किया 525 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। गोरखपुर में 757 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली 24 विकास परियोजनाओं की दी सौगात। अयोध्या में हुई श्रीराम मंदिर निर्माण समिति की बैठक। 30 जुलाई तक सभी प्रमुख निर्माण कार्य पूरा करने का तय हुआ लक्ष्य। समिति अध्यक्ष नृपेन मिश्रा ने चढ़ावा गबन मामले पर कहा, भविष्य में नहीं होगी इसकी पुनरावृत्ति। और प्रदेश के कई जिलों में बारिश से जनजीवन प्रभावित। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए जारी की भारी वर्षा की चेतावनी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक न पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता। फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
2: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा 3 आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा। सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन 3 आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
3: मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सूरज के साथ साथ।

सूरज के साथ साथ कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। ये सुबह जितनी खूबसूरत है उतना ही खूबसूरत आपका हर पल हो। जितनी खुशियां आज आपके पास हैं उससे भी ज्यादा आने वाली कल में हूं। जी हां श्रोताओं, स्वागत है आपका कार्यक्रम सूरज के साथ साथ में। साथियों, इस कार्यक्रम में हम आपके लिए बहुत सारी जानकारियां लाते हैं और मनोरंजन के लिए आपको बहुत प्यारे प्यारे गीत सुनवाते हैं। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी से। प्लास्टिक का इस्तेमाल छोड़ पेपर बैग अपनाएं विषय पर विश्व पेपर बैग दिवस के बारे में। श्रोताओं, पर्यावरण संरक्षण आज पूरे विश्व की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है।

बढ़ता प्लास्टिक प्रदूषण पृथ्वी, जलवायु और जीव जंतुओं के लिए ये एक गंभीर खतरा बन चुका है। दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली प्लास्टिक की थैली यानी पॉलीथीन सुविधाजनक तो है, लेकिन कभी आपने सोचा है कि इसका पर्यावरण पर कितना दुष्प्रभाव पड़ता है? और इसी समस्या के प्रति लोगों को जागरूक करने और पर्यावरण अनुकूल विकल्प अपनाने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष 12 जुलाई को विश्व पेपर बैग दिवस मनाया जाता है। साथियों, यह दिवस हमें संदेश देता है कि यदि हम प्लास्टिक की जगह पेपर बैग का उपयोग करें तो पर्यावरण को स्वच्छ, सुरक्षित और प्रदूषण मुक्त बनाया जा सकता है। प्लास्टिक का उपयोग छोड़कर पेपर बैग अपनाएं। यह केवल एक नारा नहीं बल्कि आने वाले समय में आने वाली पीढ़ियों के लिए एक जिम्मेदार संकल्प है। साथियों, प्लास्टिक क्यों है खतरा, आइए जानते हैं। प्लास्टिक का उपयोग पिछले कई दशकों में अत्यधिक बढ़ गया है। अगर हम देखें हमारे दैनिक जीवन की जो उपयोग की वस्तुएं हैं उसमें ज्यादातर वस्तुएं प्लास्टिक से बनी होती हैं, लेकिन इसकी सबसे बड़ी समस्या यह है कि यह आसानी से नष्ट नहीं होता। एक प्लास्टिक बैग को पूरी तरह नष्ट होने में लगभग 500 से 1000 वर्ष तक लग सकते हैं। प्लास्टिक से जो नुकसान होते हैं वो हैं भूमि प्रदूषण के अंतर्गत प्लास्टिक मिट्टी की उर्वरता को कम करता है। नदियों, तालाबों और समुद्रों में प्लास्टिक पहुंचकर जलीय जीवों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन जाता है, यहां तक कि पशुओं की मृत्यु तक हो जाती है। प्लास्टिक खाने से प्लास्टिक सड़कों पर नालियों को बंद कर देता है, जगह जगह जल भराव हो जाता है। इतना ही नहीं साथियों, मानव स्वास्थ्य पर भी इसका दुष्प्रभाव पड़ता है। माइक्रोप्लास्टिक भोजन और पानी के माध्यम से जो हमारे शरीर में पहुंचता है वो मानव स्वास्थ्य को अत्यधिक प्रभावित करता है। प्लास्टिक जलाने से विषैली गैसें जो निकलती हैं और वायु प्रदूषण का वो एक बहुत बड़ा कारण बनती हैं, और इतना ही नहीं कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का भी कारण बन सकती हैं। आज हम सभी रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल के सिद्धांत पर कार्य कर रहे हैं। पेपर बैग इस सिद्धांत को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विश्व पेपर बैग दिवस हमें याद दिलाता है कि पर्यावरण संरक्षण केवल सरकार की जिम्मेदारी ही नहीं बल्कि प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। प्रकृति ने हमें स्वच्छ जल, शुद्ध वायु, हरियाली और जीवन के लिए आवश्यक सभी संसाधन दिए हैं। अब हम सबकी भी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम इसकी रक्षा करें, प्लास्टिक का उपयोग कम करके पेपर बैग और कपड़े के थैलों का इस्तेमाल करके हम पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठा सकते हैं। आज विश्व पेपर बैग दिवस के अवसर पर आइए ये संकल्प लें, न प्लास्टिक की थैली लेंगे न किसी को लेने देंगे। पेपर बैग और कपड़े का थैला अपनाकर स्वच्छ, हरित और सुरक्षित भारत के निर्माण में अपना योगदान देंगे। एक छोटा सा बदलाव, बड़ा प्रभाव। प्लास्टिक छोड़ें, पेपर बैग जोड़ें। श्रोताओं, ये थी थोड़ी सी जानकारी विश्व पेपर बैग दिवस के बारे में। और इस जानकारी के बाद आइए सुनते हैं एक प्यारा संगीत।

श्रोताओं, इस प्यारे से गीत के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका कार्यक्रम सूरज के साथ साथ में। और अब आइए बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय आशा दिवस के विषय में। श्रोताओं, मनुष्य के जीवन में आशा जैसे अनुभव का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। आशा वह शक्ति है जो कठिन परिस्थितियों में भी व्यक्ति को आगे बढ़ने का साहस देती है। जब चारों ओर निराशा, संकट और असफलता का वातावरण होता है, तब आशा की एक किरण ही जीवन को नई दिशा प्रदान करती है। और इसी मूल मंत्र को ध्यान में रखते हुए विश्व भर में आशा, सकारात्मकता और मानवता के मूल्यों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय आशा दिवस प्रतिवर्ष 12 जुलाई को मनाया जाता है। यह दिवस हमें संदेश देता है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, यदि मन में आशा जीवित है तो हर चुनौती का सामना किया जा सकता है। आशा केवल एक भावना नहीं बल्कि जीवन जीने की प्रेरणा है। यह व्यक्ति, समाज और राष्ट्र तीनों के विकास की आधारशिला है। साथियों, अंतर्राष्ट्रीय आशा दिवस मनाने का प्रमुख उद्देश्य

लक्ष्य लोगों में सकारात्मक सोच विकसित करना तथा जीवन के प्रति विश्वास बनाए रखना है। आशा जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। यह व्यक्ति को निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। यदि मनुष्य आशा खो देता है तो उसके लिए जीवन बहुत ही कठिन हो जाता है, क्योंकि उसे हर तरफ नकारात्मकता दिखाई देती है। दूसरी ओर आशावान व्यक्ति असफलताओं से सीखकर बार बार प्रयास करता है और अंततः सफलता प्राप्त करने में सक्षम हो पाता है। साथियों, अगर हम कहें कि आशा व्यक्ति की मानसिक शक्ति का स्रोत है, ये व्यक्ति के मन को मजबूत बनाती है, तनाव, चिंता और अवसाद जैसी समस्याओं से लड़ने में सहायता करती है। आशा व्यक्ति के आत्मविश्वास को भी बढ़ाती है, साथ ही समाज में भी सकारात्मक वातावरण बनाने में सहायता करती है। क्योंकि जब लोग आशावादी होते हैं तो वे निश्चित ही दूसरों को भी आशावादी बनाने में कहीं ना कहीं मदद कर पाते हैं और समाज में सहयोग की भावना इस तरह से विकसित होती है। साथियों, युवा वर्ग किसी भी देश का भविष्य होता है। आज के युवाओं के सामने शिक्षा, रोजगार, प्रतियोगी परीक्षाएं और करियर जैसी अनेक चुनौतियां हैं। ऐसे समय में निराश होने के बजाय आशा और आत्मविश्वास बनाए रखना हमारे युवा वर्ग के लिए बहुत आवश्यक है। विद्यार्थी जीवन संघर्ष और सीखने का समय होता है। परीक्षा में कम अंक पाना या किसी प्रतियोगिता में असफल होना जीवन का अंत नहीं है। आशा और मेहनत से सफलता अवश्य प्राप्त होती है। साथियों, मानवता का आधार करुणा, प्रेम और सहयोग है। जब हम किसी दुखी व्यक्ति की सहायता करते हैं तो उसके जीवन में आशा का संचार होता है। छोटी सी सहायता भी किसी के जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकती है। महान व्यक्तियों जैसे महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, मदर टेरेसा और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जैसी व्यक्तियों ने अपने जीवन से यह संदेश दिया कि आशा, सेवा और सकारात्मक सोच से समाज में परिवर्तन लाया जा सकता है। साथियों, इस अवसर पर हम संकल्प लें कि अपने जीवन में आशा का दीप सदैव जलाए रखेंगे और दूसरों के जीवन में भी उम्मीद की किरण बनकर प्रेम, सहयोग और मानवता के मूल्यों को आगे बढ़ाते हुए एक उज्जवल भविष्य के निर्माण में अपना योगदान देंगे।

0: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
1: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
0: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
1: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
0: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
1: 8700001-4242।
2: डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसे रोग संचारी रोग होते हैं। इनसे बचने के लिए घर के दरवाजे और खिड़कियों पर जाली लगवाएं, मच्छरदानी का प्रयोग करें, पानी की टंकी को ढक कर रखें, पूरी बांह वाले कपड़े पहनें, कूलर की नियमित सफाई करें और अनुपयोगी वस्तुओं में पानी ना जमा होने दें।
3: अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-1805-145 पर कॉल करें।
2: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
4: श्रोताओं, एक बार फिर स्वागत है आपका कार्यक्रम सूरज के साथ साथ में। और अब आइए जिक्र करते हैं सादगी दिवस का। सादा जीवन, उच्च विचार। श्रोताओं, ये केवल एक वाक्य नहीं है बल्कि मनुष्य के जीवन का वह अमूल्य गुण है जो उसे विनम्र, संतुलित और संतुष्ट बनाता है। आधुनिक समय में जहाँ भौतिक सुख सुविधाओं और दिखावे की होड़ लगातार बढ़ती जा रही है, वहीं सादगी का महत्व और भी अधिक बढ़ गया है। साथियों, सादगी केवल पहनावे या रहन सहन तक सीमित नहीं है बल्कि यह हमारी सोच, व्यवहार, जीवन शैली और व्यक्तित्व का भी महत्वपूर्ण हिस्सा है। सादगी से जीवन व्यतीत करने वाला व्यक्ति कम संसाधनों में भी संतुष्ट रहकर समाज और प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को बेहतर ढंग से निभाता है। इन्हीं सब बातों की याद दिलाने के लिए प्रत्येक वर्ष आज यानी 12 जुलाई को मनाया जाता है सादगी दिवस। यह दिवस हमें यह संदेश देता है कि जीवन की वास्तविक खुशी महंगी वस्तुओं या भव्य जीवन शैली में नहीं बल्कि सरलता, संतोष, ईमानदारी और अच्छे विचारों में निहित है। यह दिवस लोगों को अनावश्यक खर्च, दिखावे और उपयोग की प्रवृत्ति से दूर रहकर सादा और संतुलित जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है। श्रोताओं, सादगी दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों को यह समझाना है कि जीवन की वास्तविक समृद्धि धन दौलत की चकाचौंध में नहीं वरन अच्छे चरित्र, नैतिक मूल्यों और संतोष में होती है। सादगी हमारे जीवन को अनेक प्रकार से समृद्ध बनाती है। मानसिक शांति, आर्थिक संतुलन, पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक समानता और नैतिक विकास जैसे गुणों का संचय कर हमारे जीवन को दूसरों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनने में भी सहायता करती है। हमारी भारतीय संस्कृति सदैव सादगी, संयम और संतोष का संदेश देती रही है। हमारे ऋषि मुनियों ने सादा जीवन और उच्च विचारों को आदर्श माना। प्राचीन गुरुकुल व्यवस्था में भी विद्यार्थियों को सादा जीवन, अनु

0: अधिकार के लिए उनका संघर्ष आज भी विश्वभर के युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। मलाला यूसुफजई का जन्म 12 जुलाई 1997 को पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के स्वात घाटी में हुआ था। उनके पिता जियाउद्दीन यूसुफजई स्वयं एक शिक्षक और शिक्षा के समर्थक थे। उन्होंने बचपन से ही मलाला को शिक्षा का महत्व समझाया। जब स्वात घाटी में तालिबान का प्रभाव बढ़ा, तब लड़कियों के स्कूल जाने पर प्रतिबंध लगाया जाने लगा। अनेक विद्यालय बंद कर दिए गए और शिक्षा का वातावरण भयपूर्ण हो गया। ऐसी कठिन परिस्थितियों में भी मलाला ने लड़कियों की शिक्षा के अधिकार के लिए आवाज उठाई। 12 जुलाई 2013 को अपने 16वें जन्मदिन के अवसर पर मलाला ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में ऐतिहासिक भाषण दिया। इस भाषण में उन्होंने शिक्षा को दुनिया के हर बच्चे का अधिकार बनाया। उनका प्रसिद्ध कथन आज भी पूरी दुनिया में प्रेरणा देता है। एक बच्चा, एक शिक्षक, एक किताब और एक कलम पूरी दुनिया बदल सकते हैं। इसी ऐतिहासिक अवसर के बाद संयुक्त राष्ट्र ने 12 जुलाई को मलाला दिवस के रूप में मान्यता दी। वर्ष 2014 में मलाला यूसुफजई को भारतीय बाल अधिकार कार्यकर्ता कैलाश सत्यार्थी के साथ संयुक्त रूप से नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया। मात्र 17 वर्ष की आयु में मलाला नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त करने वाली विश्व की सबसे कम उम्र की विजेता बनी। यह सम्मान शिक्षा, बाल अधिकारों और शांति के लिए उनके संघर्ष की वैश्विक स्वीकृति था।
1: अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं?
2: तो इंतजार किस बात का,
1: अभी बुक कराइए अपना विज्ञापन आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
2: विज्ञापन बुकिंग कराने के लिए आज ही संपर्क करें।
1: हमारा मोबाइल नंबर है 8865845809।
2: नंबर एक बार फिर सुन लीजिए 8865845809।
1: और हमारा ईमेल आईडी है
2: akashwaninajibabad@gmail.com।
1: तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और बुक कराइए अपना विज्ञापन
2: आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
0: श्रोताओं, देश और दुनिया की कई महत्वपूर्ण घटनाओं, उपलब्धियों और ऐतिहासिक बदलावों का साक्षी है 12 जुलाई का इतिहास। आइए जानते हैं वो क्या क्या हैं। 1776 में 12 जुलाई को ब्रिटिश खोजकर्ता कैप्टन जेम्स कुक अपनी तीसरी और अंतिम समुद्री यात्रा पर रवाना हुए। इस दौरान उन्होंने प्रशांत महासागर के कई क्षेत्रों का अन्वेषण किया और हवाई द्वीपों तक पहुंचे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 12 जुलाई को शिक्षा के अधिकार के लिए संघर्ष करने वाली नोबेल पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई के जन्मदिन के उपलक्ष्य में अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस मनाया जाता है। और श्रोताओं, इस सब के साथ ही सूरज के साथ साथ कार्यक्रम अब संपन्न होता है। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सूरज के साथ साथ। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह की 8 बजे हैं, अब आप समाचार सुनेंगे।
3: एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
4: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
5: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 3 देशों की यात्रा संपन्न। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ विस्तृत वार्ता के बाद स्वदेश रवाना। देश भर में आज व्यापक पौधारोपण अभियान चलाया जाएगा। वियतनाम सरकार ने स्पीड बोट दुर्घटना की जांच के आदेश दिए, दुर्घटना में 15 भारतीय पर्यटकों की मौत। अमेरिका ने इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के होर्मुज जल डमरू मध्य में साइप्रस के झंडे वाले जहाज पर हमले के बाद ईरान पर नए हमले शुरू किए। ईरान ने जल मार्ग को अगली

0: स्नातक किया बंद। मौसम विभाग ने अगले चार दिन तक देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में बहुत तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया। इंग्लैंड ने नॉर्वे को 2-1 से हराकर फीफा विश्व कप के सेमीफाइनल में प्रवेश किया और लिंडा नोसकोवा ने कैरोलिना मुकोवा को हराकर अपना पहला विंबलडन टेनिस खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा पूरी कर स्वदेश रवाना हो गए। इस दौरान श्री मोदी ने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ व्यापक बातचीत की। भारत और न्यूजीलैंड ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया है। इस दौरान रक्षा, पर्यटन, खेल, आपदा प्रबंधन और डेयरी तथा पशुपालन सहित कई प्रमुख क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। ऑकलैंड में सामुदायिक कार्यक्रम में भारतीय मूल के 10,000 से अधिक लोगों ने भाग लिया। श्री मोदी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भारत और न्यूजीलैंड का भविष्य आपस में जुड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री लक्सन ने भारत को विश्वसनीय मित्र बताते हुए न्यूजीलैंड की प्रगति में भारतीय समुदाय के योगदान की सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की भी उन्होंने प्रशंसा की। श्री मोदी ने श्री लक्सन के शानदार आतिथ्य के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि इस यात्रा से भारत न्यूजीलैंड संबंधों में एक नया अध्याय शुरू हुआ है। श्री मोदी ने 40 वर्ष बाद भारतीय प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड यात्रा के बारे में कहा कि अगली यात्रा में इतना समय नहीं लगेगा।
1: भारत और न्यूजीलैंड के रिश्ते में यादें भी हैं, दोस्ती भी है, वैल्यूज भी है और एक कमिटमेंट भी है। भारत न्यूजीलैंड की यही वाका एक नई यात्रा पर निकलने के लिए तैयार है। हमारे सामने अवसरों से भरा खुला समुद्र है, इच्छा शक्ति का नीला आसमान हमारे साथ है, पाने को काफी कुछ है और मैं जानता हूं हम सफल होंगे।
0: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की तीन देशों की यात्रा के महत्वपूर्ण परिणाम निकले हैं। प्रधानमंत्री मोदी की तीन देशों की यात्रा के दौरान भारत ने इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ व्यापार, प्रौद्योगिकी, सुरक्षा, नवाचार, शिक्षा और लोगों के बीच आपसी संबंधों जैसे कई क्षेत्रों में सहयोग का विस्तार किया है। देश भर में आज व्यापक पौधारोपण अभियान चलाया जाएगा। इसके अंतर्गत कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज दिल्ली स्थित पूसा परिसर में पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस अवसर पर वे देश भर से आए लगभग 17,000 वृक्ष मित्रों से संवाद करेंगे। श्री सिंह वृक्ष मित्रों के साथ पूसा परिसर में वृक्षारोपण अभियान में भी हिस्सा लेंगे। गृहमंत्री अमित शाह आज अहमदाबाद में नगर निगम की 405 करोड़ रुपए की जन केंद्रित विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि गृहमंत्री कार्यक्रम के दौरान अपने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र गांधीनगर में महत्वाकांक्षी सामूहिक पौधारोपण अभियान की शुरुआत भी करेंगे।
2: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपने संसदीय क्षेत्र को देश में सबसे हरा भरा बनाने के लिए महत्वाकांक्षी गांधीनगर हरियाली लोकसभा अभियान की शुरुआत कर रहे हैं, जिसके तहत इस साल गांधीनगर संसदीय क्षेत्र में 1.25 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जाएंगे। इस अभियान के तहत वन विभाग अहमदाबाद और गांधीनगर जिलों में वन कवच मॉडल के माध्यम से लगभग 60 लाख स्वदेशी पौधे लगाएगा, जो त्वरित पर्यावरण सुधार के लिए जापानी मियावाकी पद्धति का गुजराती स्वदेशी संस्करण है। अपने दौरे के आखिरी दिन श्री शाह कल गांधीनगर में नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी परिसर में 11वीं इंटरपोल डिजिटल फॉरेंसिक एक्सपर्ट ग्रुप बैठक और पहली अंतर्राष्ट्रीय अन्वेषक अपराध प्रतियोगिता का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद वे देहगांव में नवनिर्मित एपीएमसी सब्जी मंडी का भी लोकार्पण करेंगे। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: उत्तर प्रदेश सरकार व्यापक पौधारोपण अभियान के अंतर्गत आज 35 करोड़ पौधे लगाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर से राज्यव्यापी पौधारोपण महायज्ञ 2026 का शुभारंभ करेंगे। वे एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे और आरकेबीके के पास ताल रिंग रोड के किनारे पौधे लगाएंगे। एक रिपोर्ट।
3: 27 विभागों के समन्वय से चलाए जाने वाले इस विशाल वृक्षारोपण अभियान में वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग सर्वाधिक 15 करोड़ 50 लाख पौधारोपण करेगा। ग्राम विकास विभाग 10 करोड़, कृषि विभाग 3 करोड़ 25 लाख, उद्यान विभाग 1 करोड़ 50 लाख और पंचायती राज विभाग 1 करोड़ 22 लाख पौधे लगाएगा। गंगा एक्सप्रेसवे के किनारे भी 5.5

0: लाख पौधे लगेंगे। महाअभियान 2026 में इस वर्ष समरस वन, समृद्धि वन, कृषि वन, ऊर्जा वन, कपि वन समेत अनेक नवीन वन तैयार किए जाएंगे। महर्षि चरक औषधि वन की शुरुआत 5 जून यानी विश्व पर्यावरण दिवस पर की गई है। इस अभियान का प्रमुख हिस्सा मिशन छाया, अविरल धारा पौधारोपण, सहजन भंडारा और आम भंडारा भी होगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित प्रस्तावित विधेयकों की जांच कर रही संयुक्त संसदीय समिति ने गोवा में अपनी 2 दिवसीय परामर्श प्रक्रिया पूरी कर ली है। इस दौरान समिति ने राज्य सरकार, राजनीतिक दलों, विधायकों, संवैधानिक विशेषज्ञों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, नागरिक समाज के प्रतिनिधियों और मीडिया से विचार विमर्श किया। हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
2: पहले दिन समिति ने गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों, संवैधानिक

0: राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के होर्मुज जल डमरू मध्य में साइप्रस के झंडे वाले जहाज पर हमले के बाद अमरीका ने ईरान पर नए हमले शुरू कर दिए हैं। एक रिपोर्ट।
1: अमेरिका की सेना ने कहा है कि हमले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर किए गए हैं। इस बीच ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य को अगली सूचना तक बंद कर दिया है। ईरान की नौसेना ने कहा कि इस इलाके में अमेरिका का दखल खत्म होने तक किसी जहाज को इस रास्ते से निकलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। नौसेना ने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य की इस घटना को लेकर अमेरिका की किसी भी कार्रवाई का कड़ा जवाब दिया जाएगा। अमेरिका ईरान से सार्वजनिक रूप से होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले जहाजों पर हमला नहीं करने का आश्वासन चाहता है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि तनाव के बावजूद ईरान के साथ बातचीत जारी रहेगी। ईरान ने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य उसके नियंत्रण में ही रहेगा और इस मार्ग से गुजरने वाले जहाजों को शुल्क देना होगा। ओमान ने होर्मुज जलडमरू मध्य से जहाजों की आवाजाही के लिए दो अलग अलग रास्तों का प्रस्ताव दिया है, लेकिन ईरान ने इस तरह के प्रस्ताव को पहले ही खारिज कर दिया था। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रतिष्ठित पार्श्व गायिका एस जानकी अम्मा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि एस जानकी अम्मा का निधन संगीत और संस्कृति जगत के लिए अपूर्णीय क्षति है। और अब खेल जगत की हलचल के साथ मुकेश कुमार बल।
2: फीफा फुटबॉल विश्व कप में इंग्लैंड ने आज तड़के फ्लोरिडा में नॉर्वे को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। इंग्लैंड के जूड बेलिंघम ने अतिरिक्त समय में 2 गोल करके इंग्लैंड को जीत दिलाई। इंग्लैंड तीसरी बार विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचा है। स्पेन और फ्रांस पहले ही सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर चुके हैं। उधर लंदन में कल रात विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में 21 वर्षीय लिंडा नोस्कोवा ने चेक गणराज्य की करोलिना मुकोवा को 6-2, 5-7, 6-3 से हराकर महिला सिंगल्स का खिताब अपने नाम कर लिया है। इस बीच पुरुष सिंगल्स के फाइनल में आज विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी यैनिक सिनर का मुकाबला जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार आज रात 8:30 से खेला जाएगा। महिला डबल्स के फाइनल में आज 10वीं वरीयता प्राप्त गुओ हान्यू और क्रिस्टीना म्लाडेनोविच की जोड़ी का मुकाबला दूसरी वरीयता प्राप्त गैब्रियला डब्रोवस्की और लुइसा स्टेफनी की जोड़ी से होगा। ये मैच शाम 5:30 से शुरू होगा। और इंग्लैंड ने कल रात साउथहैम्प्टन में 5वें और अंतिम T20 क्रिकेट मैच में भारत को 56 रन से हराकर श्रृंखला 4-0 से अपने नाम कर ली है।
0: और अभी अभी प्राप्त समाचार के अनुसार अमेरिका के कंसास में जारी क्वार्टर फाइनल मुकाबले में अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड 1-1 गोल से बराबरी पर हैं। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में मूसलाधार वर्षा की आशंका व्यक्त की है। इनमें जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, पूर्वी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, अरुणाचल प्रदेश और ओडिशा शामिल हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
3: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाई है। नवभारत टाइम्स ने प्रधानमंत्री मोदी की न्यूजीलैंड यात्रा को प्राथमिकता देते हुए लिखा है, आतंकवाद पर बनाएंगे ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप, प्रधानमंत्री मोदी और न्यूजीलैंड के पीएम के बीच सहमति। पंजाब केसरी ने INS महेंद्रगिरी के जलावतरण पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान को प्रमुखता दी है, भविष्य के युद्ध सिर्फ AI से नहीं सैनिकों के दम पर जीते जाएंगे। जनसत्ता ने श्रीराम जन्मभूमि मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा का बयान दिया है, चढ़ावा चोरी कलंक, व्यवस्था में जल्द सुधार। दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर बरसात में बेहाल होते शहरों पर विश्लेषण दिया है, हर बरसात में देश के शहरों में लोग जलभराव और उससे जुड़ी समस्याओं से जूझते हैं, इसके बाद भी नगर निकायों का काम करने का तौर तरीका नहीं बदला है। अखबार ने लिखा है कि अब यह जरूरी हो गया है कि संसद में एक विशेष सत्र बुलाकर बिगड़ते शहरीकरण को संवारने के लिए कोई सार्थक बहस की जाए। दैनिक भास्कर ने राष्ट्रीय राजधानी के मौसम का मिजाज दिया है, कमजोर पड़ा मॉनसून, अब एक हफ्ते झेलनी पड़ेगी गर्मी।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 3 देशों की यात्रा सम्पन्न। देश भर में आज व्यापक पौधारोपण अभियान चलाया जाएगा। वियतनाम सरकार ने स्पीड बोट दुर्घटना की जांच के आदेश दिए, दुर्घटना में 15 भारतीय पर्यटकों की मौत। अमरीका ने इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के होर्मुज जल डमरू मध्य में साइप्रस के झंडे वाले जहाज

0: And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi concludes his three-nation tour of Indonesia, Australia and New Zealand. Departs for India after holding extensive talks with New Zealand Prime Minister Christopher Luxon. Vietnam government orders probe into speedboat tragedy that killed 15 Indian tourists. U.S. launches new round of strikes against Iran after IRGC forces attack container ship transiting Strait of Hormuz. Iranian Navy closes the vital sea corridor until further notice. IMD forecasts heavy rainfall across northern and eastern parts of the country for next 4 days. England beat Norway 2-1 to reach FIFA World Cup semi-finals, and Linda Noskova beats Karolina Muchova to win first Wimbledon tennis title. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
1: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं आसिया मैमुना। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने तीन मुल्कों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का दौरा मुकम्मल कर लिया है। वो न्यूजीलैंड के वज़ीर-ए-आज़म क्रिस्टोफर लक्सन के साथ तफसीली बातचीत के बाद भारत रवाना हो गए। वियतनाम हुकूमत ने तेज रफ्तार कश्ती हादसे की तहकीकात का हुक्म दिया है, जिसमें 15 भारतीय सयाहों की मौत हो गई। अमरीका ने ईरान के सिपाह पासदारान इनकलाब IRGC की जानिब से आबनाए हुरमुज से गुजरने वाले एक माल बरदार जहाज पर हमले के बाद ईरान के खिलाफ हमलों का नया सिलसिला शुरू कर दिया है। ईरानी बहरिया ने अगले हुक्म तक इस अहम बहरी गुजरगाह को बंद कर दिया है। भारतीय महकमा मौसमियात ने अगले 4 दिन के दौरान मुल्क के शिमाली और मशरिकी इलाकों में शदीद बारिश की पेशगोई की है। फीफा वर्ल्ड कप में इंग्लैंड नॉर्वे को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में पहुंच गया है। और टेनिस में लिंडा नोस्कोवा ने कैरोलिना मुकोवा को हराकर अपना पहला विंबलडन खिताब हासिल किया। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने न्यूजीलैंड के वज़ीर-ए-आज़म क्रिस्टोफर लक्सन के साथ तफसीली बातचीत करने के बाद तीन मुल्कों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का अपना दौरा मुकम्मल कर लिया है और भारत के लिए रवाना हो चुके हैं। भारत और न्यूजीलैंड ने अपने दो तरफा ताल्लुकात को स्ट्रेटेजिक शराकतदारी की सतह तक ले जाने का फैसला किया और मुख्तलिफ अहम शोबों में कई समझौतों और मफाहमत नामों पर दस्तखत किए हैं। इन समझौतों में दिफा, सियाहत, खेलकूद, आफात से निमटने, डेयरी सनद और मवेशी पालने समेत कई शोबे शामिल हैं। वज़ीर-ए-आज़म के दौरे की एक नुमाया तकरीब ऑकलैंड के सापर्क एरेना में मुनाकिद होने वाला कम्युनिटी प्रोग्राम था, जिसमें भारतीय बिरादरी के 10,000 से ज्यादा अफराद ने शिरकत की। भारतीय बिरादरी के इस इज्तमा से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि भारत और न्यूजीलैंड का मुस्तकबिल एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और दोनों ममालिक के दरमियान होने वाला दोतरफा तिजारती मुआहिदा भारत की तरक्की याफ्ता मुल्क बनने के सफर को मजीद तेज करेगा।
2: भारत और न्यूजीलैंड के रिश्ते में यादें भी, भारत न्यूजीलैंड की यही वाका एक नई यात्रा पर निकलने के लिए तैयार है। हमारे सामने अवसरों से भरा खुला समुद्र है, इच्छा शक्ति का नीला आसमान हमारे साथ है, पाने को काफी कुछ है और मैं जानता हूँ हम सफल होंगे।
1: इस मौके पर न्यूजीलैंड के वज़ीर-ए-आज़म क्रिस्टोफर लक्सन ने भारत को एक काबिल-ए-एतमाद दोस्त करार दिया। न्यूजीलैंड की तरक्की में भारतीय बिरादरी के रोल को सराहा और वज़ीर-ए-आज़म मोदी की क़यादत की तारीफ की। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने वज़ीर-ए-आज़म लक्सन की बेहतरीन मेजबानी पर उनका शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि इस दौरे ने भारत और न्यूजीलैंड के ताल्लुकात में एक नए बाब का आगाज किया है। जनाब मोदी ने इस बात का भी जिक्र किया कि भारत के वज़ीर-ए-आज़म के न्यूजीलैंड के दौरे को 40 साल गुजर चुके हैं, ताहम उन्होंने यकीन दिलाया कि अगले दौरे में इतना तवील वक्फा नहीं होगा।
2: ये मेरा सौभाग्य है, मैं न्यूजीलैंड के सभी निवासियों के लिए, आप सभी लोगों के लिए 140 करोड़ भारतीयों की शुभकामनाएं लेकर आया हूं। प्रधानमंत्री के रूप में भले ही मेरा पहला

हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर। श्रोताओं, सुबह के 8:45 हुए हैं। प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गोल्डन हिट्स। श्रोताओं, कार्यक्रम का पहला गीत आइए सुनते हैं। मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म का नाम है आई मिलन की बेला। गीतकार हसरत जयपुरी और संगीतकार हैं शंकर जयकिशन।

आई मिलन की बेला। अभी आपने इस फिल्म में मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में ये मीठा सा मधुर सा गीत सुना, और अब आइए सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में कार्यक्रम का अगला गीत, फिल्म छलिया सी। गीत के बोल कमर जलालाबादी के हैं और संगीत निर्देशन है कल्याण जी आनंद जी का।

0: घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल। देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: श्रोताओं, फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गोल्डन हिट्स आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से। कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म धरती से। गायक कलाकार हैं मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर। गीत के बोल हैं राजेंद्र कृष्ण के और धुन तैयार की है शंकर जयकिशन ने।

श्रोताओ, अभी आपने लता मंगेशकर की आवाज में ये गीत सुना फिल्म तुम्हारे लिए से, और अब आइए सुनते हैं मोहम्मद रफी की आवाज में ये गीत फिल्म ख्वाब से। गीत और संगीत है रविंद्र जैन का।

0: पापा
1: लाइए
0: 3,000।
1: क्यों भाई?
0: मेरी पॉकेट मनी।
1: अरे अभी तो सिर्फ 2,000 ही कैश है।
0: अरे पापा, बुलेट ट्रेन के जमाने में बैलगाड़ी चला रहे हो? डिजिटल पेमेंट चलाओ। है नहीं, हाँ सीधे UPI से पेमेंट करो, इट्स इजी।
1: अरे वाह, मुझे भी सिखाओ। अपने 1,000 ले जाओ,
0: अपना मोबाइल लाओ,
1: ले ले।
2: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
3: हर लेन देन अब है आसान।
4: श्रोताओं, गोल्डन हिट्स कार्यक्रम का ये आखिरी गीत फिल्म प्रेम कहानी से लता मंगेशकर और मुकेश की युगल आवाजों में। गीत के बोल हैं आनंद बख्शी के और धुन हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की।

0: श्रोताओं, लता मंगेशकर और मुकेश के गाए इस गीत के साथ ही फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गोल्डन हिट्स अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 314.47 मीटर पर। सुबह के 9:55 हुए हैं। अब हमारा अगला कार्यक्रम आप आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से सुनेंगे।
1: ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। हमारा अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में होगा। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं सामयिक चर्चा।
2: सामयिक चर्चा। सामयिक चर्चा में आज आप सुनेंगे, युवाओं में ईयरफोन के लगातार इस्तेमाल से बढ़ रहे हियरिंग लॉस के खतरे पर बलरामपुर अस्पताल के ईएनटी विभाग के डॉक्टर हिमांशु प्रताप सिंह से खास बातचीत। वार्ताकार हैं ओम अवस्थी।
3: लगातार लंबे समय तक ईयरफोन का इस्तेमाल हमारे कानों पर क्या असर डालता है? आखिर क्यों युवाओं में टिनिटस की बीमारी बढ़ रही है और बच्चे स्लीप एपनिया के शिकार हो रहे हैं? और बढ़ते प्रदूषण और वह बदलती लाइफस्टाइल में इन बीमारियों के लक्षणों को नजरअंदाज करना क्यों भविष्य में बड़ी मुसीबत बन सकता है? इस सब पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं बलरामपुर अस्पताल के ईएनटी विभाग के डॉक्टर हिमांशु प्रताप सिंह। आकाशवाणी समाचार में आपका स्वागत है सर।
4: धन्यवाद, नमस्कार।
3: पिछले कुछ वर्षों में युवाओं में हियरिंग लॉस और टिनिटस के मामले बढ़े हैं। आपके पास इससे जुड़े किस तरह के मरीज आ रहे हैं और इसके पीछे क्या वजह आपको नजर आई?
4: आमतौर पर टिनिटस की जो समस्या होती है ये ओल्ड एज के लोगों में ज्यादा मिलती है। उम्र के साथ कान की नसें धीरे धीरे कमजोर पड़ती जाती हैं और कान में सीटी बजना, सनसनाहट होना, झेंगुर की आवाज आना, भारीपन रहना, ये समस्या रहती है। मगर आज के परिवेश में यंग एज के जो बच्चे हैं या टीनएजर्स कह लें, जो आजकल मोबाइल के फोन पे हैं या हेडफोन लगा के लगातार क्लासेस लेते हैं, पढ़ते हैं या म्यूजिक सुनते हैं लाउड नॉइज में, तो ये समस्या आजकल टीनएजर ग्रुप में ज्यादातर मिल रही है। और मान के चलिए 10-20% पूरी ओपीडी में टिनिटस की कंप्लेन वाले बच्चे आने शुरू हो गए हैं।
3: क्या ईयरफोन का लगातार इस्तेमाल सुनने की क्षमता को स्थायी रूप से नुकसान पहुंचाता है और क्या इसका पूरी तरह से इलाज संभव है?
4: देखिए, जो नॉइज इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस होता है यानी तेज आवाज के कारण जो कान की सुनने की क्षमता गिरती है, वो दो तरह की होती है। एक टेम्पररी शिफ्ट, जो साधारणतः प्रिकॉशन लेने पे या समय पे इलाज कराने पे वापस आ जाती है, और दूसरी होती है जो परमानेंट शिफ्ट। परमानेंट शिफ्ट जैसे तेज धमाके या इस तरह के लाउड एक्सपोजर में लगातार रहने से फिर वो हियरिंग लॉस परमानेंट शिफ्ट में जाता है। होता यह है कि कान के जो सबसे अंदर का हिस्सा है वहां पर इनर हेयर सेल्स होती हैं। लगातार तेज आवाज इन्हीं इनर हेयर सेल्स को धीरे धीरे कमजोर कर देता है और मृत्यु हो जाती है। चूंकि इनका जनरेशन यानी कि दोबारा ये ठीक नहीं होती है, इसीलिए ये टिनिटस की समस्या धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते फिर हियरिंग लॉस में भी बदलती है। तो जो ईयरफोन का यूज कर रहे हैं लगातार, उसमें के बीच में सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये होती है कि आप कितनी देर तक और किस इंटेंसिटी पे अपने कान को लाउड नॉइज का एक्सपोजर दे रहे हैं। यदि ये मध्यम इंटेंसिटी पर है और बीच बीच में आप उसमें थोड़ा सा ब्रेक ले रहे हैं तो ये समस्या नहीं आएगी, लेकिन अगर लगातार आप उसका ओवर यूज कर रहे हैं तो ये समस्या धीरे धीरे टिनिटस की, कान में सीटी बजना, सनसनाहट होना, लोगों में ईयरफोन लगाने के कारण कान में एक भारीपन बना रहता है, हल्का हेडेक रहता है, सर में दर्द रहता है, अनिद्रा, यानी ये सब भी सारे कैरेक्टर हैं। केवल टिनिटिस ही नहीं है, चिड़चिड़ापन है, लैक ऑफ स्लीप है, आंखों पे ग्लेयरिंग सिम्टम्स हैं, ये सारे भी इसके साथ रेडिएशन के इफेक्ट के दायरे में आते हैं।
3: जी, आपने जैसे बताया कि ये दो तरह से होता है, तो सुनने की क्षमता कम होने के शुरुआती संकेत क्या है, मतलब वो क्या लक्षण है जिससे माना जाए कि आप डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है?
4: आमतौर पे ये जैसे कोई भी टीवी का प्रोग्राम देखते समय रिमोट से वॉल्यूम बढ़ा लेना, किसी व्यक्ति के बोलने पे बार बार उसकी तरफ इशारा करके बोलना आपने क्या कहा, सर में भारीपन बना रहना और ऐसा लगना कि आवाज कान तक तो आ रही है लेकिन कहीं ना कहीं हम कान में उसकी क्लैरिटी प्रॉपर नहीं है, तो ये शुरुआती लक्षण है जिसको आप टाइम पे अगर देखते हैं, पहचानते हैं, या जहां पर शोर नहीं है आप वहां बैठे और कान में आपकी सीटी या सनसनाहट की आवाज बनी हुई है, तो जैसे ही लक्षण शुरू हो, कान की कोई प्रिसीडिंग यानी कोई ऐसी हिस्ट्री नहीं है कि आपको कोई कान की बीमारी रही है, सब कुछ सामान्य ही था, तो सब सामान्य रहने के बाद लाउड साउंड करने के बाद अगर इस तरह के लक्षण आए, सर में भारीपन है, चिड़चिड़ापन आ रहा है, कान में सीटी बज रही है, तो फिर डॉक्टर को

0: आना जरूर चाहिए।
1: अभी हाल ही में इस संदर्भ में एम्स में एक स्टडी हुई जिसमें डॉक्टर्स ने एक फॉर्मूला दिया 60-60 रूल और उसको अपनाने की सलाह दी, इसके बारे में थोड़ा बताएं ये क्या है और इससे किस तरह से मदद मिलती है।
0: ये 60-60 रूल बेसिकली इसलिए बनाया गया है कि यदि आप लगातार काम में तेज आवाज का इस्तेमाल हो रहा है या कोई क्लासेस कर रहे हैं या कॉल सेंटर में काम करने वाले हैं तो 60 मिनट तक आप कान में ईयरफोन का इस्तेमाल करें जो मैक्सिमम इंटेंसिटी है उसके 60% से ऊपर ना जाए। जैसे मान लीजिए जो वॉल्यूम है वो 0 से 10 के बीच में, तो उसको 6 से ऊपर ना बढ़ाए। दूसरा, अगर 85 डेसिबल से ऊपर आप लगातार कोई भी चीज लगातार सुन रहे हैं तो वो कान में टेम्पररी शिफ्ट को परमानेंट शिफ्ट की तरफ धकेल देता है। तो 60-60 रूल यही है कि 60 मिनट और 60% ऑफ इंटेंसिटी, और उसके बाद कम से कम 5 से 10 मिनट का फिर ब्रेक लें। दो दो ढाई ढाई घंटे जो लगातार ऑनलाइन लगे रहते हैं वो ठीक नहीं है। 10 से 15 मिनट का ब्रेक आपके कान को सुरक्षित भी रखेगा और आपकी सुनने की क्षमता भी बनी रहेगी।
1: अच्छा, क्या जैसे आपने बताया कि ब्रेक लेना जरूरी है, क्या कोई ऐसी भी लिमिट है कि दिन भर में कितनी देर तक ईयरफोन का इस्तेमाल करना सुरक्षित माना गया है?
0: देखिए, इस पे कोई इस तरह की शोध नहीं है, बस ये कहा जाता है कि कोई भी चीज की इंटेंसिटी अगर 85 डेसिबल से ऊपर लगातार 3 से 4 घंटे से ज्यादा है तो वो नुकसानदेह है।
1: जी, आजकल मार्केट में कई तरह का इस तरह का भी है कि नॉइज कैंसलेशन हेडफोन आ गए हैं जो सामान्य हेडफोन की तुलना में सुरक्षित बताए जाते हैं, क्या वाकई इस तरह का कुछ फर्क पड़ता है या कोई भी हेडफोन हो हमें 60-60 रूल को अपनाना ही चाहिए?
0: जो ANC करके रूल आया है वो ये कहते हैं कि वो बहुत सारी जैसी साउंड है जो कान में बाहर से भी आ सकती थी, अगल बगल से भी आ सकती थी, उसको वो थोड़ा सा इंटेंसिटी उसकी कम कर देते हैं तो थोड़ा सेफ हो जाता है। और हेडफोन में ये अभी कोई इसका स्टैंडर्ड पैमाना तो बना नहीं है, लेकिन ये है कि हाँ, जो ओवरहेड यूज हेडफोन्स हैं वो बेटर माने जाते हैं जो ईयर में हम लोग लगाते हैं प्लग के तौर पे। तो जो बड़े साइज के ओवरहेड हेडफोन है दे आर बेटर देन द प्लग साइज हेडफोन्स।
1: ओके, जैसे ये जो आपने बताया इन सावधानियों के साथ ही आदमी को किस तरह के अगर ये सिम्टम्स आ रहे हैं किन लोगों को हियरिंग टेस्ट रेगुलर बेसिस पे कराना चाहिए या मतलब ये टेस्ट के लिए कब जाना चाहिए?
0: देखिए, सुनाई में कोई भी किसी भी तरह की किसी भी एज में दिक्कत अगर हो रही है, स्कूल गोइंग एज में तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ओल्ड एज में भी इम्पोर्टेंट है और यंग एज में भी इम्पोर्टेंट है। अगर आपको किसी भी तरह से कान में भारीपन, कान में सीटी या सनसनाहट, बातचीत करने के समय ऐसा लगना कि हमको कान में कुछ महसूस सा हो रहा है तो फिर आपको तुरंत जाके एक बार ENT चेकअप करा लेना चाहिए। ओल्ड एज में तो मुझे लगता है कि अगर आप 60+ है तो आपको कम से कम साल में एक बार जाके ENT डिपार्टमेंट दिखाना चाहिए। जैसे आई के लिए विजन टेस्ट होता है वैसे कान के लिए ऑडियोमेट्री टेस्ट होते हैं, तो एक वर्ष में अगर एक बार आप जाके ऑडियोमेट्री टेस्ट करा लेते हैं तो आपको अपनी श्रवण शक्ति का भी अंदाजा लग जाता है या उसमें अगर कोई कमी आ रही है तो समय से उसका इलाज भी शुरू हो जाता है।
1: जी निश्चित, ये एक टेस्ट कराना तो है ही, अगर क्या इसके अलावा कोई बेसिक प्रैक्टिसेस हैं, घरेलू उपाय हैं, कोई आदतें हैं जिनको हम अपना सकते हैं कानों को स्वस्थ रखने के लिए?
0: कानों को स्वस्थ रखने के लिए सबसे अच्छी चीज तो ये है कि जो हमारी एक परंपरा चली आ रही है जो तेल डालने वाली, ये कान में पानी और तेल कान को दोनों से बचाना चाहिए। यदि आपका कान बार बार खराब होता है, इन्फेक्शन होता है, तो कॉटन में वैसलीन लगा कर नहाए पहली चीज। दूसरा, नियमित अंतराल पे अगर आपको कान में दर्द बना रहता है तो अपने मन से कहीं से भी लेकर कोई भी दवा कान में ना छोड़े, क्योंकि यदि कान का इन्फेक्शन है या कान में वैक्स है या कान में फंगल इन्फेक्शन है तो ये किसी एक दवा के कारण नहीं बल्कि उसी की दवा के द्वारा ही ठीक होगा। तो घर पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि कान में तेल और पानी ना जाए, किसी भी दवा का ब्लाइंडली इस्तेमाल ना किया जाए, थोड़े से भी लक्षण अगर होते हैं तो जाके एक सिंपल सा रेगुलर चेकअप करा सकते हैं।
1: जी, सुनने संबंधी दिक्कतों के साथ साथ आजकल छोटे बच्चों में स्लीप एपेनिया की समस्या भी बढ़ी है, यह क्या है और माता पिता इसे कैसे पहचान सकते हैं?
0: देखिए, स्लीप एपेनिया बेसिकली एक बहुत ब्रॉड टर्म है। ये स्लीप एपेनिया बेसिकली एक सिंड्रोम है, स्लीप एपेनिया सिंड्रोम, और जनरली छोटे बच्चों में ये ओबेसिटी के साथ भी आता है कि जैसे मोटापा बहुत ज्यादा है बच्चों में, खान पान गड़बड़ है बच्चे का। तो इसको समझने का दो तरीका है। पहला तरीका तो ये है कि स्लीप एपनिया का जो बच्चा है या एडल्ट भी है तो रात को वो खर्राटे ले रहा है कि नहीं, उसके खर्राटे बहुत तेज हैं कि नहीं। दूसरा, क्या दिन में उसको हर समय सुस्ती बनी रहती है या कहीं भी दिन में 2 मिनट के लिए बैठता है तो सो जाता है। तो अगर ये दोनों चीजें बनी हुई है तो चाहे एडल्ट हो चाहे बच्चा हो, डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। अब दूसरा, स्लीप एपनिया छोटे बच्चों में क्या होता है कि कभी कभी एडेनॉइड के कारण भी, क्योंकि एडेनॉइड क्या है, एक लिम्फेटिक टिश्यू है जिसे टॉन्सिल होते हैं, तो गले के अंदर अगर टॉन्सिल बढ़े हैं और नाक के पीछे अगर एडेनॉइड बढ़ाए तो निसंदेह उस व्यक्ति को नाक के रास्ते सांस लेने में दिक्कत आएगी। जब सांस लेने में दिक्कत आएगी तो वो खर्राटे लेगा। ये खर्राटे धीरे धीरे धीरे धीरे आपके शरीर में ऑक्सीजन की रात में मात्रा कम कर देते हैं। अब जब शरीर में से ऑक्सीजन की मात्रा ब्रेन में जो पहुंचती है कम हो जाती है तो अचानक से झटके के साथ नींद खुलती है, नींद खुलती है तो एयर हंगर होता है। तो ये अगर बार बार ये प्रक्रिया बनी रहती है तो इसका धीरे धीरे मस्तिष्क पर भी और हृदय पर भी दोनों पर ही इसके दुष्परिणाम होते हैं।
1: आपने खर्राटे का जिक्र किया, क्या हर खर्राटा लेने वाला मतलब बच्चा हो या एडल्ट, क्या वो खतरे की निशानी है या ये खर्राटे लेना एक सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा है?
0: खर्राटे ये डिपेंड करता है कि खर्राटे रात में आप जो आपके स्लीप साइकिल है उसमें कितनी अवधि तक है। यदि किसी समय आपकी गर्दन टेढ़ी हो जाती है या तकिए के कारण सर ऊंचा हो जाता है और थोड़ी देर के लिए पोस्चरल चेंज के कारण खर्राटे आते हैं तो ये सामान्य है। लेकिन अगर पूरी रात आपका खर्राटे बने रहते हैं, सुबह आप उठते हैं तो आपको थकान से महसूस होती है, बॉडी लो एनर्जी लेवल का फील करता है, दिन में आप किसी भी समय सो जाते हैं, आप ड्राइव कर रहे हैं आपको झपकी आ जा रही है, तो फिर ये लक्षण इस बात इंगित करते हैं कि ये आपका जो स्नोरिंग है ये अब बीमारी वाली स्नोरिंग है, ये साधारण स्नोरिंग नहीं है।
1: आपने खान पान और मोटापे का जिक्र किया कि स्लीप एपनिया के लिए एक कारण वो भी होता है, तो इसका इलाज क्या है? क्या सर्जरी इसका इलाज है या जीवन शैली में बदलाव करके भी इसको ठीक किया जा सकता है?
0: देखिए, छोटे बच्चों में अगर स्नोरिंग है खर्राटे, स्लीप एपनिया पे मैं नहीं बात कर रहा अभी, मैं स्नोरिंग पे पहले बता रहा हूँ कि अगर स्नोरिंग आ रही है बच्चे को और उसको लगातार स्नोरिंग के कारण उसकी साइकिल डिस्टर्ब हो रही है, उसकी ग्रोथ डिस्टर्ब हो रही है, तो ENT चेकअप कराएं। अगर एडिनोइड बहुत बड़े हुए हैं और टॉन्सिल बहुत बड़े हुए हैं तो सर्जिकली उसको रिमूव करके वो सामान्य जीवन जी सकता है। जनरली जो एडिनोइड होते हैं वो टीनेज तक आते आते 13-14 साल तक अपने आप खत्म हो जाते हैं, लेकिन अगर वो बने हुए हैं, परसिस्टेंट किए हुए हैं, तो कभी कभी ये यंग लोगों में भी मिलते हैं और परसिस्टेंट रहते हैं, तो उसको नाक की जांच के जरिए, दूरबीन की जांच के जरिए देखा सकता है, एक्सरे करा के देखा सकता है और उसका इलाज किया सकता है। यंग ऑनसेट जो एज में स्लीप एपनिया है ये थोड़ी सी ट्रबलसम इसलिए है कि जब आपके दिमाग तक ऑक्सीजन की सही मात्रा नहीं पहुंचती है और उसके सारे लक्षण आपको दिखने लगते हैं, खर्राटे भी आते हैं, बॉडी लो फील करती है और सर में भारीपन बना रहता है, तो बहुत से लोग मशीन लेते हैं, सीपैप मशीन लगाते हैं और बहुत से लोग सर्जिकल जाते हैं। उसमें ये कहा जाता है कि आपका जो BMI है, बॉडी मास इंडेक्स है, उसको फॉलो करिए। फिर उसको फॉलो करके अगर आप अपनी ओबेसिटी को कम करते हैं, अपना भोजन का समय शाम को जल्दी रख लें, सुबह नियमित व्यायाम कर लें, भोजन बहुत भारी न लें, अगर ये सारी चीज करते हैं तो ये समस्या काफी हद तक बिना सर्जरी किए दूर की जा सकती है। तो योगा और एक्सरसाइज और डाइट प्लान, ये तीनों चीजें मिलकर इसको काफी हद तक ठीक कर सकते हैं।
1: निश्चित रूप से ये डाइट बहुत महत्वपूर्ण रहती है और योगा वगैरह भी। इसके साथ ही जैसे आजकल प्रदूषण के कारण भी लोगों को नाक कान और गले से जुड़ी दिक्कतें बढ़ रही हैं, ऐसे में जो लोग लगातार फील्ड में रहते हैं या जिनको ऐसी जगहों पे काम करना है जहां पे प्रदूषण थोड़ा ज्यादा रहता है, तो वो लोग क्या सामान्य सावधानियां रखनी चाहिए उनको और वो कैसे अपने नाक कान गले को स्वस्थ रख सकते हैं?
0: देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट तो है मॉर्निंग में उठ के डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। अगर आप डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करते हैं तो आपका जो नासिका से लेकर श्वसन तंत्र है वो एक बार पूरे दिन के लिए सक्रिय हो जाता है। दूसरा, कोविड के दिनों में जब पॉल्यूशन खत्म हो गया था तो बहुत सारे मरीज ऐसे थे जो एलर्जिक ट्रीटमेंट ले रहे थे कि तो उन्होंने कहा कि हमें बहुत आराम मिला। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है प्रिकॉशन। यदि आप ढंग से प्रिकॉशन लेते हैं, कोई ऐसी जगह है जहां पर बहुत ज्यादा धुआं है, धूल है, प्रदूषण है, मास्क का इस्तेमाल जो लोग करना भूल गए हैं वो मास्क का फिर से इस्तेमाल करें। बचें, ड्यूरेशन से बचें, जैसे कि साउंड में ड्यूरेशन है वैसे इसके साथ भी है, पार्टिकल जो नाक के रास्ते होते हैं श्वसन तंत्र तक पहुंचता है और फिर वो धीरे धीरे एलर्जी और फिर एलर्जी आगे कन्वर्ट होकर अस्थमा में कन्वर्ट होती है। तो जितनी भी एलर्जिक की पेशेंट्स हैं, लगभग 40% पेशेंट बाद में धीरे धीरे अस्थमा में कन्वर्ट होते हैं। तो सबसे पहले तो एलर्जी के लक्षण को पहचानें। अगर छोटे बच्चे में शुरू से ही कुछ इस तरह के लक्षण आ रहे हैं, नाक बह रही है बार बार, छींकें बहुत आ रही, जुकाम बना हुआ, कान में भारीपन है, तो उसको सीधा स्क्रीनिंग कराएं उसकी कि कहीं वो एलर्जिक तो नहीं है, और यदि वो एलर्जिक है तो फिर उस हिसाब से धीरे धीरे करके उनके आसपास की सारी चीजें जो उस तरह के एलर्जेंस वाले हैं उससे उनको दूर रखें। और सेम अगेन चीजें कि अच्छा न्यूट्रिशन सप्लीमेंट, अच्छी फिजिकल एक्सरसाइज, इसका बेनिफिट इसमें भी मिलता है आपको कि आगे चल के आपके एलर्जी के लक्षण कम होने लगते हैं।
1: जी, ये जो एलर्जी के लक्षण, बहुत सारे लोगों में ऐसी भी दिक्कतें आती है कि जैसे ही सीजन चेंज होता है वो तुरंत ही बीमार पड़ जाते हैं या उनका गला खराब हो जाता है या लगातार उन्हें बार बार जुकाम होता है, इसकी क्या वजह होती है, उनको क्या ध्यान रखना है, क्यों ये हर सीजन चेंज पे उनको ये प्रॉब्लम होती है और ये सिर्फ सर्दी में नहीं, इवन गर्मी में भी उनको ये दिक्कत होती है, बारिश में भी होती है?
0: देखिए, एलर्जी वाला पार्ट को बोलते हैं एलर्जी मार्च। होता यह है कि जब एलर्जी का सीजन आता है तो सीजन का मतलब ये कि जब पॉलन्स निकलते हैं उस समय मैक्सिमम एलर्जी होती है। वो पॉलन धीरे धीरे वायुमंडल में फैल जाते हैं और आपके नाक से श्वसन तंत्र तक पहुंचते हैं और वहां से एलर्जी के सिम्टम शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह की जो चीजें हैं, और कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं नॉन एलर्जिक राइनाइटिस, उनको 12 महीने कुछ ना कुछ इस तरह की समस्या बनी रहे। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि इसमें जाकर अपना ब्लड टेस्ट कराएं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज इसके लक्षण पहचाने कि अगर छींकें बनी हुई है लगातार, आंख में खुजली रहती है, तलों में खुजली रहती है, तालू में लगता है आपको ऐसा है, या साथ साथ आपको ऐसा लगता है कि बीच बीच में हमारे कान भी बंद हो रहे हैं एलर्जी के कारण, या आप नाक में हमेशा एक इचिंग सेंसेशन बना रहता है, स्नीजिंग बहुत ज्यादा होती है, फेशियल हैवीनेस लगता है, चेहरे पे भारीपन लगता है, और आंख के नीचे अगर हल्की सी ब्लैकनिंग आ रही है तो आप इसका मतलब कहीं ना कहीं एलर्जी के पेशेंट हैं, और इन लक्षणों को फिर पहचानते हुए फिर जाके अपना ट्रीटमेंट शुरू कराएं।
1: डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया कि छोटे बच्चों के लिए ये जो एलर्जी टेस्ट हो रहे हैं, ये जो स्क्रीनिंग हो रही है, एक एडल्ट जिसकी बार बार नाक बंद हो रही है या गले की समस्या से जो पीड़ित है, वो ऐसे कौन से

0: से बचने का प्रिकॉशन है केवल, वो प्रिकॉशन को आपको फॉलो करना है। और इम्यूनिटी अच्छी करनी है तो जैसे अपने डाइट में आंवला है, हल्दी है, शहद है, ये इनको इनकॉर्पोरेट करें तो आपको शायद एलर्जी की बहुत दिनों तक दवाइयां लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
1: निश्चित रूप से हमारे श्रोता आपके दिए गए सुझावों को अपनाएंगे और अपनी लाइफस्टाइल में बदलाव करेंगे, जिससे हमें नाक कान और गले से जुड़ी समस्याओं से निजात मिलेगा। आकाशवाणी समाचार से बात करने के लिए आपका बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: सामयिक चर्चा में अभी आप सुन रहे थे, युवाओं में ईयरफोन के लगातार इस्तेमाल से बढ़ रहे हियरिंग लॉस के खतरे पर बलरामपुर अस्पताल के ENT विभाग के डॉक्टर हिमांशु प्रताप सिंह से खास बातचीत। वार्ताकार थे ओम अवस्थी। आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से अभी आप सुन रहे थे सामयिक चर्चा। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम धरती गाती है और आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं शिवानी कर्माकर के स्वर में रुहिलखंडी लोकगीत।

श्रोताओं, अभी आपने शिवानी कर्माकर के स्वर में ये रोहिलखंडी लोकगीत सुना और इसी आवाज में आइए सुनते हैं एक और रोहिलखंडी लोकगीत।

0: डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसे रोग संचारी रोग होते हैं। इनसे बचने के लिए घर के दरवाजे और खिड़कियों पर जाली लगवाएं, मच्छरदानी का प्रयोग करें, पानी की टंकी को ढक कर रखें, पूरी बांह वाले कपड़े पहने, कूलर की नियमित सफाई करें और अन उपयोगी वस्तुओं में पानी ना जमा होने दें।
1: अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-1805-145 पर कॉल करें।
0: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: श्रोताओं, इस समय आप सुन रहे हैं शिवानी कर्माकर की आवाज में रुहेलखंडी लोकगीत आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से, और इसी आवाज में आइए सुनते हैं एक और लोकगीत।

श्रोताओं, अभी आपने शिवानी कर्माकर के स्वर में ये रुहेलखंडी लोकगीत सुना और अब धरती गाती है कार्यक्रम का अंतिम लोकगीत आपको सुनवाते हैं शिवानी कर्माकर की ही आवाज में।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम धरती गाती है। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। दिन के 10 बजे हैं। पेश है श्रोताओं की फरमाइश पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत तुम्हारी। कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को ममता अग्रवाल का नमस्कार। और आज हमारे साथ कार्यक्रम में है ज्योति।
1: नमस्कार सभी श्रोताओं को, ज्योति गौड़ की ओर से।
0: श्रोताओं, गीत संगीत, इन शब्दों को सुनते ही कितना खूबसूरत सा एहसास होता है। दिलो दिमाग पर एक ताजगी सी आ जाती है, क्यों ज्योति जी?
1: बिल्कुल सही कहा ममता जी आपने। और गीत संगीत तो होता ही मनोरंजक है, और जिसे सुन के हम बहुत सारे गम भी तो भूल जाते हैं। चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है, जितने गम होते हैं वो कहीं ना कहीं दूर भाग जाते हैं। मेरे साथ तो अक्सर ये होता है। आप बताएं आपके साथ क्या होता है?
0: बहुत ही सुंदर बात कही है ज्योति जी आपने। सच बात तो ये है कि गीत संगीत में अगर हम कहें कि वो जादू है, कि वो निर्जीव चीजों को भी सजीव बना दे,
1: बिल्कुल, तो और रोते हुए को हंसा दे।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। तो इसी भावना को लेकर आइए शुरू करते हैं श्रोताओं की फरमाइश पर आधारित ये कार्यक्रम। और कार्यक्रम का पहला गीत आइए सुनते हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म लैला मजनू से।

0: ज्योति जी, ये गीत हमने अपने श्रोताओं को सुनवाया फिल्म लैला मजनू फिल्म से लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में।
1: और हम आशा करते हैं गीत बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि हमें भी बहुत ज्यादा पसंद आया ये गीत। और
0: बिल्कुल,
1: इस गीत को सुनने की फरमाइश पढ़ लें, किस किसने भेजी
0: बिल्कुल,
1: थी हमें।
0: बिल्कुल,
1: तो इस गीत को सुनने के लिए हमारी फरमाइश की थी उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोलवार, कमला रानी, गीतिका खोरवार और भानु प्रकाश ने। ग्राम करेली पुरानी मस्जिद बरेली से ये गीत सुनना चाहा था लाल मोहम्मद अंसारी, लालू मिस्त्री अंसारी, मोहम्मद मुनाजिर अंसारी, अब्रार हुसैन अंसारी, मुन्ना भाई निशा, परवीन तमन्ना, आशिक हुसैन अंसारी ने। और इसी गीत को सुनने की फरमाइश भेजी थी मोहल्ला हलवाइयान शेरकोट बिजनौर से मोहम्मद वक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया साजदारानी और हिना कौसर ने।
0: इसी गीत को सुनना चाहते थे नई दिल्ली से इंद्रजीत कौर छाबड़ा, स्वीटी छाबड़ा, रविंद्र सिंह छाबड़ा। ये एक और फरमाइश हमें मिली है इसी गीत के लिए मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर और रतनमाला। इसी गीत के लिए अनुरोध किया है दाऊद सराय सहारनपुर से अनवर साबरी, शनो साबरी, मुदस्सिर साबरी, मुजक्किर साबरी और जरीफ अंसारी ने।
1: और इसी गीत को सुनना चाहा था नज़मुल हुदा एस एम जावेद और शगुफ्ता ने गुमला झारखंड से। और इसी गीत के लिए हमें फरमाइश की थी श्री गणेश अविका आर्ट श्रीरामपुर से डी अशोक कुम्भार, आजीविका जीविका भानु कुम्भार, अर्चना कुम्भार ने। और इसी गीत को सुनना चाहते थे बड़ा बम चौक खड़वा मध्य प्रदेश से ममता मार्कंडे, संजय मार्कंडे और बेबी किट्टू।
0: ज्योति जी, हमें उम्मीद है कि श्रोताओं ने ये अपनी पसंद का गीत सुना होगा, और हम अपने श्रोताओं को बताना चाहेंगे कि वो भी अगर अपनी पसंद का कोई गीत हमारे कार्यक्रम में सुनना चाहते हैं या अपने आप को कार्यक्रम में शामिल करना चाहते हैं तो हमें इस नंबर पर मैसेज करें और हम जल्दी से अपने श्रोताओं को शामिल करेंगे।
1: ममता जी नंबर
0: बताएं,
1: तो बता दें। हाँ बिल्कुल
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: हमारा नंबर श्रोताओं नोट कीजिए 9457078288, नंबर एक बार फिर 9457078288। नंबर पर फटाफट से मैसेज करें यानी व्हाट्सएप करें और कार्यक्रम में शामिल हो जाएं।
0: ज्योति जी, हम कार्यक्रम में बात कर रहे थे गीत संगीत की, तो गीत संगीत सुर ताल और लय ये सब मिलकर हमारे जीवन के सफर को शायद न केवल सुखमय बनाते हैं बल्कि हमें जीने की कला भी सिखाते हैं।
1: और जिंदगी को जीना अपने आप में एक कला है और जब इसमें सुर संगीत शामिल हो जाए तो जीवन जीने का मजा आ जाता है।
0: बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात आपने कही है। और आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत अलका याग्निक और साथियों की आवाज में फिल्म धड़कन से।

0: ज्योति जी, गीत आपको कैसा लगा?
1: गीत धड़कन फिल्म का गीत है और ममता जी, धड़कन फिल्म के सारे ही गीत सुपर डुपर हिट हैं और
0: बिल्कुल
1: हमें जैसे हमें पसंद आया वैसे ही हमारे श्रोताओं को भी खूब पसंद आया होगा।
0: बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा होगा हमारे श्रोताओं को, ऐसे हमारी उम्मीद है। और कार्यक्रम का अगला गीत हम सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज में, फिल्म का नाम है मेरा गांव मेरा देश। और श्रोताओं, इन दोनों की गीतों की मिली जुली फरमाइश कुछ इस तरह से है।
1: सप्तरंग श्रोता परिवार कुम्भार गली श्री रामपुर से ये गीत सुनना चाहा था। अशोक दले, सविता दले, अनिकेत दले, रोहिणी दले, ऋषिकेश दले और जीविका दले ने पुनावले पुणे से, अजय सोनवने, करिश्मा अविका और विशाखा, दीवाना रेडियो लिसनर्स क्लब जमानिया जिला गाजीपुर से ये गीत सुनना चाहा था। सुरेश जायसवाल, उर्मिला जायसवाल, दीपक और स्वाति ने, गमरिया जमशेदपुर से विपिन जायसवाल, स्वाति देव कुमार और आर्य कुमार ने भी यही गीत सुनना चाहा था। और ये मैसेज हमारे पास आया है जिला खरगोन सनावत मध्य प्रदेश से भेजने वाले थे मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी वर्मा, रमेश चंद्र वर्मा, शेख मूसा भाईजान, भाई राजकुमार बोडाना और सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी नंदिनी, रोहित ऋतु और मुकेश जगपात।
0: और ये कुछ और श्रोता हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं। ये हैं मेन रोड तेलहारा से प्रकाश पोहरकर, नर्मदा पोहरकर और सुजाता पोहरकर। ये हैं भटिंडा रोड मंडी डब्बाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग, लकी नारंग, तानिया नारंग। और ये कुछ और श्रोता हमारे साथ हैं बागपत से जगमोहन सिंह प्रजापत, मुनेश देवी, अर्जुन भारती, बिटिया अंजलि, नितिन जगमोहन, सुधीर नूतन और भुवनेश्वरी देवी। दिल्ली से रामनाथ प्रजापति और सुमन देवी।
1: जिला मुरादाबाद ग्राम दयानपुर से सबीर अली, और इसी गीत को इन्होंने सुनना चाहा है। हम अपने श्रोताओं से एक बार ये कहना चाहेंगे, जो भी श्रोता हमें मैसेज कर रहे हैं वो प्रॉपर तरीके से हमें मैसेज करें, जिससे हमें पढ़ने में
0: जी,
1: आसानी
0: बिल्कुल
1: रहे,
0: सही
1: है ना?
0: बात कही।
1: कुछ श्रोताओं के मैसेज हमारे पास ऐसे आते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि उनका एड्रेस कहाँ लिखा है और नाम कहाँ लिखा है। तो हम अपने श्रोताओं से यही गुजारिश, बहुत सारे श्रोता हमारे बहुत अच्छे मैसेज हमें टाइप करके भेजते हैं, लेकिन जो श्रोता नहीं कर पाते हैं उनके लिए हम ये कहना चाह रहे हैं कि आप प्लीज अच्छे से टाइप करें, जिससे हम आपके नाम और एड्रेस को अच्छे से पढ़ सके।
0: क्योंकि हम भी चाहते हैं कि हमारे जो भी श्रोता कार्यक्रम में मैसेज भेज रहे हैं हम उन्हें शामिल करें।
1: बिल्कुल, क्योंकि प्रोग्राम जो है वो भी हमारे श्रोताओं के मैसेज पे ही आधारित है। तो मैसेज अगर आप सही से नहीं लिख पाएंगे, हम सही से नहीं पढ़ पाएंगे, तो कार्यक्रम में थोड़ी निरस्ता सी आ जाती है ना ममता जी। और ये अगला मैसेज हम पढ़ रहे हैं, ये आया है मेहर नगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवाड़कर, राही श्रीमती सरिता गवाड़कर, प्रणीता सिद्धांत, प्रिंस एकांश गवाड़कर और अर्जुन का।
0: ज्योति जी, देखो हमारे कार्यक्रम में कितने सारे श्रोता जुड़ते जा रहे हैं एक के बाद एक। ये श्रोता है मोहल्ला फतेहगढ़ लुधियाना से विनोदपुरी, वीपी, रंजू, अशोकपुरी, सुशीलपुरी, बीकेपुरी, कैलाशपुरी, नीलम, रामापुरी, पालीपुरी, सुनील पाठक और वीकेपुरी। ये एक और अनुरोध हमें मिला है गांधीबाग अंकोला से रमेश कटनकर, वैशाली कटनकर और धनंजय कटनकर का। सरोज चौक अमरावती से ये फरमाइश है कमरुल्ला ठेकेदार और नसीम बेगम की। ये नगर पंचायत बढ़ापुर बिजनौर से हमें फरमाइश की है मोहम्मद ताहिर और मोहम्मद उजैफ ने। नास पैलेस अजमेर शरीफ से ये फरमाइश मिली है सैयद आलम हाशमी, गुलनाज नाज, सलमानाज, असद अरहम, मोहम्मद आलम हाशमी की। तो आइए सुनते हैं प्रोग्राम की अगली पेशकश।

0: श्रोताओं, फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत तुम्हारी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से।
1: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
2: जी,
1: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
2: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
1: पर ये होगा कैसे?
2: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
1: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
2: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
1: बस
2: बस
1: समझ गया।
2: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
3: आरबीआई कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: श्रोताओं, आपका एक बार फिर स्वागत है कार्यक्रम गीत तुम्हारी में। साथियों, जब स्वर लय और ताल में गुनगुनाते हैं तो वहीं से गीत संगीत की उत्पत्ति होती है। संगीत एक ऐसी कला है जिसमें संयमित सुर न केवल आवाज को तराशते हैं बल्कि जीवन को भी संयमित करते हैं। क्यों ज्योति, आपका क्या ख्याल है?
5: बिल्कुल सही कहा ममता जी आपने। और गीत संगीत मधुरता और ये सारे हमारे नीरस जीवन को कहीं ना कहीं आनंदित तो करते ही हैं, ये तो हम सभी मानते हैं, है ना?
0: गीतों के रंग ना हो तो सूना है ये जीवन, गीतों के रंग ना हो तो सूना है ये जीवन, सरगम के सुर ना छिड़े तो सूना है मन का आंगन।

0: साथ ही ये फरमाइश हमें मिली है पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किसु तासु, अर्णव आनंद और सत्यम आनंद की।
1: इसी गीत के लिए हमें फरमाइश की थी मोहल्ला अफगानान शेरकोट से नदीम बाकी, कलीम बाकी, अलीम बाकी, अजीम बाकी, अदीम बाकी, अब्दुल गनी अलमीर, मोहम्मद जैन और जन्नत ने। इसी गीत को सुनना चाहते थे गांव भोजपुर तंगा सहारनपुर से मोहम्मद इंतजार, मोहम्मद जावेद, राहत अली, जाकिर हुसैन और वकील अहमद। और ये गीत सुनना चाहा था जिला मुरादाबाद ग्राम धूलापुर उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार और नरगिस खातून ने।
0: इसी गीत के लिए हमें फरमाइश की है शाही मार्केट सोहरा जिला बिजनौर से आसिफ चौधरी, बेगम रेहाना, अराफात चौधरी, अदीप चौधरी और कादिर चौधरी ने। एक और फरमाइश हमें मिली है एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता बोत, निखिल कांगड़ा, तन्वी बोट और अंकित कांगड़ा की। ये फरमाइश की है झरझर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीता भाटिया, रजत भाटिया और मयंक भाटिया ने।
1: और इसी गीत को सुनना चाहते थे खेल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, नीटू लक्ष्य मल्होत्रा, लाडो कोयल मल्होत्रा, पापा जी नानक चंद्र मल्होत्रा, शिवाजी कॉलोनी रोहतक से पीयू सिक्का, कोयल सिक्का और डुगू भाविक सिक्का। और ममता जी, अपने श्रोताओं को हम एक बार ये बताना चाहेंगे कि श्रोताओं आज 12:05 पर आप सुनेंगे अपना पसंदीदा कार्यक्रम आपका पत्र मिला। तो जो भी श्रोता कार्यक्रम में शामिल होना चाहते हैं, अपनी प्रतिक्रियाएं कार्यक्रम में रखना चाहते हैं, जो जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ इस कार्यक्रम में, वो हमें मैसेज करें 12:05 से 12:30 तक। और मैसेज करने के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9457078288। नंबर एक बार फिर से सुन लीजिए 9457078288। और हम आपके साथ जुड़े हैं 12:05 से 12:30 तक कार्यक्रम आपका पत्र मिलान में। और कार्यक्रम का अगला गीत कौन सा लिया है हमने अपने श्रोताओं को सुनाने के लिए?
0: ज्योति जी, कार्यक्रम का हम अगला गीत सुनवा रहे हैं हिमेश रेशमिया और श्रेया घोषाल की आवाज में। फिल्म का नाम है आपका सुरूर। गीत के बोल है समीर के और धुन तैयार की है हिमेश रेशमिया ने।
1: फरमाइश पढ़ लें?
0: जी बिल्कुल।
1: और इस गीत को सुनना चाहते हैं गांव मीरमपुर बेगा तहसील नजीबाबाद जिला बिजनौर से मोहम्मद कैफ, सैफ, ओवेस, उबेद, मोंटी भाई, डॉक्टर विजय, कासिम पेंटर। और इसी गीत को सुनना चाहते हैं सब्जी मंडी बुडलाना से सब्बीर हुसैन, शहजाद हुसैन, मंजू बाबा, आयजा अनम और मुदस्सिर हुसैन। इसी गीत को सुनने के लिए हमें फरमाइश की है जिला मुरादाबाद ग्राम धूलापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल पंकज, काजल सीमा, मानवी तनवी, लक्ष्य सोनी, रोहिन मोहिनी, ऋतिक और बलबीर सिंह ने।
0: इसी गीत के लिए हमें अनुरोध किया है बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी और सुरीत रमेश साहू, डुमराव बिहार से डॉक्टर डब्लू अंसारी, डॉक्टर सोनम अदीबा और दानिश अंसारी ने। गोला बाजार बक्सर से ये फरमाइश की है श्रद्धानंद आर्य, अभियानंद आर्य और परमानंद आर्य ने। सारिमपुर बक्सर से राज एस डी अंसारी और आसमा खातून अंसारी ने। ये कुछ और श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं कार्यक्रम में। सनावत से शेख मूसा मोहसिन, अशोक वर्मा, राजकुमार बोडाना और मोहम्मद कलीम जख्मी, भुवन प्रकाश गौतम, डॉक्टर दबीरुल हसन, बेगम शबनम अनवार, नजमा बेगम नाज और सरिता गौतम। ये फरमाइश है रेलवे रोड गंज डुंडवारा से। गांव कैरो जिला तरन तारण पंजाब से गुरदर्शन लाल चलोत्रा, सुनीता शमी, रजनी, आकाशदीप, अनहद और पोत्रा गुरशबद। ये फरमाइश है फुलगांव निजामाबाद तेलंगाना से मोहम्मद वहीद रूहानी, डॉक्टर मोहम्मद जमीर, मोहम्मद फासी, मोहम्मद जुनैद, मोहम्मद जुबैर मुकराम, मोहम्मद नोमान, मोहम्मद फुरकान, मोहम्मद जाकिर और मोहम्मद फाजिल की।
1: तो श्रोताओं लीजिए पेश है आप सभी की पसंद पर कार्यक्रम का अगला गीत
0: हिमेश रेशमिया और श्रेया घोषाल की आवाज में।

0: प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल हैं शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
2: श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म कच्चे धागे से। आवाजें हैं कुमार शानू और लता मंगेशकर की। और ममता जी, सुनने की फरमाइश पढ़े, किसने ये सुनना चाहा है?
3: बिल्कुल, ये गीत तो सुनना चाहते हैं मोहल्ला बारादरी महमूद खान रामपुर से, भाई रफत साहब, सईद भाई मंसूरी, राशिद भाई मंसूरी, असद भाई, फिरोजा मुस्कान, अफसर अली और नगमा नाज मंसूरी। ये एक और फरमाइश हमें मिली है गांव जेवरा हिसार से, वीरेंद्र भ्याण, शमशेर सुरेंद्र, मनोज, और साथ ही इस गीत को सुनना चाहते हैं मेरठ से दिग्दर्शन और कविता गौड़। एक और फरमाइश आई है नाला सोपारा मुंबई से, मोहम्मद आसिफ शेख, बेगम रूमा, महिदा शेख, नोमान शेख, सुलेमान शेख, शेख मोहम्मद कलीम।
2: और ये अगला मैसेज हमें मिला है जिला अमरोहा नई बस्ती पतई खासा से, भेजने वाले हैं बहारुल हसन सिद्दीकी, मोहम्मद आलम सिद्दीकी, मोहम्मद शिफान सिद्दीकी, मोहम्मद यूसुफ सिद्दीकी, अनाबिया सिद्दीकी, अलीशा सिद्दीकी, शकील सिद्दीकी, फहीम सिद्दीकी, मोहम्मद यासीन अंसारी और सुदेश चौहान का। इसी गीत को सुनना चाहते हैं
3: सैयद आलम हाशमी नास पैलेस अजमेर शरीफ से।
2: और ये अगला मैसेज हमें मिला है जो आया है उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल से, भेजने वाले हैं उमा सिंह, श्रीमती माहेश्वरी देवी, सोनू मोनू, राहुल रश्मि, प्रियंका सृष्टि, बन्नी, आरुष, सौर्य और दिनेश का। इसी गीत को सुनना चाहते हैं जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज रिफाकत, मोहम्मद रिहान, समरीन परवीन और माहिरा नूर। और ये अगला मैसेज हमें मिला है जो आया है वाइट फील्ड बेंगलुरु से, भेजने वाले हैं भारत भूषण, अंजू श्रीवास्तव, देवेंद्र भूषण, संस्कृति पौरुष और रामगढ़ कैंट से महेंद्र मोदी और कुलदीप कंवल।
3: तो ज्योति जी, इन सभी श्रोताओं की फरमाइश पर कार्यक्रम का अगला गीत सुनवा दें हम अपने श्रोताओं को।
2: बिल्कुल,

0: अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाज में। फिल्म का नाम है दिल का रिश्ता।
1: और सुनने की फरमाइश है आप सभी की। आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और महराज जहां इसी गीत को सुनना चाहते हैं। मंसूर रेडियो लिसनर्स क्लब बाजार रोड मुंशीगापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरून निशा सबिस्सा, मोहम्मद नसीब, पलक लुबना और यस मंसूरी इसी गीत को सुनना चाहते हैं। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गुंजेजा, विशाल प्रिया दिशानी और नमित आहूजा।
0: इस गीत की फरमाइश की है जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी डिकेस्ट्रो, पर्ल और विलिस डिकेस्ट्रो ने।
1: और ये कार्यक्रम का अंतिम मैसेज हम पढ़ रहे हैं, ममता जी पढ़िए।
0: भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा, ईशान छिपा और पूजा परिहार, इन सभी की फरमाइश पर प्रोग्राम की आखिरी पेशकश।

0: श्रोताओं, इस गीत के साथ ही फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत तुम्हारे संपन्न करने की ममता अग्रवाल और
1: ममता जी, हम तो कार्यक्रम में अभी साथ ही बन रहे हैं।
0: बिल्कुल।
1: तो कार्यक्रम में ज्योति गौड़ साथ है और ममता अग्रवाल आपसे अनुमति ले रही है।
0: नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे पत्रों और व्हाट्सएप मैसेजेस पर आधारित फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम गीत तुम्हारे। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर। सुबह के 11 बजे हैं, प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रपट संगीत। स्वागत आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में। और कार्यक्रम का पहला गीत आपके लिए लेकर आए हैं उदित नारायण और अलका याग्निक की युगल आवाजों में। फिल्म का नाम है गॉड टू सी ग्रेट हो।

0: साजिद वाजिद के संगीत निर्देशन में देवेन शुक्ला का लिखा गीत अभी आपने सुना उदित नारायण और अलका याग्निक की युगल आवाजों में। फिल्म का नाम था गॉड टू सीक्रेट हो।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे?
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424।
1: ओ 8700001424। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001424 पर।
0: कार्यक्रम का अगला गीत श्रोताओं हमने लिया है फिल्म सपने साजन के से, आवाजें हैं कुमार शानू और अलका याग्निक की, संगीत नदीम श्रवण का है और गीत लिखा है अनवर सागर ने।

विशाल ददलानी, नीति मोहन और बप्पी लहरी की आवाजों में अभी आपने सुना फिल्म गुंडे से ये गीत। संगीत सुहेल सेन का था और गीत लिखा था इरशाद कामिल ने। कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं सोनू निगम की आवाज में। फिल्म का नाम है हद कर दी आपने। संगीत आनंद राज आनंद का है और गीत लिखा है आनंद बख्शी ने।

हद कर दी आपने, इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना। सोनू निगम की आवाज में संगीत आनंद राज आनंद का था और गीत लिखा था आनंद बख्शी ने। कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं फिल्म गर्लफ्रेंड से, आवाजें हैं कुमार शानू, माफ कीजिएगा, स्वर है कुमार शानू का। गीत लिखा है प्रवीण भारद्वाज ने और संगीत बद किया है डब्बू मलिक ने।

इश्क है तुमसे इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना अलका याग्निक और उदित नारायण की युगल आवाजों में। संगीत हिमेश रेशमिया का था और गीत लिखा था समीर ने। कार्यक्रम का अगला गीत लीजिए, सुनिए उदित नारायण और अलका याग्निक की युगल आवाजों में फिल्म इश्क विश्क से। संगीत अनु मलिक का है और गीत लिखा है समीर ने।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत लीजिए, सुनिए सोनू निगम और अलका याग्निक की युगल आवाजों में। फिल्म का नाम है चलो इश्क लड़ाएं, संगीत हिमेश रेशमिया ने दिया है और गीत लिखा है समीर ने।

चलो इश्क लड़ाई, इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे सोनू निगम और अलका याग्निक की युगल आवाजों में। लीजिए अब पेश है कार्यक्रम का अंतिम गीत, अलका याग्निक और अभिजीत की आवाजों में फिल्म जुदाई से। इस गीत को संगीत दिया है नदीम श्रवण ने और गीत लिखा है समीर ने।

अलका याग्निक और अभिजीत के गाए फिल्म जुदाई के इसी गीत के साथ चित्रपट संगीत अब यहीं पर संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर। दोपहर के 12 बजे हैं, श्रोताओं लीजिए सुनिए हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष कार्यक्रमों के विषय में जानकारी। आपका पत्र मिला कार्यक्रम अब से कुछ ही देर में यानी 12:05 पर आप सुनेंगे, और जो भी श्रोता इस कार्यक्रम में हिस्सा लेना चाहते हैं, कार्यक्रम में अपनी प्रतिक्रियाएं देना चाहते हैं, कार्यक्रम में अपनी भागीदारी दर्ज कराना चाहते हैं, वो हमें इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9457078288, नंबर एक बार फिर सुन लें, 9457078288। और इस नंबर पर आप हमें मैसेज करें, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, और शामिल हो कार्यक्रम में। कार्यक्रम का नाम आपका पत्र मिला। अखिल भारतीय रविवासीय संगीत सभा रात्रि 10 बजे, नेशनल प्रोग्राम ऑफ फीचर रात्रि 9:30 पर, ये दोनों ही कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

गीत संध्या कार्यक्रम रात्रि 8 बजे और एक ही फिल्म से कार्यक्रम आप सुनेंगे 8:30 पर। अदबी दुनिया कार्यक्रम में शाम 7:50 पर कलामे शायर होंगे संतोष कुमार।

सुगम संगीत कार्यक्रम में शाम 7:32 पर सुनेगा फरीदा खानम की गाई गजलें। छाया गीत आप सुनेंगे शाम 6:55 पर। विविधा कार्यक्रम में शाम 6:45 पर सुनिएगा कहानी आज का श्रवण कुमार। कहानीकार होंगे सत्येंद्र कुमार शर्मा।

कृषि जगत कार्यक्रम में शाम 6:05 पर सुनेगा अनूप कुमार सिंह से जितेंद्र कुमार की बातचीत। विषय होगा मत्स्य पालन तकनीक से लाभ। साथ ही चर्चा का विषय होगा बरसात में साफ सफाई का महत्व और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। युवाणी कार्यक्रम में शाम 5:15 पर आज क्रम होगा कुछ खास है आज झलकी, साथ ही आप आनंद लेंगे फिल्म संगीत का। मेरा सपना उन्नत भारत कार्यक्रम में शाम 5:00 सुनेगा जानकारी। विषय होगा रिजर्व बैंक खुदरा प्रत्यक्ष योजना और पीएम गति शक्ति योजना पर।

एक और अनेक कार्यक्रम में दोपहर 2:30 पर आज आप सुनेंगे अभिनेता, निर्माता व निर्देशक राजेंद्र कुमार और अन्य के गीत। लोकधारा कार्यक्रम में दोपहर 1:45 पर सुनेगा सुरेंद्र राजेश्वरी के गाए कुमावनी लोकगीत।

दोपहर 1:15 पर बाल वाटिका कार्यक्रम में आज जानकारी का विषय होगा अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस। साथ ही सुनिएगा नन्हे हस्ताक्षर के अंतर्गत वार्निया से नंदिनी महेश्वरी की बातचीत। इसी कार्यक्रम के अंतर्गत चर्चा का विषय होगा हौसलों के उड़ान भरते नन्हे कदम, हमारी संस्कृति हमारे पर्व। और दोपहर 12:30 पर सुनेगा कार्यक्रम फिल्मी संडे।

ये थे हमारे आज के शेष कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 12:05 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपका पत्र मिला।

0: कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को ज्योति गौड़
1: और ममता अग्रवाल का
0: प्यार भरा नमस्कार और स्वागत है आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में। श्रोताओं, आपका पत्र मिला कार्यक्रम शुरू हो चुका है और जो भी नए श्रोता हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि पुराने श्रोताओं को हमारा नंबर पता है ना ममता जी,
1: लेकिन तो, फिर भी ज्योति जी हम चाहेंगे कि एक बार नंबर आप बता दीजिए।
0: बिल्कुल, तो हम अपना व्हाट्सएप नंबर आपको बता देते हैं। जो भी नए श्रोता हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ना चाहते हैं वो हमारा नंबर नोट कर लें। हमारा नंबर है 9457078288। नंबर एक बार फिर से सुन लें, 9457078288। इस नंबर पर आप हम मैसेज कर सकते हैं। हम आपके साथ बने हुए हैं अब 12:05 से दोपहर 12:30 तक और कार्यक्रम में पत्र आने शुरू हो चुके हैं। ममता जी पढ़ने शुरू करें।
1: बिल्कुल, मैं देख रही हूँ स्क्रीन पर एक के बाद एक मैसेजेस हमें मिल रहे हैं।
0: हाँ जी, तो ये कार्यक्रम में हम पहला पत्र शामिल कर रहे हैं। ये आया है शाही मार्केट जिला बिजनौर से भेजने वाले हैं आसिफ चौधरी, बेगम रिहाना, अराफात चौधरी, आदिब चौधरी और कादिर चौधरी। और ये लिखते हैं, आपका पत्र पढ़ने वालों को यानी ममता अग्रवाल जी और ज्योति जी, आप दोनों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। इस सप्ताह का प्रोग्राम बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत रहे हैं। राजवीर जी, रेणु कोटनाला जी, मनोज वर्मा जी, रविकांत जी, जसवंत जी, चरणजीत सिंह जी और आज ममता जी ने सूरज के साथ साथ बहुत खूबसूरत प्रोग्राम पेश किया। ज्योति जी ने चित्रपट संगीत के गाने बहुत अच्छे सुनवाए। अगर ज्यादा बड़ा मैसेज भेजूंगा तो शामिल नहीं होगा, ये मुझे लगता है थोड़ा सा ही लिख रहा हूँ।
1: क्या बात है, ये जो हमें मैसेज मिला है कादिर चौधरी जी और शाही मार्केट सुहारा जिला बिजनौर से उनके साथियों का, सबसे पहले तो ज्योति जी हम अपने साथियों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे।
0: हाँ जी,
1: कि वो हमारे कार्यक्रम में शामिल हुए, उन्होंने अपने इतने अनमोल समय में से हमारे केंद्र के कार्यक्रमों की प्रतिक्रियाओं के लिए जो हमें पत्र भेजा है। लिखते हैं कि इस सप्ताह का प्रोग्राम उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए, बहुत खुशी की बात है क्योंकि हमारे जितने भी हम सब प्रेजेंटर्स कार्यक्रम पेश करते हैं वो पूरी लगन और मेहनत से ये सोच कर करते हैं कि प्रोग्राम हमारे सभी श्रोताओं को पसंद आए,
0: और पसंद आते हैं और प्रतिक्रियाएं मिलती हैं तो और ज्यादा अच्छा
1: बहुत
0: लगता
1: अच्छा
0: है।
1: लगता है हौसला अफजाई हमारे श्रोता करते रहते हैं तो हमारी कोशिश और बेहतर होती है
0: और ये ही कहीं ना कहीं हमारे श्रोताओं को हमारे लिए प्यार है ना।
1: बिल्कुल बिल्कुल, तो इसी तरह हमारे साथ हमारे श्रोता जुड़े रहें, कार्यक्रम में जुड़े रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: और ये कार्यक्रम में अगला मैसेज हमें मिला है मोहल्ला हलवाईयान शेरकोट बिजनौर से भेजने वाले हैं मोहम्मद वक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी खान, बिट्टू भैया और हिना कौसर। ये लिखते हैं, आपको हमारा प्यार भरा सलाम, कैसे हैं आप? हम सब आपके रेगुलर लिसनर हैं, सभी प्रोग्राम सुन रहे हैं, पसंद आते हैं। हमें 11 जुलाई का गीत तुम्हारे जो मनोज वर्मा जी ने पेश किया बेहद पसंद आया। जिंदगी लाइव जो रेणु कोटनाला जी ने पेश किया अच्छा लगा। गीत आपके नाम जो अक्षय त्यागी और सलोनी ने पेश किए पसंद आया। इसके अलावा 10 जुलाई का गीत तुम्हारे जो जसवंत जी और अलका जी ने पेश किया बेहद अच्छा लगा। और हेलो नजीबाबाद जो विवेक जी ने पेश किया वो भी अच्छा लगा। 9 जुलाई का गीत तुम्हारे फरीना जी, नसरीन जैदी जी ने पेश किया अच्छा लगा। आपकी फरमाइश ज्योति गौड़ जी का पसंद आया। 8 जुलाई का गीत तुम्हारे जो रेणु राजपूत जी और सुनीता रावत जी ने पेश किया अच्छा लगा, लाजवाब रहा। 7 जुलाई का गीत तुम्हारे जो चरणजीत सिंह जी और लोकेंद्र जी ने पेश किया बेहद पसंद आया। आपकी फरमाइश ममता अग्रवाल जी का अच्छा लगा। 6 जुलाई का गीत तुम्हारे जो फैजुर रहमान जी और पारुल गोयल जी ने पेश किया अच्छा लगा। आपकी फरमाइश जो राजवीर जी ने पेश किया अच्छा लगा। सभी प्रोग्राम अच्छे चल रहे हैं, बस एक गुजारिश है शोभित शर्मा जी आपका पत्र मिला में आ जाए तो मजा आ जाए, या फिर अंकित सैनी जी आपका पत्र मिला में आए तो बहुत अच्छा लगेगा, प्लीज मैसेज शामिल करें। देखिए पूरे वीक का इन्होंने
1: देखिए जो इन्होंने लास्ट में लिखा है कि मैसेज शामिल करें तो इन्हें अच्छा लगेगा, तो शायद वो तो इनकी इच्छा पूरी हो गई है। हाँ जी, क्योंकि कार्यक्रम में आपने इनका मैसेज शामिल कर लिया है। ज्योति जी, जो इन्होंने इस तरीके से एक एक प्रोग्राम की डेट वाइज जो तारीफ लिखी है,
0: बिल्कुल,
1: उससे हमें पता लगता है कि वाकई हमारे श्रोता कितनी शिद्दत से।
0: अच्छा, एक चीज ये है ना कि आप पूरे वीक का बता रहे हैं, यानी कि पूरे सप्ताह
1: मतलब
0: सुन रहे हैं और आपको याद भी है कि किसने किस दिन कौन सा प्रोग्राम पेश किया था।
1: इसीलिए मैंने कहा कि कितनी शिद्दत से हमारे श्रोता कार्यक्रम सुनते हैं हमारे केंद्र के, ये हमारे लिए बहुत ही खुशी का एक एहसास होता है। एक इनकी गुजारिश जो है कि शोभी शर्मा जी या अंकित सैनी जी कार्यक्रम में आए, तो देखिए पूरी कोशिश होती है, लेकिन हम कहना चाहेंगे कि अधिकारी वर्ग को शायद कुछ जरूरी और भी बहुत सारे केंद्र से रिलेटेड काम होते हैं, जिम्मेदारियां होती हैं, कुछ व्यक्तिगत जिम्मेदारियां भी होती हैं, जिनके चलते वो फिलहाल तो कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन आपकी ये जो इच्छा है, हमारे और भी श्रोताओं की जो इच्छा होती है, वो बिल्कुल कार्यक्रम के माध्यम से उन तक पहुंच रही होगी, नहीं तो हम भी उन तक ये आप लोगों का अनुरोध जरूर पहुंचाएंगे। और भविष्य में जब भी संभव हो पाएगा, शोभित शर्मा सर या अंकित सर कार्यक्रम में जरूर आएंगे, और आपकी हमें उम्मीद है कि ये इच्छा भी पूरी हो पाएगी,
0: जल्दी ही पूरी हो पाएगी, ऐसी हम आशा रखते हैं।
1: बिल्कुल।
0: और ये कार्यक्रम में अगला मैसेज हम पढ़ रहे हैं, ये आया है, आपका पत्र मिला पेश करने वालों ज्योति मैडम जी और उनके साथी को हमारा दिल की गहराइयों से प्यार भरा नमस्कार। जिला संभल ग्राम सिरसा से सचिन प्रजापति, कमल प्रजापति, किशन प्रजापति, कुश प्रजापति ने ये पत्र लिखा है और ये लिखते हैं, हम अगले कुछ दिनों में आकाशवाणी नजीबाबाद पर घूमने के लिए आ रहे हैं, आप बताइए कि हम आए या नहीं आए। बात रही कार्यक्रमों की तो 10 जुलाई को 11 बजे चित्रपट संगीत अच्छा लगा, प्रस्तुति अलका सिंह, 12:30 बजे मिड डे मेलेडी भी अच्छा लगा, दोपहर 2:30 बजे फिल्मी कव्वालियां अच्छा लगा, मैम को धन्यवाद कहिएगा। हेलो नजीबाबाद, शुक्रवार को यह कार्यक्रम अच्छा लगा, विवेक प्रताप जी को भी धन्यवाद कहिएगा। 11 जुलाई को शाम की सभा में 8 बजे गीत संध्या अच्छा लगा, नमित जी को धन्यवाद कहिएगा। समझने आए कि हमें कोई कार्यक्रम खराब लगता है, हमें सभी राज और सभी कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं। सुझाव है कि यदि हेलो नजीबाबाद कार्यक्रम में एक ही नंबर चलेगा तो श्रोताओं के लिए अच्छा रहेगा।
1: देखिए, सबसे पहले तो ये जो हमें पत्र मिला है, ये इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया कि कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। लिखते हैं कि जिन जिन कार्यक्रमों की इन्होंने तारीफ लिखी है वो तो बहुत अच्छी बात है, और हमारे सभी प्रेजेंटर्स को कार्यक्रम के माध्यम से ये जो इनका धन्यवाद है ये इन तक पहुंच गया होगा। ये लिख रहे हैं कि इन्हें कोई भी कार्यक्रम खराब नहीं लगता, तो ज्योति जी क्या लगता है, ये इनका अपनापन और लगाव है हम
0: बिल्कुल सब के प्रति, अपनापन और लगाव
1: केंद्र के प्रति, जो कि इन्हें हर चीज अच्छी लगती है। देखो ज्योति जी कहते हैं ना कि अगर हमारी नजरें अच्छी हैं, हमारी सोच अच्छी है,
0: तो हमें सारी
1: पसंद अच्छी है, तो हमें हर चीज अच्छी लगती है ना। तो वही बात इनके मैसेज से बिल्कुल खरी उतरती है कि अगर हम अच्छे हैं, हमारी सोच अच्छी है, तो निश्चित ही हमें हर चीज अच्छी लगेगी।
0: बिल्कुल।
1: इसके लिए हम अपने श्रोता का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। और जो इनकी ये बात है कि हेलो नजीबाबाद में एक ही नंबर रखें, तो देखिए इसकी वजह ये होती है कि कभी कभी किसी भी तकनीकी वजह से एक नंबर या काम नहीं कर रहा है, या कोई भी उसमें प्रॉब्लम है, तो हमारी श्रोता
0: कभी कभी नेटवर्क इशू भी हो जाते हैं, एक नंबर लगता ही नहीं है।
1: जी हाँ, या कभी कभी ऐसा भी होता है ज्योति जी कि एक नंबर लगातार हमारे श्रोता ट्राई कर रहे हैं, बिजी जा रहा है, तो दूसरे नंबर पर भी श्रोता जो ट्राई करते हैं तो हम उनकी कॉल को रिसीव कर लेते हैं। तो इस तरीके से श्रोताओं के कहना चाहिए हम कि लाभ के लिए ही हमने ये दो नंबर
0: बिल्कुल चला। और रही बात एक नंबर की, एक नंबर जो हमारे दो नंबर चलते हैं, तो बारी बारी से दोनों नंबर पर कॉल,
1: बारी बारी से हम बिल्कुल दोनों नंबर्स की कॉल को रिसीव करते हैं और श्रोताओं को कार्यक्रम में शामिल करते हैं।
0: बिल्कुल ऐसा नहीं है कि हमारा अगर दो नंबर है तो हम एक ही नंबर की कॉल रिसीव करते हैं, हम बारी बारी से दोनों नंबर की कॉल रिसीव करते हैं।
1: और इसलिए आप ये परेशान ना हो कि किसी एक ही नंबर की कॉल शामिल होती है, दोनों नंबर से कॉल शामिल करते हैं, अपने श्रोताओं को कार्यक्रम में शामिल करते हैं।
0: और कार्यक्रम में अगला मैसेज हमारे पास आया है, गांव जेवरा हिसार से भेजने वाले हैं विजेंद्र भ्याण, सुरेंद्र, शमशेर और मनोज। ये लिखते हैं, आपके प्रोग्राम अभी एक महीने से सुनना शुरू किया है, वैसे रेडियो पर पहले सुनते थे लेकिन अब न्यूज ऑन AIR ऐप पर डेली सुनते हैं, और आप हमें अपनी फरमाइश के व्हाट्सएप ऐप और ईमेल के प्रोग्राम कब और किस दिन आते हैं हमें बताएं, और हमारा व्हाट्सएप और ईमेल डेली शामिल करें, और हमें ये भी बताएं कि हेलो नजीबाबाद कब आता है, ये लाइव आता है या इसकी रिकॉर्डिंग होती है। देखिए नए श्रोता तो ये हमारे
1: जी,
0: हैं।
1: बहुत अच्छी बात है, हमें बहुत खुशी हो रही है क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे नए श्रोता हमारे केंद्र के कार्यक्रम सुने और हमसे जुड़े अपने प्रतिक्रियाओं के माध्यम से कार्यक्रम में। तो सबसे पहले तो हम इनका स्वागत करते हैं कार्यक्रम में। दूसरी बात, इन्होंने कहा है कि अभी इन्होंने कार्यक्रम एक महीने पहले सुनना शुरू किया है, तो हम जानना चाहेंगे इनके अगले मैसेज में कि इन्हें हमारे केंद्र के कार्यक्रम कैसे लग रहे हैं, कुछ सुझाव अपना देना चाहेंगे, कोई प्रतिक्रिया अपना देना चाहेंगे, तो उनका बिल्कुल हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत होगा। आगे लिखते हैं कि ईमेल और फरमाइश की व्हाट्सएप से जो कार्यक्रम में शामिल होना चाहते हैं। देखिए ज्योति जी, हमारे जो फरमाइशी फिल्मी गीतों के कार्यक्रम होते हैं, जैसे कि गीत तुम्हारे हमारी सुबह की सभा में 10 बजे वो प्रतिदिन आता है ना, शाम को युवाणी कार्यक्रम में हेलो फ्रेंड्स आता है और भी बहुत सारे कार्यक्रम में,
0: रात को आपकी फरमाइश
1: मंगलवार के दिन आता है,
0: बृहस्पतिवार
1: के दिन भी आता है, और हेलो नजीबाबाद कार्यक्रम का इन्होंने जिक्र किया है, तो वो हमारे केंद्र से प्रति शुक्रवार रात 9:30 बजे से 10:30 बजे तक कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें कि श्रोता जो हमारे नंबर होते हैं, जिस नंबर पे अभी आपने ये व्हाट्सएप किया है, इसी नंबर पे आप कॉल करके हमारे कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। बिल्कुल हमें आगे भी कार्यक्रमों में आपका इंतजार रहेगा, आपके मैसेज का इंतजार रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।
0: और ये अगला मैसेज हमें मिला है, ये लिखते हैं, नमस्कार जी, आदाब, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। यहाँ से प्रसारित सभी कार्यक्रम एक से बढ़कर एक हैं, दिल छू रहे हैं, हमें यहाँ से पूरा ज्ञान मिलता है, आकाशवाणी हमारा स्कूल है। और ये इन्होंने लिखा है, ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, महराज जहां ने, आजाद नगर, लक्सर, हरिद्वार, उत्तराखंड से।
1: क्या बात है ताज मोहम्मद जी, आपने लिखा है कि ये हमारे लिए एक स्कूल है। क्या बात है, बिल्कुल सही कहा, क्योंकि स्कूल केवल वो ही नहीं होता जहां हम किताबें लेकर पढ़ने जाते हैं, है ना,
0: जहां से भी हमें कुछ भी ज्ञान मिल रहा है वो हमारा स्कूल ही होता है।
1: बिल्कुल, और इन्होंने इस चीज को महसूस किया, ये हमारे लिए बहुत ही कहना चाहिए गौरवान्वित होने वाली बात है कि हमारे केंद्र से जो भी कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं वास्तव में वो हर वर्ग के लिए, हर क्षेत्र के कार्यक्रम होते हैं। जैसे कि प्रतिदिन सबसे ज्यादा ज्ञानवर्धक अगर मैं कहूं तो कार्यक्रम होता है सूरज के साथ साथ, इसमें हर विषय पर बात की जाती है। अगर हम कहें खेती किसानी से रिलेटेड कार्यक्रम, तो वो हमारे केंद्र से प्रतिदिन शाम 6:05 पर होता है। कृषि जगत कार्यक्रम, जिसमें कि खेती किसानी से संबंधित लगभग बहुत सारे विषयों पर जानकारी दी जाती है,
0: बहुत सारे नहीं, लगभग सभी विषयों पर जानकारी दी जाती है।
1: और आज रविवार है, अभी कुछ देर बाद 1:15 पर बाल श्रोताओं का कार्यक्रम होगा, जिसमें कि बच्चों से संबंधित जानकारियां हमारे केंद्र से दी जाती हैं। और केवल जानकारियां ही नहीं ज्योति जी, बाल श्रोताओं से बातचीत भी जो हमारे बच्चे हैं उनको सुनवाई जाती है,
0: और वो बातचीत सुन के जो मजा आता है ना, वो हमारे श्रोता भी पसंद करते होंगे।
1: सच में जो हमारे बाल श्रोता हैं वो दूसरे बच्चों की जो बातें हैं, उनके जो टैलेंट हैं, वो सुनकर कहीं ना कहीं उससे प्रोत्साहित होते हैं, और वो बातचीत उनके लिए शायद मेरी राय में प्रेरणा स्रोत का काम करती है, है ना।
0: और आकाशवाणी का तो ममता जी उद्देश्य ही यही है कि प्रोग्राम हमारे ज्ञानवर्धक होने के साथ साथ मनोरंजक भी हुए, क्योंकि अगर सीधे ज्ञान अगर हम आपको देने लगे तो
1: देखो कहीं ना कहीं प्रोग्राम में नीरसता हो जाती है। तो इसी मनोरंजन के साथ साथ हुए केंद्र से बारी बारी से फिल्म संगीत का कार्यक्रम दिया जाता है और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम दिया जाता है, लोक संगीत का कार्यक्रम होता है। देखो ज्योति जी, अगर हम देखें कि लोक संगीत का कार्यक्रम कहीं ना कहीं थोड़ा सा धुंधला होता जा रहा है, लोक संगीत की जानकारी आज के परिवेश में
0: कम हो रही है,
1: तो उसी को बरकरार रखने के लिए लोक संगीत का कार्यक्रम हमारे केंद्र से प्रतिदिन पेश किया जाता है। धरती गाती है कार्यक्रम में आज ही की अगर हम बात करें तो रुहेलखंडी लोकगीत हमने सुनवाए हैं,
0: दोपहर में लोकधारा कार्यक्रम हम प्रसारित करते हैं,
1: अलग अलग क्षेत्रीय संगीत के हम लोकगीत सुनवाते हैं। तो इस तरह से हमें बहुत अच्छा लगा कि आपने,
0: और आकाशवाणी बिल्कुल धरोहर है हमारी, जो आज भी हमारी संस्कृति को संजोए रख रही है,
1: संजोए हुए है बिल्कुल।
0: और ये कार्यक्रम में अगला मैसेज हम पढ़ रहे हैं, ये आया है, मैं आकाशवाणी नजीबाबाद के आपकी पसंद तथा गीत तुम्हारे जैसे फरमाइशी कार्यक्रम में भाग लेता हूं। दोनों कार्यक्रम अत्यंत मनोरंजक, सुमधुर और श्रोताओं की पसंद के अनुरूप प्रस्तुत किए जाते हैं। इन कार्यक्रमों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि प्रत्येक श्रोता का पूरा सम्मान किया जाता है और उनकी फरमाइशों और संदेशों को आत्मीयता के साथ स्थान दिया जाता है। मुझे हेलो जागरूक श्रोता कार्यक्रम में भी एक दो बार लाइव भाग लेने का अवसर मिला है। यह कार्यक्रम बहुत ही उपयोगी और प्रेरणादायक है क्योंकि इसमें श्रोताओं को अपने विचार, सुझाव और अनुभव सीधे साझा करने का अवसर मिलता है। ऐसे कार्यक्रम श्रोताओं और आकाशवाणी के बीच आत्मीय संबंधों को और मजबूत बनाते हैं। आकाशवाणी नजीबाबाद की पूरी टीम को इन उत्कृष्ट कार्यक्रमों के सफल संचालन के लिए हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। और ये मैसेज उन्होंने लिखा है छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंगरौल ने।
1: चंदूलाल सिंगरौल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें मैसेज किया और इतने अच्छे से आपने जो कार्यक्रमों के बारे में ये प्रतिक्रिया दी है, हमें बहुत अच्छा लग रहा है जानकर। आपने बात की है श्रोताओं के सम्मान की, तो देखिए बिल्कुल हमारे केंद्र से जो भी कार्यक्रम होते हैं वो श्रोताओं के लिए होते हैं और श्रोताओं का ही कार्यक्रम होता है, तो निश्चित तौर पर श्रोताओं का सम्मान करना हमारी जिम्मेदारी बनती है। आगे लिखते हैं, हेलो जागरूक श्रोता कार्यक्रम में जो इन्हें भाग लेने का अवसर मिला बहुत अच्छी बात है। हमारे जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा श्रोता जो लाइव कार्यक्रम होते हैं, जैसे हेलो जागरूक है और युवाणी कार्यक्रम में अगर हम युवा वर्ग के लिए बात करें हेलो फ्रेंड्स है,
0: और हेलो जागरूक श्रोता प्रोग्राम तो वैसे भी हमारा ज्ञानवर्धक है क्योंकि बिल्कुल हम एक टॉपिक को उसमें लेते हैं, आपको जानकारी देते हैं और आपके विचार भी उसमें
1: साझा करते हैं। बिल्कुल, श्रोताओं से बातचीत की जाती है और ये आपने बिल्कुल सही कहा है कि ऐसे कार्यक्रम श्रोताओं और आकाशवाणी के बीच आत्मीय संबंधों को मजबूत बनाते हैं निश्चित तौर पर, क्योंकि जिस भी कार्यक्रम के माध्यम से श्रोता हमारे साथ लाइव जुड़ते हैं, अपने विचारों को साझा करते हैं, अपने अनुभव साझा करते हैं, तो निश्चित तौर पर वो कार्यक्रम ज्ञानवर्धक होने के साथ साथ एक उसमें जो कार्यक्रम में श्रोताओं की भागीदारी है और वो भी सजीव भागीदारी, तो ये कहीं ना कहीं कार्यक्रम को बहुत अच्छा बनाती है
0: और इससे पता चलता है कि हमारे श्रोता कितने जागरूक हैं, हमारे प्रोग्राम सुन रहे हैं और पसंद भी कर रहे हैं,
1: पसंद कर रहे हैं और उसके बाद हमें अपनी प्रतिक्रिया भी भेज रहे हैं। केवल ये नहीं कि बस कार्यक्रम सुन लिया और उनकी जिम्मेदारी खत्म हो गई,
0: हाँ जी
1: ऐसा बिल्कुल नहीं है।
0: और अगला मैसेज हम पढ़ रहे हैं, ये आया है चकला बाजार समाना शहर पंजाब से। भेजने वाले हैं पप्पू राजा खुशदिल, संगीता रानी जिंदल, पप्पू इस्माइल खुशदिल, हसमुख लाल जिंदल, सचिन कंचन, सुनीता जिंदल और इनका पूरा परिवार। ये लिखते हैं, प्रोग्राम आपका पत्र मिला, पेश करने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। हम तो आकाशवाणी नजीबाबाद के प्रोग्राम बहुत ही पुराने श्रोता हैं। सुबह 5:53 से लेकर रात के 11:10 तक प्रोग्राम सुनते रहते हैं। आपका और आपके सभी अनुजों का प्रोग्राम पेश करने का अंदाज हमें बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। आपके प्रोग्राम जैसे सूरज के साथ साथ प्रोग्राम युववाणी, गीत तुम्हारे प्रोग्राम, आपकी फरमाइश, जागरूक श्रोता, फिल्मी संडे, नाटक झलकी प्रोग्राम, संदेश.com, इतने अच्छे प्रोग्राम पेश करने के लिए हम आपका और आपके सभी अनाउंसर्स का आकाशवाणी नजीबाबाद में गुलाब के फूलों के साथ पूरा धन्यवाद करते हैं।
1: क्या बात है ज्योति जी, ये जो खुशदिल परिवार का मैसेज है
0: जी, बिल्कुल ऐसे ही आता है,
1: खुश कर दिया दिलों, दिल को तरोताजा कर दिया इनके मैसेज ने। इतने सुंदर गुलाब के फूल इन्होंने इतने सारे अपने मैसेज के साथ पेस्ट करके भेजे हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया कि
0: देखिए एक तो हम मैसेज ऐसे नॉर्मल कर देते हैं, है ना, और एक जब हम व्हाट्सएप के फीचर्स का यूज करके जब हम मैसेज लिख रहे हैं तो वो ज्यादा ही क्या कहेंगे
1: कि ना कि वो
0: चार चांद लग जाते हैं वो इनके मैसेज में हमें देखने को मिल रहा है।
1: और एक तो ज्योति जी एक बात और है, इनका नाम भी तो इतना
0: खुशदिल है,
1: खुशदिल, तो वाकई में ये मैसेज भी ऐसा भेजते हैं जिसे देखकर ही दिल खुश हो जाता है।
0: और मुझे ऐसा लगता है कि खुशदिल परिवार है तो खुश दिल ही रहते होंगे ये लोग, ऐसी हम आशा करते हैं और आप खुश दिल रहें, एक प्रोग्राम में शामिल होते
1: रहें, हमारे सभी श्रोता खुश दिल रहें, परिवार कुशल मंगल रहें सभी के। लिखते हैं कि सभी अनाउंसर्स का जो प्रोग्राम पेश करने का अंदाज है वो इन्हें बहुत अच्छा लगता है, अच्छी बात है, आपको पसंद आता है। जैसा हमने ज्योति जी कार्यक्रम की शुरुआत में भी बात की थी कि सभी कार्यक्रम हम जो भी देते हैं अनाउंसर्स वो पूरी कोशिश करते हैं कि हमारे श्रोताओं को पसंद आए,
0: बिल्कुल
1: तभी हमारा प्रयास सफल है। और अगर हमारे श्रोताओं को पसंद आता है तो लगता है कि वास्तव में हमारी मेहनत सफल हो गई है। आगे लिखते हैं कि ये सूरज के साथ साथ प्रोग्राम युववाणी गीत तुम्हारे इन्हें बहुत अच्छा लगता है। तो वाकई में ये सभी कार्यक्रम हमारे केंद्र से बहुत अच्छे चल रहे हैं और हमारे सभी श्रोताओं द्वारा ऐसा बताया जाता है, तभी हमें महसूस होता है और हमें पता भी लगता है कि हमारे कौन से प्रोग्राम्स ऐसे हैं जो श्रोता ज्यादा पसंद कर रहे हैं, उन्हें ज्यादा अच्छे लग रहे हैं।
0: और ये प्रोग्राम तो ममता जी ऐसे हैं हमारे श्रोताओं के साथ साथ हमें भी बहुत पसंद आते
1: बहुत पसंद
0: सुनने में भी और करने में भी।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: हम जब प्रोग्राम पेश करते हैं श्रोताओं के लिए तो जितना उत्साह श्रोताओं के अंदर होता है उससे ज्यादा उत्साह हमारे अंदर होता है।
1: बिल्कुल।
0: और ये कार्यक्रम में अगला मैसेज हम पढ़ रहे हैं, ये आया है, भेजने वाले हैं गनगौला दातागंज जिला बदायूं से इसरत खान, शायरा बेगम, रऊब खान, शहबाज खान, शैफ खान, ईशान खान, आजम खान और अरहान खान। ये लिखते हैं, आपका पत्र मिला, नजीबाबाद आकाशवाणी पेश करने वाले सभी साथियों को नमस्कार, हम आपका कार्यक्रम ध्यानपूर्वक सुनते हैं, आपके कार्यक्रम बहुत ही अच्छे लाजवाब पसंद आ रहे हैं, आपके कार्यक्रम में हम मैसेज भी करते हैं, व्हाट्सएप भी करते हैं, एक दो बार शामिल भी होते हैं, मगर कुछ दिनों से हमारा फरमाइश शामिल नहीं हो रही है, इस बात की चिंता है सर जी, हमें इसके बारे में जानकारी दें, क्या करना होगा, लिखने में कोई गलती हो तो माफी चाहते हैं, मैं कार्यक्रम से नया जुड़ रहा हूँ। जी
1: देखिए, सबसे पहले तो
0: हमारे ये दूसरे श्रोता हैं हमारे साथ जो नए जुड़ रहे हैं,
1: स्वागत है आपका कि आप कार्यक्रम में जुड़े। दूसरी बात, इन्होंने लिखा है ज्योति दी कि हम आपके कार्यक्रम ध्यानपूर्वक सुनते हैं, तो बहुत अच्छी बात है, जितने ध्यान से ये हमारे कार्यक्रम सुनते हैं उतने ही ध्यान से हमने आज इनका मैसेज भी शामिल किया है,
0: तभी तो प्रतिक्रिया भी दे पाएंगे।
1: बिल्कुल जी। और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी इसी तरह से ये हमारे कार्यक्रम अब रेगुलर सुनते रहेंगे, क्योंकि इन्होंने अभी कुछ दिन से कार्यक्रम सुनने शुरू किए हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी कार्यक्रम सुनेंगे, कौन से कार्यक्रम इन्हें ज्यादा अच्छे लग रहे हैं, किस कार्यक्रम में ये किस तरह का बदलाव चाहते हैं, कोई सुझाव अगर हमारे कार्यक्रम को और बेहतर बनाने के लिए देना चाहते हैं, तो इन सभी प्रतिक्रियाओं के साथ बिल्कुल हम इंतजार करेंगे आपके मैसेज का। आपने जो बात कही है कि व्हाट्सएप आपने भेजा, एक दो बार शामिल हुआ, देखिए उसके लिए हम कहना चाहेंगे कि हमारे पास किसी भी फरमाइशी प्रोग्राम के लिए स्क्रीन पर अभी हम बात कर रहे थे, एक के बाद एक बहुत सारे मैसेज आते रहते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि कार्यक्रम का समय समाप्त हो जाता है, उसके बाद हमें मैसेज मिल पाता है, कभी कभी नेटवर्क इशू के कारण हो सकता है कि आपका मैसेज ओपन ना हो पाया।
0: और ममता जी, हमारे पास मैसेज ही इतने सारे होते हैं कि एक घंटे के कार्यक्रम में भी सारे मैसेज शामिल करना
1: पूरी कोशिश करते नहीं हो पाता है कि अपने ज्यादा से ज्यादा लिसनर्स को शामिल कर पाए, लेकिन फिर भी आप इसमें बिल्कुल ऐसा ना समझें कि हमारे लिए कोई श्रोता ज्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं, कोई कम, ऐसा बिल्कुल नहीं है, हमारे लिए सभी श्रोता इक्वली इम्पोर्टेंट हैं, और आप ये ना सोचें कि कोई आपकी गलती हुई है, ऐसा बिल्कुल
0: और
1: नहीं है।
0: ममता जी, जल्दी से एक और मैसेज शामिल कर लें, कार्यक्रम का समय समाप्ति की ओर है, और ये अगला मैसेज हमारे पास आया है नगीना से अनिल विलोचा जी का, और ये लिखते हैं, आगे दोनों प्रोग्राम की चलिए आगे से पढ़ते हैं, इनकी इंग्लिश थोड़ी सी हम समझ पाने में दिक्कत होती है, ये हम वैसे इनसे कई बार कह चुके हैं, कोई बात नहीं, आप मैसेज करते हैं ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। सबसे पहले तो
1: पर्यावरण पर जो प्रोग्राम
0: इस वीक गए, इनकी जानकारी इनको बहुत अच्छी लगी, मॉनसून की अनिश्चितता पर जानकारी अच्छी लगी, डिजिटल सुविधाओं का इस्तेमाल जो करता है वो बहुत अच्छा प्रोग्राम लगा इनको। आगे ये लिखते हैं कि सुषमा सरेवा और नीलम मिश्रा जी का काव्य पाठ इनको अच्छा लगा।
1: ज्योति जी, ये अनिल विनोचा जी ने जो लिखा है कि पर्यावरण पर कार्यक्रम बहुत अच्छे हुए, तो बिल्कुल हमारी पूरी कोशिश थी कि ये जो 1 जुलाई से 7 जुलाई तक वन महोत्सव सप्ताह हम मनाते हैं, तो इस पर अलग अलग कार्यक्रम केंद्र से दिए जाएं, श्रोता को पसंद आई, बहुत अच्छी बात है। और इन्होंने मानसून की अनिश्चितता पर जो जानकारी की बात की है, तो देखिए वास्तव में ये तो प्रकृति है, तो ये अनिश्चित तो कहीं ना कहीं होगी ही, तो इन्होंने हमें मैसेज लिखा, कार्यक्रमों के बारे में बताया, अनिल विनोचा जी बहुत बहुत आपका धन्यवाद, और इसी तरह हमारे कार्यक्रमों में जुड़े रहिएगा।
0: और ममता जी, इसी के साथ प्रोग्राम का समय समाप्त होता है, कार्यक्रम भी समाप्त करते हैं। आज के कार्यक्रम में मुझे यानी ज्योति गौड़
1: और ममता अग्रवाल को कार्यक्रम संपन्न करने की अनुमति दीजिए।
0: नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपका पत्र मिला। हम आकाशवाणी की नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्मी संडे, और आज के कार्यक्रम में जो फिल्म की कहानी हम आपके लिए लेकर आए हैं, उस फिल्म का नाम है जो जीता वही सिकंदर। लीजिए पेश है कार्यक्रम फिल्मी संडे।

0: सिकंदर, जिसे शॉर्ट में JJWS भी कहा जाता है, 1992 में बनी एक भारतीय हिंदी भाषा की स्पोर्ट्स एक्शन ड्रामा फिल्म है, जो एक युवा के किशोर अवस्था से वयस्कता में लौटने की कहानी बयां करती है। इसका निर्देशन और सहलेखन मंसूर खान ने किया है और इसका निर्माण और सहलेखन भी नासिर हुसैन ने किया है। फिल्म के किरदारों की अगर बात करें श्रोताओं, तो संजय लाल शर्मा यानी संजू के रूप में हैं आमिर खान, आयशा जुल्का अंजलि के किरदार में हैं शेखर मल्होत्रा के रूप में दीपक तिजोरी, मामिक सिंह रतनलाल शर्मा यानी रतन के रूप में, कल्पना के रूप में किरण झावेरी भाटिया और पूजा बेदी, देविका के रूप में हैं रामलाल शर्मा के रूप में हैं कुलभूषण खरबंदा, देव मुखर्जी राजपूत कॉलेज के कोच के रूप में हैं। अब शुरू करते हैं फिल्म की कहानी।
1: देहरादून पहाड़ियों की गोद में एक खूबसूरत जन्नत, आम लोगों की हलचल से दूर, और इस जन्नत में है हिंदुस्तान के 12 चुने हुए स्कूल कॉलेज। यहाँ देश के सबसे रईस खानदान अपने बच्चों को ऊंची तालीम के लिए भेजते हैं। किसी के स्टील के मिल हैं, तो किसी के चाय के एस्टेट। हर एक बच्चा करोड़ों का वारिस। इन कॉलेजेस में चोटी का दर्जा दिया जाता है राजपूत स्कूल एंड कॉलेज को, पढ़ाई में सबसे आगे और स्पोर्ट्स में अव्वल। इसी तरह लड़कियों के लिए मशहूर है क्वींस जूनियर कॉलेज। यहाँ के सभी कॉलेज के लड़के इनके दीवाने हैं। इसी बस्ती के बीच का हिस्सा माल रोड कहलाता है, जहां से बस्ती के लोग अपनी दुकानें चलाते हैं। इन गरीब बस्ती वालों के बच्चों के लिए एक बहुत ही मामूली स्कूल है मॉडल स्कूल एंड कॉलेज। यहाँ के लड़कों की खासियत पढ़ाई में सबसे पीछे और बुरी आदतों में अव्वल। इम्तिहान सर पर है, लेकिन मॉडल कॉलेज की तैयारी का ढंग अलग है। इनकी कोई मंजिल है तो सिर्फ क्वींस कॉलेज की लड़कियां। हर साल की तरह इम्तिहान खत्म हो चुके हैं, इंटर कॉलेज स्पोर्ट्स का मुकाबला होने वाला है। पूरी बस्ती में चर्चा है कि इस साल इंटर कॉलेज कप कौन जीतेगा।
0: फिल्म शुरू होती है जहां अंजलि यानी आयशा जुल्का रतन यानी मामिक सिंह की साइकिल तैयार कर रही है, क्योंकि अगले दिन साइकिल रेस होने वाली है। वहीं राजपूत कॉलेज के कोच देव मुखर्जी अपने स्टूडेंट्स के साथ रतन के कैफे आते हैं और रतन और उसके पिता को अपमानित करके चले जाते हैं। दूसरी तरफ संजू यानी आमिर खान अपने दोस्तों के साथ इम्तिहान के पेपर बदलने जाता है, जहां संजू और उसके दोस्तों को रतन पकड़ लेता है। अंजलि को डायरी लिखने का शौक है और वो डायरी में अपने दिल की बात लिखती है। फिल्म के दूसरे सीन में रतन संजू को अपने पिता की पुरानी तस्वीरें दिखाता है और वहाँ उसके पिता कहते हैं,
2: अरे दिखा दिखा दिखा दिखा, क्या बात है यार, पिताजी की बॉडी भी सॉलिड थी, ये कहाँ से मिला?
3: सन 65 की बात है, मॉडल कॉलेज ने पहली और आखिरी बार राजपूत कॉलेज को साइकिल रेस में हराया था। मेरे साथ ही मुझे अपने कंधों पर बिठाकर इस घर तक लाए थे। वो बात ना मैं भूला हूँ ना बस्ती वाले। कल फिर वही मुकाबला है, इस बार सबकी नजरें तुम पर है रतन।
0: साइकिल रेस का दिन आ जाता है, रेस शुरू हो जाती है। इस रेस का समापन देहरादून की पहाड़ियों में मैराथन साइकिल दौड़ के साथ होता है। शेखर के नेतृत्व में राजपूत कॉलेज ने हाल की चैंपियनशिप में दबदबा बनाए रखा है। रतन जो मॉडल कॉलेज का नेतृत्व कर रहा है, वो साइकिल दौड़ में शेखर से मामूली अंतर से हार जाता है, जबकि दौड़ के अंतिम क्षणों तक वह आगे चल रहा था। रेस के बाद संजू के पिता उससे रिजल्ट के बारे में पूछते हैं और फेल होने पर संजू को डांटते हैं।
2: संजू जी, तुम्हारा रिजल्ट आया?
4: जी नहीं, अभी नहीं आया।
2: रिजल्ट 15 दिन पहले आया, तुम्हारे कमरे में तुम्हारे तकिए के नीचे रखा था। झूठ तो झूठ, तुम्हें तो फेल होने का भी दुख नहीं, वही इधर उधर भटकना, वही निकम्मे दोस्त। अरे कोई शर्म वाला होता तो उसकी रातों की नींद हराम हो गई होती, हलक से निवाला निकलना मुश्किल हो गया होता उसके। संजू संजू सबूर चले दो, भूखा रहेगा तभी होश आएगा।
0: अंजलि संजू को पसंद करती है। स्कूल में रतन को सम्मानित किया जाता है।

0: शेखर रतन के कैफे पर आता है और वहां बैठी लड़कियों से बात करके दोस्ती करता है। संजू वहां बैठ के सब देखता रहता है। यहीं पर शेखर रतन की इंसल्ट करता है। संजू अपना खुराफाती दिमाग लगाकर राजपूत कॉलेज और सेवियर्स कॉलेज के लड़कों में झगड़ा करा देता है। संजू और रतन बात करते हैं।
1: क्या हुआ, राजपूत के प्रिंसिपल से बात होगी? हाँ हुई, नुकसान हमारा हुआ और उनको कोई खास सजा भी नहीं हुई। और जाओ कंप्लेंट कराने। तुझे क्यों जलन हो रही थी कि राजपूत के लड़के ने क्वींस वाली को आराम से पिटा लिया इसलिए? छोड़ छोड़, ऐसी फालतू लड़कियों को मैं लिफ्ट तक नहीं देता। हाँ, वो तुझे लिफ्ट देता हूँ ना। मेरे प्यारे टुन्ना, ऐसी लड़की जिसे देखकर संजू को नशा आ जाए, आज तक उसने धरती पर कदम भी नहीं रखा है।
0: क्वींस कॉलेज में एक नई लड़की आती है जिसे सब देखते रह जाते हैं। इधर संजू रतन और कल्पना को बात करते देखता है। पूजा वेदी यानी देविका

0: 17,000 से कम में नहीं आती है।
1: कोई बात नहीं, एक एक पैसा जोड़ूंगा, उधार का बंदोबस्त भी कर लूंगा। कोई लोकल लौंडा मुझे हरा नहीं सकता, यही कह रहा था ना वो। इस साल वो यहाँ से जीत कर नहीं बल्कि हार कर जाएगा, और वो भी तुम्हारे हाथों।
2: कैफे पर कल्पना और रतन की मुलाकात होती है। दूसरी तरफ अंजलि, जो कि अपने पिता के साथ कार रिपेयरिंग का काम करती है, वो कार लेकर आती है और संजू उसके दोस्त उसके साथ चले जाते हैं, लेकिन संजू सबको धीरे धीरे कार से उतार देता है। वहीं देविका संजू से लिफ्ट मांगती है और संजू उसे गार्डन तक छोड़ता है। देविका गार्डन में शेखर से मिलने आती है, जहां वो शेखर को किसी और लड़की के साथ देखकर संजू के साथ वापस चली जाती है। देविका के सामने संजू खुद को अमीर दिखाने का नाटक करता है और देविका से कहता है कि शेखर एक आवारा और बदतमीज लड़का है। इधर संजू शेखर और कल्पना को एक दूसरे के नाम से खत देकर मिलवाने का काम करता है।

अंजलि मन ही मन संजू से प्यार करती है, दूसरी तरफ देविका संजू से कहती है शेखर को सबक सिखाना है और उसे बुलाती है। संजू अंजलि के पास जाता है, वहां अंजलि को दुकान पर एक हार पसंद आता है और संजू उसे हार दिलाने की बात कहकर गाड़ी मांगता है और देविका से मिलने जाता है, जहां वह देविका को बताता है कि वह बिजनेसमैन थापर का बेटा है। संजू और अंजलि बात करते हैं।

रामलाल शर्मा जो संजू के पिता हैं, संजू से 4,000 रुपए बैंक में जमा करने को कहते हैं, लेकिन संजू उन रुपए का हार जो अंजलि ने पसंद किया था वह खरीद कर देविका को दे देता है। अंजलि संजू और देविका को एक साथ देख लेती है और दुखी होकर वहां से चली जाती है। फिल्म के दूसरे सीन में रतन कल्पना से मिलता है, जहां शेखर से रतन की बहस हो जाती है। इधर अंजलि संजू के लिए तड़प रही है और दूसरी तरफ संजू देविका के साथ घूम रहा है। दोनों को शेखर एक साथ देख लेता है। शेखर और संजू की लड़ाई होती है। संजू देविका से मिलने जाता है, जहां देविका संजू से कहती है डांस कॉम्पिटिशन में मिलते हैं।

0: डांस कंपटीशन राजपूत कॉलेज जीत जाता है और देविका को संजू की सच्चाई पता चल जाती है और वह संजू को जलील करती है।
1: तो ये सब झूठ था।
2: जिस इंसान ने पहली बार झूठ से शुरू की हो उसे किसी और को झूठा कहने का कोई हक नहीं है।
1: हाँ मैंने झूठ बोला, मगर फर्क इतना है कि मैंने अपनी गरीबी छुपाने के लिए झूठ बोला और तुमने झूठ बोला तो अपनी मक्कारी छुपाने के लिए। कल तक मैं थापड़ का बेटा था तो तुम्हें पसंद था, अब मैं एक मामूली इंसान का बेटा हूँ तो अचानक मुझ में कीड़े पड़ गए इसलिए कि तुम्हें एक पैसे वाला चाहिए। थापड़ का बेटा नहीं तो मल्होत्रा का बेटा शेखर ही सही, चाहे वो कितना कमीना क्यों ना, यही है ना?
2: हाँ यही बात है।
0: देविका चली जाती है और संजू और शेखर के दोस्तों की लड़ाई होती है। रतन आकर संजू को बचाता है। घर आने पर रामलाल शर्मा संजू से 4,000 रुपए के लिए पूछते हैं। संजू उनको कहता है पैसे मैंने खर्च कर दिए। इस पर रामलाल को गुस्सा आ जाता है और रामलाल संजू को घर से निकाल देते हैं। अगली सुबह रामलाल रतन की साइकिल लेने के लिए दिल्ली चले जाते हैं। रतन संजू से मिलता है लेकिन संजू रतन से बात नहीं करता और रतन साइकिलिंग के लिए चला जाता है। जहां शेखर और उसके दोस्त मिलकर रतन के साथ मारपीट करते हैं और रतन पहाड़ी से नीचे गिर जाता है। रतन को हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है जहां रतन की हालत गंभीर है।

0: इस वक्त संजू अपनी जिम्मेदारी समझने लगता है। रतन ठीक होने लगता है और साइकिल रेस का दिन नजदीक आने लगता है। तब संजू डिसाइड करता है कि वह रतन की जगह रेस में जाएगा। दूसरी तरफ शेखर रतन को हॉस्पिटल में धमकाने आता है, जहां कल्पना को सब पता चल जाता है कि शेखर की वजह से रतन को चोट लगी। कल्पना दुखी होकर ये बात अंजलि को बताती है और ये सारी बातें संजू सुन लेता है। साइकिल दौड़ शुरू होती है और इस बीच शेखर और संजय के बीच कहासुनी हो जाती है और वे बाकी प्रतिभागियों से पीछे रह जाते हैं। वे फिर से दौड़ में शामिल होते हैं और सबको पीछे छोड़ते हुए अंत में एक के पीछे एक स्टेडियम में प्रवेश करते हैं। शेखर संजय से आगे चल रहा होता है, लेकिन अंतिम क्षणों में संजय यानी संजू उससे अंतर कम कर लेता है और फिनिश लाइन पर जीत हासिल कर लेता है। उसकी यह जीत पिछले वर्ष रतन पर शेखर की जीत की याद दिलाती है। दशकों में पहली बार राजपूत कॉलेज को हराने पर मॉडल कॉलेज टीम बेहद खुश होती है। रतन के उत्साहवर्धन पर संजू जोरदार तालियों के बीच मॉडल कॉलेज टीम के लिए ट्रॉफी उठाता है और फिल्म का दी एंड हो जाता है।
1: रामलाल जी, आज मैं भी मान गया, जो जीता वही सिकंदर।
0: श्रोताओं, फिल्म का संगीत जतिन ललित ने तैयार किया था और गीत मजरू सुल्तानपुरी ने लिखे थे। आमिर खान के लिए गायन उनके तत्कालीन नियमित सहयोगी उदित नारायण ने किया था। साथ ही साधना सरगम, अमित कुमार, विजेता पंडित, अलका याग्निक, जतिन पंडित ने इस फिल्म के गीतों को अपनी आवाज दी। जतिन ललित के सहयोग से बना यह साउंड ट्रैक उनके करियर को आगे बढ़ाने में सहायक रहा। इसे 1993 के फिल्म फेयर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ संगीत के लिए नामांकित किया गया था। जो जीता वही सिकंदर 1992 का तीसरा सबसे ज्यादा बिकने वाला बॉलीवुड साउंड ट्रैक एल्बम था, जिसकी भारत में 2.5 मिलियन यूनिट बिकी थी। और श्रोताओं, इसी के साथ आज का फिल्मी संडे कार्यक्रम अब संपन्न होता है। अगले सप्ताह फिर उपस्थित होंगे एक और नई फिल्म की कहानी के साथ। तब तक के लिए ज्योति गौड़ को दीजिएगा आज्ञा, नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम फिल्मी संडे। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 1 बजने को हैं। थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पूरी कर आज नई दिल्ली लौट आए। 3 देशों की यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी ने 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया का दौरा किया। इस दौरान श्री मोदी ने राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता की और दोनों देशों के बीच साझेदारी की प्रगति की समीक्षा की। यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न पहुंचे, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ 3रे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लिया। यात्रा के 3रे और अंतिम चरण में प्रधानमंत्री ने 10 और 11 जुलाई को न्यूजीलैंड के ऑकलैंड का दौरा किया। वहां उन्होंने प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि भारत हिंद महासागर और हिंद प्रशांत क्षेत्र में एक मजबूत और विश्वसनीय शक्ति के रूप में उभरा है। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाल की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड यात्रा से भारत के रणनीतिक संबंध और मजबूत हुए हैं।
1: हम एक स्टेबिलाइजिंग फोर्स बनके इंडो पैसिफिक और इंडियन ओशन में आज उभर पाए हैं, इसी को प्रधानमंत्री एक साथ लेके आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने अपने परिश्रम से, अपने स्टेट्समैनशिप से अपने पॉलिसी को भारत में लागू करके बाकी देशों को दिखाया और सभी देशों ने एक्सेप्ट किया कि यस, लेट दिस बी द फ्रेमवर्क, लेट इंडिया डिसाइड द फ्रेमवर्क। हम इस फ्रेमवर्क पे एक लॉन्ग टर्म कोऑपरेशन, आप सोचिए ये कितनी बड़ी जीत है।
0: श्री संबित पात्रा ने कहा कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौता एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने माफी योजना 2026 शुरू की है। इसके तहत आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत मान्यता प्राप्त छूट के साथ भविष्य निधि ट्रस्ट संचालित करने वाले प्रतिष्ठानों को अपनी स्थिति नियमित करने का एक मुश्त अवसर प्रदान किया गया है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कहा है कि यह योजना 6 महीने की अवधि तक लागू रहेगी। मंत्रालय के अनुसार पात्र प्रतिष्ठानों को संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों को ईमेल के माध्यम से औपचारिक आवेदन प्रस्तुत करना होगा। देश भर में आज व्यापक पौधारोपण अभियान चलाया जा रहा है। गुजरात में गृहमंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में नगर निगम की 405 करोड़ रुपए की जन केंद्रित विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। श्री शाह ने अपने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र गांधीनगर में पौधारोपण अभियान का भी शुभारंभ किया। इधर उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार के व्यापक पौधारोपण अभियान के अंतर्गत आज 35 करोड़ पौधे लगाए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर से राज्यव्यापी पौधारोपण महायज्ञ का शुभारंभ किया। वियतनाम के प्रधानमंत्री ने ले मिन हुन ने फुकोक द्वीप के पास स्पीड बोट हादसे की जांच के आदेश दिए हैं। इस हादसे में 15 भारतीय पर्यटकों की मौत हो गई। इनमें से 10 लोग तमिलनाडु, 3 आंध्र प्रदेश और 2 केरल के रहने वाले थे। विदेश मंत्रालय ने वर्ष 2017 में जारी यमन यात्रा संबंधी अधिसूचना वापस ले ली है। यह अधिसूचना यमन में गृह युद्ध और बिगड़ती सुरक्षा स्थिति के कारण भारतीय नागरिकों की यात्रा पर प्रतिबंध लगाने के लिए जारी की गई थी। कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी का 74 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने खाड़ी देश को कूटनीति, मीडिया और निवेश के क्षेत्र में प्रमुख वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित किया था। शेख हमद ने क्षेत्रीय परंपरा को तोड़ते हुए 2013 में स्वेच्छा से अपने पुत्र को सत्ता सौंपने से पहले 18 वर्षों तक कतर पर शासन किया। टेनिस में आज विंबलडन के पुरुष सिंगल्स और महिला डबल्स के फाइनल मुकाबले खेले जाएंगे। पुरुष सिंगल्स के फाइनल में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी यानिक सिनर का मुकाबला जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव से होगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 8:30 बजे शुरू होगा। महिला डबल्स के फाइनल में चीन की गुओ हानयू और फ्रांस की क्रिस्टीना म्लादेनोवक की जोड़ी का मुकाबला कनाडा की गैब्रिएला ड्राबोवस्की और ब्राजील की लुइसा स्टेफनी की जोड़ी से होगा। ये मैच शाम 5:30 बजे से खेला जाएगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप के सेमीफाइनल मुकाबले तय हो गए हैं। पहला सेमीफाइनल बुधवार को फ्रांस और स्पेन के बीच खेला जाएगा। दूसरा सेमीफाइनल गुरुवार को इंग्लैंड और अर्जेंटीना के बीच होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Sunil Verma. Prime Minister Narendra Modi has returned to New Delhi after concluding his 6-day successful visit to Indonesia, Australia and New Zealand. In the first leg of his three-nation tour, Mr. Modi visited Indonesia from 6th to 8th of this month at the invitation of President Prabowo Subianto. During this visit, the Prime Minister held bilateral discussions with the Indonesian President and reviewed the progress made in the partnership. In the second leg of his tour, the Prime Minister travelled to Melbourne, Australia. Mr. Modi participated in the third India-Australia annual summit with Australian Prime Minister Anthony Albanese. During his visit, Prime Minister Modi also participated in the India-Australia CEOs Forum, where he addressed a gathering of top business leaders from both countries. On the third and last leg of his three-nation visit, the Prime Minister visited Auckland from 10th to 11th.

0: डेढ़ माह के नाम इस अभियान का हिस्सा बने तो मुझे प्रसन्नता है कि इस वर्ष अभी 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के दिन ही 5 करोड़ से अधिक वृक्षारोपण का कार्यक्रम यूपी के अंदर संपन्न हुआ और यूपी के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर में भारी वृद्धि हुई है। नए नए एक्सप्रेसवे, हाईवे, सड़कों का एक लंबा जाल बिछा है, नए नए उद्योग आए हैं, शहरीकरण में भी नई नई कॉलोनियां बनी है, बसी है। सबसे ज्यादा भौतिक विकास की गति को तेज करने में योगदान देने वाले राज्य के रूप में यूपी ने अपने आप को स्थापित किया है।
1: उन्होंने वहां मौजूद लोगों से अपील की कि वो ज्यादा से ज्यादा दरख्त लगाएं और उनकी हिफाजत का अहद करें। इस दौरान वजीर आला ने मौके पर लगाए गए दरख्तों का मुआयना भी किया और उनकी मुनासिब हिफाजत की हिदायत दी। सैनिक स्कूल के तुलबा, एनसीसी कैडेट्स और स्काउट्स ने भी प्रोग्राम में हिस्सा लिया। वजीर आला ने बच्चों से मुलाकात की, उनके साथ बातचीत की और एक पेड़ माँ के नाम मुहिम के तहत सेल्फियां भी ली। उन्होंने नौजवानों को माहौलियाती तहफ्फुज के सफीर के तौर पर काम करने की तरगीब दी। रियासत में शजरकारी मुहिम 2026 का आगाज आज से हो गया। रियासती हुकूमत ने इस शजरकारी मुहिम के जरिए 35 करोड़ पौधे लगाने का हदफ मुकर्रर किया है। रियासत के तमाम महकमे, स्कूल, कॉलेज और इदारे इस मुहिम में हिस्सा ले रहे हैं। हमारे नामा निगार ने बताया कि ये मुहिम 27 महकमों के तावन से चलाई जाएगी।
2: 27 विभागों के समन्वय से चलाए जाने वाले इस विशाल वृक्षारोपण अभियान में वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग सर्वाधिक 15 करोड़ 50 लाख पौधारोपण करेगा। ग्राम्य विकास विभाग 10 करोड़, कृषि विभाग 3 करोड़ 25 लाख, उद्यान विभाग 1 करोड़ 50 लाख और पंचायती राज विभाग 1 करोड़ 22 लाख पौधे लगाएगा। गंगा एक्सप्रेसवे के किनारे भी 5.5 लाख पौधे लगेंगे। महाअभियान 2026 में इस वर्ष समरस वन, समृद्धि वन, कृषि वन, ऊर्जा वन, कपि वन समेत अनेक नवीन वन तैयार किए जाएंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: रियासत गिर शजरकारी मुहिम के तहत हापुड़, चित्रकूट, हमीरपुर, संत कबीर नगर, कौशाम्बी, पीलीभीत और अमरोहा में भी एक पेड़ माँ के नाम मुहिम के तहत दरख्त लगाकर माहौलियाती तहफ्फुज का पैगाम दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की दारुल हुकूमत लखनऊ में नायब वजीर आला और वजीर सेहत ब्रजेश पाठक ने आज अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी में शजरकारी मुहिम के तौर पर एक पौधा लगाया। इस मौके पर ब्रजेश पाठक ने कहा कि दरख्त लगाने से न सिर्फ माहौलियात बेहतर होता है बल्कि इर्द गिर्द हरियाली भी आती है जिससे हमें साफ ऑक्सीजन मिलती है। उन्होंने कहा कि आम आवाम एक पेड़ माँ के नाम महाअभियान को कामयाब बनाने के लिए अथक मेहनत कर रही है। लखनऊ में शजरकारी मुहिम के तहत 3,360 मकामात पर पौधे लगाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल गोरखपुर के पिपराइच असेंबली हलके में 757 करोड़ रुपए से ज्यादा के 24 तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संगे बुनियाद रखा। उन्होंने मुख्तलिफ सरकारी स्कीमों से फायदा उठाने वालों में सर्टिफिकेट तकसीम किए। तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि इन मनसूबों से खित्ते में तरक्की होगी और नौजवानों के लिए रोजगार के मौके बढ़ेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि बेहतर राब्तों से मुल्क में तरक्की और खुशहाली आएगी। वजीर आला ने कहा,
0: स्पीड जितनी अच्छी होती है कनेक्टिविटी के लिए, प्रगति उतनी ही तेज होगी और प्रगति होगी तो स्वाभाविक रूप से व्यक्ति की भी, समाज की भी और देश की भी समृद्धि होगी। समृद्धि होगी तो खुशहाली होगी।
1: अयोध्या में राम मंदिर की तामीर कमेटी की 3 रोजा मीटिंग के तीसरे दिन कमेटी के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्रा ने 2 रोजा मीटिंग के दौरान किए गए अहम फैसलों का जायजा पेश किया। उन्होंने वजाहत की कि ये मीटिंग 2 मरहलों में हुई जिसके दौरान रामकथा म्यूजियम और मंदिर की तामीर से मुतालिक कई अहम मसाइल पर हतमी फैसले किए गए। नृपेंद्र मिश्रा ने कहा कि रामकथा म्यूजियम की तमाम गैलरियों के स्क्रिप्ट को हतमी शक्ल दे दी गई है। म्यूजियम जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए भगवान श्री राम के जंगल के सफर की नुमाइश करेगा। ये दरियाए सरयू से शुरू होकर घाट पर इख्तिताम पजीर होगा। अकीदतमंदों की तादाद में कमी की अफवाहों को मुस्तरद करते हुए उन्होंने कहा कि मंदिर में आने वालों की कोई कमी नहीं है। उन्होंने मीडिया से अपील की कि वो अफवाहें ना फैलाएं। उन्होंने कहा कि राम मंदिर ट्रस्ट की मीटिंग 22 जुलाई को होगी जिसमें सीईओ की तकरीरी और कमेटियों और जेली कमेटियों के मुस्तकबिल समेत कई इंतजामी अमूर पर फैसले किए जाएंगे। और रियासत के कई इजला में कल से बारिश का सिलसिला जारी है। कुछ इजला में मूसलाधार बारिश की वजह से पानी जमा हो गया है जिससे आम जिंदगी दरहम बरहम हो गई है। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नश्र किया जाएगा।
3: मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम बाल वाटिका का।

0: जय हिंद प्यारे बच्चों, आज के बाल वाटिका कार्यक्रम के इस अंक में रोचक ज्ञानवर्धक साथ ही ढेर सारा मनोरंजन का पिटारा लेकर आपके साथ हैं आपकी अपनी दीदी अर्चना। हाँ, तो हमारे सभी नन्हे मुन्ने दोस्तों को दीदी का ढेर सारा प्यार और शुभाशीष। प्यारे बच्चों, ये प्रेरणादायक पंक्तियां सदैव आपको स्मरण रखनी चाहिए। किस्मत में लिखी हर मुश्किल टल जाती है, यदि हो हौसले बुलंद तो मंजिल मिल ही जाती है। सिर उठाकर यदि आसमान को देखोगे बार बार तो गगन छूने की प्रेरणा मिल ही जाती है। बिल्कुल बच्चों, कभी भी अपने आप को कमजोर मत आंको। सदैव कुछ करने का जज्बा मन में लेकर सदैव बुलंदियों की ओर, ऊंचाइयों की ओर आगे बढ़ते आपको जाना है। इसलिए आपके हौसले बुलंद होने चाहिए। जानते हैं प्यारे बच्चों, आपके छोटे छोटे कदम और बड़े बड़े सपने ही समाज और राष्ट्र को नई दिशा देते हैं। आप ही देश का उज्जवल भविष्य हैं। हाँ, तो यदि आप में आत्मविश्वास, मेहनती होने का गुण और अपने इरादों के यदि आप पक्के हैं तो हर कठिनाई को पार कर आखिरकार अपने लक्ष्य को, मुकाम को हासिल कर ही लेंगे। इसीलिए कहा जाता है कि हौसलों की उड़ान भरती नन्हे कदम एक उज्जवल भविष्य की पहचान है। प्यारे बच्चों, हिम्मत व हौसले व्यक्ति की सबसे बड़ी ताकत व शक्ति हैं, जिससे असंभव कार्य को भी संभव बनाया जा सकता है। विद्वान विंस्टन चर्चिल ने भी कहा है कि जिंदगी की सबसे बड़ी सिफत हिम्मत है। आदमी के और सारे गुण उसके हिम्मती होने से ही पैदा होते हैं। तो बच्चों, कभी भी हिम्मत हार कर कार्य को बीच में अधूरा मत छोड़ो, बल्कि हिम्मत, हौसलों व पूर्ण आत्मविश्वास के साथ जिंदगी के हर कदम जो है आप आगे बढ़ाते चलो। प्यारे बच्चों, देखा जाए तो हर बच्चा विशिष्ट होता है, यानी हर एक में कोई ना कोई प्रतिभा, टैलेंट अवश्य छिपा होता है। जैसे किसी की पढ़ाई में रुचि होती है तो किसी की खेल, संगीत, चित्रकला, साहित्य व विज्ञान में। बस जरूरत है उस टैलेंट को उजागर करने और उसे सही दिशा प्रदान करने की, जिससे आपके छोटे छोटे कदम सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच सके। प्यारे बच्चों, जीवन में कठिनाइयां सभी के सामने आती हैं, लेकिन जो बच्चे साहस, धैर्य और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं वे कभी हार नहीं मानते। जानते हैं, जितने भी महान व्यक्ति हुए हैं उन्होंने बचपन से ही कठिन परिस्थितियों का सामना कर अपने हौसलों के बल पर सफलता हासिल की। वास्तव में बच्चों, ये हमें सिखाता है कि सफलता का आधार प्रतिभा ही नहीं बल्कि निरंतर प्रयास और दृढ़ इच्छा शक्ति भी है। हाँ, तो प्यारी बच्चों, पढ़ाई के साथ साथ खेल, नैतिक गुण, अनुशासन और सामाजिक जिम्मेदारियों का ज्ञान भी आपको होना चाहिए। हाँ, तो आपके नन्हे कदम हौसलों के साथ जब आगे बढ़ते हैं तो वे केवल अपनी मंजिल को ही नहीं पाते बल्कि पूरे देश का नाम रोशन करते हैं। इसीलिए मेहनत करो, आत्मविश्वास व बुलंद हौसलों के साथ अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहो। यही वास्तव में हौसलों की सच्ची उड़ान है। प्यारे बच्चों, बात जब बुलंद हौसलों के साथ आगे बढ़ने और टैलेंट को उजागर करने की चली पड़ी है तो हमारे आज के नन्हे हस्ताक्षर क्रम में सुनवाते हैं बहु प्रतिभा की धनी वरण्या से नंदिनी दीदी की ये बातचीत।
1: नन्हे हस्ताक्षर में दोस्तों आज हमारे पास है एक छोटी सी प्यारी सी साथी। सबसे पहले जान लेते हैं इनसे इनका नाम और करवाते हैं इनकी मुलाकात आप सबसे।
2: आपको मेरा प्रणाम, मेरा नाम वरण्या कृष्णा सरोहा है।
1: प्रणाम वरण्या, कैसी हैं आप?
2: मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हो?
1: हम सब तो बहुत अच्छे हैं, आपके आने से और भी ज्यादा अच्छे हो गए। अच्छा, आप ये बताइए कि आपका जो नाम है वरण्या, इसका मतलब क्या है? बहुत यूनिक है।
2: इसका अर्थ है वरण करने योग्य।
1: तो किसका वरण किया है आपने?
2: मैंने इस साहित्य रूपी शब्द का वरण किया है।
1: ओहो, अच्छा, कितने साल की हैं आप?
2: मैं 12 वर्ष की हूँ।
1: 12

0: वर्ष की आयु में आपने साहित्य का वर्णन कर लिया, ये तो भाई तालियों वाली बात है। अच्छा ये बताइए, साहित्य के अलावा आप करती क्या है?
1: मैं अभी एक विद्यार्थी हूँ और मैं अभी कक्षा 9 में पढ़ती हूँ।
0: ओके, कक्षा 9 में पढ़ने का मतलब आपको हम मान सकते हैं कि बहुत शौक है, क्योंकि साहित्य में आपको 9th क्लास में कक्षा 9 से आपको इतनी रुचि है। तो
1: मुझे कक्षा 3 से रुचि रही है और कक्षा 5 से मैंने लिखना शुरू किया था।
0: क्या मतलब आप सिर्फ पढ़ती नहीं है, आप लिखती भी हैं?
1: जी
0: जी, ओ हो। तो अगर हम आपके लिखने पर तो आएंगे कि आप क्या क्या लिखती है, क्या क्या कमाल करती है, पहले ये बताइए ये मोटिवेशन ये आया कहाँ से? घर में कोई लिखता है, किसी ने आपको सिखाया है?
1: मेरे घर में ढेर सारी किताबें हैं और जैसा कि मैं उन किताबों को पढ़ती हूँ तो अपने आप मन में हो आता है। इतना पढ़कर सीखकर जब हम जानते हैं, क्यों ना हम भी अपनी भावनाओं को उतार दें। और वो एक ऐसी स्थिति बन गई थी कि आज मैं खुद लिखती हूँ और वो मुझे खुद को अच्छा लगता है।
0: आप पढ़ती तो रहती हैं, जाहिर सी बात है, लेकिन जो लिखने के लिए आपको ललक जो जगी, कौन से राइटर थे जिनकी जो रचना है वो पढ़कर आपके अंदर ये जज्बा जाग उठा?
1: रामधारी सिंह दिनकर थे, उनकी एक कविता थी शक्ति और क्षमा। वो महाभारत पर आधारित है और उसमें कुछ रामायण के किस्से भी हैं। उसे पढ़कर मुझे थोड़ा सा अध्यात्म में लिखने का वरण आया और मैंने अब उसके हिसाब से कई कविताएं भी लिखी हैं अध्यात्म को लेकर के। फिर एक नाटक था जो मुझे बहुत पसंद आया, वो मोहन राकेश जी का आषाढ़ का एक दिन था।
0: आषाढ़ का एक दिन,
1: हाँ
0: तो
1: वो
0: एक एक दिन करके आप बहुत कुछ लिख गई हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आप बोल रही हैं कक्षा 5 से आपने लिखना शुरू किया और आप 9th तक आ गई हैं, यानी 9वीं कक्षा तक आ गई हैं, तो आपने कितनी कविताएं लिख ली हैं?
1: ऑलमोस्ट 50 लिख ली हैं।
0: ओ गॉड, 50 लिख ली हैं। तो अगर मैं पूछूं आपसे आपकी पर्सनल बेस्ट कविता, आप श्रोताओं को सुनवाना चाहेंगी?
1: जी बिल्कुल। मेरी कविता का शीर्षक है अरे बंधु। आप सभी के लिए एक प्रश्न छोड़ना चाहूंगी, आप मेरी कविता सुनिए। एक धुआं उठता है जब भी और प्यास घटे तो तब भी, जो नीर सा याद में रोता है वो तेरा दिया समझौता है। क्यों मैं कोई सहारा था, क्यों तेरे लिए ही हारा था, या पार्थिव मेरे मन को तू दिखता ही इतना प्यारा था। भ्रम था संशय या फूल था मैं, क्यों नहीं था मैं भी यूं विकराल। सीधा था या मूर्ख था मैं, जो छोड़ गया मुझे डूबे हाल। तरस तो करता ओ प्राणी, चाहे स्वार्थ को ही आता। तू तो चला जाता भी अगर, मगर यू दिल में ठहर जाता। हाँ याद में तड़पा कर तूने, लगता सब पाप धुलवा डाले। नहीं बचे अब घूंट चाय के, रह गए कुछ टूटे प्याले। पश्चाताप तो रहेगा मुझे, इतना चुप कैसे बैठा हूँ। फिर आ जाता है सृजन में, मैं कहाँ कभी ऐठा हूँ। चल रहने दे अब अंतिम बार, तेरी कास्ट का ही कोयला बन जाऊं। मेरे अंगारे ना बिखरे, कुछ ऐसा हो जो सुलग ही जाऊं। पड़ा रहूं तेरे दर पे, इच्छा है तुझे एक बार निहारूं। जब बेचने जाए ना तू मुझे, फिर एक बार उड़ूं और गले से लगा लूं। एक बार उड़ूं और गले से लगा लूं। धन्यवाद।
0: आइए हम आपको गले से लगा लें। मतलब इतनी छोटी सी बच्ची और इतनी गहरी गहरी बातें इतने खूबसूरत अंदाज में, भी ये गौरव है हमारा कि आप हमारे साथ यहाँ आई हैं।
1: आपका अत्यंत आभार है कि आप मुझे अवसर दे रही हैं, अन्यथा बच्चों के लिए बहुत कम ही अवसर मिल पाते हैं।
0: ये बात आप सही कह रही है, क्योंकि बच्चों के मन में जो छोटी छोटी चीजें आती है उसको राइट डायरेक्शन मिल जाए तो वो बच्चे ही बड़े होकर बड़े बड़े नाम बन जाते हैं, जिसमें कि आज हमारे साथ शामिल है और हम दुआ करेंगे कि आप बड़ा सा नाम बन जाए एक। अच्छा वरण्या, आप जैसे कविताएं लिखती हैं पढ़ती हैं, तो सिर्फ हिंदी में पढ़ती हैं या फिर इंग्लिश में या किसी और स्पेशल भाषा में भी आप पढ़ना पसंद करती हैं?
1: मैं एक विशेष भाषा के तौर पे संस्कृत को चुनती हूँ, मैं संस्कृत में लिखती हूँ।
0: क्या खूब, मतलब एक से बढ़कर एक जो आपकी खूबियां हैं वो निकल कर आ रही हैं आपसे बात करते हुए। हमारे जो श्रोता हैं वो भी सुनकर खुश हो रहे होंगे और आप पे गौरव महसूस कर रहे होंगे, क्योंकि आपने संस्कृत का जिक्र कर दिया है, तो हम चाहेंगे संस्कृत में भी जो आपने लिखा है हमारे श्रोताओं को सुनवाइए।
1: जी वीणा विद्या देवै सुभाषम, पुष्पांकित जलयज पूर्ण भाषम। वैदे शिरा तिलका आरुण्यम, सृष्टम जलम पर्णम पूर्ण पद्यम। इसका जो अर्थ है वो है वीणा विद्या जैसी, यानी कि इतनी अच्छी संगीत को देने वाली सरस्वती।

0: धरती माता, आपने हम पर इतनी कृपा की है। आप वैदेहीशिरा हैं, आप हर चीज में परिपूर्ण हैं, आपने हमें गौरवशील बनाया है और आपका आशीर्वाद हम पर सदा रहे।
1: क्या बात, हम कहेंगे सरस्वती माता का साक्षात आशीर्वाद है आप अपने मम्मी डैडी के लिए। आपने इतनी प्यारी सी संस्कृत में हमें श्लोक सुनाया, तो हम चाहेंगे कि आप जरा बताइए कोई राइटर हैं, क्योंकि संस्कृत आज की डेट में कोई सीख रहा है उसमें लिख रहा है, ये अपने आप में बड़ी बात है। तो आपने, या आपको संस्कृत की डोर मिली कहाँ से जो आप सुलझाती चली गई, कैसे सुलझाई आपने?
0: मुझे गीता का ज्ञान और गीता के श्लोकों से संस्कृत की पहेली मिली और उन्हीं से मेरा संस्कृत से संबंध बनता गया।
1: तो ये डोर किसने आपके हाथ में दी?
0: मैं बचपन से वैदिक रीति जो है उसके अनुसार यज्ञ करती हूँ, यज्ञ पद्धति में मेरा भाग है, मुझे उसके सभी मंत्र नियम वगैरह वो सब अच्छे से याद हैं और जो वैदिक संध्या है वो कंठस्थ भी है। संस्कृत में मेरी रुचि करीब से करीब 3 वर्ष से है और मैंने शाहजहाँपुर आर्य समाज है वहाँ पर वैदिक पाठ होते हैं, वहाँ पर मैंने स्थान जीता है शाहजहाँपुर में भी।
1: तो आपको जो अवार्ड मिला है वो एक्चुअल में आप डिजर्व करती हैं।
0: आप ऐसा मानते हैं, बहुत बड़ी बात है।
1: अच्छा ये बताइए कि आपके घर में भी कोई है जो आपको सिखाता है, जो पढ़ाता है, जो आपकी एक्चुअल में मोटिवेशन है कि आपको लगता है कि हाँ मुझे कुछ करना चाहिए या मेरे लिए बिल्कुल सही डायरेक्शन है जहाँ मैं जा रही हूँ?
0: मेरे पिताजी जो हैं वो इस क्षेत्र से गुजर कर आ चुके, उनका एक तरह से सपना था कि वो इसमें कला में, संगीत में, साहित्य में जुड़े और अधिकतर जो किताबें हैं वो मुझे वे ही लाकर देते हैं। उनकी भी बहुत रुचि है। मेरे पापा आज एक पत्रकार हैं, वो बहुत सारे आर्टिकल्स लिखते हैं लेकिन उन्होंने अपने उस प्रतिभा को आगे तक वो बढ़ा नहीं पाए, उन्हें उस तरह से सहारा नहीं मिल पाया। अब मैं छोटी हूँ तो वो चाहते हैं कि अगर मैं अभी से निपुण रही आगे आकर मैं जरूर इसकी अच्छी कमान संभाल लूंगी।
1: जी जी उसका प्रत्यक्ष प्रमाण हम देख रहे हैं आज।
0: तो बस इसी के साथ मैं साहित्य को छोड़ना नहीं चाहती और उसमें गंभीरता रखती हूँ।
1: जी बहुत जरूरी है कि अच्छे राइटर्स जिनकी सोच अच्छी है वो आगे आए। जिस तरह का गोल्डन पीरियड हम देखते हुए आए हैं उसके बाद जो आज स्टेज है, हमें जरूरत है कि बहुत अच्छे जो राइटर्स हैं वो आए और जितने भी पाठक हैं उन्हें कुछ फ्रेश, कुछ अच्छा पढ़ने को मिले। तो हमें उम्मीद है आगे आप कुछ लिखेंगी। आप सिर्फ कविताएं लिखती हैं या फिर?
0: मैं कविताएं, कहानियां, एकांकियां, गद्य में, उपन्यास वगैरह अभी मैं लिख रही हूँ और नाटक में लिख चुकी।
1: नाटक आपने लिखा है? ओहो भाई, 12 वर्ष की आयु में इतनी छोटी सी लड़की इतना कुछ कर रही है। अच्छा आपने बता दिया है कि आपने नाटक लिखा है, तो नाटक का नाम भी बताइए।
0: मेरी नाटक का जो शीर्षक है वो है आधी रात का चांद।
1: फर्स्ट टाइम शायद आपका पहला नाटक
0: जी,
1: है
0: जी।
1: तो ये लिखने का आइडिया कहाँ से आया कि आपको नाटक लिखना चाहिए, उसकी थीम कुछ कहाँ से आया?
0: जैसे कि मैं एकांकिया पढ़ती थी तो मैं सोचती थी कि एकांकिया समाप्त हो जाती है, सही है, अंक दो एक अंक में, अब कुछ लंबा करके लिखूं, तो मैंने सोचा नाटक ही लिख लेना चाहिए और मेरी नाटक और एकांकी में रुचि भी अधिक है। अब मैं नाटक लिखती तो मैंने सोचा कि मैं एक पारिवारिक मुद्दे से ही शुरू करूं, क्योंकि वो आज के टाइम की सबसे बेसिक नीड है।
1: बेसिक जोड़ रखने वाला जो भाव है वो बहुत कम होता जा रहा है।
0: भावनात्मक दूरियां होती जा रही हैं, संवाद शैली में बहुत अंतर आ गया।
1: आपका जो ये नाटक है वो पारिवारिक संबंधों को मजबूत करता हुआ है, तो हम ये समझ सकते हैं कि आपके अपने पारिवारिक संबंध इतने मजबूत है, आपके ड्राइविंग फोर्स है कि आपको ऐसी ऐसी सोच आ जाती है।
0: जी,
1: तो आपके पारिवारिक संबंधों में कौन सा ऐसा संबंध है जो आपको सबसे प्रिय है?
0: वो मेरे दादाजी के साथ भी मेरा हो सकता है और मेरे पापा के साथ वो है और मेरी माँ मेरे लिए जितने रखती हैं।
1: आपकी फैमिली में आपको इतना प्यार मिला हुआ है वो ही आपकी मेरे ख्याल में राइटिंग में, वो आपके पेन में उतर आता है।
0: पर इसकी जब शुरुआत हुई थी तो शुरुआत में किसी ने इतने गौर से नहीं माना था, वो एक तरह से एक अजूबा सा ही था कि इतनी कम उम्र में लिखेगा कौन। वो परिवार वालों के लिए भी समझने में थोड़ा काफी मुश्किल रहा लेकिन मेरे पापा चूंकि वो इस सब को देख सकते थे, समझते थे अच्छे,
1: वो खुद भी एक राइटर थे भला कि उनको पूरी तरह से मौका नहीं मिला, तो वो समझ गए कि मेरे जीन्स हैं जो बिल्कुल सही जगह आ रहे हैं
0: कि मैं उन्हें और बढ़ा सकती हूँ, पूरा कर सकती हूँ। साथ ही साथ मैं इंग्लिश में भी लिखती हूँ।
1: ये तो कमाल हो गया, एक से एक आप अपने अंदर से जादू की पुड़िया निकालती जा रही हैं। आप इंग्लिश में भी लिखती हैं, तो इंग्लिश के कुछ फेवरेट राइटर्स अगर मैं आपसे पूछूं तो कौन होंगे?
0: इंग्लिश में तो विलियम शेक्सपियर हैं, लियो टॉल्स्टॉय वगैरह, ये सब इनकी स्टोरीज बहुत फेमस हैं, मुझे अच्छी लगती हैं।
1: अच्छा आप खुद भी एक इंग्लिश की राइटर हैं, तो हम आपसे पूछेंगे आप क्या क्या लिखती हैं?
0: मैं बहुत छोटे छोटे से नोट्स लिखती हूँ डेली नोट्स में, जैसे कि सुविचार, ऐसी चीजें जो थोड़ा थोड़ा टर्न कर दे लाइफ को। अभी कुछ स्टोरी, शॉर्ट स्टोरीज, लघु कथाएं।

0: वगैरह, ऐसा सब कुछ।
1: अच्छा, तो आप कोई सुविचार जो हमारे श्रोताओं को थोड़ा सा उनकी लाइफ में पॉजिटिव टर्न आ जाए, आप ऐसा कुछ शेयर करेंगी?
0: इंग्लिश में मैंने लिखा था, टर्न योर वे, यू आर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर यू एंड कीप शाइनिंग इन द लिटिल ग्लूम ऑफ अ ग्लीम। आप चमकते रहिए, आप खुद की जिम्मेदारी हैं, और छोटी सी रोशनी में भी आपके पास इतना बड़ा खजाना है जितना आप दूसरों से अंधेरे में भी नहीं पा सकते।

0: वरन्या, आपके जो ये नगमे हैं जो आपने गाए हैं, वो हजारों रंग के सितारे जरूर बनेंगे हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: प्यारी बच्चों, अभी आप नन्हे हस्ताक्षर क्रम में बहु प्रतिभा की धनी आपकी दोस्त वरण्या के साथ नंदिनी दीदी की ये बातचीत सुन रहे थे। हाँ तो प्यारी बच्चों, आप भी वरण्या से प्रेरणा लें और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए अपने टैलेंट को नई दिशा प्रदान करें। प्यारे बच्चों, हमारे भारत देश के बारे में ये बात जग प्रसिद्ध है, रूप रंग हैं बोलियां न्यारी, पर सबसे मिलकर भारत की शोभा सारी। विविधता में एकता से लगती भारत भूमि अंबर से भी प्यारी। बिल्कुल बच्चों, विविधता में एकता, यही तो भारतीय संस्कृति की विशेषता रही है। विविध धर्मों के लोग यहाँ आपसी प्रेम भाईचारे के साथ मिलकर एक दूसरे के पर्वों को, उत्सवों को मनाते हैं और अपनी खुशी का इजहार करते हैं। तभी तो बच्चों, भारत को पर्वों उत्सवों का देश कहा जाता है। हाँ तो हमारे प्यारे बच्चे समझ गए होंगे हमारा इशारा कि हम यहाँ पर किस पर्व की बात कर रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आने वाले उत्तराखंड के महत्वपूर्ण लोक पर्व हरेला की, जो प्रकृति, हरियाली, खेती और पर्यावरण संरक्षण के का संदेश देता है। हाँ तो प्यारे बच्चों, 16 जुलाई को मनाए जाने वाले हरेला पर्व की आप सभी को अग्रिम हार्दिक शुभकामनाएं। प्यारे बच्चों, ये पर्व हमारी समृद्धि, संस्कृति और प्रकृति के प्रति सम्मान का प्रतीक है। बच्चों, आपकी जानकारी के लिए बताते हैं कि हरेला पर्व मुख्य रूप से उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में श्रावण मास के आरंभ में मनाया जाता है। इस पर्व से लगभग 10 दिन पूर्व घरों में मिट्टी के पात्रों में गेहूं, जौ, मक्का आदि के बीज बोए जाते हैं और 10 दिन बाद जब इन बीजों से हरी भरी पौध निकल आती है तो उसे बहुत ही शुभ माना जाता है। परिवार के बड़े बुजुर्ग हरेला को सभी के सिर पर रखकर आशीर्वाद देते हैं और सुख समृद्धि और अच्छी फसल की कामना करते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चों, प्रकृति प्रेम का प्रतीक हरेला पर्व पर्यावरण संरक्षण और सांस्कृतिक विरासत को संजोए रखने का संदेश देता है। ज्ञानवर्धक बातचीत के इसी क्रम में सुनते हैं बच्चों कुछ जरूरी संदेश।

बच्चों अभी आप सुन रहे थे कुछ जरूरी संदेश और अब सुनते हैं एक आवश्यक सूचना। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वर्ष 2026 हेतु प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार PMRVP के लिए नामांकन आमंत्रित किए गए हैं। ये प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार 18 वर्ष से कम आयु वर्ग के उन बच्चों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने बहादुरी, समाज सेवा, पर्यावरण संरक्षण, खेल, कला एवं संस्कृति तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियां प्राप्त की हों। सभी इच्छुक अभ्यर्थी एवं संस्थाएं योग्य बच्चों के नामांकन

0: सिफारिशें केवल ऑनलाइन माध्यम से राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर भेज सकती हैं। पोर्टल है https://awards.gov.in। नामांकन भेजने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है। विशेष रूप से बालिकाओं, कमजोर वर्गों, अनुसूचित जाति जनजाति तथा दिव्यांग बच्चों में से प्रतिभाशाली बच्चों को चिन्हित कर उनके नामांकन हेतु प्रोत्साहित किया जाए। अधिक जानकारी हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल अथवा संबंधित विभाग से संपर्क किया जा सकता है। सूचना समाप्त हुई।
1: प्यारे बच्चों, महत्वपूर्ण जानकारियों के इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब बात करते हैं 17 जुलाई को मनाए जाने वाले महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस के बारे में। प्यारे बच्चों, इस दिवस का मुख्य उद्देश्य विश्व में न्याय, मानवाधिकार, शांति और कानून के शासन को बढ़ावा देना है। ये दिन लोगों को ये संदेश देता है कि हर व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के साथ न्याय मिलना चाहिए। और जानते हैं, न्याय किसी भी सभ्य समाज की आधारशिला है। ये दिवस हमें न्याय, समानता और मानव गरिमा के मूल्यों को अपनाने की प्रेरणा देता है। यदि प्रत्येक व्यक्ति न्याय और सत्य के मार्ग पर चले तो निश्चित ही शांतिपूर्ण, सुरक्षित और समतामूलक समाज का निर्माण संभव है। प्यारे बच्चों, ज्ञानवर्धक बातचीत का रुख मनोरंजन की ओर ले जाते हुए सुनते हैं ये प्यारा सा सॉन्ग।
2: सुन मेरे नन्हे, सुन मेरे मुन्ने, सुन ले एक कहानी। बहुत दिनों की बात है, एक था राजा, एक थी रानी। राजा रानी के घर में था राजकुमार एक प्यारा। एक के दिल का टुकड़ा था वो, एक की आंख का तारा। दिन राजा का मन चाहा, चलकर करें शिकार। निकल पड़ा वो होकर एक नीले घोड़े से सवार। और मालूम है वो क्या कहता जा रहा था?
3: क्या कहता जा रहा था?

0: पलट के जादूगर ने जादू का तीर जो छोड़ा, तूता बनकर रह गया राजा, पत्थर बनकर घोड़ा।
1: फिर क्या हुआ माँ, फिर क्या हुआ?
0: तो अब राजा कैसे कहता?
1: क्या माँ,

बच्चों अब वक्त हो चला है कार्यक्रम को समाप्त करने का, तो चलते चलते कुछ हिदायतें भी आपको देते चलें। जैसे बच्चों बरसात के इस मौसम में अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, बाहर की खुली खाद्य वस्तुएं बिल्कुल भी ना खाएं, स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें क्योंकि बच्चों स्वास्थ्य व स्वच्छता का आपस में घनिष्ठ संबंध है, इसलिए अपने आसपास का वातावरण और विद्यालय को स्वच्छ रखें। बच्चों ये आपकी भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। एक खास बात और आपसे साझा करते चलें, जैसे कि आज बच्चों बड़ी धूमधाम से जगह जगह और विद्यालयों में वन महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत वृक्षारोपण और हरितिमा, इस अवसर पर आप भी वृक्षारोपण जैसे पुनीत कार्यों में सहयोग कर राष्ट्र के सच्चे हितैषी व शुभचिंतक बने। हाँ तो बच्चों, इन्हीं हिदायतों के साथ हमारा आज का ये बाल वाटिका कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। लेकिन जाने से पहले आपको याद दिला दें प्रतिक्रिया देने के लिए। जी हाँ प्यारे बच्चों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा? आप अपने सुझाव, प्रशंसा या कोई भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 9457078288 पर SMS या मैसेजेस भी कर सकते हैं। और इसके साथ यदि कोई स्वरचित कहानी, कविता लिख भेजना चाहते हैं तो लिख भेजें इस पते पर।

6673। हाँ तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगले कार्यक्रम में नई उम्मीद, विश्वास और नई ऊर्जा के साथ। तो चलते चलते आप सभी को आपकी दीदी अर्चना का जय हिंद।

अभी हमारे बाल श्रोता सुन रहे थे अपना साप्ताहिक कार्यक्रम बाल वाटिका। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 1:45 होने को हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम लोक धारा। इस कार्यक्रम में श्रोताओं लीजिए सुनिए सुरेंद्र राजेश्वरी के गायक कुमावनी लोकगीत।

आकाशवाणी नजीब आबाद से इस समय आप सुन रहे हैं लोक संगीत का कार्यक्रम लोक धारा, और इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं सुरेंद्र राजेश्वरी के गाए कुमावनी लोकगीत। और लीजिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंतिम लोकगीत।

0: इसी के साथ लोक संगीत का कार्यक्रम लोकधारा भी यहीं पर संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 2 बजे हैं, अब आप समाचार सुनेंगे।
1: गुड आफ्टरनून, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम सुनील वर्मा विद द मिड डे न्यूज। The headlines. India condemns attack on commercial vessel GFS Galaxy off coast of Oman. 10 Indians rescued, one reported missing. New Delhi expresses concern over

0: fund contributions internally through a private trust rather than depositing them directly into the employees' provident fund organization. We have a report.
1: The EPFO's introduced amenity scheme provides a one-time opportunity for eligible establishments that have been operating recognized PF trusts to regularize their status retrospectively. It is intended to bring such trusts within a uniform statutory framework while ensuring compliance with the applicable legal provisions. For employees, the scheme is expected to provide a greater certainty regarding the legal status of their employer's provident fund trust. It also requires that member accounts should have received contributions and interest at par with or better than the statutory EPFO rates for the prescribed relief to apply. By regularizing exempted PF trusts, the scheme is also expected to make the administration of provident fund benefits more streamlined and legally compliant. With Devendra Kumar, this is Vishnu PS for Akashwani News, Delhi.
0: In tennis, two Wimbledon titles will be decided today as the men's singles and women's doubles finals are played. World number one Jannik Sinner will face Germany's Alexander Zverev in the men's singles final at 8:30 p.m. Indian Standard Time. Sinner booked his place in the title clash with a straight sets victory over Novak Djokovic, while Zverev entered his first Wimbledon final after defeating British wildcard Arthur Fairey. The women's doubles final will begin at 5:30 p.m. IST. In the FIFA World Cup, England booked their semi-final berth with a 2-1 extra time win over Norway, while Argentina entered the semi-final defeating Switzerland 3-1 this morning. In the first semi-final, France and Spain will face off on Wednesday. The match will kick off at 12:30 a.m. Indian Standard Time. France reached the semi-finals after defeating Morocco 2-0 in the quarter-finals, while Spain advanced with a hard-fought 2-1 victory over Belgium. The second semi-final will be played on Thursday between England and Argentina at 12:30 a.m. Indian Time. The winners of the two semi-finals will meet in the FIFA World Cup final on July the 20th at New York, New Jersey Stadium. The losing teams will play the third place playoff on July the 19th in Miami. The India Meteorological Department has issued an orange alert for heavy to very heavy rainfall over Assam, Meghalaya, Bihar, Sub-Himalayan, West Bengal and Sikkim today. It has predicted heavy rainfall conditions at isolated places over Arunachal Pradesh, Chhattisgarh, East Uttar Pradesh, Gangetic West Bengal and Himachal Pradesh today. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. India condemns attack on commercial vessel GFS Galaxy off coast of Oman. 10 Indians rescued, one reported missing. New Delhi expresses concern over continuing attacks on commercial shipping in the region. Prime Minister Narendra Modi returns to New Delhi after concluding several agreements during his visit to Indonesia, Australia and New Zealand. Home Minister Amit Shah inaugurates and lays foundation stones of several development projects in Ahmedabad. Employees Provident Fund Organization introduces a six-month amnesty scheme for establishments operating private Provident Fund Trust to regularize their status. In Wimbledon, Jannik Sinner to lock horns with Alexander Zverev for men's singles title this evening. And in FIFA World Cup, England and Argentina enter semi-finals. And with that, we end the midday news.
2: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत जीएफएस गैलेक्सी पर हमले की कड़ी निंदा की। 10 भारतीय सुरक्षित बचाए गए, एक लापता। क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों पर लगातार हो रहे हमलों पर भारत ने चिंता जताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। इस दौरान कई समझौते हुए। गृहमंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने निजी भविष्य निधि ट्रस्ट संचालित करने वाले प्रतिष्ठानों को अपनी स्थिति नियमित करने के लिए 6 महीने की माफी योजना शुरू की। विंबलडन टेनिस में आज शाम पुरुष सिंगल्स के फाइनल मुकाबले में यानिक सिनर और अलेक्जेंडर ज्वेरेव होंगे आमने सामने। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में इंग्लैंड और अर्जेंटीना ने सेमीफाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। भारत ने आज ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत जीएफएस गैलेक्सी पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि पोत पर सवार 11 भारतीयों में से 10 को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि एक अब भी लापता है। मंत्रालय ने बताया कि ओमान में भारतीय दूतावास स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है और खोज तथा बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। विदेश मंत्रालय ने क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों पर लगातार हो रहे हमलों पर चिंता जताई है। मंत्रालय ने तनाव तुरंत कम करने और कूटनीतिक समाधान के लिए जारी वार्ता को जल्द पूरा करने का आह्वान किया है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप क्षेत्र के समुद्री मार्गों पर निर्बाध और सुरक्षित नौवहन तथा व्यापार जल्द से जल्द बहाल किए जाने की बात कही है। अमरीका ने आज सुबह ईरान पर फिर से हवाई हमले किए हैं। ये हमले ईरान द्वारा होर्मुज जलडमरू मध्य में एक वाणिज्यिक पोत पर हमला किए जाने के बाद किए गए। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने बताया कि हमलों में ईरान के लगभग 140 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। जवाबी कार्रवाई में ईरान ने बहरीन, कुवैत, कतर और संयुक्त अरब अमीरात को निशाना बनाते हुए मिसाइल और ड्रोन हमले किए। इस बीच ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड ने अगली सूचना तक होर्मुज जलडमरू मध्य को बंद करने की घोषणा की है और चेतावनी दी है कि यदि अमरीकी हमले जारी रहे तो वो भी जवाबी कार्रवाई करेगा। विदेश मंत्रालय ने वर्ष 2017 में जारी यमन यात्रा संबंधी अधिसूचना वापस ले ली है। ये अधिसूचना यमन में गृहयुद्ध और बिगड़ती सुरक्षा स्थिति के कारण भारतीय नागरिकों की यात्रा पर प्रतिबंध लगाने के लिए जारी की गई थी। हालांकि मंत्रालय ने परामर्श जारी कर भारतीय नागरिकों को यमन की गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की सफल यात्रा पूरी कर स्वदेश लौट आए हैं। श्री मोदी की इस महत्वपूर्ण यात्रा की प्रमुख उपलब्धियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 3 देशों के दौरे के पहले चरण में इंडोनेशिया का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय वार्ता की और दोनों देशों के बीच चल रहे सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। दोनों देशों ने रक्षा, दुर्लभ खनिज, कृषि, समुद्री सुरक्षा और अंतरिक्ष जैसे कई क्षेत्रों में समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान बिंतांग आदिपूर्ण से सम्मानित किया गया। इस दौरे के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया पहुंचे, जहां उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के साथ 3rd भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लिया। इस यात्रा के दौरान ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम की आपूर्ति का रास्ता भी साफ हुआ। साथ ही ऑस्ट्रेलिया सुपर ने भारत के नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में 50 करोड़ ऑस्ट्रेलियाई डॉलर के निवेश की घोषणा की। अपने दौरे के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचे। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने भारत न्यूजीलैंड रणनीतिक साझेदारी की शुरुआत की घोषणा की। इसके अलावा दोनों देशों ने वर्ष 2030 तक आपसी व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य तय किया। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि भारत हिंद महासागर और हिंद प्रशांत क्षेत्र में एक मजबूत और विश्वसनीय शक्ति के रूप में उभरा है। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाल की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड यात्रा से भारत के रणनीतिक संबंध और मजबूत हुए हैं।
4: हम एक स्टेबिलाइजिंग फोर्स बनके इंडो पैसिफिक और इंडियन ओशन में आज उभर पाए हैं, इसी को प्रधानमंत्री एक साथ लेके आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने अपने परिश्रम से, अपने स्टेट्समैनशिप से अपने पॉलिसी को भारत में लागू करके बाकी देशों को दिखाया और सभी देशों ने एक्सेप्ट किया कि यस, लेट दिस बी द फ्रेमवर्क, लेट इंडिया डिसाइड द फ्रेमवर्क। हम इस फ्रेमवर्क पे एक लॉन्ग टर्म कोऑपरेशन, आप सोचिए ये कितनी बड़ी जीत है।
2: श्री संबित पात्रा ने कहा कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौता एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने बताया कि भारत और ऑस्ट्रेलिया ने रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया है। इसके तहत दोनों देशों के युद्धपोत एक दूसरे के डॉक पर सर्विसिंग करा सकेंगे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने माफी योजना 2026 शुरू की है। इसके तहत छूट प्राप्त भविष्य निधि ट्रस्ट चलाने वाले प्रतिष्ठानों को अपनी स्थिति नियमित करने का एक मुश्त अवसर दिया गया है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने बताया कि ये योजना 6 महीने तक लागू रहेगी। इसका लाभ उन प्रतिष्ठानों को मिलेगा जो आयकर अधिनियम 1961 के तहत मान्यता प्राप्त भविष्य निधि ट्रस्ट का संचालन कर रहे हैं। ऐसे ट्रस्ट में कर्मचारी भविष्य निधि का प्रबंधन सीधे ईपीएफओ के बजाय संबंधित प्रतिष्ठान अपने निजी ट्रस्ट के माध्यम से करता है।
5: ईपीएफओ की अमनिस्ट योजना मान्यता प्राप्त भविष्य निधि ट्रस्ट चला रहे पात्र संस्थानों को नियमित करने का एक और अवसर प्रदान करती है। इस योजना के तहत वे अपने ट्रस्ट की स्थिति को पिछली तारीख से नियमित करा सकते हैं। इसका उद्देश्य ऐसे ट्रस्टों को एक समान वैधानिक व्यवस्था के दायरे में लाना और सभी लागू कानूनी प्रावधानों के पालन को सुनिश्चित करना है। कर्मचारियों के लिए यह योजना उनके नियोक्ता के भविष्य निधि ट्रस्ट की कानूनी स्थिति को लेकर अधिक स्पष्टता और भरोसा प्रदान करेगी। योजना के तहत निर्धारित राहत का लाभ तभी मिलेगा जब सदस्यों के खातों में निर्धारित अवधि के दौरान अंशदान जमा किया गया हो और उस पर ईपीएफओ की वैधानिक ब्याज दर के बराबर या उससे अधिक ब्याज दिया गया हो। छूट प्राप्त पीएफ ट्रस्टों को नियमित किए जाने से भविष्य निधि लाभों का प्रबंधन अधिक सरल, सुव्यवस्थित और कानूनी प्रावधानों के अनुरूप होने की भी उम्मीद है। दीपेंद्र कुमार की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: योजना का लाभ लेने के लिए पात्र प्रतिष्ठानों को संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय में ईमेल के माध्यम से औपचारिक आवेदन भेजना होगा। देश भर में आज व्यापक पौधारोपण अभियान चलाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार के व्यापक पौधारोपण अभियान के अंतर्गत 35 करोड़ पौधे लगाए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर से राज्यव्यापी पौधारोपण महायज्ञ का शुभारंभ किया। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सतत भविष्य सुनिश्चित करने तथा पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधारोपण बेहद महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में वृक्ष मित्र और पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम में श्री चौहान ने कहा कि आज पूरा विश्व जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी का तापमान बढ़ने को लेकर चिंतित है।
6: वर्तमान दर से अगर ग्रीन गैसों का उत्सर्जन जारी रहा, वनों की कटाई, प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन जारी रहा तो 2050 तक पृथ्वी को गंभीर पर्यावरणीय, आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा।
2: गृह मंत्री अमित शाह ने आज अहमदाबाद में 405 करोड़ रुपए की लागत वाली नगर निगम की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर श्री शाह ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत विशाल पौधारोपण अभियान का शुभारंभ भी किया। उनके लोकसभा क्षेत्र गांधीनगर में 1,25,00,000 से अधिक पौधे लगाए गए। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
7: गृह मंत्री ने बरगद, पीपल, जामुन और अर्जुन जैसे स्वदेशी पौधे लगाने पर जोर दिया, जिससे शहर के तापमान में 5% की कमी आएगी और भावी पीढ़ियों के लिए एक रहने योग्य पर्यावरण सुनिश्चित होगा। उन्होंने पर्यावरण स्थिरता में योगदान देने के लिए हर घर और आवासीय सोसाइटी से सोलर रूफटॉप अपनाने का भी आह्वान किया। इस पर्यावरण अभियान के तहत आज 101 नए ऑक्सीजन पार्क का भी उद्घाटन किया गया और उनकी जानकारी देने वाली एक विशेष ई बुक भी जारी की गई। सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए एएमटीएस और बीआरटीएस के बेड़े में आज 333 नई इलेक्ट्रिक बसें शामिल की गई, जिससे अहमदाबाद बीआरटीएस देश का पहला 100% इलेक्ट्रिक और 0 प्रदूषण वाला बेड़ा बन गया है। अपर्णा खोंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
2: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज कहा कि देश के समाज सुधारकों की महान विरासत का सम्मान करना और उसे बनाए रखना हर नागरिक का कर्तव्य है। श्री राधाकृष्णन ने नई दिल्ली के द्वारका में मन्नम इंटरनेशनल सेंटर में मन्नम स्मृति मंडपम का उद्घाटन के अवसर पर यह बात कही। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत एक पौधा भी लगाया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। वियतनाम में भारतीय दूतावास ने आज बताया कि फू क्वोक द्वीप के निकट कल हुई नौका दुर्घटना में जान गंवाने वाले 15 भारतीय नागरिकों के पार्थिव शरीर हो ची मिन सिटी ले जाए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में दूतावास ने कहा कि वहां आवश्यक औपचारिकताएं पूरी होने के बाद पार्थिव शरीरों को भारत लाया जाएगा। इससे पहले दूतावास ने बताया था कि नौका दुर्घटना में घायल 15 भारतीयों को उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है और वे भारत लौट रहे हैं। दक्षिण की कोकिला के रूप में प्रसिद्ध रही गायिका एस जानकी अम्मा का कर्नाटक के मैसूर में एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। वे 88 वर्ष की थी।
8: ये जन्म हो, चाहे वो जन्म हो, छह दशक से अधिक लंबे अपने संगीत सफर में एस जानकी ने कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम और हिंदी सहित कई भाषाओं में लगभग 48,000 गीतों को अपनी आवाज दी। अपनी बहुमुखी गायकी और भावपूर्ण प्रस्तुति के कारण उन्हें नाइटिंगेल ऑफ द साउथ के नाम से जाना जाता है। एस जानकी को सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका के लिए 4 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त हुए। इसके अलावा उन्हें 33 राज्य फिल्म पुरस्कार भी मिले। वर्ष 2013 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। इस जानकी के निधन से भारतीय फिल्म संगीत जगत ने एक ऐसी महान स्वर साधिका को खो दिया है जिनकी आवाज आने वाली पीढ़ियों के लिए भी प्रेरणा और विरासत बनी रहेगी।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि एस जानकी अम्मा का निधन संगीत और संस्कृति जगत के लिए अपूर्णीय क्षति है। कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी का 74 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उन्होंने खाड़ी देश को कूटनीति, मीडिया और निवेश के क्षेत्र में प्रमुख वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित किया था। उन्होंने अल जजीरा समाचार नेटवर्क की भी शुरुआत की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के पूर्व अमीर शेख के निधन पर दुख व्यक्त किया है। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं आनंद पाठक।
9: फीफा फुटबॉल विश्व कप के सेमीफाइनल मुकाबले तय हो गए हैं। पहला सेमीफाइनल बुधवार को फ्रांस और स्पेन के बीच खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 12:30 बजे से शुरू होगा। दूसरा सेमीफाइनल गुरुवार को इंग्लैंड और अर्जेंटीना के बीच खेला जाएगा। इंग्लैंड ने नॉर्वे को अतिरिक्त समय में 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में जगह पक्की की, जबकि अर्जेंटीना ने आज सुबह स्विट्जरलैंड को 3-1 से हराया। दोनों सेमीफाइनल मुकाबलों के विजेता 20 जुलाई को न्यूयॉर्क के न्यू जर्सी स्टेडियम में खिताबी मुकाबले में आमने सामने होंगे। सेमीफाइनल की दोनों पराजित टीमें 19 जुलाई को मियामी में तीसरे स्थान के लिए प्लेऑफ खेलेंगी। टेनिस में आज विंबलडन के पुरुष सिंगल्स और महिला डबल्स के फाइनल मुकाबले खेले जाएंगे। पुरुष सिंगल्स के फाइनल में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी यानिक सिनर का मुकाबला जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़ेवरेव से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 8 बजे शुरू होगा। महिला डबल्स के फाइनल में चीन की गुओ हनयू और फ्रांस की क्रिस्टीना मिलादिनोविक की जोड़ी का मुकाबला कनाडा की रेबियेला ड्रोवास्की और ब्राजील की लुइसा स्टेफनी की जोड़ी से होगा। ये मैच शाम 5:30 बजे खेला जाएगा।
2: और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, बिहार, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और सिक्किम में तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश, गंगा के मैदानी इलाकों, पश्चिम बंगाल और हिमाचल प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर आज तेज वर्षा हो सकती है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, पंजाब और उत्तराखंड में भी आज इसी तरह की स्थिति बने रहने का अनुमान है। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत GFS गैलेक्सी पर हमले की कड़ी निंदा की। 10 भारतीय सुरक्षित बचाए गए, 1 लापता। क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों पर लगातार हो रहे हमलों पर भारत ने चिंता जताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। इस दौरान कई समझौते हुए। गृहमंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने निजी भविष्य निधि ट्रस्ट संचालित करने वाले प्रतिष्ठानों को अपनी स्थिति नियमित करने के लिए 6 महीने की माफी योजना की शुरुआत की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
10: मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 2:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम एक और अनेक। इस कार्यक्रम में श्रोताओं, आज हम आपको सुनवा रहे हैं अभिनेता, निर्माता व निर्देशक राजेंद्र कुमार के साथ अन्य पर फिल्माए गए कुछ गीत। श्रोताओं, राजेंद्र कुमार फिल्मी दुनिया की एक ऐसी हस्ती हैं जिन्हें फिल्मी जगत में जुबली कुमार के नाम से जाना जाता है। अभिनेता, निर्माता और निर्देशक राजेंद्र कुमार को हिंदी फिल्मों में ख्याति प्राप्त है। श्रोताओं, राजेंद्र कुमार का जन्म 20 जुलाई 1929 को पाकिस्तान के सियालकोट में हुआ था। देश के विभाजन के बाद उनका परिवार भारत आकर मुंबई में बस गया। शुरुआती दिनों में आर्थिक परिस्थितियां आसान नहीं थी, लेकिन अभिनय के प्रति उनके जुनून ने उन्हें कभी हार नहीं मानने दी। फिल्मी दुनिया में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत छोटे किरदारों से की। संघर्ष के कई वर्षों बाद उन्हें पहचान मिली और फिर सफलता का ऐसा दौर आया कि उनकी लगातार कई फिल्में सिल्वर जुबली और गोल्डन जुबली मनाने लगी। इसी वजह से उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में जुबली कुमार के नाम से जाना जाता है।

0: शास्त्रीय संगीत का अमृत कलश रागम भारतीय शास्त्रीय संगीत को समर्पित आकाशवाणी का बेहतरीन चैनल रागम डीटीएच पर लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए इंटरनेट और आपके मोबाइल ऐप पर भी रागम आनंद की अटूट रसधार।
1: विज्ञापन से पहले आपने सुना फिल्म आस का पंछी का ये गीत, जिसे आवाजें दी थी लता मंगेशकर और मुकेश ने। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से, और इस कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे हैं अभिनेता निर्माता व निर्देशक राजेंद्र कुमार की। श्रोताओं, साल 2060 का दशक राजेंद्र कुमार के नाम रहा। उनकी फिल्मों में रोमांस, पारिवारिक भावनाएं और सामाजिक संदेशों का सुंदर मेल देखने को मिलता था। उनकी सादगी, मासूम मुस्कान और प्रभावशाली अभिनय ने उन्हें हर वर्ग के दर्शकों का प्रिय बना दिया। राजेंद्र कुमार की यादगार फिल्मों में धूल का फूल, मेरे महबूब, दिल एक मंदिर, आरजू, संगम, सूरज, झुक गया आसमान, तलाश और गवार जैसी अनेक सफल फिल्में शामिल हैं। इन फिल्मों ने न केवल बॉक्स ऑफिस पर सफलता हासिल की, बल्कि आज भी दर्शकों के दिलों में अपनी जगह बनाए हुए हैं। तो श्रोताओं, आइए आपको भी सुनवाते हैं फिल्म संगम का ये गीत, जिसे गाया है मोहम्मद रफी ने।

0: अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं?
1: तो इंतजार किस बात का,
0: अभी बुक कराइए अपना विज्ञापन आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
1: विज्ञापन बुकिंग कराने के लिए आज ही संपर्क करें।
0: हमारा मोबाइल नंबर है 8865845809।
1: नंबर एक बार फिर सुन लीजिए 8865845809।
0: और हमारा ईमेल आईडी है
1: akashwaninajibabad@gmail.com।
0: तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और बुक कराइए अपना विज्ञापन
1: आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
2: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक और अनेक, बात कर रहे हैं राजेंद्र कुमार की। राजेंद्र कुमार की फिल्में बेहद लोकप्रिय रही। श्रोताओं, मोहम्मद रफी की आवाज और राजेंद्र कुमार का अभिनय, यह जोड़ी हिंदी सिनेमा की सबसे सफल जोड़ियों में मानी जाती है। बहारो फूल बरसाओ, याद न जाए बीते दिनों की, मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम और एनर्गिसे मस्ताना जैसे गीत आज भी सदाबहार माने जाते हैं।

आई मिलन की बेला। इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की युगल आवाजों में। श्रोताओं, राजेंद्र कुमार केवल एक सफल अभिनेता ही नहीं थे, बल्कि उन्होंने निर्माता के रूप में भी अपनी पहचान बनाई। उन्होंने अपने बैनर के तहत कई फिल्मों का निर्माण किया और नए कलाकारों को भी अवसर दिए। अपने अनुभव और दूरदर्शिता के कारण वे फिल्म निर्माण के क्षेत्र में भी सम्मानित रहे। निर्देशन के क्षेत्र में भी उनका योगदान उल्लेखनीय रहा। उन्होंने फिल्मों के निर्माण और रचनात्मक पक्ष को बहुत करीब से समझा। उनकी सोच हमेशा अच्छी कहानी, मजबूत अभिनय और पारिवारिक मूल्यों को महत्व देने वाली रही। श्रोताओं, राजेंद्र कुमार को कई प्रतिष्ठित पुरस्कार और सम्मान प्राप्त हुए। हालांकि उन्हें जितने पुरस्कार मिले उससे कहीं अधिक सम्मान उन्हें दर्शकों के प्रेम के रूप में मिला। उनकी लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उनकी फिल्मों का

आकाशवाणी नजीबाबाद से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक और अनेक। और आज के कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं अभिनेता, निर्माता व निर्देशक राजेंद्र कुमार की। श्रोताओं, राजेंद्र कुमार का निजी जीवन भी प्रेरणादायक रहा। वे मेहनत, अनुशासन और सादगी में विश्वास रखते थे। उन्होंने अपने बेटे को भी फिल्म जगत में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। आज भले ही राजेंद्र कुमार हमारे बीच नहीं हैं, उनका निधन 12 जुलाई 1999 को हुआ, लेकिन उनकी फिल्में, उनके गीत और उनका अभिनय आज भी उतना ही जीवित है। नई पीढ़ी भी उनकी फिल्मों के माध्यम से भारतीय सिनेमा के स्वर्णिम दौर को महसूस कर सकती है। श्रोताओं, राजेंद्र कुमार का जीवन हमें यह सिखाता है कि प्रतिभा के साथ यदि मेहनत, धैर्य और समर्पण जुड़ जाए तो सफलता निश्चित रूप से मिलती है। संघर्ष के शिखर तक पहुंचने की उनकी कहानी हर कलाकार के लिए प्रेरणा का स्रोत है।

श्रोताओं, एक समय ऐसा भी था जब राजेंद्र कुमार की लगभग हर फिल्म सिल्वर जुबली या गोल्डन जुबली बनाती थी। इसी वजह से उन्हें जुबली कुमार भी कहा जाता था। उनकी सफलता मेहनत, लगन और अभिनय के प्रति समर्पण का परिणाम थी। और आइए अब आपको सुनवाते हैं फिल्म आरजू का ये बेहद खूबसूरत गीत।

श्रोताओं, आज हमने याद किया हिंदी सिनेमा के उस चमकते सितारे को जिनकी फिल्में और गीत आज भी हमारे दिलों में बसे हुए हैं। राजेंद्र कुमार का नाम भारतीय सिनेमा के स्वर्णिम इतिहास में हमेशा सम्मान के साथ लिया जाएगा। इस महान अभिनेता, निर्माता और निर्देशक राजेंद्र कुमार को हमारी ओर से विनम्र श्रद्धांजलि और उनकी अमूल्य फिल्मी विरासत को नमन। और श्रोताओं, इसी के साथ कार्यक्रम एक और अनेक अब यहीं पर संपन्न होता है। एक और अनेक कार्यक्रम में आप सुन रहे थे अभिनेता, निर्माता व निर्देशक राजेंद्र कुमार और अन्य पर फिल्माए गए कुछ गीत। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 3 बजे हैं, हमारी ये सभा अब यहीं पर संपन्न होती है। संध्याकालीन सभा में शाम 5 बजे आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए।

शुभ संध्या श्रोताओं, हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। शाम के 5 बज रहे हैं। हमारी आज की संध्याकालीन सभा के प्रसारण अब आरंभ होते हैं। सभा के आरंभ में श्रोताओं, आपको लिए चलते हैं कार्यक्रम मेरा सपना उन्नत भारत की ओर, जिसमें आज जानकारी है रिजर्व बैंक खुदरा प्रत्यक्ष योजना और पीएम गतिशक्ति योजना के बारे में। आइए पहले जानते हैं रिजर्व बैंक खुदरा प्रत्यक्ष योजना के संदर्भ में। श्रोताओं, सपने वही सच होते हैं जिनके साथ सही जानकारी और सही कदम जुड़ जाते हैं। और आज हम बात करेंगे ऐसी ही दो महत्वपूर्ण सरकारी पहलों की, जो एक ओर आम नागरिकों को सुरक्षित निवेश का अवसर देती हैं, तो दूसरी ओर देश के विकास की रफ्तार को नई उड़ान देती हैं। और श्रोताओं, वो योजना है रिजर्व बैंक खुदरा प्रत्यक्ष योजना यानी RBI रिटेल डायरेक्ट स्कीम, एक ऐसी पहल जो व्यक्तिगत खुदरा निवेशकों को बिचौलियों के बिना सीधे सरकारी प्रतिभूतियों यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में निवेश करने की सुविधा देती है। इसे 12 नवंबर साल 2021 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया था। सीधी पहुंच के साथ निवेशक RBI डायरेक्ट स्कीम में प्रत्यक्ष पोर्टल के माध्यम से अपना RDG यानी खुदरा प्रत्यक्ष गिल्ट खाता मुफ्त में खोल सकते हैं और सुरक्षित पारदर्शी निवेश का अवसर प्राप्त कर सकते हैं। भारत का कोई भी पात्र वयस्क नागरिक जिसके पास पैन कार्ड, आधार या अन्य वैध पहचान पत्र, भारत में बचत बैंक खाता, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी हो, वो RBI रिटेल डायरेक्ट पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण कर सकता है। श्रोताओं, इस स्कीम के अंतर्गत जब सरकार को सड़क, रेलवे, अस्पताल, स्कूल या अन्य विकास कार्यों के लिए आर्थिक सहायता की आवश्यकता होती है तो वह जनता से उधार लेती है। इसके बदले सरकार एक बॉन्ड यानी प्रमाण पत्र देती है और तय समय पर ब्याज सहित पैसा वापस करती है। छोटे निवेशक, नौकरी पेशा लोग, व्यापारियों, गृहिणियों, वरिष्ठ नागरिकों और ऐसे लोग जो अपेक्षाकृत सुरक्षित निवेश चाहते हैं, वे सभी सीधे RBI के माध्यम से इस पहल से जुड़ सकते हैं और सरकारी प्रतिभूतियां खरीदने और बेचने की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। और आइए श्रोताओं, अब बात करते हैं पीएम गतिशील योजना के बारे में।

श्रोतों, पीएम गतिशील योजना एक राष्ट्रीय मास्टर प्लान है जिससे भारत के बुनियादी ढांचे यानी इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने और विभिन्न परिवहन माध्यमों को आपस में जोड़ने के लिए 13 अक्टूबर साल 2021 को इसकी शुरुआत की गई थी। ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो सड़क, रेल, विमानन और जल मार्ग से जुड़ी 16 से अधिक केंद्रीय मंत्रालयों को एक साथ लाता है। ये एकीकृत योजना सामान की ढुलाई का समय और माल भाड़ा यानी लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करने में मदद करती है। श्रोताओं, मान लीजिए किसी किसान को अपना अनाज गांव से शहर भेजना है। अगर सड़क अच्छी नहीं होगी, रेल की सुविधा नहीं होगी या गोदाम दूर होंगे तो समय और पैसा दोनों ज्यादा खर्च होंगे। पीएम गतिशक्ति योजना का मकसद है कि सड़क, रेलवे, बंदरगाह, हवाई अड्डे, जलमार्ग और लॉजिस्टिक जैसी सुविधाओं को एक साथ जोड़कर विकास को तेज बनाया जाए, जिससे श्रोताओं, किसानों की उपज जल्दी बाजारों तक पहुंचेगी, उद्योगों का खर्च कम होगा, व्यापार तेज होगा, नए कारखाने लगेंगे, युवाओं को रोजगार मिलेगा, लोगों का यात्रा समय कम होगा, देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। साथ ही श्रोताओं, इस योजना का उद्देश्य ये भी है कि देश में तेज और बेहतर परिवहन व्यवस्था हो, विकास परियोजनाओं को समय पर पूरा किया जाए जिससे उद्योग और व्यापार को बढ़ावा मिल सके, रोजगार के नए अवसर डेवलप हो सकें और भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में भी अग्रसर कदम बढ़ाए जा सकें। अब श्रोताओं, सवाल उठता है कि इसमें आवेदन प्रक्रिया क्या है। तो आपको बताएं, ये योजना कोई व्यक्तिगत लाभ या नगद सहायता देने वाली योजना नहीं है और ना ही इसमें आम नागरिक आवेदन करते हैं, बल्कि ये सरकार की राष्ट्रीय विकास योजना है जिसका लाभ पूरे देश को बेहतर सड़क, रेल, परिवहन, व्यापार और रोजगार के रूप में मिलता है। और श्रोताओं, जानकारी ही सबसे बड़ी ताकत है। जब नागरिक समझदारी से निवेश करता है और देश का विकास, तभी एक तेज राह पर चलता है, तभी एक मजबूत, समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार होता है। तो क्यों ना हम सब जागरूक बने, सही जानकारी अपनाएं और सरकारी योजनाओं का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं, विकसित भारत के निर्माण में अपनी भागीदारी निभाएं।

अभी श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम मेरा सपना उन्नत भारत। ये आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। शाम के 5:10 हो रहे हैं। आइए श्रोताओं, आपको जानकारी दे दें हमारे केंद्र से प्रसारित आज के शेष और कल प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों के संदर्भ में।

नेशनल प्रोग्राम ऑफ फीचर आज रात्रि 9:30 पर, अखिल भारतीय रविवासीय संगीत सभा का प्रसारण आज रात्रि 10:00। ये दोनों ही कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे। और अब से कुछ ही देर यानी 5:15 पर युवा श्रोता सुनेंगे दैनिक कार्यक्रम युववाणी, जिसमें आज का क्रम होगा कुछ खास है आज, झलकी, बूस्टर्स, साथ ही साथ गीत संगीत भी। शाम 6:05 पर कृषि जगत कार्यक्रम में आज किसान भाई सुनेंगे चर्चा, बरसात में साफ सफाई का महत्व और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के विषय में। साथ ही भेंटवार्ता प्रसारित की जाएगी जिसका विषय होगा मत्स्य पालन तकनीक से लाभ। वार्ताकार होंगे मत्स्य पालन ग्राम व पोस्ट हरगनपुर बिजनौर से श्री अनूप कुमार सिंह, जिनसे बातचीत करेंगे जितेंद्र कुमार। आशुतोष सत्येंद्र कुमार की कहानी आज का श्रवण कुमार आप सुन सकते हैं विविधा के अंतर्गत आज संध्या 6:45 पर।

6:55 पर समय रहेगा छाया गीत का। फरीदा खानुम की गाई चंद गजलें पेश की जाएंगी सुगम संगीत में आज संध्या 7:32 पर। कार्यक्रम अदबी दुनिया में आज शाम 7:50 पर कलाम शायर पेश करेंगे संतोष कुमार। आज शाम 8 बजे सुनिएगा कार्यक्रम गीत संध्या, साथ ही 8:30 पर होगा कार्यक्रम एक ही फिल्म से। ये थे हमारे आज के शेष कार्यक्रम। अब एक नजर कल प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों पर। पब्लिक स्पीक प्रोग्राम सुनिएगा कल रात्रि 9:30 पर आकाशवाणी दिल्ली से, कल सवेरे 9:15 पर जिले की हालचाल आकाशवाणी लखनऊ से। भक्ति संगीत कार्यक्रम वंदना कल सवेरे 6:05 पर, साथ ही श्री रामचरित मानस गान की भव्य प्रस्तुति सुनिएगा कल सवेरे 6:30 पर। चिंतन का समय रहेगा कल सवेरे 6:40 पर। रमेश चंद्र गोयल से काव्य पाठ सुनिएगा काव्यधारा कार्यक्रम के अंतर्गत कल सवेरे 6:45 पर। और दांतों का पायरिया रोग, ये जानकारी रहेगी स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में कल प्रातः 7:05 पर। खेती की बातें, खेती की बातें कार्यक्रम सुनिएगा कल सवेरे 6:15 पर। और श्रोताओं, कार्यक्रम सूरज के साथ साथ का समय रहेगा रोज की ही तरह कल सवेरे 7:31 पर। भीम सिंह की गाय रागनिया आप सुनेंगे लोक संगीत कार्यक्रम धरती गाती है के अंतर्गत कल सुबह 9:25 पर। रतन सिंह के गाय जौनसारी लोकगीत सुनिएगा लोकधारा कार्यक्रम में कल दिन में 1:45 पर। NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग सुनिएगा पूर्वाहन 11:30 पर। पंडित मनीराम का गाया राग पट्टदीप सुनिएगा शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में कल दिन में 12:05 पर। तो ये थी संक्षिप्त रूपरेखा हमारे केंद्र से प्रसारित प्रमुख कार्यक्रमों के संदर्भ में। ये आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। समय शाम के 5:15 और लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम युववाणी।

0: कहते हैं हर सुबह एक नया पैगाम लेकर आती है और हर शाम कुछ यादें अपने नाम कर जाती है। जिंदगी तो बस पल पल का सफर है, जो मुस्कुरा कर जी ले वही असली हुनर है।
1: दोस्तों मुस्कुराइए, क्योंकि आपकी मुस्कान ही आज के इस सफर की सबसे खूबसूरत धुन है।
0: जी हाँ, हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट प्रोग्राम युववाणी में। और आज आप सभी के साथ प्रोग्राम में हाजिर हूँ मैं, आपकी अपनी साथी शिवानी।
1: हेलो एंड वेरी गुड इवनिंग दोस्तों, शिवानी और आप सभी के साथ हाजिर हूं मैं, आपका अपना दोस्त दीपांशु। वैसे दोस्तों देखा जाए तो जिंदगी कभी तेज रफ्तार की तरह तेज दौड़ती है, तो कभी किसी शांत नदी की तरह बहती रहती है।
0: जी हाँ, ये हर दिन हमें नए लोगों से मिलवाती है, नए अनुभव देती है और कुछ ऐसी यादें भी दे जाती है जो उम्र भर हमारे साथ रहती हैं।
1: लेकिन शिवानी, इन सब के बीच एक चीज ऐसी भी है जो हर थके हुए मन को सुकून देती है, और वो है म्यूजिक।
0: बिल्कुल सही कहा तुमने, म्यूजिक की यही खूबसूरती है कि ये बिना कुछ कहे भी बहुत कुछ कह जाता है। कभी किसी की याद बनकर, कभी किसी की मोहब्बत बनकर, कभी हौसला बनकर, तो कभी किसी की मुस्कान बनकर हमारे दिल में उतर जाता है।
1: तो दोस्तों अगर आप इस वक्त सफर में हैं तो हमारा साथ आपके रास्ते की और भी खूबसूरत बना देगा। अगर घर पर हैं तो चाय के साथ इस महफिल का मजा लीजिए, और अगर किसी वजह से मन थोड़ा उदास है तो उम्मीद है आपका मन भी ठीक हो जाएगा।
0: वैसे दीपांशु, तुम्हारी इस बात से ना मुझे एक लाइन याद आ रही है कि ये दौर भी गुजर जाएगा, ये दर्द भी कम हो जाएगा, थोड़ा सब्र रख मेरे दोस्त, देखना मन भी ठीक हो जाएगा।
1: वाह वाह, बहुत अच्छी बात कही तुमने। तो शुरू करते हैं इस सफर को प्यारे से गीत के साथ।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाए। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: हम हंसाएंगे, आप मुस्कुराएंगे,
2: हो जाओगे आसास कर लोट पोट,
1: क्योंकि यह है लाफ्टर का सॉलिड डोज।
3: और डोज में क्या है?
2: डोज में है मजा। जी हाँ, मजा।

0: आ गया।
1: बच्चों मैंने आपको अभी टेस्ट दिया था ना, हो गया ना सभी बच्चों का?
2: हो गया मैम।
1: तो बच्चों जब आप इसे सबमिट करें तो अपने फादर का नाम इसमें जरूर डाल दें। राजू और मोहन, तुम दोनों सगे भाई हो ना?
3: यस मैम।
1: तो तुमने अपने फादर का नाम अलग अलग क्यों लिख रखा है भाई?
3: मैम पिछली बार आपने मोहन को बहुत मारा था चीटिंग करने पे, फिर आप हमें बोलोगे कि हमने चीटिंग की, इसलिए मैंने नाम ही अलग लिख दिया।
0: जी हाँ मजा आ गया।
1: वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम युववाणी और अब वक्त है हमारे सेगमेंट कुछ खास है आज का, जिसमें आज हम जानेंगे नेशनल सिंपल सिटी डे यानी राष्ट्रीय सादगी दिवस के बारे में।
4: सबसे पहले दोस्तों ये जानते हैं कि ये दिन मनाया क्यों जाता है। ये दिन अमेरिका के फेमस लेखक और दार्शनिक हेनरी डेविड थारो के जन्मदिन पर मनाया जाता है। उनका मानना था कि जिंदगी को जितना सरल रखा जाए उतना ही इंसान ज्यादा खुश और सुकून में रहता है।
1: जी हाँ, वो मानते थे जिंदगी की असली खुशी ज्यादा पाने में नहीं बल्कि जो है उसकी कद्र करने में है। आज के दौर में हम नई चीजें खरीदने की दौड़ में लगे रहते हैं, नया फोन, नए कपड़े, नई गाड़ी, लेकिन इस भागदौड़ में अक्सर हम अपने लोगों के लिए समय, मन का सुकून और छोटी छोटी बातों में खुशियां ढूंढना ये कहीं पीछे छोड़ जाते हैं।
4: वैसे दोस्तों सादगी का मतलब ये नहीं कि आपके पास किसी भी चीज की कमी हो, कुछ कम हो। सादगी का मतलब है जो है उसमें भी संतुष्टि और अपनापन महसूस करना।
1: बिल्कुल, इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप अपने सपने छोड़ दें, आगे बढ़ना बंद कर दें। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि जिंदगी में बैलेंस बनाए रखें, जितना जरूरी मेहनत करना है उतना ही जरूरी अपने लिए और अपनों के लिए समय निकालना भी है।
4: जैसे कभी माँ के हाथ की चाय, बारिश की पहली बूंद, पुराने दोस्तों का अचानक आया फोन या परिवार के साथ बिना किसी जल्दबाजी के बिताई गई एक शाम। यकीन मानिए लाइफ के सबसे खूबसूरत पल अक्सर बिना किसी कीमत के ही मिलते हैं।
1: बिल्कुल, जिंदगी की असली खुशी महंगी चीजों में नहीं बल्कि उन पलों में होती है जो दिल को सुकून देती हैं। तो दोस्तों जब आप कोई नई शुरुआत करें तो एक पल रुकिए, गहरी सांस लीजिए, अपने आसपास देखिए और उन छोटी छोटी बातों के लिए शुक्रिया कहिए जो आपकी जिंदगी को खूबसूरत बनाती है।
4: जी हाँ दोस्तों, एक छोटा संकल्प लीजिए कि हम कंपैरिजन नहीं करेंगे, शिकायतें कम करेंगे और हम चीजों से ज्यादा लोगों को इम्पोर्टेंस देंगे।
1: और अब हमें अब दीपांशु अपने दोस्तों का एंटरटेनमेंट का भी ख्याल रखना चाहिए, तो उन्हें लेकर चलते हैं इस म्यूजिक की तरफ और सुनवाते हैं ये प्यारा सा गीत।

नए जमाने की नई तस्वीर। अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें। ले आएं आज ही दूरदर्शन का डीडी फ्री डिश। इसमें हैं आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स। इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स। और तो और सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और आपका डीडी फ्री डिश।

0: की झलकी दिखला जा।
1: गुड मॉर्निंग मैम।
2: गुड मॉर्निंग
1: मैम, मुस्कान दिस साइड।
2: वेलकम टू द टीम मुस्कान। और हाँ, ये मैम नहीं चलेगा, तुम सिर्फ मुझे प्रिया कह सकती हो।
1: बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे प्रिया सर कब तक आएंगे?
2: अरे वो बस आते ही होंगे, अपनी घड़ी देखते हुए और बेचैन होते हुए।
3: चलो चलो, 5 मिनट हैं, फिर मेरी एक मीटिंग है, जल्दी आओ सब इधर। टीम, हम फिर से फेल हो गए। पहले Q2 एंड अब Q3, इन दोनों का टारगेट हमने मिस कर दिया। कर क्या रहे हैं हम लोग? हाँ, मुझे जानना है कि गलती किसकी है। शांत क्यों हो, बोलो यार, किसकी गलती है?
2: सर, गलती किसी की नहीं है, पूरी टीम ने रात दिन मेहनत की थी, लेकिन क्लाइंट ने आखिरी टाइम पर आकर अपनी रिक्वायरमेंट चेंज कर दी।
3: यार बहाने मत बनाओ प्रिया, कॉर्पोरेट में ना बहाने नहीं चलते, सिर्फ रिजल्ट चलता है। यू मुस्कान, राइट? ओके, तो तुम नहीं हो, है ना? चलो बताओ तुमने क्या सीखा यहाँ पे।
1: सर वैसे जहाँ तक मैंने यहाँ देखा और सीखा है कि यहाँ कॉफी ठंडी होने से पहले 3 मीटिंग कंप्लीट हो जाती है।
3: यार मजाक नहीं, ये सीरियस जगह है, किसने हायर किया तुम्हें? क्या यार, क्या मजाक क्या चल रहा है भाई? मुस्कान, अब आगे से बोलोगी ना तो बी सीरियस, ठीक है?
2: सर एक मिनट, मुस्कान मजाक नहीं कर रही सर, सच तो कह रही है। हम मीटिंग पर मीटिंग करते रहते हैं, काम कब करेंगे सर? पिछले हफ्ते हमने 18 घंटे मीटिंग में बिताए और सिर्फ 6 घंटे ही काम किया।
3: तुम कहना क्या चाहती हो प्रिया?
1: सर 1 मिनट, सर मैं कुछ कहना चाहती हूँ। सर जैसे मेरा पहला दिन है और मैं नई हूँ, वैसे मुझे बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन सर कॉलेज में जहाँ तक हमें सिखाया गया है कि टीम वर्क से बड़े टारगेट हासिल किया जा सकता है, लेकिन यहाँ मैं क्या देख रही हूँ कि यहाँ तो सब एक दूसरे पर ही दोष मढ़ने को लगे हैं, एक दूसरे पर ही ब्लेम लगा रहे हैं।
2: बिल्कुल सही कह रही हो मुस्कान तुम, टारगेट इसलिए मिस हुआ क्योंकि हमने एक दूसरे की बात ही नहीं सुनी। मैं रात 12 बजे मेल भेजती हूँ, सर सुबह 6 बजे उसका जवाब मांगते हैं, और अगर कोई मदद मांगे तो किसी के पास समय ही नहीं होता।
3: तुम दोनों सही हो, मुझे लगता है यार मैं भी बहुत ज्यादा गुस्से में रहता हूँ, बार बार सिर्फ टारगेट टारगेट टारगेट सिर्फ यही बोलता रहता हूँ, और शायद चिल्लाता भी हूँ तुम लोगों पर, कभी पूछा ही नहीं टीम खुश है, थकी हुई तो नहीं है, अपना काम सही से कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। ओके चलो, आज से नए रूल बनाते हैं, हफ्ते में सिर्फ 2 मीटिंग, बाकी टाइम सिर्फ काम। और हाँ, मैं चाहता हूँ हम सिर्फ काम पर फोकस करें रदर देन फालतू की बातें, और सबसे इम्पोर्टेंट, सबको एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, इम्पोर्टेंस देनी होगी।
1: तो सर Q3 का टारगेट?
3: मुस्कान कुछ ज्यादा होशियार हो, तो मैंने बोला ना कि हम मिलकर काम करेंगे और Q3 का टारगेट भी टाइम से पूरा करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? क्योंकि कॉर्पोरेट का मतलब सिर्फ कंपनी नहीं होता, मतलब एक दूसरे के साथ काम करना और एक दूसरे को साथ लेकर चलना।
2: वाह सर वाह, अब हुई ना बात, काम बड़ा हो या छोटा, टीम सबसे बड़ी होनी चाहिए।
3: दोस्तों अभी आपने सुना टीम वर्क झलकी के अंतर्गत, तो दोस्तों मैं भी अपनी कुछ और लाइनें यहाँ पे जोड़ना चाहूंगा। टीम वर्क का मतलब मिलजुल कर एक लक्ष्य को पाना है। अकेले इंसान जितना भी मेहनती हो वो हर काम परफेक्ट नहीं कर सकता, लेकिन जब लोग एक साथ मिलकर अपनी अलग अलग क्षमताओं के काम क्षमताओं से काम करते हैं तो मुश्किल से मुश्किल काम भी आसान हो जाता है। टीम वर्क से काम जल्दी होता है, नए आइडियाज आते हैं और गलतियां भी कम होती हैं क्योंकि एक दूसरे को समझाने वाले होते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ चलिए अब सुनते हैं इस प्यारे से गीत के साथ और प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं।

0: हम हंसाएंगे, आप मुस्कुराएंगे,
1: हो जाओगे हंस-हंस कर लोटपोट,
0: क्योंकि यह है लाफ्टर का सॉलिड डोज।
2: और डोज में क्या है?
1: डोज में है मजा।
3: जी हाँ, मजा आ गया।
4: गुड मॉर्निंग मैम।
2: गुड मॉर्निंग। अरे पप्पू, ये स्कूल में गधा और उल्लू लेकर क्यों आए हो भाई? थोड़ी बहुत अकल है नहीं तुम में?
4: मैम, आप ही तो बोलते हो ना, मैंने बड़े बड़े गधे और उल्लुओं को इंसान बना दिया।
2: तो फिर मैं इनका क्या करूं?
4: तो मैम, मैंने सोचा इनका भी भला हो जाएगा ना, ये भी बेचारे गधे और उल्लू बने हुए हैं, आप इन्हें इंसान बना दो ना।
3: जी हाँ, मजा आ गया।
5: दोस्तों, जिंदगी भी क्या कमाल का सफर है ना। कभी हंसी के मोड़, कभी आंसुओं की बारिश, कभी जीत की खुशी, तो कभी हार का सबक। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए दोस्तों, यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से। देखो, यही तो खूबसूरत है इस गीत का संदेश भी। जब आप साथ हों, जब आपके अपने साथ हों, हौसला साथ हो और उम्मीद जिंदा हो, तो सबसे मुश्किल रास्ते भी आसान लगने लगते हैं। ये गीत भी इसी, यही मैसेज है इस गीत का। तो अगर आज आपकी ज़िंदगी में कोई मुश्किल चल रही है, तो यकीन मानिए दोस्तों, ये वक्त भी गुजर जाएगा। हर रात के बाद एक नई सुबह आती है और हर सफ़र एक नई मंजिल तक ज़रूर पहुंचता है। तो चलिए, इसी उम्मीद और इसी मुस्कान के साथ सुनते हैं ये सदाबहार नगमा।

0: शिवानी, आपको पता है मैंने आज कौन सी मूवी देखी?
1: कौन सी देखी? तुम बताओगे तभी तो पता चलेगा ना दीपांशु।
0: मैंने आज मूवी देखी है गदर टू।
1: अरे उसका तो म्यूजिक बहुत प्यारा है ना?
0: बिल्कुल, तो चलिए क्यों ना आपको और हमारे दोस्तों को सुनाते हैं उसी मूवी का एक और गीत।
1: चलिए।

0: तो दोस्तों ये तो हमारा आज का कार्यक्रम, हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। हमारे प्रोग्राम्स आपको कैसे लग रहे हैं आप हमें ज़रूर बताइएगा अपने खत के जरिए। और खत लिखने के लिए हमारा पता है कार्यक्रम युवानी अनुभाग द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी नजीबाबाद पिन कोड 2467।
1: हमारे व्हाट्सएप नंबर है 9457078288। नंबर एक बार फिर से सुन लीजिए 9457078288। आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं अपडेटेड रहने के लिए। हमारा फेसबुक अकाउंट है आकाशवाणी नजीबाबाद, हमारी इंस्टाग्राम आईडी है @आकाशवाणी नजीबाबाद। साथ ही हमारे पुराने प्ले कहानियाँ, आने वाले प्रोग्राम्स हमारे यूट्यूब चैनल पे आकाशवाणी नजीबाबाद पर सुन सकते हैं। आप सभी लाइक, शेयर, कमेंट, फॉलो, सब्सक्राइब कीजिए। और इसी के साथ अपने साथी दीपांशु को
0: और शिवानी को दीजिए कार्यक्रम संपन्न करने की अनुमति। नमस्कार।

स्वागतम। अभी आप सुन रहे थे युवा श्रोताओं का दैनिक कार्यक्रम युववाणी। ये आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। समय शाम के 6 बजने को है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अमेरिका, ब्रिटेन और 12 अन्य पश्चिमी तथा एशियाई देशों ने 2016 के मध्यस्थता निर्णय के आधार पर दक्षिण चीन सागर में चीन के व्यापक दावों को अवैध बताया है। इन 14 देशों के संयुक्त बयान में कहा गया है कि विवादित जल क्षेत्र में क्षेत्रीय स्थिरता को खतरे में डालने वाली कार्रवाई अस्वीकार्य है। 27 देशों वाले यूरोपीय संघ के बयान में इसे विवादों के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में ऐतिहासिक निर्णय बताया गया है। हालांकि चीन ने इस निर्णय को खारिज करते हुए कहा है कि यह अमान्य है और इसका कोई बाध्यकारी प्रभाव नहीं है। उसने दोहराया है कि वो इसे न तो स्वीकार करता है और न ही मान्यता देता है। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत जीएफएस गैलेक्सी पर हमले की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि पोत पर सवार 11 भारतीयों में से 10 को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि एक लापता है। ओमान में भारतीय दूतावास स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है और खोज तथा बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। मंत्रालय ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप क्षेत्र के समुद्री मार्गों पर निर्बाध और सुरक्षित नौवहन तथा व्यापार जल्द से जल्द बहाल किया जाना चाहिए। अमेरिका ने आज सुबह ईरान पर फिर से हवाई हमले किए। ये हमले होर्मुज जलडमरू मध्य में एक वाणिज्यिक पोत पर ईरान के हमले के बाद किए गए। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने बताया कि हमलों में ईरान के लगभग 140 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। उसके बाद ईरान ने बहरीन, कुवैत, कतर और संयुक्त अरब अमीरात को निशाना बनाते हुए मिसाइल और ड्रोन हमले किए। इस बीच ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड ने अगली सूचना तक हॉर्मुज जलडमरू मध्य को बंद करने की घोषणा की है। देश भर में पौधे लगाने के लिए आज व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत उत्तर प्रदेश में आज 35 करोड़ पौधे लगाए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर से राज्यव्यापी पौधारोपण महायज्ञ का शुभारंभ किया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि टिकाऊ भविष्य सुनिश्चित करने और पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधे लगाना बेहद महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में वृक्ष मित्र और पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम में श्री चौहान ने कहा कि आज पूरा विश्व जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी का तापमान बढ़ने से चिंतित है।
1: वर्तमान दर से अगर ग्रीन गैसों का उत्सर्जन जारी रहा, वनों की कटाई, प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन जारी रहा तो 2050 तक पृथ्वी को गंभीर पर्यावरणीय, आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा।
0: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज अहमदाबाद में नगर निगम की 405 करोड़ रुपए की लागत के विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर श्री शाह ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत विशाल पौधारोपण अभियान का शुभारंभ भी किया। इस अभियान के तहत आज उनके लोकसभा क्षेत्र गांधीनगर में 1,25,00,000 से ज्यादा पौधे लगाए गए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज इंदौर में एक पेड़ मां के नाम वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया। इसका लक्ष्य राज्यभर में 21,00,000 पौधे लगाना है। इस अभियान के अंतर्गत 51,000 वर्षा जल संचयन इकाइयां स्थापित करने की भी योजना है। सरकार ने इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल से वाहन के ईंधन टैंक में समस्या संबंधी दावे का खंडन किया है। सोशल मीडिया पर वायरल फर्जी तस्वीर में ऐसा दावा किया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को झूठा बताया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि तेल विपणन कंपनियों द्वारा आपूर्ति किया जा रहा E20 पेट्रोल भारतीय मानक ब्यूरो के निर्धारित मानकों के अनुरूप है। लंदन के लॉर्ड्स में भारतीय महिला क्रिकेट टीम और इंग्लैंड के बीच एकमात्र टेस्ट के तीसरे दिन का खेल जारी है। भारत ने अपनी दूसरी पारी में ताजा समाचार मिलने तक 4 विकेट पर 250 रन बना लिए हैं। इससे पहले इंग्लैंड की टीम पहली पारी में 170 रन पर सिमट गई। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के महिला डबल्स फाइनल्स में चीन की गुआ हान्यू और फ्रांस की क्रिस्टीना मेल्डोनोविक की जोड़ी का मुकाबला कनाडा की गैब्रियला डाब्रोवस्की और ब्राजील के लुइसा स्टेफिनी से जारी है। पुरुष सिंगल्स का फाइनल आज इटली के यानिक सिनर और जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वेरेव के बीच खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। संध्या की 6:05 और अब किसान भाई सुनेंगे दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत।

0: कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान बहन भाइयों को आपके भैया जितेंद्र कुमार की राम राम। और भाई सब राज्य खुशी? देखो भाई सब ठीक ठाक होंगे और हमारे भाइयों की खेती किसानी भी ठीक ठाक चल रही होगी। भैया देखो हमारे भाई रात दिन अपनी खेती किसानी में मेहनत कर रहे हैं और भैया फसल का उत्पादन करके भैया देश के खाद्यान्न की जो मांग है भैया उसकी प्रतिपूर्ति कर रहे हैं। भाइयों बरसात का समय है और भैया बारिश भी देखो 3-4 दिन पहले ही अच्छी हो गई और कुछ जगह भैया छुटपुट बारिश हो ही रही है, लेकिन भाई गर्मी भी काफ़ी है। लेकिन भाई गर्मी से देखो निजात भी हमारे किसान भाइयों को मिलेगी, बरसात भी होगी और भाई इस समय देखो हमारे किसान भाई भैया क्या काम कर रहे हैं भला। मुख्य खरीफ फसलों में भैया देखो धान की फसल आती है हमारी, तो धान की रोपाई में हमारे किसान भाई लगे हुए हैं और धान की रोपाई भैया हमारे किसान भाइयों ने कुछ न पूरी कर ली तो भैया वो जो है अपनी फसल की निगरानी करते रहें, क्योंकि भाई जो बरसात हुई थी पीछे भैया हो सकता है कि आपके खेत का पानी भैया निकल गया हो बाहर, क्योंकि ऐसा आना जो हमारी मेड़ होती है वो तेज तकड़ी बारिश में या तेज बारिश में भैया वो टूट जाती है, तो उससे जो है पानी बाहर निकल जाता है। तो भैया आप अपनी मेड़ को जो है सही कर लें और भाई भविष्य के लिए आपके खेतों में पानी का संचयन रहे। साथ ही साथ भाई जो हमारे गहरे के खेत हैं तो भैया वो हमारे भाई यानी जहाँ पानी भरता है तो वो हमारे भाई भैया अपने खेतों से अतिरिक्त पानी की निकासी कर दें, क्योंकि भाई समय से पानी की निकासी बहुत ही आवश्यक होती है, क्योंकि फसल कोई सी भी हो चाहे अधिक पानी चाहने वाली हो या मीडियम पानी चाहने वाली हो या कम पानी चाहने वाली हो, भाई देखो जब ज़्यादा दिन तक पानी भरा रहेगा तो भैया वो सूर्य की रोशनी से सूर्य की लाइट से गर्म हो जाता है, जिससे भैया हमारी पौधों की हमारी फसलों की जो जड़ें होती हैं वो भैया सुचारू रूप से कार्य नहीं कर पाती हैं, उन्हें कार्य करने में दिक्कत होती है, तो भाई जड़ गलन होने की समस्या रहती है। साथ ही साथ अन्य दिक्कत हमारे किसान भाइयों के सामने हो जाती है, फसल हमारी पीली पड़नी चालू हो जाती है। तो भाई इस सब बचने के लिए आप जो है अतिरिक्त पानी की अपने खेतों से निकासी कर दें और साथ ही भैया देखो हम जो हमारी गन्ने की फसल खड़ी है नकदी फसल है तो भाई उसकी आप देख रेख कर रहे होंगे, क्योंकि भाई इस समय जब बरसात हो है तो भाई हमारे किसान भाई क्या काम कर रहे हैं कि भैया जो खरपतवार हो जाना जैसा कि बेल हो है जो भैया हमारे गन्ने की फसल पर भैया एक छतरी टाइप की बना ले है तो भाई उसका भैया आप नियंत्रण कर रहे होंगे, चाहे भाई आप रासायनिक जो है खरपतवार नाशियों से करो या भैया आप मैनुअल करें कि भैया वह उखाड़ दें हैं जड़ को तो भैया वो सूख जा है जहाँ भी होती है, तो इस तरह से आप अपनी फसलों का ध्यान रखें निगरानी करते रहें और जागरूक हमारे किसान भाई है ही हैं भाई, वो समय से अपने सारे कार्य पूरे कर ले हैं। भाई अब बरसात का जब मौसम की बात हम कर ही रहे हैं तो क्यों ना थोड़ी सी साफ सफाई की भी बात कर ली जावे, क्योंकि बरसात में भैया देखो घास फूस उग जा है, हरी घास उग जा है और जब पानी लगे है भैया घास फूस को तो एकदम हरियाली दिख आती है, एकदम हरी हो जाती है। लेकिन भाई इसके साथ साथ कई तरह की बरसात जब आती है तो कई तरह की बीमारियां अपने साथ लेकर आती है, तो भाई बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। इस मौसम में साफ सफाई का विशेष महत्व होता है, यदि घर और आसपास का भैया वातावरण स्वच्छ रखा जाए तो भैया मच्छर मक्खियों और भैया अन्य कीटों से होने वाली या बढ़ने वाली बीमारियों से हमारे किसान भाई हमारे नौजवान साथी और जो भैया हमारी माताएं बहनें जो घर पर रहती हैं वो भैया काफ़ी हद तक बच सकती हैं। दूसरे भाई देखो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है, कुछ सावधानी यदि हम पहले से ही बरत लें तो भाई हम इन बीमारियों से बच जाते हैं, यानी बरसात के दौरान यानी बरसात के से पहले या भैया बरसात होने से एक दो दिन पहले भैया आप जो है अपने घर के आसपास पानी जमा होने की दशा में भैया उसको अगर गड्ढे हो रहे हों तो भैया उसको बंद कर दें मिट्टी डाल के या भैया अन्य कोई पदार्थ डाल के उसको बंद करके और भाई सेफ कर दें। दूसरे भाई यदि बरसात हो गई और गड्ढों में पानी भर रहा है तो भाई उसमें जो है आप उस गड्ढों का पानी निकाल दें, क्योंकि रुका हुआ पानी मच्छरों के पनपने का सबसे बड़ा कारण होता है। भाई हम कह दें है ना कि भैया कूलर में भी हमें 4-5 दिन तक पानी नहीं रखना चाहिए क्योंकि डेंगू का मच्छर कूलर में पनप जाता है, तो भाई हम जो है जहाँ भी कहीं पानी भर रहा है उसका नियंत्रण समय से करना है, उसे समय से निकालना है। भाई साथ ही साथ देखो जब बारिश पड़े है तेज तो भैया कूड़ा कचरा जो है बहका जा या भैया कूड़ा कचरा हमारे घर के आसपास इकट्ठा हो जा है तो भाई उसको कूड़े कचरे को आप जो है समय से नियंत्रित करें, समय से साफ सफाई करें, और कूड़े कचरे को जो घर का है तो भैया उसे समय से डस्टबिन में डालना सुनिश्चित करें भाई। साथ ही साथ जो हमारे घर के आसपास नालियां होती हैं, तो भाई जिनके द्वारा हमारे घर का पानी हो या भैया सड़क का पानी हो या अन्य कोई पानी हो वो निकल कर बाहर जाता है निकास होकर, तो भाई उन नालियों की हमें नियमित साफ सफाई करनी चाहिए ताकि भैया पानी आसानी से निकल सके। खाने पीने की वस्तुओं को ढककर रखना चाहिए, क्योंकि केवल स्वच्छ और उबला या फिल्टर किया हुआ पानी ही हमें पीना चाहिए। इस समय हमें काफ़ी बातों का ध्यान रखना चाहिए। साथ ही साथ व्यक्तिगत स्वच्छता की जब बात आती है तो भाई हम जो है जब हम जंगल साम या भैया हम भीग जामा तो हम जो है समय से अपने जो गिल्ले कपड़े हैं वो बदलने हैं। दूसरे भाई देखो साफ कपड़े हमें पहनने चाहिए, साथ ही साथ अपने हाथों को लगातार यानी जब भी हम जंगल साम या बाहर साम तो भैया हम खैया खाने से पहले भैया हम अपने हाथों को साबुन से अच्छी तरह से धोना है ताकि भाई हमारे हाथ जो है भैया वो निरोगी हो जाए यानी कि रोग मुक्त या कीटाणु मुक्त हो जाए और भाई हम जो है समय से जो संक्रमण होने वाला है उससे बच जाएं। तो इस छोटी छोटी बातों का इन बातों का ध्यान रखें आप काफ़ी समस्याओं से काफ़ी त्वचा संबंधी समस्याओं के खतरे से आप बच सकते हैं। किसान भाइयों बरसात के मौसम में साफ सफाई केवल अच्छी आदत ही नहीं है भाई बल्कि स्वस्थ जीवन की आवश्यकता भी है। यदि प्रत्येक व्यक्ति स्वच्छता का पालन करे तो भाई स्वयं के साथ साथ अपने पूरे समाज को भी अनेक बीमारियों से हमारे किसान भाई हमारे नौजवान साथी बचा सकते हैं। तो भाई आप भैया देखो साफ सफाई को अपनी जिम्मेदारी समझें, यो ना समझें कि भाई इसमें हमारी जो है किसी तरह की कोई बेइज्जती है या भैया हम जो कूड़ा कचरा सफाई करने का काम भैया सफाई कर्मचारी का है। भाई आप अपने आसपास भी साफ सफाई रखेंगे तो भैया आप जो है काफ़ी बीमारियों से बच सकते हैं। भाई देखो बातचीत तो हम आपसे और भी करेंगे, साथ ही साथ खेती किसानी की करेंगे, साथ ही साथ व्यवसाय की करेंगे, लेकिन भाई इस समय कार्यक्रम में लेते हैं एक छोटा सा विराम और सुनते हैं कुछ जरूरी संदेश।
1: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
2: जी,
1: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
2: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
1: पर ये होगा कैसे?
2: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
1: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
2: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
1: बस
2: बस
1: समझ गया।
2: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
3: RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
6: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
5: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
6: अब घर दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
5: डायल कीजिए 8700014242।
6: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
0: संदेश के बाद एक बार फिर हमारे सभी किसान बहन भाइयों का स्वागत है कार्यक्रम में। और भाई देखो हम बरसात की बात कर रहे थे,

0: तो भाई बरसात, जहां तक बात साफ सफाई की है, तो भैया साफ सफाई तो हमें रखनी है, साथ ही साथ भैया हमें एक चीज का और ध्यान रखना है, क्योंकि भैया हम किसान हैं और खेती किसानी से जुड़े हैं, तो भाई हम जो है अपनी फसलों का समय से बीमा करवाना है। तो भाई बीमे के लिए एक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चल रही है, जिसका हमारे किसान भाई भैया लाभ ले सकते हैं। और भाई लाभ लेकर भाई जो फसल बीमा योजना है उसका भैया लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि भाई देखो ये जो फसल प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है भैया, इसमें जो है काफी कम जो है हमारे किसान भाइयों को प्रीमियम देना होता है। यदि हम प्रीमियम की बात करें तो भाई खरीफ फसलों के लिए भैया 2%, रबी फसलों के लिए 1.5%, और नकदी फसलें जैसे हमारी गन्ना है, कपास है, भाई उनके लिए 5% प्रीमियम देना होता है। बाकी शेष राशि भैया केंद्र व राज्य सरकारें वहन करती हैं। यदि बात हम भैया प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की करें, तो भाई भारत सरकार द्वारा वर्ष 2016 में ये योजना शुरू की गई थी, और हमारे किसान भाइयों के लिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। इसका उद्देश्य है कि भैया प्राकृतिक आपदाओं, सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि, चक्रवात, कीट या रोगों के कारण जो हमारी फसलों का नुकसान होता है भाई, उसको आर्थिक सुरक्षा हमारे किसान भाइयों को दिलवाने की इस योजना के अंतर्गत भैया सारा लाभ होता है। किसान भाइयों भैया इस योजना के अंतर्गत किसान भाई हमारे बहुत कम प्रीमियम जो है देखकर अपनी फसलों का बीमा करा सकते हैं। जो हमने अभी राशि बताई है भैया कि बीमित राशि आपकी जितनी है, चाहे 2 लाख रुपए है, तो भैया आप उसका 2%, 1.5% और 5% आपको देना होता है। साथ ही साथ भैया फसल को नुकसान होने पर निर्धारित नियमों के अनुसार किसान भाइयों को बीमा राशि प्रदान की जाती है, जिससे भैया उन्हें आर्थिक संकट से उभरने में सहायता मिलती है। भाई ये योजना किसान भाइयों की आय को सुरक्षित रखने और कृषि में निवेश बढ़ाने तथा खेती को अधिक सुरक्षित और टिकाऊ बनाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। और भाई इसकी योजना का लाभ हमारे किसान भाइयों को किस तरह से लेना है, थोड़ी सी बातचीत इस संबंध में भी कर लेते हैं कि भाई जब हम जिस खाता हमारे जिसमें बैंक में है, आप उस बैंक में जाइए और भाई उस मैनेजर से मिलिए या भैया अन्य किसी कर्मचारी से बैंक के मिलकर उनको बताइए कि भाई हम जो है अपनी फसलों का बीमा कराना है, या आप भैया किसी निजी CSC यानी कि जो भैया हमारे केंद्र होते हैं कॉमन सर्विस सेंटर, भैया उस पर जाकर ऑनलाइन बीमा कंपनी के माध्यम से बीमा ले सकते हैं। भाई हमारे पास क्या होना चाहिए, एक तो भैया हमारे पास स्वयं की जमीन होनी चाहिए, दो उसका खसरा खतौनी भैया आप लेकर जाएं, दूसरे भाई आपके पास बैंक की पासबुक हो, तीसरे भाई आपको आधार कार्ड लेकर जाना है, जिससे भैया आप जो है इस योजना का लाभ भैया ले सकें। किसान भाइयों हमारी जोत की जो भूमि है वो हमारी स्वयं की होनी चाहिए, कि भैया हमने किसी बटाई वाले की या किसी ठेके वाले की जमीन नहीं होनी चाहिए। भाई इस तरह से यदि आप जो है प्रधानमंत्री फसल बीमा का योजना का लाभ लेना चाहते हैं, तो भैया प्रक्रिया के अंतर्गत भैया आप लाभ ले सकते हैं। साथ ही भाई देखो कुछ हमारे किसान भाई ऐसे हैं जो खेती किसानी के साथ साथ भैया अन्य सह व्यवसाय करते हैं, और सह व्यवसाय करके अच्छा लाभ भी कमा रहे हैं, क्योंकि आज भैया बढ़ती जनसंख्या और छोटी होती जोत की भूमि को देखते हुए भाई देखो खेती खेती से हमारे किसान भाइयों का गुजारा भैया नहीं हो रहा। तो भाई वो जो है हमारे किसान भाई चाहे मुर्गी पालन करें, चाहे मछली पालन करें, या भैया बकरी पालन करें, या भैया डेयरी व्यवसाय करें, यानी कुछ ना कुछ सह व्यवसाय के तौर पर करके भैया वो जो है अच्छी आमदनी कमा रहे हैं, अच्छा लाभ कमा रहे हैं। तो आज हम ऐसे ही व्यवसाय से संबंधित एक जानकारी अपने किसान भाइयों के लिए लेकर आए हैं। भाई जानकारी का विषय है मत्स्य पालन तकनीक से लाभ। भाई जानकारी दे रहे हैं श्री अनूप कुमार सिंह, जो कि मत्स्य पालक हैं, ग्राम व पोस्ट हरगनपुर बिजनौर से। आइए सुनते हैं ये बातचीत। किसान भाइयों नमस्कार। किसान भाइयों आज हम पहुंचे ग्राम व पोस्ट हरगनपुर जनपद बिजनौर के श्री अनूप कुमार सिंह, जो कि एक मत्स्य पालक हैं, और बड़ा अच्छा काम उन्होंने मत्स्य पालन में किया है और बड़ा अच्छा लाभ वो मत्स्य पालन से ले रहे हैं। तो आज विषय है कि मत्स्य पालन तकनीक से लाभ हमारे किसान भाई किस तरह से लें। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
1: आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: सबसे पहले हमारे किसान भाइयों को आप मत्स्य पालन का जो हमारा आज विषय है और हमारे काफी नौजवान साथी आज आपको कार्यक्रम में सुन रहे हैं, तो आज हमारे किसान भाइयों को सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत में आप यही बताइए कि मत्स्य पालन शुरुआत करने के लिए क्या क्या आवश्यकता हमारे किसान भाइयों को पड़ती है, किस तरह से वो इसकी शुरुआत कर सकते हैं।
1: सर, मैं अपना तजुर्बा आपको दे सकता हूँ
0: जी जी
1: कि
0: बिल्कुल
1: मैंने कैसे शुरुआत करी थी, और ओवर द पीरियड मैं पिछले करीब 20-25 साल से इस काम को कर रहा हूँ, और फाइनली मैंने जो नॉर्मल प्रक्रिया होती है उसके
0: जी
1: हिसाब से हमने सारी मत्स्य पालन करा।
0: जी बिल्कुल
1: बट अंत में जो निचोड़ निकला है, अब आजकल एक यूट्यूब की बड़ी अच्छी फैसिलिटी हो गई, उसमें सारा ज्ञान मिल जाता है, वहाँ से डॉक्टर का भी फायदा हो जाता है।
0: बिल्कुल
1: तो कुछ उधर से फायदा लिया, कुछ जो जानकारियाँ यहाँ विभाग से नहीं मिल पाती थी
0: जी
1: वो आजकल यूट्यूब से आपको मिल जाती हैं।
0: बिल्कुल सर
1: स्पेशलिस्ट भी सारी बता देते हैं आपको, जो बढ़िया से बढ़िया जो पालक हैं वो बता देंगे आपको।
0: जी जी जी
1: तो अभी जो मेरा अपना जो तजुर्बा है उसके अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ
0: जी
1: कि आप इसके जो फायदे करने के जो तरीके हैं, बहुत छोटे से छोटा आदमी भी इससे लाभ कर सकता है।
0: जी
1: वो इसे व्यावसायिक रूप से करे। और गलतियां हम क्या करते हैं कि क्योंकि जीरा जो है वो विभाग की तरफ से 100 रुपए का एक थैला मिलता है, जिसमें वो 1,000 बच्चे मिलते हैं,
0: बिल्कुल
1: तो भाई वो 1,000 रुपए के 10 थैले डाल दिए। छोटे से तालाब है उसमें गिनती तो इतनी डाल देते हैं, और डालते स्पॉन है,
0: जी
1: 90% चांसेस तो ये होती है कि वो बच्चा मिलता ही नहीं है।
0: जी सर
1: तो ये हमेशा जो थोड़ा सा बड़ा बच्चा हो जो सरवाइव कर सकता है
0: जी
1: और नगों में जो आता है, यानी कि 100 रुपए का 100
0: जी
1: या 100 रुपए का 200 या 100 रुपए का 300 या 400, जो नौ आती हैं
0: जी
1: वो वाला बच्चा डालें जो सरवाइव कर सकता है, जिसकी शक्ल सूरत अच्छी तरह।
0: बिल्कुल सर
1: एक तो ये है। दूसरी चीज ये है कि जो मेरा अपना तजुर्बा है कि अभी पहले हम जो करते थे डिफरेंट वेराइटीज ऑफ कार्प करते थे,
0: बिल्कुल सर
1: अब उसमें क्या था कि उनकी ग्रोथ जो है वो बहुत हल्की रहती है।
0: बिल्कुल
1: जैसे कॉमन कार्प हुआ है, ग्रास कार्प हुआ है, या सिल्वर हो गया, या
0: जी
1: ब्रिगेडियर हो गया, जो हमारे यहाँ चलन में है, इन मछलियों की ग्रोथ हल्की रहती है। और क्योंकि हम बीज तो बहुत सारा डाल देते हैं
0: जी जी
1: परंतु उसको फिर फीडबैक नहीं कर पाते, तो आप उतना करिए जितना कि आप उसको खिला भी सकते हो।
0: बिल्कुल
1: तो मैं एक आपको बहुत छोटा सा एक वो बना के देता हूँ,
0: जी
1: जिससे कि किसानों को है।
0: बिल्कुल
1: आप एक 10x10 का एक छोटा टैंक बनाइए सीमेंट का,
0: जी सर
1: और उसकी जो लागत आएगी वो लगभग 20 से 25 हज़ार रुपये की आएगी।
0: जी जी जी
1: 10x10 का जो आप टैंक बनाएंगे 5 फुट गहरा, और उसका स्लोप जो है बीच में को कर दीजिए और उसमें
0: बिल्कुल
1: पानी बीच में से निकले बाहर।
0: बिल्कुल सर बिल्कुल
1: तो इसमें क्या होता है कि तालाब की आपकी सफाई होती रहती है।
0: जी
1: एक ये होता है कि अब ये 100 वर्ग फुट का आपका एक टैंक बन गया, इसमें आप कम से कम भी नहीं तो ज्यादा से ज्यादा नहीं, कम से कम
0: जी जी
1: आप इसके अंदर लगभग 2,000 बच्चे इसके अंदर आप पाल सकते हैं,
0: अच्छा
1: ज्यादा नहीं, ज्यादा ना डालें क्योंकि सीड बहुत सस्ता आता है, तो बहुत से आदमी क्या कहते हैं यार इसमें डाल दो
0: जी जी जी
1: 10 थैले डाल दो, 400 रुपए के तो आए 10 थैले,
0: जी जी जी
1: तो वो बहुत सारा हो जाता है, उसे सरवाइव नहीं कर पाते।
0: जी
1: तो इसलिए बहुत ज्यादा जो डालें एक वर्ग फुट में, अगर जो आप 20 बच्चे भी डाल रहे हैं तो कुछ मरेंगे, कुछ भगवान जी के पास जाएंगे, कुछ कुछ चिड़िया वड़िया खाएंगी,
0: जी जी
1: तो फिर आप उसको एक परफेक्ट नंबर आता है।
0: बिल्कुल
1: और टाइम टू टाइम इसमें जब आप पानी निकाल भरेंगे तो ये जो मछलियां हैं जो खाएंगी, कुछ खाना खाएंगी
0: जी
1: तो ये कुछ अपना एक्सक्रीट भी करती हैं, जैसे हम लोग बाथरूम जाते हैं ऐसे
0: जी
1: ये भी करती हैं,
0: बिल्कुल
1: तो वो बाथरूम जो है या जो शिट है इनकी जो स्लेज है वो
0: जी
1: निकलता रहना चाहिए।
0: बिल्कुल सर
1: और उसको निकालने का तरीका यह है कि वो जो सारा स्लोप है उसका जो टैंक का वो सेंटर में जाए और वहां से पाइप के जरिए वो बाहर को निकल जाए, जब आप खोलें तो वो पाइप के पानी के जरिए
0: अच्छा
1: सारा स्लेज निकल जाए,
0: जी
1: और जितना पानी आप निकालें उतना पानी को रिप्लेस कर दें।
0: बिल्कुल
1: जब पानी रिप्लेस करेंगे तो ऊपर से डालेंगे तो उससे क्या होगा, उसमें ऑक्सीजन भी बनती रहेगी।
0: बिल्कुल सर
1: तो ये उसका डबल फायदा हो जाता है और गंदगी निकलती रहेगी।
0: बिल्कुल सर
1: तो और दूसरी चीज इसके साथ में ये है कि मैं ये कहूंगा कि जो हमारी देसी मछलियां हैं
0: जी,
1: क्योंकि ये प्रोन टू डिजीज नहीं है,
0: जी
1: ये हमारे हिंदुस्तान के मौसम में बहुत अच्छी तरह से पलती हैं, और जिसमें मैं खास तौर से कहूँगा कि देसी मांगुर वो हाइब्रिड वाला नहीं चाहिए, हाइब्रिड तो सरकार ने मना भी करा हुआ है
0: जी
1: और अलाउड भी नहीं है
0: जी,
1: परंतु देसी मांगुर और ये दूसरी मछली जो मैं रिकमेंड करता हूँ
0: जी
1: वो है सिंगी,
0: जी
1: तो ये दो मछलियों का पालन करिए, आपका तालाब कभी खाली नहीं होगा
0: जी बिल्कुल,
1: क्योंकि ये अपना आप ही प्रजनन भी करती हैं
0: जी जी
1: और ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, 200-250 ग्राम का मैक्सिमम वजन आते हैं इनका।
2: जी जी।
1: और इसको पलने के लिए ज़्यादा ज़्यादा ये 200 ही ग्राम खाना खाएगी।
2: अच्छा,
1: अपने जीवन काल में।
2: जी।
1: तो अब आप सोच लीजिए 200 ग्राम का इसकी, आपका जो एक टैंक है लगभग आपको 1 लाख रुपए साल का छोड़ जाएगा।
2: बिल्कुल सर, आपने पक्के टैंक के संबंध में तो हमारे किसान भाई को बता दिया। जैसे हमारे कुछ किसान भाई कच्चे तालाब में मछली पालन करते हैं,
1: उनके लिए भी यही है, जो कच्चे तालाब वाले हैं उनके लिए भी यही है कि वो और चीजों में ना जाएं, केवल इसी में जाएं, सिंगी और ये जो देसी मांगूर है।
2: जी जी जी।
1: और नहीं है तो वो हमारे यहाँ एक सिस्टम है कि वो कार्प डालिए। अब कार्प को खाना बहुत ज्यादा चाहिए होता है, फिर ये नाजुक मछलियां हैं, आपने देखा होगा क्योंकि टैंक जो तालाब बने हुए हैं उनका पानी निकालेंगे कहाँ, वो पानी या तो सूखेगा तो वो सारी गंदगी तो टैंक में रहती है।
2: बिल्कुल सर, बिल्कुल।
1: तो वो उसकी वजह से वो आपने देखा होगा कि गर्मियों में कि साहब वो मछलियाँ हमारे तो ऊपर तैर गई, तो उसकी फिर प्रिकॉशन बहुत सारी लेनी पड़ती है कि जिससे उसमें पानी डालते रहें, उसमें ऑक्सीजन क्रिएट करें, दवाइयाँ उसे ऑक्सीजन बनाएं। मेरी अपनी सोच यह है कि अगर आप टैंक बनाएंगे वो रेड टैंक, तो वो गंदगी निकलती रहनी चाहिए।
2: जी जी जी।
1: हर आदमी को, जैसे आदमी को एक स्वच्छता की जरूरत है, आपका बच्चा पालते हो तो आप उसकी पॉटी साफ करते रहते हो, नहीं है तो पीछे उसके सब फोड़े फुंसी हो जाते हैं।
2: बिल्कुल सर।
1: और फिर वो बीमारी में परेशान हो जाता है। तो ऐसे ही इनका मछलियों का भी है, अगर गंदगी में रहेंगे तो वो जी नहीं पाएंगे।
2: बिल्कुल बिल्कुल, आपने बड़ी अच्छी जानकारी मछलियों के पालने के संबंध में दी और किस तरह से हमारे किसान भाई, हमारे नौजवान साथी मछली पालन व्यवसाय से जुड़ सकते हैं और अच्छा लाभ कमा सकते हैं। अच्छा सर, जैसा आप प्रजातियों के संबंध में बता रहे हैं, तो आपने अपने तालाब में कौन कौन सी प्रजाति पाल रखी हैं और किसान भाई कौन कौन सी प्रजाति आसानी से पाल सकते हैं?
1: सर मैंने तो, क्योंकि जो चलन है हमारे यहाँ, हमारे यूपी में खास तौर से इन मछलियों का चलन नहीं है
2: जी।
1: ये तो मैंने अपने यहाँ तालाब में वो कुछ बच्चे सींच रहे थे तालाब, तो उनको वो आखिर में वो जो सिंगी मिलती है वो मैंने उनसे लिया।
2: अच्छा अच्छा।
1: तो ये कोई कमर्शियल यहाँ कोई बाजार ऐसा नहीं है कि जहाँ सिंगी का सीट मिलता हो।
2: जी जी।
1: बंगाल
2: जी
1: में मिलता है।
2: अच्छा।
1: बंगाल में अगर आप कलकत्ता साइड से संपर्क में हैं तो वहाँ से आपको सिंगी भी मिल जाएगी और वहाँ से आपको देसी मांगुर भी मिल जाएगी।
2: बिल्कुल सर।
1: तो ये क्योंकि हार्डी है, इनको ऑक्सीजन भी है, हवा में से आके लेती है
2: जी जी,
1: और ये प्रजनन भी करती हैं, तो मैं तो रिकमेंड ये किसी को, क्यों ये बीमार भी नहीं होती है।
2: बिल्कुल सर।
1: और आप इसे अगर तो पानी से भी निकाल कर थोड़े दिन रख भी देंगे
2: जी,
1: तो भी ये सर्वाइव करती है।
2: अच्छा सर।
1: ये बिना पानी के भी सर्वाइव कर लेती है, दोनों मछलियाँ ऐसी हैं।
2: बिल्कुल।
1: तो आप अगर, मैं अपनी तौर से थोड़ा सा, मैं आपको एक, मैं ऐसे एक वर्कआउट कर रहा था
2: जी जी,
1: 2000 बच्चे आप डालें 10x10 के कम टैंक में।
2: जी जी जी।
1: और इसके जो बीज की कीमत आएगी वो लगभग 2000 रुपये की आएगी।
2: अच्छा सर।
1: यानी कि 2000 बच्चे, 1 रुपये का बच्चा मिल जाएगा आपको, और 1000 रुपये का बच्चा आएगा, ये लगभग 400 किलो खा के ये आपका 200 ग्राम का हो जाएगा।
2: जी जी जी।
1: और ये मात्र 6 महीने में हो जाएगा। अब 6 महीने में आप इसे दो, ये मार्केटेबल वजन होता है इसका।
2: जी जी।
1: और ये जो बिकेगा ये आपका करीब 125 लाख रुपए का बिक जाएगा।
2: अच्छा सर।
1: और 125 लाख रुपए में से आप सोच लीजिए खाना ये खाएंगे, लगभग ये जो खाना खाएंगे ये 10000 रुपए का खाएंगे
2: जी,
1: और साथ में जो बीज की कीमत है वो 2500 रुपये की बीज की कीमत आएगी, और 2500 रुपये की दवाइयाँ वगैरह आती हैं, जैसे पोटेशियम परमैंगनेट पड़ता है
2: जी, जी,
1: पानी
2: जी
1: को साफ करने के लिए।
2: बिल्कुल।
1: जब भी वो आप जाल डालें।
2: बड़ी अच्छी जानकारी हमारे किसान भाइयों को इस संबंध में दी कि किस तरह से हमारे किसान भाई और कौन कौन सी प्रजाति अपने टैंक में, अपने तालाब में पाल सकते हैं और जिससे वो अच्छा लाभ कम लागत लगाकर ले सकते हैं। अच्छा सर, जैसा आपने बीच में आहार की बात की कि आहार पर भी खर्च जो है वो कम आता है, तो हम आहार के बारे में और थोड़ी सी आहार की व्यवस्था के संबंध में अपने किसान भाइयों को जागरूक करने की दृष्टि से, क्योंकि आज हम देखते हैं कि हम कोई सा भी व्यवसाय करें, चाहे पशुपालन करें या मत्स्य पालन करें, तो उसमें हमारे किसान भाई आहार की दृष्टि से जो है पीछे रह जाते हैं कि कहीं ना कहीं वो आहार पर या तो अधिक खर्च कर देते हैं या बहुत ही निम्न खर्च करते हैं। तो आहार व्यवस्था किस तरह से हमारे किसान भाई अपनी मछलियों के लिए करें?
1: सभी जितने भी हमारे किसान भाई हैं, लगभग सबके घरों में सरसों पैदा होती है।
2: जी जी।
1: सरसों जब तेल आपका इस्तेमाल हो जाता है तो सरसों को बेच के ना आए
2: जी।
1: कभी कभी ऐसा होता है कि दुकानदार कह देता है कि जी सरसों खल मुझे दे दो, तेल आप ले जाओ।
2: बिल्कुल सर।
1: आपका मैं फ्री में तेल दूंगा।
2: तो
1: फ्री नहीं है साहब, आपकी ये भी चीज जो है खल जो है वो लगभग 25-30 रुपए किलो मिलती है
2: जी।
1: और आप वो खल जो है इसका सबसे बढ़िया भोजन जो है वो यही है
2: जी।
1: जिसे हम खल कहते हैं, तो खल से बढ़िया भोजन इनका नहीं है। अगर जो बच जाता है वो एक तो डायरेक्ट इनटेक है, ये मछलियाँ खाती हैं, तो इसको खल को जैसे पानी में भिगो कर रख दे, आज अगले दिन आप पानी में डाल दें और पानी में डालने के बाद वो खाना शुरू कर देती है, और जो पड़ा रहता है वो इसके अंदर प्लैंकटन पैदा करता है, यानी कि खाने में जैसे आप खाद का काम करते हैं तो वो पौधा बनता है ये, तो वो प्लैंकटन जो बनता है वो भी ये खाती हैं मछलियाँ। एक दूसरी चीज है, एक हमारे यहाँ चावल धान हम पैदा करते हैं, तो धान का जो छिलका वो चावल के ऊपर जो छिलका होता है जिसे हम पॉलिश कहते हैं राइस ब्रान, वो इनका बहुत बढ़िया फीड है, वो भी 25-30 रुपए किलो मिलता है।
2: जी बिल्कुल।
1: तो ये दोनों आइटम आप डालिए और कुछ मत डालिए खाने में, क्योंकि आप अगर जो भी आपको कोई बताएगा कोई फ्लोटिंग फिगर वो फ्लोटिंग फीड डालवाता है, मेरे पास है वो भी कट्टा ही देखिए। अब ये जो आता है ये 60 रुपए किलो का आता है, अब इसके अंदर जो पूछा जाए तो ये भी तो हाई डेंसिटी में प्रेस करके छोटा सा दाना बना दिया है, परंतु बना तो इसी का ही है।
2: हाँ हाँ।
1: तो फिर हम डायरेक्ट यही क्यों ना खिलाएं,
2: बिल्कुल सर।
1: तो इसलिए सबसे बढ़िया चीज है। बट मैंने क्या कहा, दूसरी चीज है गर्मी ठंडी से बचाने के लिए, इसमें आप अपने जो टैंक बनाए उसमें 10-20 पौधे उसके डाल दें, समुन्द्र सोख के। समुद्र सोक से क्या होगा, वो टेम्परेचर कंट्रोल करता है, वो छाया का रूप भी बन जाता है, और दूसरी चीज ऊपर के जो जीव से बचने के लिए अपने टैंक के ऊपर जाल जरूर लगा दें।
2: बिल्कुल सर, बिल्कुल।
1: जाल लगाने से क्या है कि आपका टैंक ऊपर है तो सांप भी नहीं घुसेगा उसके अंदर। दूसरी चीज, जब आपने जाल लगा दिया ऊपर, तो ऊपर के जो पंछी जो खाते हैं, जो मच्छी खावा होता है,
2: अच्छा,
1: लंबी चोंच वाला होता है, तो वो डाइव मार के खाता है बच्चे को।
2: अच्छा,
1: तो अगर आप जाल लगा देंगे तो वो अंदर घुसेगा ही नहीं।
2: जी, जी, जी।
1: तो आपकी जो दो तरफ से जो बचत है, इससे जाल से वो बचत हो जाएगी। ये जो फीड हम देते हैं
2: जी,
1: इसकी जो मात्रा होनी चाहिए, ये आप टाइम टू टाइम अपने, जैसे आपने अपना सीड डाला तो इनिशियली जो आप डालेंगे 2 किलो डालेंगे।
2: जी जी।
1: अब 2 किलो सीड डाला आपने, सपोजिंग लेट अस से कि वो 2000 बच्चे डाले आपने।
2: बिल्कुल सर।
1: अब वो दो, उनका वजन जो था 2000 बच्चों का, वो 2 किलो था
2: जी।
1: तो 2 किलो का 2% बॉडी वेट के हिसाब से।
2: अच्छा सर।
1: 2% का मतलब हो गया कि 2 किलो के हो गए 2000 ग्राम।
2: जी जी।
1: अब 2 यानी कि 4 ग्राम आपको फीड देना है।
2: अच्छा सर।
1: तो ये 2% बॉडी वेट के हिसाब से जैसे जैसे ये बढ़ता रहेगा
2: जी, जी, जी।
1: तो ये इसकी मात्रा बढ़ती रहेगी। इसी तरीके से एक टाइम ऐसा आएगा कि जब ये लगभग 200 से 250 ग्राम का हो जाएगा।
2: जी जी।
1: यानी कि मैं आपको एक वो बता रहा हूँ कि औसतन कैसे होगा।
2: बिल्कुल।
1: तो 200 ग्राम के हिसाब से जब ये हो जाएगा, तो 200 ग्राम हो गया तो आपका बॉडी वेट जो हो जाएगा वो लगभग 4 क्विंटल का हो जाएगा।
2: जी जी।
1: अब 400 किलो है, अब उसका 2% जो होगा वो 8 किलो हो जाएगा।
2: जी जी जी।
1: तो जो आखिर होगा उस समय आप 8 किलो दाना खिला रहे होंगे।
2: बिल्कुल सर, बिल्कुल।
1: अब 8 किलो में दोनों चीजें मिला के आप जोड़ रहे हैं। और जितने अपने घर की जो वेस्ट है
2: जी जी,
1: जो आपका चावल है, बछड़ा है, दालें बच रही हैं, वो भी इसके साथ डालते रहिए।
2: बिल्कुल सर, बिल्कुल।
1: तो वो आपका वेस्ट भी नहीं जाएगा, ये मछली का भोजन है।
2: बिल्कुल।
1: जो इंसान खाता है वही ये भी खाते हैं।
2: बिल्कुल।
1: और उसका रूप बदल।
2: बिल्कुल सर, बिल्कुल। आपने बड़ी अच्छी जानकारी हमारे किसान भाइयों को मत्स्य के आहार के संबंध में दी, कि मछलियों का आहार किस तरह से, और जो हमारे घर का वेस्ट है, चाहे दालें हैं चाहे चावल हैं, वो भी आप इन्हें खिला सकते हैं। अच्छा, कोई जानकारी यदि बताने से रह गई हो, या और कोई संदेश हमारे किसान भाइयों को, हमारे नौजवान साथियों को आप देना चाहें मत्स्य पालन के संबंध में, क्योंकि जो हमारे नौजवान साथी आज आपकी बात सुन रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं आपकी जानकारी का मत्स्य पालन में लाभ भी लेंगे, तो उस संबंध में आप क्या संदेश हमारे किसान भाइयों को देना चाहेंगे?
1: आज की तारीख में अगर आपके पास पैसे भी नहीं है
2: जी सर,
1: और जमीन बहुत कम है, आप अपने घर की छत तो सबके पास है।
2: बिल्कुल सर।
1: जब छत है तो आप ये भी पानी का टैंक जो है छत पे भी बना सकते हैं।
2: अच्छा सर।
1: अपना पानी का टैंक छत पे बनाए
2: जी,
1: और छत पे ही आपको बैंक फैसिलिटी मिल जाएगी, और आप टैंक बना के वहाँ अपने घर में पालन करें। औरतें भी इस काम को कर सकती हैं, कुछ नहीं करना होता है, केवल खाना ही तो डालना है।
2: जी, जी, जी।
1: और खाना आप उन्हें लाके खल दे दें, वो खल आज भिगो देंगी, कल को डाल देंगे इसके अंदर। और जितनी मात्रा मैंने आपको वजन बताई दिया है कितना डालना है, तो ये घर में भी करा जा सकता है। और मैं किसी को ये नहीं कह रहा कि एक टैंक से आप पेट भरिए, ये तो एक टैंक का मैंने आपको लगभग बताया कि आप एक टैंक का जो 10-25 का बनाते हैं तो आपकी आमदनी 1 लाख की हो सकती है। तो ये एक सेपरेट आमदनी है। तो ये एक बीघा जमीन अगर जो आपके पास खेती की हो गई, तो आप 100 टैंक बनाइए।
2: बिल्कुल सर।
1: और 100 टैंकों में से दोनों तरफ आप उसके पानी निकाल दीजिए, उनको भरते रहिए, एक बिजली का मोटर लगाइए, सब फैसिलिटी मिल जाएगी। आपको करने का शौक होना चाहिए।
2: बिल्कुल।
1: और दूसरी चीज है कमर्शियल वायबिलिटी में काम करिए
0: हमारे किसान भाइयों को, कि कोई भी व्यवसायिक तरीके से यदि हमारे किसान भाई, हमारे नौजवान साथी करें, न कि शौक करें, हमें व्यवसायिक तौर पर ये व्यवसाय करना है और कम लागत में अच्छा मुनाफा हमारे किसान भाई कमा सकते हैं। तो सर, आपने इतने व्यस्त कार्यक्रम से हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: अभी हमारे किसान भाइयों ने ये बातचीत सुनी, विषय था मत्स्य पालन तकनीक से लाभ। देखो भाई कितनी अच्छी जानकारी अनूप कुमार सिंह ने मत्स्य पालन के संबंध में दी कि किस तरह से बहुत कम लागत लगा के हमारे किसान भाई, हमारे नौजवान साथी जो भी सह व्यवसाय से जुड़ना चाहते हैं, वो भैया बहुत कम लागत लगा के जो है मत्स्य पालन करके यानी कि मछली पालन करके अच्छा लाभ

तो लाभ एक और चीज से होता है, वो है भैया गीत संगीत। तो किसान भाइयों को लिए चलते हैं गीत संगीत की ओर और सुनते हैं जयवेंद्र सिंह से ये प्यारी सी रागनी।

सबने लग गए प्यारा। अभी भाइयों ने ये प्यारी सी रागनी सुनी। भाई उम्मीद करते हैं किसान भाइयों की दिन भर की थकान उतर गई होगी और भरपूर मनोरंजन हमारे किसान भाइयों का हुआ होगा। भाइयों हमारा कार्यक्रम आपको कैसा लगता है भाई, ये तो आप बताएंगे ही, लेकिन भाई आज सभी के पास देखो बड़े फोन हैं भाई जो कि उंगलियां चलते हैं, तो सभी हमारे किसान भाई भैया मौसम से अपडेटेड रहिए, मौसम का हाल देखते रहिए, क्योंकि भाई पता नहीं बरसात में कब बारिश हो कब भैया उजना हो। तो भाई जो भी हमें खेती किसानी में चाहे खरपतवार नियंत्रण का कार्य करना है या भैया कोई स्प्रे करना है किसी तरह का दवाइयों का या भैया कोई बढ़वार के लिए गन्ने का, तो भाई आप मौसम से यदि अपडेटेड रहेंगे तो आपको ये पता रहेगा कि भैया आज बारिश होने वाली है, तो आप उस दिन भैया रोक दें स्प्रे के लिए। तो भाई जो कोई भी कार्य हमें कृषि कार्य करना है या भैया अपनी जो फसलें हैं चाहे भैया धान की रोपाई की बात हो, भैया यदि उसमें रोपाई करनी है तो भाई बारिश को देख कर आप रोपाई करें, या भैया किसी फसल में आपको बुआई करनी है कोई सी फसल की, जैसे उड़द की मूंग की बुआई इस समय हमारे किसान भाई करते हैं, तो भाई आप मौसम से अपडेटेड रहिए, कहने का मतलब ये है। और भाई अब देखो घड़ी भी हमें इस ओर इशारा कर रही है और बातचीत की इजाज़त किसान भाई उसे बिल्कुल नहीं दे रही है। तो भाई आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगता है, यो लिखने के लिए उठाइए कागज़ और कलम और लिखिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि जगत द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी नजीबाबाद, पिन कोड है 246763। भाई इस पते पर हमें आपके चिट्ठी पत्रों का इंतजार रहेगा, क्योंकि भाई आपके चिट्ठी पत्रों के अनुसार ही हम अपने कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करते हैं। भाई एक हमारा व्हाट्सएप नंबर है जिस पर आप बिना चिट्ठी लिखे आप व्हाट्सएप SMS कर सकते हैं। भाई वो नंबर आप नोट कर लें, 9457082888। इस नंबर पर आप भैया हमें व्हाट्सएप SMS कर सकते हैं कार्यक्रम कृषि जगत, और जो भी आपका दिशा निर्देश है, जो भी आपकी भैया हमारे कार्यक्रम के प्रति जो भी भैया सोच है वो लिख सकते हैं। और भाई कार्य नंबर आप हमारा एक बार और नोट कर लें, 9457082888। और भाई अब कार्यक्रम संपन्न करने की अपने भैया जितेंद्र कुमार को दीजिए अनुमति। किसान भाइयों राम राम।

0: नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। संध्या के 6:45 हो रहे हैं और विविधा कार्यक्रम में आइए सुनते हैं सत्येंद्र कुमार शर्मा की कहानी आज का श्रवण कुमार।
1: आज का श्रवण कुमार। नाना जी बहुत बीमार थे। उम्र की ढलती छांव अपने साथ अनेक व्याधियां लेकर आती है। वो व्यक्ति जो कभी खेत खलियानों में दिन भर काम करता था, गांव भर में फुर्ती के लिए जाना जाता था, वही अब चारपाई तक सीमित होकर रह गया है। शरीर धीरे धीरे साथ छोड़ रहा था, लेकिन मन अभी भी जागृत था। ईश्वर की कृपा से परिवार में किसी बात की कमी न थी। 3-3 बेटे, बहुएं, पोते पोतियां, घर हमेशा लोगों से भरा रहता था। आंगन में बच्चों की आवाजें गूंजती रहती और रसोई से चूल्हे की महक आती रहती। नाना जी भी अक्सर संतोष से कहा करते थे, भगवान ने बहुत अच्छा जीवन दिया है, अब कोई शिकायत नहीं है। लेकिन मनुष्य का मन बड़ा विचित्र होता है। जीवन भर की संतुष्टि के बाद भी कोई एक अधूरी इच्छा कहीं गहराई में अटक जाती है। नाना जी के मन में भी एक ऐसी ही इच्छा कहीं ना कहीं अटक गई थी। एक दिन उन्होंने अपने बेटों को पास बुलाकर धीमे स्वर में कहा, बेटा मरने से पहले एक बार गंगा स्नान करा दो। बेटों ने एक दूसरे की तरफ देखा। इच्छा तो छोटी थी, किंतु परिस्थितियां कठिन थी। नाना जी की हालत ऐसी नहीं थी कि वे 20-25 किलोमीटर का सफर तय कर सके, इसलिए उन्हें समझाते हुए बात टाल दी गई। हाँ हाँ बाबूजी, ले चलेंगे, अभी तबीयत थोड़ा संभल जाए। नाना जी संतुष्ट हो गए। उन्हें विश्वास था कि बेटे उनकी इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। दिन बीतते गए। एक सप्ताह बाद उन्होंने फिर पूछा, बेटा गंगा जी कब चलना है? इस बार भी बात टाल दी गई, लेकिन अब यह इच्छा उनके मन में और गहरी बैठ चुकी थी। धीरे धीरे उन्होंने घर आने जाने वाले हर व्यक्ति से कहना शुरू कर दिया, भाई मरने से पहले एक बार गंगा स्नान हो जाए तो मन को तसल्ली मिल जाए। सभी लोग उन्हें समझाते कि बाबूजी आपकी तबीयत ऐसी नहीं है कि आप गंगा जी तक का रास्ता तय कर सकें, लेकिन कुछ इच्छाएं शरीर से नहीं आत्मा से निकलती हैं और आत्मा तर्क नहीं सुनती। मंझले मामा किसी काम से बाहर गए हुए थे। जब वे लौटकर घर पहुंचे तो सबसे पहले पिता के कमरे में उनका हालचाल लेने गए। नाना जी चारपाई पर लेटे थे। जैसे ही उन्होंने बेटे को देखा, उनकी आंखों में एक उम्मीद चमक उठी। उन्होंने मामा जी का हाथ पकड़ा, कहा, बेटा मरने से पहले मुझे एक बार गंगा स्नान करा दो, इन सब ने तो मना कर दिया है। मंझले मामा कुछ क्षण पिता का चेहरा देखते रहे। उस चेहरे पर एक बूढ़े आदमी की जिद नहीं थी, बल्कि एक श्रद्धालु मन की अंतिम अभिलाषा थी। वे मुस्कुराए और बोले, बस इतनी सी बात, आपको गंगा स्नान मैं कराऊंगा। कमरे में बैठे बाकी लोग चौंक गए। किसी ने कहा, भैया इनकी हालत देख रहे हो ना, इन्हें इतनी दूर ले जाना संभव नहीं है। दूसरे ने भी सहमति में सिर हिलाया, लेकिन मंझले मामा के चेहरे पर वही शांत मुस्कान बनी रही। उन्होंने केवल इतना ही कहा, चिंता मत करो, कोई परेशानी नहीं होगी। अगले दिन सूरज निकलने से पहले वे उठ खड़े हुए, साथ में अपने बड़े बेटे को लिया और दोनों पैदल ही गंगा जी की ओर चल पड़े। गंगा जी वहां से लगभग 25 किलोमीटर दूर थी। भोर की ठंडी हवा बह रही थी, खेतों पर ओस की बूंदें चमक रही थीं। गांव अभी पूरी तरह जागा भी नहीं था और बाप बेटे अपने उद्देश्य की ओर बढ़ चले थे। लंबा रास्ता था, लेकिन उनके कदमों में थकान नहीं थी। पिता की इच्छा उनके लिए किसी तीर्थ यात्रा से कम न थी। लगभग 10 वे गंगा घाट पहुंच गए। गंगा अपनी शाश्वत गति से बह रही थी। मामा कुछ देर तक किनारे खड़े जलधारा देखते रहे, फिर श्रद्धा से हाथ जोड़कर गंगा माता को प्रणाम किया। दोनों ने गंगा स्नान किया। इसके बाद उन्होंने बड़े जतन से कलशों और पात्रों में गंगा जल भरा। मामा और उनके बेटों ने गंगा जल की कावड़ अपने कंधे पर रखी और पैदल ही गांव की ओर लौट पड़े। दोपहर की धूप थी, लंबा रास्ता था, पैरों में थकान उतर रही थी, धूल जमी थी पैरों पर, कंधे पर कांवड़ के निशान उभर आए थे, लेकिन चेहरे पर गहरा शांत और उज्जवल संतोष था। वही संतोष जो केवल सेवा से प्राप्त होता है। मन में केवल एक ही विचार था, पिता की इच्छा पूरी करनी है। संध्या ढलने से पहले वे घर पहुंच गए। कांवड़ अभी भी उनके कंधे पर थी। घर वालों ने देखा तो आश्चर्य से उनकी ओर देखने लगे। वे सीधा पिता के कमरे में गए, मुस्कुराते हुए बोले, बाबूजी चलो गंगा स्नान कर लो। नाना जी ने विस्मय से उनकी तरफ देखा, अरे सब तो कह रहे थे कि मैं गंगा जी नहीं जा सकता, अब तू मुझे इस हालत में कैसे गंगा जी ले जाएगा। मामा जी की मुस्कान और गहरी हो गई। उन्होंने धीरे से कांवड़ नीचे रखी। पीतल के कलश में भरा गंगाजल अभी भी शीतल था, जैसे अपने साथ गंगोत्री की हिमस्पर्शी शीतलता लेकर आया हो। मंझले मामा ने गंगाजल से भरे कलश की ओर इशारा किया और बोला, अगर आप गंगा जी नहीं जा सकते तो क्या हुआ बाबू जी, गंगा जी आपके पास तो आ ही सकती हैं। यह सुनते ही नाना जी की आंखें भर आईं। उनके सामने केवल गंगाजल नहीं रखा था, वहां एक बेटे का प्रेम था, उसकी श्रद्धा थी, उसका त्याग रखा था। माँ आज भी उस प्रसंग को याद करके भावुक उठती हैं। वो कहती हैं कि भगीरथ द्वारा अपने पितरों के उद्धार हेतु गंगा को धरती पर लाने की कथा हमने बचपन से सुनी थी। महाभारत में अर्जुन द्वारा शरसैया पर लेटे भीष्म पितामह की प्यास बुझाने के लिए धरती से जल धारा फोड़कर गंगा का निकलना भी सुना था। पर उस दिन पहली बार लगा कि ये कथाएं केवल ग्रंथों में नहीं होती। उस छोटे से आंगन में एक पुत्र के प्रेम, श्रद्धा और संकल्प ने उन महान आख्यानों का मानो एक सूक्ष्म जीवांत रूप साकार कर दिया था। उस दिन गंगाजल से अधिक पवित्र यदि कुछ बह रहा था तो वह एक बेटे के हृदय का निर्मल भाव था। घर के बाहर बड़ा सा आंगन था। बरसों से उसी आंगन ने इस परिवार की हंसी, आंसू, उत्सव और संघर्षों को अपने बीच समेट रखा था। उस दिन भी वह किसी साधारण दिन का साक्षी नहीं था। आंगन के बीचों बीच एक चौकी रखी गई और बड़े आदर के साथ नाना जी को उस पर बिठाया गया। उनके चेहरे पर उम्र की झुर्रियां थीं, किंतु उन झुर्रियों के बीच जीवन भर के संघर्ष, त्याग और वात्सल्य की चमक अभी भी वैसी ही थी। थोड़ी देर में चारों ओर उत्सव सा वातावरण बन गया, लेकिन यह उत्सव किसी बाहरी आडंबर का नहीं था, यह प्रेम का उत्सव था। उनकी आंखें बार बार अपने मंझले बेटे के चेहरे पर टिक जा रही थी। मंझले मामा ने कलश खोला। गंगाजल की पहली धार जैसे ही नाना जी के सिर पर पड़ी, उनके शरीर में एक कंपन सा दौड़ गया। उन्होंने दोनों हथेलियां जोड़ ली। तीनों भाई लोटों में जल भरकर अपने पिता के ऊपर धीरे धीरे उड़ेलते जाते। जल की प्रत्येक धार के साथ मानो उनके मन का सम्मान, कृतज्ञता और प्रेम भी बह रहा था। नाना जी कभी आंखें बंद कर लेते, कभी अपने बेटों को देखते, कभी मुस्कुराते। बेटे उनके सामने खड़े थे श्रवण कुमारों की तरह। नाना जी स्नान करते जाते और बार बार हाथ उठाकर बेटों को आशीर्वाद देते। उनके होठ थकते न थे। सुखी रहो बेटा, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे, परिवार यूं ही बना रहे, तुम्हारा कुल फले फूले। वह दृश्य एक स्नान का नहीं था, वह एक पीढ़ी द्वारा दूसरी पीढ़ी को दिया गया सम्मान था। वह उन अनगिनत रातों का प्रतिदान था जहां पिता ने स्वयं जागकर बच्चों की देखभाल की थी। वह उन अधूरे सपनों का सम्मान था जिन्हें त्याग कर उन्होंने अपने बेटों के सपने पूरे किए थे। वह उन कठोर हाथों के प्रति कृतज्ञता थी जिन्होंने जीवन भर परिश्रम करके परिवार को सुरक्षित रखा। आंगन में खड़े परिवार के अन्य सदस्य भी उस दृश्य को निहार रहे थे। किसी की आंखें नम थीं, कोई मुस्कुरा रहा था। छोटे बच्चे शायद इस रस्म का पूरा अर्थ ना समझ पा रहे हो, किंतु वे भी महसूस कर रहे थे कि आज कुछ ऐसा घट रहा है जिसे शब्दों में बांधना कठिन है। यह केवल परंपरा नहीं थी, यह परिवार की आत्मा का उत्सव था। सूरज धीरे धीरे पश्चिम की ओर झुक रहा था। उसकी सुनहरी किरणें जल की बूंदों पर पड़कर मोतियों सा चमक रही थीं। ऐसा लगता था मानो प्रकृति भी इस दृश्य को अपने आशीर्वाद से आलोकित कर रही हो। समय जैसे कुछ क्षणों के लिए ठहर गया था। वहां उपस्थित हर व्यक्ति के मन में एक ही भावना थी, जिस पिता ने जीवन भर सबको सहारा दिया, आज उसके सम्मान में पूरा परिवार नतमस्तक है। नाना जी ने एक बार फिर अपने बेटों की ओर देखा। उनकी आंखों में संतोष था, गहरा, निर्मल और दुर्लभ संतोष। शायद हर पिता अपने जीवन के अंत में इससे अधिक क्या चाहता है कि उसकी संतानें केवल सफल ही ना हो बल्कि अपने संस्कारों और रिश्तों को भी उतना ही सम्मान दे। उस दिन शायद गंगा को भी गर्व हुआ होगा कि उसका जल एक ऐसे पुत्र के कंधे पर बैठकर आया जिसने सेवा को ही सबसे बड़ा तीर्थ बना दिया। और वर्षों बाद भी जब उस दिन को याद किया जाएगा, लोगों को जल की वे धाराएं नहीं बल्कि पिता के चेहरे पर खिली वह संतुष्टि और बेटों की आंखों में झलकती श्रद्धा याद आएगी। यही स्मृति उस परिवार की सबसे बड़ी विरासत बनकर पीढ़ियों तक जीवित रहेगी।
0: विविधा कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुन रहे थे सत्येंद्र कुमार शर्मा की कहानी आज का श्रवण कुमार। ये आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्स पर। संध्या की 6:55 हो रहे हैं और लीजिए पेश है सदाबहार नगमों का कार्यक्रम छाया गीत। स्वागत है छाया गीत सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं का।

चाय गीत कार्यक्रम का ये पहला की श्रोता हूँ। आपने सुना फिल्म हमजोली से, जिसे गाया था मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले ने, गीत लिखा था आनंद बख्शी ने और संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। कार्यक्रम की अगली पेशकश

आरजू झूठ है, कहानी है, आरजू का फरेब खाना नहीं। खुश जो रहना हो जिंदगी में तुम्हें, दिल किसी से कभी लगाना नहीं।

आती हो तुम रेत के ये महल, जिनको एक रोज खुद ही मिटाओगी तुम। आज कहती हो इस दिल जले से प्यार है तुम्हें, कल मेरा नाम तक भूल जा।

0: एक पल में जो आकर गुजर जाता है ये हवा का वो झोंका है और कुछ नहीं। प्यार कहती है ये सारी दुनिया जिसे एक रंगीन धोखा है और कुछ नहीं।
1: आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से इस समय श्रोता सुन रहे हैं कार्यक्रम छाया की तो और कार्यक्रम की अंतिम पेशकश है श्रोताओं फिल्म फिर तेरी कहानी याद आई से, जिसे गाया है अलका याग्निक और कुमार सानू ने, गीत लिखा है कादिल शिफाई ने और संगीत है अनु मलिक का।

अभी श्रोता सुन रहे थे सदाबहार नगमों का कार्यक्रम छाया गीत। ये आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर। समय संध्या के 7:10 हो रहे हैं श्रोताओं, और लीजिए सुनिए देश गान।

अभी आप सुन रहे थे देशगान। ये आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। समय संध्या के 7:15 हो रहे हैं। आइए श्रोताओं, आपको जानकारी दे दें, हमारे केंद्र से प्रसारित आज के शेष और कल प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों के संदर्भ में। नेशनल प्रोग्राम ऑफ फीचर आज रात्रि 9:30 पर और अखिल भारतीय रविवासीय संगीत सभा का प्रसारण समय आज रात्रि 10:00। ये दोनों ही कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे। और अब से कुछ ही देर यानी संध्या 7:32 पर सुगम संगीत कार्यक्रम में आज सुनिएगा फरीदा खानुम की गाई चंद गजले। संध्या 7:50 पर अदबी दुनिया कार्यक्रम में कलाम शायर पेश करेंगे संतोष कुमार। फिल्म संगीत गीत संध्या 8:00। साथ ही 8:30 पर समय रहेगा कार्यक्रम एक ही फिल्म से का। और श्रोताओं, कल सवेरे 6:05 पर आप सुनेंगे भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना। सूरज के साथ साथ कार्यक्रम होगा कल सवेरे 7:31 पर। जिले की हलचल आकाशवाणी लखनऊ से सुनिएगा 9:15 पर। और लोक संगीत कार्यक्रम धरती गाती है आप सुनेंगे 9:25 पर, जिसमें कल कलाकार होंगे भीम सिंह। आप सुनिएगा इनकी गाई रागनिया 9:25 पर। और कार्यक्रम गीत तुम्हारे सुबह 10:00। साथ ही चित्रपट संगीत का आनंद लीजिएगा सुबह 11:00। प्रायोजित कार्यक्रम उमंग का प्रसारण समय रहेगा कल पूर्वाह्न 11:30 पर। शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत कल दिन में 12:05 पर आप सुनेंगे पंडित मनीराम का गायन पट्टदीप, विलंबित एक ताल और द्रुत तीन ताल में। तबले पर आपके साथ संगत करेंगे उस्ताद निजामुद्दीन खान और सारंगी पर साथ निभाएंगे उस्ताद सुल्तान खान। मिड डे मेलोडी का आनंद लीजिएगा दिन में 12:30 पर। और कार्यक्रम जगत पहने सुनेंगे कल दिन में 1:15 पर, जिसमें होगी चर्चा परीक्षा के बाद भविष्य की राह। साथ ही भेंटवार्ता प्रसारित की जाएगी छात्रों के कैंपस प्लेसमेंट और कारपोरेट करियर के लिए टिप्स। निष्ठाधिमान से बातचीत करेंगी ज्योतिपाल। और रतन सिंह के गाय जनसारी लोकगीतों का श्रोताओं आनंद लीजिएगा लोक संगीत कार्यक्रम लोकधारा में कल दिन में 1:45 पर। नई फिल्मों से गीत आप सुन सकते हैं कल दोपहर 2:30 पर। युवा श्रोता सुनेंगे अपना दैनिक कार्यक्रम युववाणी कल शाम 5:15 पर, जिसमें क्रम रहेगा बूझो तो जाने कुछ खास है आज, गपशप अड्डा, क्रश कोर्स पैसा वसूल, कहानी के उस पार, बूस्टर, साथ ही साथ फिल्म संगीत भी। कृषि जगत कार्यक्रम में किसान भाई कल सुनेंगे भेंटवार्ता, जिसका विषय होगा सिंघाड़ा उत्पादन में अधिक लाभ। वार्ताकार होंगे सेठपाल सिंह। श्रोताओं, हिंदी वार्ता के अंतर्गत कार्यक्रम विविधा के अंतर्गत आप सुनेंगे हिंदी साहित्य की वर्तमान स्थिति और प्रासंगिकता। वार्ताकार होंगी सुषमा अग्रवाल और ये कार्यक्रम आप सुनेंगे कल शाम 6:45 पर। तो ये थी संक्षिप्त रूपरेखा हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज और कल के कुछ प्रमुख कार्यक्रमों के संदर्भ में। ये आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। संध्या के 7:18 हो रहे हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

0: में पर KYC अपडेट करवाना चाहिए।
1: पर ये होगा कैसे?
0: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या ATM या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी BC के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
1: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो
0: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर KYC अपडेट करवा सकते हैं।
1: बस समझ गया।
0: अपना KYC अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: RBI कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश भर में पौधरोपण महाअभियान के तहत लगाए गए 35 करोड़ से अधिक पौधे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, पिछले 9 वर्षों में राज्य में भौतिक विकास के साथ वन क्षेत्र में भी हुआ विस्तार। मुख्यमंत्री की मौजूदगी में केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल करेंगे लखनऊ कानपुर एक्सप्रेस वे का लोकार्पण। श्री राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नितिन मिश्रा ने कहा, 22 जुलाई को ट्रस्ट की बैठक में मुख्य कार्यपालक अधिकारी की नियुक्ति पर होगा फैसला, न्यास के अधीन ही करेंगे काम। और बारिश के बाद आगरा में यमुना और बलिया में गंगा समेत कई नदियों का बढ़ा जलस्तर। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन पूर्वांचल के कई स्थानों पर बारिश का जताया अनुमान। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र, और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश भर में पौधरोपण महाअभियान एक पेड़ माँ के नाम के तहत आज 35 करोड़ से अधिक पौधे लगाए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में पवित्र त्रिवेणी के पौधों को रोपकर इस महाअभियान की शुरुआत की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रकृति के असंतुलन को संतुलित करने के लिए जरूरी है कि पर्यावरण के प्रति हर नागरिक अपने दायित्व का निर्वहन करे। राज्य सरकार ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं और भौतिक विकास के साथ साथ प्रदेश में वनाच्छादन को विस्तार देने में सफलता हासिल की है।
5: यूपी के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर में भारी वृद्धि हुई है। नए एक्सप्रेसवे, हाईवे, सड़कों का एक लंबा जाल बिछा है। नए उद्योग आए हैं। शहरीकरण में भी नई कॉलोनियां बनी हैं, बसी हैं। सबसे ज्यादा भौतिक विकास की गति को तेज करने में योगदान देने वाले राज्य के रूप में यूपी ने अपने आप को स्थापित किया है। लेकिन सबसे ज्यादा भौतिक विकास के साथ साथ पर्यावरण की दृष्टि से बड़े राज्यों में यूपी ने अपने वनाच्छादन को भी विस्तार देने में सफलता प्राप्त की है।
4: इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विकास वाटिका की स्थापना, वानिकी आधारित कैलेंडर का विमोचन और मौलश्री का पौधा लगाकर हरित उत्तर प्रदेश के संकल्प को आगे बढ़ाया। उन्होंने मुख्यमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को पौधे और चेक भी प्रदान किए। इस अवसर पर वन मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना भी मौजूद थे। प्रदेश भर में चलाए गए वृक्षारोपण महाअभियान के क्रम में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने जनभवन परिसर में सफेद चंदन का पौधा रोपित किया। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि सभी को प्रकृति के संरक्षण और स्वस्थ जीवन पद्धति को अपनाने का संकल्प लेना चाहिए। वहीं प्रदेश भर में जनप्रतिनिधियों और सामाजिक संगठनों ने अभियान में हिस्सा लिया। पेश है एक रिपोर्ट।
6: पौधरोपण महाअभियान के तहत उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने बाराबंकी में कहा कि एक पेड़ माँ के नाम अभियान पर्यावरण संरक्षण और माँ के सम्मान से जुड़ा महत्वपूर्ण जन अभियान है। आगरा के सिंगंदरा में स्थानीय सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री SP सिंह बघेल और प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने पौधारोपण कर इस अभियान की शुरुआत की। बागपत में केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत चौधरी और KP मलिक ने वृक्षारोपण किया। कानपुर नगर में कैबिनेट मंत्री राकेश सचान, देवरिया में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, इटावा में राज्य मंत्री JPS राठौर ने पौधारोपण किया। समाचार कक्ष से फजल इनाम।
4: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय सड़क परिवहन राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का शुभारंभ करेंगे। 14 जुलाई से वाहन इस एक्सप्रेसवे पर दौड़ने लगेंगे। पेश है एक रिपोर्ट।
2: 63 किलोमीटर लंबा यह एक्सप्रेसवे लखनऊ और कानपुर के बीच की यात्रा के समय को मौजूदा 3 घंटे से घटाकर केवल 45 मिनट कर देगा। इस एक्सप्रेसवे पर दुपहिया वाहनों को जाने की अनुमति नहीं होगी। यह भारत का पहला बैरियर मुक्त एक्सप्रेसवे भी बनेगा, जिसमें टोल प्लाजा से 500 मीटर पहले ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन कैमरे और फास्टैग रीडर लगाए गए हैं, ताकि वाहनों को रोके बिना टोल टैक्स काटा जा सके। हादसे की स्थिति में AI सक्षम कैमरे तुरंत NHAI नियंत्रण कक्ष को सूचित कर देंगे। इस एक्सप्रेसवे को राष्ट्रीय राजमार्ग लखनऊ कानपुर उन्नाव लालगंज के साथ साथ गंगा एक्सप्रेस से आउटर रिंग रोड से भी कनेक्ट किया गया है। मुमताज अली, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
4: श्री राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नीपेन मिश्रा ने आज अयोध्या में बताया कि रामकथा संग्रहालय की सभी गैलरियों की स्क्रिप्ट को अंतिम रूप दे दिया गया है। संग्रहालय में भगवान श्री राम के वनगमन से जुड़ी यात्रा को आधुनिक तकनीक के माध्यम से प्रदर्शित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि संग्रहालय के निर्माण पर लगभग 100 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। श्री मिश्र ने बताया कि 22 जुलाई को राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक होगी, जिसमें CEO की नियुक्ति, समितियों और उप समितियों के भविष्य सहित कई प्रशासनिक विषयों पर निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि CEO ट्रस्ट के अधीन ही काम करेंगे।
7: मुख्य प्रबंधक अधिकारी होंगे तो वह ट्रस्ट के अधीन प्रबंधन का कार्य देखेंगे, और यह तो ट्रस्ट पर निर्भर करेगा कि वह किस प्रकार का डेलीगेशन CEO को करते हैं, और जैसा डेलीगेशन करेंगे वैसे ही फिर CEO जो है वो अपना स्टाफ वहां पर व्यवस्था की करेंगे, लेकिन सब कुछ ट्रस्ट के अधीन है।
4: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO ने माफी योजना 2026 शुरू की है। इसके तहत छूट प्राप्त भविष्य निधि ट्रस्ट चलाने वाले प्रतिष्ठानों को अपनी स्थिति नियमित करने का एक मुश्त अवसर दिया गया है। ये योजना 6 महीने तक लागू रहेगी।
8: EPFO की एमनेस्ट योजना मान्यता प्राप्त भविष्य निधि ट्रस्ट चला रहे पात्र संस्थानों को नियमित करने का एक और अवसर प्रदान करती है। इस योजना के तहत वे अपने ट्रस्ट की स्थिति को पिछली तारीख से नियमित करा सकते हैं। कर्मचारियों के लिए यह योजना उनके नियोक्ता के भविष्य निधि ट्रस्ट की कानूनी स्थिति को लेकर अधिक स्पष्टता और भरोसा प्रदान करेगी। दीपेंद्र कुमार की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
4: योजना का लाभ लेने के लिए पात्र प्रतिष्ठानों को संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय में ईमेल के माध्यम से औपचारिक आवेदन भेजना होगा। प्रदेश के जलशक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने आज जालौन जिले में आधुनिक सुविधाओं से युक्त तरणताल और विकसित खेल परिसर का लोकार्पण किया। इस अवसर पर श्री सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार खेलों के विकास के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण, आधुनिक सुविधाएं और आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। प्रदेश में कल और 14 जुलाई को 2 दिन सभी जिलों में विश्व कौशल दिवस के अवसर पर बृहद रोजगार मेलों का आयोजन किया जाएगा। इन मेलों में जीरो पॉवर्टी अभियान में चिन्हित गरीब परिवारों के युवाओं और दिव्यांगों को वरीयता के आधार पर रोजगार दिया जाएगा। व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने सभी जिलों को निर्देश दिए हैं कि इन 2 दिवसीय रोजगार मेलों में ज्यादा से ज्यादा युवाओं को रोजगार दिया जाए। QR कोड के जरिए युवाओं का रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा, फिर रुचि और योग्यता के आधार पर विभिन्न कंपनियों में उन्हें रोजगार मिलेगा। इस सिलसिले में सभी जानकारियां युवाओं को ITI में दी जाएंगी। 14 जुलाई को प्रयागराज जिले के नैनी स्थित माँ गायत्री महाविद्यालय में सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक वृहद रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 3000 रिक्त पदों पर अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। प्रदेश के कई जिलों में कल से वर्षा का क्रम जारी है। मौसम केंद्र लखनऊ के वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश ने बताया कि राज्य के तराई और पूर्वांचल के कई जिलों में अगले 3 दिनों तक गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम वर्षा होने का अनुमान है।
9: उत्तर प्रदेश में मौसम की बात करें तो जैसा कि मानसून कब तराई बेल्ट में शिफ्ट हो गया है, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश के जो तराई क्षेत्र हैं जैसा कि लखीमपुर खीरी, बहराइच, बलरामपुर, कुशीनगर, देवरिया में मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना है। बाकी जगह की बात करें तो स्पेशली पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहां पे बादलों की आवाजाही रहेगी तथा कुछ जगहों पे छिटपुट वर्षा की संभावना है। तो कुल मिला के सिलसिला आने वाले अगले 2 से 3 दिनों तक रहेगा। और राजधानी लखनऊ की बात करें तो वहां पर थोड़ा बादलों की आवाजाही के साथ बूंदाबांदी हो सकती है।
4: उधर लगातार हो रही वर्षा और बैराजों से पानी छोड़े जाने की वजह से प्रदेश में कई नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। बलिया में गंगा, आगरा और इटावा में यमुना, बिजनौर में रामगंगा, झांसी में बेतवा और सिद्धार्थनगर में राप्ती नदी का जलस्तर बढ़ गया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश भर में पौधरोपण महाभियान के तहत लगाए गए 35 करोड़ से अधिक पौधे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, पिछले 9 वर्षों में राज्य में भौतिक विकास के साथ वन क्षेत्र में भी हुआ विस्तार। मुख्यमंत्री की मौजूदगी में केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल करेंगे लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का लोकार्पण। श्री राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नीपेन मिश्रा ने कहा, 22 जुलाई को ट्रस्ट की बैठक में मुख्य कार्यपालक अधिकारी की नियुक्ति पर होगा फैसला, न्यास के अधीन ही करेंगे काम। और बारिश के बाद आगरा में यमुना और बलिया में गंगा समेत कई नदियों का बढ़ा जलस्तर। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन पूर्वांचल के कई स्थानों पर बारिश का जताया अनुमान। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे

0: तो आएगी ना।
1: सुगंध क्या हो रहा है?
2: बिल हो रहा है।
0: चल अपना कार्ड दे, पिन दे।
1: RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर। समय संध्या के 7:31 और लीजिए प्रस्तुत है सुगम संगीत। श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में आप सुनेंगे फरीदा खानुम की गाई चंद गजलें।

आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से इस समय श्रोता सुन रहे हैं सुगम संगीत कार्यक्रम, जिसके अंतर्गत आज हम आपको सुनवा रहे हैं फरीदा खानुम की गाई गजलें।

0: श्रोताओं, फरीदा खानों की गाई इस गजल के साथ ही आज का सुगम संगीत कार्यक्रम अब संपन्न होता है। सुगम संगीत कार्यक्रम में अभी आपने सुनी फरीदा खानम की गाई चंद गजलें। ये आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। समय संध्या के 7:50 और आइए अब पेश है कार्यक्रम अदबी दुनिया। कलाम शायर पेश कर रहे हैं संतोष कुमार।
1: आपकी खिदमत में चंद कथा पेश करता हूँ। नियत बनी तो बाल्मीक संतों की बानी हो गया, पत्थर सफेद प्यार की अद्भुत निशानी हो गया। बस समर्पण चाहिए नाले नदियों की तरह, जो भी गंगा में मिला गंगा का पानी हो गया। अपना मिजाज है कभी मुड़कर नहीं देखा, एड़ियों की शय पर उठकर नहीं देखा। वो तो तुम्हारे नाज उठाने का शौक है, वरना कभी मंजिल को भी मुड़कर नहीं देखा। शहरे अमीर मेरी नजर में सबसे बड़ा था, पत्थर मेरी अकल पे जाने कैसे पड़ा था। एक दिन गया जो मांगने मस्जिद में खुदा से, फैलाए हाथ वो भी बराबर में खड़ा था। एक दो गजल आपकी खिदमत में पेश करता हूँ।

0: हुस्न के नखरे उठाना उठाए रखना कमाल ये है। हुस्न के नखरे उठाना उठाए रखना कमाल ये है। इश्क की शम्मा जलाना जलाए रखना कमाल ये है। या तो फिर होना मोहब्बत हो तो फिर टूटे कभी ना, या तो फिर होना मोहब्बत हो तो फिर टूटे कभी ना। मौत के दर तक निभाना निभाए रखना कमाल ये है। चेहरा देखो तो यूं लगे है जैसे उसे कुछ खबर नहीं है। चेहरा देखो तो यूं लगे है जैसे उसे कुछ खबर नहीं है। हमारा दिल हमसे ही छिपाना छिपाए रखना कमाल ये है। जज्बात में दीवार घर की गिरने लगे तो यही है लाजिम। जज्बात में दीवार घर की गिरने लगे तो यही है लाजिम। रिश्ते जैसे भी हो बचाना बचाए रखना कमाल ये है। जख्म दुनिया को मत दिखाना सारी दुनिया नमक लिए है। जख्म दुनिया को मत दिखाना सारी दुनिया नमक लिए है। दर्द सीने में खुद छुपाना छुपाए रखना कमाल ये है। इबादत से बेहतर है एक रास्ता वो भी जन्नत को ही जाता। इबादत से बेहतर है एक रास्ता वो भी जन्नत को ही जाता। रोते हुए को फलक हंसाना हंसाए रखना कमाल ये है। एक गज़ल और देखिएगा। तर्जुमानी प्यार की इतनी सुहानी है कि बस। तर्जुमानी प्यार की इतनी सुहानी है कि बस। उसके मेरे इश्क की ऐसी कहानी है कि बस। इस अदा से उसने मेरे हाथ का बोसा लिया। इस अदा से उसने मेरे हाथ का बोसा लिया। धोया नहीं है आज तक ऐसी निशानी है कि बस। सांस चंदन बात मिश्री जुल्फे सियाह काली घटा। सांस चंदन बात मिश्री जुल्फे सियाह काली घटा। पतली कमर अंगड़ाइयाँ ऐसी जवानी है कि बस। आँख है गहरा समंदर गहराई या मत पूछिए। आँख है गहरा समंदर गहराई या मत पूछिए। डूबा हुआ हूँ आज तक ऐसा पानी है कि बस। हंसना गाना मुस्कुराना जो भी है मेरे लिए। हंसना गाना मुस्कुराना जो भी है मेरे लिए। हीर लैला कुछ नहीं ऐसी दीवानी है कि बस। इतना फलक उसने दिया शुक्रिया कैसे करूं। इतना फलक उसने दिया शुक्रिया कैसे करूं। है इनायत इतनी उसकी मेहरबानी है कि बस। एक गजल और देखिएगा। बिल्कुल गलत कि सूरज पूरब से निकलता है। बिल्कुल गलत कि सूरज पूरब से निकलता है। पूरब उधर जिधर से मेरा चांद निकलता है। बिल्कुल गलत कि सूरज पूरब से निकलता है। पूरब उधर जिधर से मेरा चांद निकलता है। रुख पर नकाब डालना फिर उसको उठाना। रुख पर नकाब डालना फिर उसको उठाना। कभी रात सी होती है कभी दिन सा निकलता है। सर्दी के मौसम में आ जाए पसीना। सर्दी के मौसम में आ जाए पसीना। बंठन के मेरा यार जब घर से निकलता है। होठों को चलो सी लिया आंखें भी मूंद ली। होठों को चलो सी लिया आंखें भी मूंद ली। इस दिल का क्या करूं जो रह रह के मचलता है। चांद तारे सोचे हैं निकले के ना निकले। चांद तारे सोचे हैं निकले के ना निकले। जब सांझ के साये में वो सजता संवरता है। जब सांझ के साये में वो सजता संवरता है। बिल्कुल गलत की सूरज पूरब से निकलता है। पूरब उधर जिधर से मेरा चांद निकलता है। इस तरह ये जिंदगी भला कैसे कटेगी। इस तरह ये जिंदगी भला कैसे कटेगी। कैद हो आजाद हो बर्बाद हो कुछ तो हो। पहलू में आ जाइए सब मुझे मंजूर है। पहलू में आ जाइए सब मुझे मंजूर है। पर्दा हो नकाब हो हिजाब हो कुछ तो हो। पर्दा हो नकाब हो हिजाब हो कुछ तो हो। गिनकर मुझे बताइए क्या मेरी खता है। गिनकर मुझे बताइए क्या मेरी खता है। कागज हो किताब हो हिसाब हो कुछ तो हो। लंबा सफर अंधेरों में भला कैसे कटेगा। लंबा सफर अंधेरों में भला कैसे कटेगा। जुगनू हो चिराग हो आफताब हो कुछ तो हो। किन रास्तों से आएंगे फलक सबको पता है। किन रास्तों से आएंगे फलक सबको पता है। किन रास्तों से आएंगे फलक सबको पता है। चंपा हो चमेली हो गुलाब हो कुछ तो हो। सागर हो, सुराई हो, ख्वाब हो, कुछ तो हो, मौत हो, अजाब हो, खराब हो, कुछ तो हो। कैसा जमाना आ गया मुंह में कुछ हरकत में कुछ, कैसा जमाना आ गया मुंह में कुछ हरकत में कुछ, पहने हुए सब कांच ली मोहब्बत में कुछ नफरत में कुछ। ये इश्क की गलियां हैं ये रंग बदलती हैं, ये इश्क की गलियां हैं ये रंग बदलती है, दिन में कुछ रातों में कुछ, फुर्सत में कुछ फितरत में कुछ। देखकर इंसान को गिरगिट ने कर ली खुदकुशी, देखकर इंसान को गिरगिट ने कर ली खुदकुशी, सूरत में कुछ, सीरत में कुछ, खसलत में कुछ, उल्फत में कुछ। दैरो हरम भी देखा फिर मैं कदा भी देखा, दैरो हरम भी देखा फिर मैं कदा भी देखा, दिल में कुछ, होठों पे कुछ, हसरत में कुछ, गफलत में कुछ। हाथ से दर हाथ से, दर हाथ से इतने हुए, हाथ से दर हाथ से, दर हाथ से इतने हुए, लेने में कुछ, देने में कुछ, चाहत में कुछ, किस्मत में कुछ। एक नज्म। जब मेरा हाथ तेरे हाथ के काबिल ही नहीं, जब मेरा साथ तेरे साथ के काबिल ही नहीं, तो मैं बहुत दूर चला जाऊंगा। रंगीन सी वो रात कुछ कुछ याद तो होगी, रंगीन सी वो रात कुछ कुछ याद तो होगी, वो तारों की बारात कुछ कुछ याद तो होगी, बिजली के डर से तेरा वो मुझसे लिपटना, रिमझिम सी वो बरसात कुछ कुछ याद तो होगी। जब वो रात वो बरसात तुम्हें याद नहीं, जब वो तारों की बारात तुम्हें याद नहीं, तो मैं बहुत दूर चला जाऊंगा। मेहंदी तेरे हाथों की मुझे पूछती होगी, गाहे बगाहे चूड़ियां भी टोकती होंगी, गमगीन सा होगा वो नदिया का किनारा, साहिल पे आके लहर तुझे टोकती होंगी। जब वो लहरें वो साहिल वो नजारा ही नहीं, जब वो बाहें वो निगाहें वो सहारा ही नहीं, तो मैं बहुत दूर चला जाऊंगा। इश्क तो इश्क है पास तो रखना होगा, रोना होगा तो कभी रो के संभलना होगा, होती है दोधारी तलवार मोहब्बत, जैसे मैं तड़पा हूँ तुमको भी तड़पना होगा। जब वो प्यार वो शिद्दत वो इशारा ही नहीं, जैसे बुलाते थे मुझे वैसे पुकारा ही नहीं, तो मैं बहुत दूर चला जाऊँगा।
1: अदबी दुनिया कार्यक्रम के अंतर्गत कलाम शायर पेश कर रहे थे संतोष कुमार। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। शाम के 8 बज रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत गीत संध्या। स्वागत है हमारे सभी श्रोताओं का आज के गीत संध्या कार्यक्रम में।

श्रोताओं, कार्यक्रम का ये पहला गीत आपने सुना फिल्म रेडियो से, जिसे गाया था हिमेश रेशमियन और श्रेया घोषाल ने। गीत लिखा था सुब्रत सिन्हा ने और संगीत भी था हिमेश रेशमिया का। कार्यक्रम गीत संध्या आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से, और कार्यक्रम का अगला गीत श्रोताओं आप सभी के लिए है फिल्म टेबल नंबर 21 से। आवाज़ है गजेंद्र वर्मा की, गीत लिखा है असीम अहमद ने और संगीत भी है गजेंद्र वर्मा का।

0: अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं?
1: तो इंतजार किस बात का,
0: अभी बुक कराइए अपना विज्ञापन आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
1: विज्ञापन बुकिंग कराने के लिए आज ही संपर्क करें।
0: हमारा मोबाइल नंबर है 8865845809।
1: नंबर एक बार फिर सुन लीजिए 8865845809।
0: और हमारा ईमेल आईडी है
1: akashwaninajibabad@gmail.com।
0: तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और बुक कराइए अपना विज्ञापन
1: आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
2: एक बार फिर से स्वागत है हमारे सभी श्रोताओं का कार्यक्रम गीत संध्या में। और कार्यक्रम की अगली पेशकश अलका याग्निक की आवाज़ में फिल्म क्रिमिनल से। गीत लिखा है एंडी वर्ल ने और संगीत है एम एम करीम का।

आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से इस समय श्रोता सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत संध्या। और श्रोताओं, कार्यक्रम में अगला गीत आप सभी के लिए फिल्म वो लम्हे से, जिसे गाया है केके ने, गीत लिखा है नीलेश मिश्रा ने और संगीत है प्रीतम का।

आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत संध्या। श्रोताओं, कार्यक्रम की अगली पेशकश लता मंगेशकर और आशा भोसले की आवाज़ों में। फिल्म है उत्सव, गीत लिखा है वसंत देव ने और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

श्रुतम कार्यक्रम का अगला गीत श्रेया घोषाल की आवाज में फिल्म है जिस्म, गीत लिखा है नीलेश मिश्रा ने और संगीत है M.M. करीम का।

और श्रोताओं, कार्यक्रम गीत संध्या के अंत में आपको सुनवा रहे हैं एक बार फिर से श्रेया घोषाल की आवाज में एक गीत, फिल्म है चीनी कम, गीत लिखा है समीर ने और संगीत है इलाया राजा का।

अभी श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम गीत संध्या। ये आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है, मीडियम वेव 314.47 मीटर पर। समय संध्या के 8:30 और लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम एक ही फिल्म से। और श्रोताओं, कार्यक्रम में हमारी आज की फिल्म है साल 2002 में रिलीज हुई सुपरहिट फिल्म ये दिल आशिकाना। श्रोताओं, इस फिल्म के निर्देशक थे कुकू कोहली और निर्माता थे अरुणा ईरानी। इस फिल्म के गीतों को लिखा था समीर ने और संगीतबद्ध किया था नदीम शवर ने। और श्रोताओं, आपको बताएं, इस फिल्म में मुख्य कलाकार थे करण नाथ, जीविका शर्मा, आदित्य पंचोली, रजत बेदी और अरुणा ईरानी। और आइए कार्यक्रम का ये पहला गीत आपको सुनवाते हैं कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ों में फिल्म ये दिल आशिकाना से।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से, आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से। और कार्यक्रम में आज की हमारी फिल्म है ये दिल आशिकाना। श्रोताओं, हर फिल्म मनोरंजन नहीं करती, कुछ फिल्में हमें कुछ सिखा कर भी जाती हैं, जैसे कि सच्चा

आशिकाना आशिकाना दिल।

अभी श्रोता सुन रही थी फिल्म संगीत एक ही फिल्म से, जिसमें हमारी आज की फिल्म थी ये दिल आशिकाना। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर। संध्या के 8:45 होने को हैं, कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे समाचार संध्या।

0: सहित कुल 16 पदक जीते और लंदन में विंबलडन टेनिस प्रतियोगिता के पुरुष सिंगल्स फाइनल में यानिक सिनर और अलेक्जेंडर ज़वरेव का मैच जारी। और अब समाचार विस्तार से। भारत ने कहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों से मुक्त और बिना रुकावट के नौवहन और वाणिज्य को जल्द से जल्द बहाल किया जाना चाहिए। विदेश मंत्रालय के बयान में इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जलपोतों पर लगातार हमलों की घटनाओं पर चिंता प्रकट की गई है।
1: भारत ने तनाव को तुरंत कम करने और कूटनीतिक समाधान के लिए बातचीत को शीघ्र निष्कर्ष तक पहुंचाने की मांग दोहराई है ताकि इस इलाके में शांति और स्थिरता कायम की जा सके। विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों और नागरिक ठिकानों को निशाना बनाना बंद होना चाहिए। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत GFS गैलेक्सी पर हमले की कड़ी निंदा की है। पोत पर सवार 11 भारतीयों में से 10 को सुरक्षित बचा लिया गया है जबकि एक लापता है। ओमान में भारतीय दूतावास स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है और खोज तथा बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर द्वारा रणनीतिक जलमार्ग को अगले आदेश तक बंद करने की घोषणा के कुछ घंटों बाद अमरीकी सेंट्रल कमान ने कहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य सभी वैध आवागमन चाहने वाले जहाजों के लिए खुला है। ये बयान अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के संवाददाता सम्मेलन में ये कहने के बाद आया है कि होर्मुज जलडमरू मध्य वाणिज्यिक जहाजों के लिए खुला है। अमरीकी सेंट्रल कमान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि जलडमरू मध्य से समुद्री यातायात सुचारू रूप से चल रहा है और अमरीकी सेनाएं ईरानी आक्रामकता, उत्पीड़न, धमकियों और मनमानी घोषणाओं के बावजूद नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए तैनात हैं। उन्होंने कहा कि ईरान का होर्मुज जलडमरू मध्य पर कोई नियंत्रण नहीं है और सुरक्षित पारगमन मार्ग खुले हैं। इससे पहले ईरान द्वारा होर्मुज जलडमरू मध्य में एक वाणिज्यिक पोत पर हमला करने और उसे आग लगाकर चालक दल को जहाज छोड़ने के लिए मजबूर करने के बाद अमेरिका ने ईरान पर नए हवाई हमले किए। वियतनाम में नौका दुर्घटना में जान गंवाने वाले 15 भारतीय नागरिकों के पार्थिव शरीर हो ची मिन शहर पहुंच गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में दूतावास ने बताया कि आवश्यक औपचारिकताएं पूरी होने के बाद पार्थिव शरीरों को यथाशीघ्र भारत भेजा जाएगा। हो ची मिन शहर स्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास वियतनाम के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क बनाए हुए है। इस नाव में 32 भारतीय पर्यटकों सहित 36 लोग सवार थे। दुर्घटना में घायल 16 भारतीय स्वदेश लौट रहे हैं। गंभीर रूप से घायल एक व्यक्ति का वियतनाम के फूकवाक स्थित अस्पताल में उपचार चल रहा है। इस बीच वियतनाम के प्रधानमंत्री ली मिन होंग ने दुर्घटना की जांच के आदेश दिए हैं। अमेरिका, ब्रिटेन और 12 अन्य पश्चिमी तथा एशियाई देशों ने 2016 के मध्यस्थता निर्णय के आधार पर दक्षिण चीन सागर में चीन के व्यापक दावों को अवैध बताया है। इन 14 देशों के संयुक्त बयान में कहा गया है कि विवादित जल क्षेत्र में क्षेत्रीय स्थिरता को खतरे में डालने वाली कार्रवाई अस्वीकार्य है। 27 देशों वाले यूरोपीय संघ के बयान में इसे विवादों के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में ऐतिहासिक निर्णय बताया गया है।
2: इन बयानों में 12 जुलाई 2016 को हेग में संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन के तहत स्थापित न्यायाधिकरण के मध्यस्थता निर्णय का जिक्र किया गया है। उन्होंने इस ऐतिहासिक निर्णय को अंतिम और कानूनी रूप से बाध्यकारी बताया है। हालांकि चीन ने इस निर्णय को खारिज करते हुए इसे अमान्य बताया। उसने कहा कि इसका कोई बाध्यकारी प्रभाव नहीं है। चीन ने दोहराया कि वह इसे ना तो स्वीकार करता है और ना ही मान्यता देता है। एक वर्ष पहले विवादित जल क्षेत्र में तनावपूर्ण गतिरोध के बाद दक्षिण चीन सागर तनाव का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। यहां चीन और फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया, ब्रुनेई और ताइवान के बीच बार बार क्षेत्रीय गतिरोध होते रहते हैं। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। देशभर में पौधे लगाने के लिए आज व्यापक अभियान चलाया गया। इसके तहत उत्तर प्रदेश ने एक दिन में 35 करोड़ से अधिक पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में नया इतिहास रचा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में लिंक एक्सप्रेसवे के निकट नीम, पीपल और बरगद के पौधे लगाकर राज्यव्यापी पौधारोपण महायज्ञ का शुभारंभ किया।
3: कार्यक्रम के दौरान जन भवन की नक्षत्र वाटिका में कुल 29 चंदन के पौधे लगाए गए। पौधारोपण अभियान में जन भवन के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ साथ बालिका गृह की लड़कियों ने भी हिस्सा लिया। इस अभियान में कई मंत्रियों और जन प्रतिनिधियों के साथ साथ स्वयंसेवी संस्थाओं के सदस्यों, विभिन्न विभागों के लोगों, विद्यार्थियों और आम जनता ने भी भाग लिया। ये अभियान राज्य के 75 जिलों में चलाया गया। राज्य ने इस वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर 5 करोड़ से ज्यादा पौधे भी लगाए। उत्तर प्रदेश में इस साल अब तक कुल 40 करोड़ 29 लाख पौधे लगाए जा चुके हैं। यह अभियान 27 विभागों के आपसी सहयोग से चलाया गया, जिसमें वन विभाग ने 15.5 करोड़ पौधे लगाने का सबसे बड़ा लक्ष्य पूरा किया। लखनऊ से सुशील तिवारी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से रेशमा तिवारी।
0: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज इंदौर में एक पेड़ माँ के नाम वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया। इसका लक्ष्य राज्य भर में 21 लाख पौधे लगाना है। इस अभियान के अंतर्गत 51,000 वर्षा जल संचयन इकाइयां स्थापित करने की भी योजना है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि टिकाऊ भविष्य सुनिश्चित करने और पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधे लगाना बेहद महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में वृक्ष मित्र और पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम में श्री चौहान ने कहा कि आज पूरा विश्व जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी का तापमान बढ़ने से चिंतित है।
4: जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा, जलवायु संकट गहराएगा और ये नुकसान 2100 तक बढ़कर जीडीपी में जो कमी हो रही 20% तक पहुंच सकता है। आप कल्पना कीजिए क्या होगा। यह आर्थिक संकट इतना बड़ा होगा कि इसको मुकाबला करना फिर कठिन हो जाएगा। और इसलिए वर्तमान दर से अगर ग्रीन गैसों का उत्सर्जन जारी रहा तो 2050 तक पृथ्वी को गंभीर पर्यावरणीय, आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा।
0: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज अहमदाबाद में नगर निगम के 405 करोड़ रुपए की लागत की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर श्री शाह ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत विशाल पौधारोपण अभियान का शुभारंभ भी किया। इस अभियान के तहत आज उनके लोकसभा क्षेत्र गांधीनगर में 1,25,00,000 से ज्यादा पौधे लगाए गए। हमारी संवाददाता ने बताया कि गृहमंत्री ने 2029 के चुनाव तक निर्वाचन क्षेत्रों में पौधे लगाने की गतिविधि को 20% तक बढ़ाने की दीर्घकालिक पर्यावरणीय रूपरेखा पर बल दिया।
5: गृह मंत्री ने बरगद, पीपल, जामुन और अर्जुन जैसे स्वदेशी पौधे लगाने पर जोर दिया, जिससे शहर के तापमान में 5% की कमी आएगी और भावी पीढ़ियों के लिए एक रहने योग्य पर्यावरण सुनिश्चित होगा। उन्होंने पर्यावरण स्थिरता में योगदान देने के लिए हर घर और आवासीय सोसाइटी से सोलर रूफटॉप अपनाने का भी आह्वान किया। इस पर्यावरण अभियान के तहत आज 101 नए ऑक्सीजन पार्क का भी उद्घाटन किया गया और उनकी जानकारी देने वाली एक विशेष ई बुक भी जारी की गई। सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए AMTS और BRTS के बेड़े में आज 333 नई इलेक्ट्रिक बसें शामिल की गई, जिससे अहमदाबाद BRTS देश का पहला 100% इलेक्ट्रिक और शून्य प्रदूषण वाला बेड़ा बन गया है। अपर्णा खोंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। भारत ने चीन के ओर्डोस में खेली जा रही एशियाई अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अपना अभियान 16 पदकों के साथ संपन्न किया। इनमें 3 स्वर्ण, 4 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल हैं। भारत ने आज अंतिम दिन 2 स्वर्ण और 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीता। भारतीय महिला टीम ने 4x400 रिले में स्वर्ण पदक जीता, जबकि भाला फेंक में भारत के आनंद सिंह ने स्वर्ण और शिवम लोहाकरे ने कांस्य पदक हासिल किया। भारतीय पुरुष टीम ने 4x400 रिले और महिला टीम ने 4x400 मीटर रिले में रजत पदक जीते। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स का फाइनल मुकाबला इटली के यानिक सिनर और जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़ेवरेव के बीच जारी है। इससे पहले चीन की गुआओ हान्यू ने और फ्रांस की क्रिस्टीना मिलाडेनोवा की जोड़ी ने महिला डबल्स का खिताब जीता। उन्होंने फाइनल्स में कनाडा की गैब्रियला डाब्रोवस्की और ब्राजील की लुइसा स्टेफनी को 6-3, 7-5 से पराजित किया। उधर लंदन के लॉर्ड्स में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड को एकमात्र टेस्ट में 457 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में तीसरे दिन इंग्लैंड ने ताजा समाचार मिलने तक 3 विकेट पर 23 रन बना लिए हैं। इससे पहले भारत ने अपनी दूसरी पारी 7 विकेट पर 341 रन बनाकर घोषित कर दी। इंग्लैंड की टीम पहली पारी में 170 रन की बना सकी। सरकार ने इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल से वाहन के ईंधन टैंक की सिमी समस्या संबंधी दावे का खंडन किया है। सोशल मीडिया पोस्ट पर वायरल फर्जी तस्वीर में ऐसा दावा किया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को झूठा बताया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि तेल विपणन कंपनियों द्वारा आपूर्ति किया जा रहा E20 पेट्रोल भारतीय मानक ब्यूरो के निर्धारित मानकों के अनुरूप है। निर्धारित मानकों के अनुरूप होने पर इथेनॉल और पेट्रोल पूरी तरह से घुलनशील हैं। नई पीढ़ी के प्रशासनिक और ई गवर्नेंस सुधारों के विषय पर दो दिन का राष्ट्रीय सम्मेलन कल से मेघालय के शिलांग में शुरू हो रहा है। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा मेघालय सरकार इसका आयोजन कर रखे हैं। ये सम्मेलन देश भर के नीति निर्माताओं, प्रशासकों, प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों और शासन से जुड़े लोगों को एक मंच पर लाएगा ताकि वो लोक प्रशासन और डिजिटल गवर्नेंस के भविष्य पर चर्चा कर सके। सम्मेलन में 300 से अधिक प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने निर्माण क्षेत्र में पर्यावरण अनुकूल तकनीक अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया। नई दिल्ली में केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के 172वें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि किसी भी भवन या संरचना के निर्माण के दौरान उसकी मजबूती से समझौता नहीं किया जाना चाहिए। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल कल से 17 जुलाई तक स्पेन, बेल्जियम और फिनलैंड की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वो भारतीय उद्योग जगत के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व भी करेंगे। इस यात्रा का उद्देश्य व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार और टिकाऊ विकास पर विशेष ध्यान देते हुए यूरोप के साथ भारत की आर्थिक साझेदारी को मजबूत करना है। यात्रा के पहले चरण में श्री गोयल कल स्पेन पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 16 तारीख को आकाशवाणी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में देश और विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये इस कार्यक्रम का 136वां एपिसोड होगा। श्रोता टोल फ्री नंबर 1800117800 पर कार्यक्रम के लिए अपने विचार और सुझाव भेज सकते हैं। वो नरेंद्र मोदी ऐप या MyGov ओपन फोरम के माध्यम से भी ऑनलाइन अपने सुझाव दे सकते हैं। नागरिक 1922 नंबर पर मिस्ड कॉल देकर और SMS से प्राप्त लिंक का अनुसरण करके सीधे प्रधानमंत्री को अपने सुझाव भेज सकते हैं। आगामी एपिसोड के लिए सुझाव इस महीने की 24 तारीख तक स्वीकार किए जाएंगे। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया मंगलवार को देश भर में लगभग 668 करोड़ रुपए लागत वाली 7 कर्मचारी राज्य बीमा ESI स्वास्थ्य परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत पर हमले के बाद पश्चिम एशिया क्षेत्र में तुरंत तनाव कम करने का आह्वान किया। अमरीका ने कहा होर्मुज जल डमरू मध्य में सभी जहाजों के लिए खुला और अमरीकी सेना नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए तैयार। वियतनाम में नौका दुर्घटना में मारे गए 15 भारतीयों के पार्थिव शरीर हो ची मिन शहर पहुंचे, उन्हें जल्द से जल्द भारत लाया जाएगा। उत्तर प्रदेश ने एक दिन में 35 करोड़ से अधिक पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण में नया इतिहास रचा। चीन में अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने 3 स्वर्ण सहित कुल 16 पदक जीते और लंदन में विंबलडन टेनिस प्रतियोगिता के पुरुष सिंगल्स फाइनल में यानिक सिनर और अलेक्जेंडर ज़ेवरेव का मैच जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं अब्दुल वाहिद। भारत ने ओमान के साहिल से कुछ दूर भारतीय शहरियों को ले जाते हुए कमर्शियल जहाज पर हमला किए जाने के बाद मगरबी एशिया खित्ते में कशीदगी को फौरी तौर पर खत्म करने के लिए कहा है। अमरीका ने कहा है कि अब नाए हुरमुज सभी जहाजों के लिए खुली है और अमरीकी फौज जहाजों की आजादाना आमद और रफ्त को यकीनी बनाने के लिए तैयार है। वियतनाम कश्ती सानहे में, जिनमें 15 भारतीय सयाहों की मौत हो गई थी, उनके जस्ते खाकी को हो ची मिन सिटी लाया गया है। अब उन्हें जल्द अज जल्द भारत लाया जाएगा। उत्तर प्रदेश ने एक ही दिन में 37 करोड़ से ज्यादा पौधे लगाकर माहौलियात के तहफ्फुज में एक नया पैमाना मुकर्रर किया है। भारत ने चीन में 23 साल तक की उम्र की एथलीट चैंपियनशिप में सोने के 3 तमगों समेत कुल 16 तमगे हासिल किए हैं और विंबलडन टेनिस में आला दर्जे के येनिक सिनर और दूसरे दर्जे के एलेक्जेंडर ज़वेरोव के दरमियान मर्दों के सिंगल्स का फाइनल लंदन में जारी है। अब खबरें तफसील से। भारत ने आज ओमान के साहिल से कुछ दूर भारतीय अमले के अरकान को ले जाते हुए एक कमर्शियल जहाज GFS गैलेक्सी पर हमले के बाद मगरबी एशिया खित्ते में कशीदगी को फौरी तौर पर खत्म करने के लिए एक बार फिर कहा है। हमले की मजम्मत करते हुए वजारत खारजा ने एक बयान में बताया कि इस जहाज में सवार 11 भारतीय बाशिंदों में से अभी तक 10 को बचाया गया है, जबकि एक बाशिंदे के लापता होने की खबर है। बयान में कहा गया है कि ओमान में भारतीय सफारतखाना सूरत हाल पर करीबी नजर रखे हुए है और वो तलाश और बचाव के काम में ओमान के हुक्काम के साथ सरगर्मी के साथ तालमेल रखे हुए है। भारत ने इस मदद पर ओमान के हुक्काम का शुक्रिया अदा किया है। भारत ने खित्ते में कमर्शियल जहाजों पर हमलों के जारी वाकयात पर तशवीश का इजहार किया है। उसने एक बार फिर कहा है कि सिफारती हल के लिए जारी मुजाकिरात जल्द मुकम्मल किए जाएं ताकि खित्ते में अमन व इस्तेहकाम बहाल किया जा सके। अमरीका की मरकजी कमान सेंटकॉम ने कहा है कि आबनाए हुरमुज उन सभी जहाजों के लिए खुली है जो कानूनी तौर पर यहां से गुजरना चाहते हैं। अमरीका ने यह ऐलान ईरान के पासदाराने इनकलाब IRGC की तरफ से आबनाए हुरमुज को मजीद कोई नोटिस जारी किए जाने तक बंद करने के ऐलान के कुछ ही घंटे के बाद किया है। ये बयान अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कहे जाने के बाद दिया गया है कि आबनाए हुरमुज कमर्शियल जहाजों के लिए खुली है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में सेंटकॉम ने कहा कि समंदर में जहाजों की आमदोरफ्त आबनाए हुरमुज के रास्ते जारी है और अमरीकी फौजें बकौल उसके ईरानी जारहियत हिरासानी धमकियों और मनमाने ऐलानात के बावजूद आजादाना आमदोरफ्त को यकीनी बनाने के लिए तैनात हैं। उसने जोर देकर कहा कि ईरान आबनाए हुरमुज को कंट्रोल नहीं करता और महफूज राहदारी वाले रास्ते खुले हैं। वियतनाम के फूकोक जजीरे के करीब तेज रफ्तार कश्ती पलटने के हादसे में हलाक होने वाले 15 भारतीय शहरियों का जस्दे खाकी आज हो ची मिन सिटी पहुंच गया है। वियतनाम में भारतीय सफारतखाने ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि जरूरी कानूनी कार्रवाइयां मुकम्मल होने के बाद महलूकीन के जस्दे खाकी को हवाई जहाज के जरिए भारत लाया जाएगा। सफारतखाने ने कहा कि वो कौंसिल खाना और वियतनाम के हुक्काम के साथ राबते में हैं ताकि जस्ते खाकी की वतन वापसी को जल्द अज जल्द मुमकिन बनाया जा सके। सफारतखाने ने बताया कि महफूज निकाले गए 17 भारतीय सयाहों में से 16 सयाह को भारत लाया जा रहा है, जबकि एक सयाह जिसकी हालत संगीन बनी हुई है फूकोक के एक अस्पताल में जेर इलाज है। इस दौरान वियतनाम के सदर ली मिन होंग ने हादसे की जांच का हुक्म जारी किया है और हुक्काम को हिदायत दी है कि कसूरवारों के खिलाफ जरूरी कार्रवाई की जाए। आज मुल्क भर में शजरकारी की एक बड़ी मुहिम का अहतमाम किया गया। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर से पूरी रियासत के लिए वृक्षारोपण महायज्ञ मुहिम का आगाज किया। उन्होंने लिंक एक्सप्रेसवे के नजदीक मुबारक त्रिवेणी यानी 3 दरख्त नीम पीपल और बरगद के पौधे लगाए। उन्होंने ताल रिंग रोड पर मुलसरी का पौधा भी लगाया। रियासत में आज 35 करोड़ 27 लाख से ज्यादा पौधे लगाकर एक तारीख रकम की है। एक पेड़ मां के नाम के उन्मान से पूरी रियासत में शाम 6:12 तक कुल 35 करोड़ 27 लाख 89,926 पौधे लगाए गए। ये हुकूमत के 35 करोड़ के निशाने से 27,89,000 ज्यादा पौधे हैं। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने इस हुसूलियाबी पर अवाम को मुबारकबाद दी है। उत्तर प्रदेश की गवर्नर आनंदी बेन पटेल ने भी इस मुहिम के हिस्से के तौर पर जन भवन के अहाते में संदल का पौधा लगाया। तफसील हमारे नामानिगार से।
1: प्रोग्राम के दौरान जन भवन की नक्षत्र वाटिका में संदल के 29 पौधे लगाए गए। जन भवन के अफसरान और मुलाजमीन ने सिंधी खेड़ा के सरकारी गर्ल्स होम की लड़कियों के साथ मिलकर शजरकारी की इस मुहिम में हिस्सा लिया। बहुत से वज़रा और अवामी नुमाइंदों ने एनजीओ अरकान मुख्तलिफ महकमों तलबा और आम लोगों के साथ मिलकर मुहिम में हिस्सा लिया। ये मुहिम रियासत के सभी 18 डिवीजनों और 75 जिलों में चलाई गई। रियासत में इस साल 5 जून को भी माहौलियात के आलमी दिन के मौके पर 5 करोड़ से ज्यादा पौधे लगाए गए थे। उत्तर प्रदेश में इस साल मजमूई तौर पर 40,29,00,000 पौधे लगाए गए हैं। लखनऊ से सुशील तिवारी की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं असलम बेग।
0: वज़ीर दाखिला अमित शाह ने गुजरात के शहर गांधीनगर में भी बड़े पैमाने पर शजरकारी की मुहिम का आगाज किया, जिसके दौरान आज उनके लोकसभा हलके में 1,25,00,000 से ज्यादा पौधे लगाए गए। आज नई दिल्ली में वृक्ष मित्र प्रोग्राम और पर्यावरण संरक्षण संकल्प तकरीब से खिताब करते हुए मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने जोर देकर कहा कि शजरकारी माहौल के तहफ्फुज के लिए इंतहाई अहम है और इससे एक पायदार मुस्तकबिल की यकीन दहानी होती है। मध्य प्रदेश के वजीर आला डॉक्टर मोहन यादव ने भी इंदौर में शजरकारी की मुहिम का आगाज किया, जिसके तहत पूरी रियासत में 21,00,000 पौधे लगाए जाने का निशाना मुकर्रर किया गया है। नायब सदर जमहूरिया सीपी राधाकृष्णन ने आज जोर देकर कहा कि हर शहरी का फर्ज है कि वो मुल्क के समाजी मुसलहीन के अजीम विरसे का एहतराम करें और उसे बरकरार रखें। जनाब राधाकृष्णन आज नई दिल्ली के द्वारिका के मन्नम इंटरनेशनल सेंटर में समाजी मुसले और मुजाहिद आजादी मन्नथू पद्मनाभन के मुजस्मे की नकाब कुशाई और मन्नम स्मृति मंडपम का आगाज करने के बाद बात कर रहे थे। मजमे से खिताब करते हुए नायब सदर ने कहा कि मन्नथू पद्मनाभन ने अपनी पूरी जिंदगी समाजी इंसाफ मसावात तालीम और अवामी खिदमत के लिए वक्फ कर दी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में इस माह की 26 तारीख को मुल्क के अवाम से अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। ये महाना रेडियो प्रोग्राम का 136वां नशरिया होगा। लोग इस प्रोग्राम के लिए अपने ख्यालात और तजावीज इस टोल फ्री नंबर पर भेज सकते हैं 1800117800। लोग अपनी राय नरेंद्र मोदी ऐप पर भी भेज सकते हैं। लोग इसके लिए 1922 पर मिस्ड कॉल भी दे सकते हैं और वजीर आजम को बराह रास्त अपनी तजावीज SMS पर मौसूला लिंक के जरिए रब्ता कायम कर सकते हैं। आइंदा नशरे के लिए तजावीज इस माह की 24 तारीख तक कबूल की जाएंगी। तिजारत और सनत के वजीर पीयूष गोयल कल से इस माह की 17 तारीख तक स्पेन बेल्जियम और फिनलैंड में भारतीय ताजिरों के एक आला सतह के वफद की क्यादत करेंगे। उन्होंने कहा कि इस दौरे का मकसद यूरोप के साथ भारत की इक्तिसादी शराकतदारी को मुस्तहकम बनाना है, जिसमें तिजारत सरमायाकारी टेक्नोलॉजी इख्तरा और पायदारी पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। हाउसिंग और शहरी उमूर के मरकजी वजीर मनोहर लाल ने तामीर के शोबे में माहौल के लिए साजगार टेक्नोलॉजी अपनाने की जरूरत पर जोर दिया है। एक तकरीब से खिताब करते हुए जिसका अहतमाम नई दिल्ली में तामीरात के महकमे के 172वें योम तासीस के मौके पर किया गया था, वजीर मौसूफ ने जोर देकर कहा कि कोई भी इमारत या ढांचा तामीर करते हुए उसकी पायदारी से समझौता नहीं किया जाना चाहिए। भारत ने कतर के मौजूदा अमीर के वालिद शेख हमद बिन अल खलीफा अल सानी के इंतकाल पर कल एक रोजा कौमी शोक का ऐलान किया है। शेख हमद बिन खलीफा अल सानी का आज इंतकाल हो गया। मुल्क भर में इस दौरान तमाम सरकारी इमारतों पर कौमी परचम निस्फ सरनिगुं रहेगा। इसके अलावा उस दिन कोई सरकारी तकरीब मुनक़िद नहीं होगी। अमरीकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम का मुख्तसर बीमारी के बाद इंतकाल हो गया। वो सदर डोनाल्ड ट्रंप के एक करीबी साथी थे। उनकी उम्र 71 साल रही। सदर ट्रंप की दूसरी मुद्दत के दौरान ग्राहम अमरीका की खारजा पॉलिसी से मुतल्लिक एक अहम आवाज के तौर पर उभरे थे। अमरीका बरतानिया और एक दर्जन दीगर मगरबी और एशियाई ममालिक ने आज दो बार जोर देकर कहा है कि बहिरे चीन में चीन के वसी दावे 2016 के सालिसी के फैसले की बुनियाद पर गैर कानूनी हैं। 14 ममालिक की तरफ से जारी करदा मुश्तरक बयान में कहा गया है कि वो मुतनाज़ा आबी हदूद में अदम इस्तेहकाम पैदा करने वाले इकदाम को मुस्तरद करते हैं, क्योंकि इससे इलाकाई इस्तेहकाम को खतरा है। दूसरी जानिब 27 ममालिक पर मुश्तमिल यूरोपी यूनियन ने एक अलहदा बयान जारी करते हुए इस फैसले को तनाज़ियात के पुरअमन हल के लिए एक तारीखी फैसला करार दिया है। ये बयानात 12 जुलाई 2016 को दहेग में कायम करदा ट्रिब्यूनल के सालिसी के फैसले के जिम्न में आए हैं, जिसमें कहा गया था कि यह तारीखी फैसला फरीकैन को हतमी और कानूनी तौर पर पाबंद बनाता है। ताहम चीन ने इस फैसले को मुस्तरद करते हुए कहा कि इसकी कोई हैसियत नहीं है और इसकी पाबंदी लाजिम नहीं है। चीन ने इस बात का इरादा किया कि बीजिंग इसे तस्लीम नहीं करता। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। बांग्लादेश में पिछले हफ्ते सैलाब और जमीनी तोदे खिसकने की वजह से 40 अफराद हलाक हो गए। बहुत सी जानें जमीनी तोदे खिसकने की वजह से जाया हुई हैं और बखिया ज्यादातर अमवात पानी में डूबने या सैलाब में बह जाने और दरियाओं की तुगयानी के सबब हुई हैं। अफगानिस्तान के ज़राअत पाशी और मवेशियों के उमूर के वजीर अताउल्ला उमरी ने आज भारत का अपना 6 रोजा दौरा मुकम्मल किया। वजारत खारजा के मुताबिक अफगान वजीर के साथ एक आला सतही वफद भी था। गुज़िश्ता साल अक्टूबर के बाद से अफगानिस्तान की तरफ से वजारती सतह का भारत का यह चौथा दौरा था, जो दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात में गर्मजोशी की अक्कासी करता है। इस दौरे में अफगानिस्तान के वजीर ने भारत के ज़राअत और किसानों के बहबूद के वजीर शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की। दोनों फरीकों ने बाहमी ताल्लुकात में ज़राअत आबपाशी ज़रई तहकीक सलाहियत साजी ज़रई तजारत में तआवुन को फ़रोग देने पर तबादला ख्याल किया। हुकूमत ने सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली एक फर्जी तस्वीर से इनकार किया है, जिसमें यह दावा किया गया है कि एथेनॉल की आमजिश वाले पेट्रोल से गाड़ियों के ईंधन की टंकी में खराबियां आ सकती हैं। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के हकायक मालूम करने वाले यूनिट ने इस दावे को झूठा करार दिया है। ब्यूरो ने कहा है कि पेट्रोलियम और कुदरती गैस की वजारत ने वजाहत की है कि तेल मार्केटिंग कंपनियों की तरफ से सप्लाई किया गया E20 पेट्रोल भारतीय मेयारात के ब्यूरो की तरफ से मुकर्रर किए गए पैमाने के मुताबिक है। वजारत ने कहा कि एथेनॉल और पेट्रोल मुकम्मल तौर पर एक दूसरे में जम हो जाते हैं और ये अलग नहीं होते और न ही किसी तरह की अलग अलग परतें बनाते हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने मारूफ गुलूकारा इस जानकी के इंतकाल पर गहरे रंजोगम का इजहार किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में सदर जमहूरिया ने कहा कि मुल्क मौसीकी की दुनिया की एक अजीम शख्सियत से महरूम हो गया है। चीन के ऑर्डोस में एशियन अंडर 23 एथलीट्स चैंपियनशिप में भारत ने 16 तमगों के साथ अपनी मुहिम खत्म की। इसमें सोने के 3, चांदी के 4 और कांसे के 9 तमगे शामिल हैं। चैंपियनशिप के आखिरी दिन भारत ने सोने के 2, चांदी के 2 और कांसे का 1 तमगा जीता। विंबलडन टेनिस में मर्दों के फाइनल मुकाबले में लंदन में आलमी नंबर 1 खिलाड़ी इटली के यानिक सिनर और जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वरोव के दरमियान मुकाबला जारी है। सिनर ने नोवाक जोकोविच से सीधे सेटों में जीत हासिल करके फाइनल में जगह बनाई है, जबकि ज़वरोव ने ब्रिटानिया के आर्थर फेरी को शिकस्त देकर पहली दफा फाइनल में पहुंचे हैं। दूसरी जानिब 10वें दर्जे की जोड़ी चीन की गुओ हानिव और फ्रांस की क्रिस्टीना मोलोडोवेच ने खवातीन डबल्स का खिताब अपने नाम कर लिया है। उन्होंने खिताबी मुकाबले में दूसरे दर्जे की जोड़ी कनाडा की गैब्रिएला रोरेंस्की और ब्राजील की लुइसा स्टेफनी को 6-3 7-5 से शिकस्त देकर अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब हासिल किया। इंग्लैंड में लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में जारी खवातीन क्रिकेट के एक तारीखी टेस्ट मैच के तीसरे दिन अब से कुछ देर पहले तक इंग्लैंड ने 4 विकेट पर 49 रन बना लिए थे। इससे कबल भारत ने 7 विकेट पर 341 रन बनाकर अपनी दूसरी इनिंग डिक्लेयर की और मेजबान इंग्लैंड के सामने जीत के लिए 457 रन का निशाना रखा। कल इंग्लैंड की टीम अपनी पहली इनिंग्स में 170 रन पर आउट हो गई थी। भारत ने अपनी पहली इनिंग में 285 रन बनाए थे। फीफा आलमी कप के सेमीफाइनल की टीमें तय हो चुकी हैं। अर्जेंटीना इंग्लैंड फ्रांस और स्पेन ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। आज सुबह खेले गए क्वार्टर फाइनल में इंग्लैंड ने नॉर्वे को 2-1 से जबकि अर्जेंटीना ने स्विट्जरलैंड को 3-1 से शिकस्त दी। आखिर में खास खबरें एक मरतबा फिर। भारत ने ओमान के साहिल से कुछ दूर भारतीय शहरियों को ले जाते हुए कमर्शियल जहाज पर हमला किए जाने के बाद मगरबी एशिया खित्ते में कशीदगी को फौरी तौर पर खत्म करने के लिए कहा है। अमरीका ने कहा है कि आबनाए हुरमुज सभी जहाजों के लिए खुली है और अमरीकी फौज जहाजों की आजादाना आमद और रफ्त को यकीनी बनाने के लिए तैयार है। वियतनाम कश्ती सानहे में जिन 15 भारतीय सयाहों की मौत हो गई थी उनके जस्द खाकी को हो ची मिन सिटी लाया गया है। अब इन्हें जल्द अज जल्द भारत लाया जाएगा। उत्तर प्रदेश ने एक ही दिन में 37 करोड़ से ज्यादा पौधे लगाकर माहौलियात के तहफ्फुज़ में एक नया पैमाना मुकर्रर किया है। भारत ने चीन में 23 साल तक की उम्र की एथलीट चैंपियनशिप में सोने के 3 तमगों समेत कुल 16 तमगे हासिल किए हैं और विंबलडन टेनिस में आला दर्जे के यानिक सिनर और दूसरे दर्जे के लेजेंडर दोरोव के दरमियान मर्दों के सिंगल्स का फाइनल लंदन में जारी है। इसी के साथ खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ।
2: प्रस्तुत है श्रोताओं के पत्र व ईमेल अनुरोध पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी पसंद।
3: Every year, millions of Indians migrate across states carrying suitcases packed with dreams. Their first anchor in an unfamiliar city is often a two-word sanctuary, paying guest.

0: अभी आपने सुना राग छायानट। अब श्री कुमार मल्डूर प्रस्तुत कर रहे हैं राग बागेश्वरी। विलंबित एकताल सकी मना लागिना, द्रुत एकताल बिनती करता।
1: You just heard राग छायानट। श्री कुमार मल्डूर विल नाउ प्रेजेंट राग बागेश्वरी। विलंबित एकताल सखी मना लागेना, द्रुत एकताल बिनती करता।

0: अब तक आप सुन रहे थे राग बागेश्वरी। इसी के साथ आज की रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा संपन्न होती है, जिसमें आप सुन रहे थे श्री कुमार मरडूर का गायन। आपके साथ तबले पर पंडित सातलिंगप्पा देसाई कल्लूर और हारमोनियम पर श्री पंचाक्षरी हिरेमठ साथ दे रहे थे।
1: That was Rag Bageshri. With that, we come to the end of tonight's Ravivasariya Akhila Bharatiya Sangeet Sabha, in which you were listening to a vocal recital by Shri Kumar Maradur. He was accompanied on the tabla by Pandit Satlingappa Desai Kallur and on the harmonium by Shri Panchakshari Hiremath.
0: यह कार्यक्रम आकाशवाणी के धारवाड़ केंद्र में रिकॉर्ड किया गया और आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
1: दिस प्रोग्राम वॉज अर्लियर रिकॉर्डेड एट आकाशवाणी धारवाड़ एंड रिलेड फ्रॉम आकाशवाणी दिल्ली।
2: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। अब से कुछ ही देर बाद आप सुनेंगे समाचार। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। भारत ने कहा है कि होर्मुज जल डमरु मध्य क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय जल मार्गों से मुक्त और बिना रुकावट के नौवहन और वाणिज्य जहाजों को जल्द से जल्द बहाल किया जाना चाहिए। विदेश मंत्रालय के बयान में इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जलपोतों पर लगातार हमलों की घटनाओं पर चिंता प्रकट की गई है।
4: भारत ने तनाव को तुरंत कम करने और कूटनीतिक समाधान के लिए बातचीत को शीघ्र निष्कर्ष तक पहुंचाने की मांग दोहराई है, ताकि इस इलाके में शांति और स्थिरता कायम की जा सके। विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों और नागरिक ठिकानों को निशाना बनाना बंद होना चाहिए। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत GFS गैलेक्सी पर हमले की कड़ी निंदा की है। पोत पर सवार 11 भारतीयों में से 10 को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि एक लापता है। ओमान में भारतीय दूतावास स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है और खोज तथा बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
3: ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर द्वारा रणनीतिक जलमार्ग को अगले आदेश तक बंद करने की घोषणा के कुछ घंटों बाद अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य सभी वैध आवागमन चाहने वाले जहाजों के लिए खुला है। यह बयान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के संवाददाता सम्मेलन में ये कहने के बाद आया कि होर्मुज जलडमरू मध्य वाणिज्यिक जहाजों के लिए खुला है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि जलडमरू मध्य से समुद्री यातायात सुचारू रूप से चल रहा है और अमेरिकी सेनाएं ईरानी आक्रामकता, उत्पीड़न, धमकियों और मनमानी घोषणाओं के बावजूद नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए तैनात हैं। ईरान ने बहरीन, कुवैत, कतर और संयुक्त अरब अमीरात को निशाना बनाकर मिसाइल और ड्रोन हमले किए। ईरान ने जॉर्डन में एक अमेरिकी सैन्य अड्डे पर भी हमला करने का दावा किया।

इस तनाव ने क्षेत्रीय सुरक्षा और वैश्विक ऊर्जा बाजारों को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं। वियतनाम में नौका दुर्घटना में जान गंवाने वाले 15 भारतीय नागरिकों के पार्थिव शरीर हो ची मिन्ह शहर पहुंच गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में दूतावास ने बताया कि आवश्यक औपचारिकताएं पूरा होने के बाद पार्थिव शरीरों को यथाशीघ्र भारत भेजा जाएगा। हो ची मिन्ह शहर स्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास वियतनाम के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क बनाए हुए है। इस नाव में 32 भारतीय पर्यटकों सहित 36 लोग सवार थे। दुर्घटना में घायल 16 भारतीय स्वदेश लौट रहे हैं। गंभीर रूप से घायल एक व्यक्ति का वियतनाम के फूसकॉक स्थित अस्पताल में उपचार चल रहा है। इस बीच वियतनाम के प्रधानमंत्री ली मिन हंग ने दुर्घटना की जांच के आदेश दिए हैं। देश भर में पौधे लगाने के लिए आज व्यापक अभियान चलाया गया। इसके तहत उत्तर प्रदेश ने एक दिन में 35 करोड़ से अधिक पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में नया इतिहास रचा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में लिंक एक्सप्रेसवे के निकट नीम, पीपल और बरगद के पौधे लगाकर राज्यव्यापी पौधारोपण महायज्ञ का शुभारंभ किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज अहमदाबाद में नगर निगम की 405 करोड़ रुपए की लागत की विरासत परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर श्री शाह ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत विशाल पौधारोपण अभियान का शुभारंभ भी किया। इस अभियान के तहत आज उनके लोकसभा क्षेत्र गांधीनगर में 1,25,00,000 से ज्यादा पौधे लगाए गए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज इंदौर में एक पेड़ माँ के नाम वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया। इसका लक्ष्य राज्य भर में 21,00,000 पौधे लगाना है। इस अभियान के अंतर्गत 51,000 वर्षा जल संचयन इकाइयां स्थापित करने की योजना है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कल एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव के तीसरे संस्करण का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इसका शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य वैश्विक क्षमता केंद्र, डेटा केंद्र और सेमीकंडक्टर क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना है। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग मेघालय सरकार के सहयोग से कल शिलांग में नेक्स्ट जनरेशन प्रशासनिक और ई गवर्नेंस सुधार विषय पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। भारत ने चीन के ऑर्डोस में खेली जा रही एशियाई अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अपना अभियान 16 पदकों के साथ संपन्न किया। इनमें 3 स्वर्ण, 4 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल हैं। भारत ने आज अंतिम दिन 2 स्वर्ण और 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।